0: हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत के कार्यक्रम स्वररंजनी के अंतर्गत अभी आप सुन रहे थे अशोक कुमार चौरसिया का शहनाई पर बजाया गया राग रामकली। ये आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है। 6 बजने को हैं, अब समाचार होंगे।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं नवीन सक्सेना। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने नई दिल्ली के सत्यनिकेतन इलाके में इमारत ढहने की घटना की न्यायिक जांच के आदेश दिए हैं। उन्होंने इमारत के मालिक के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज करने के भी निर्देश दिए। मुख्यमंत्री कार्यालय के अनुसार ये फैसला घटनास्थल पर स्थिति का जायजा लेने और हादसे के प्रारंभिक आकलन के बाद लिया गया। मुख्यमंत्री कार्यालय के द्वारा बताया गया है कि इस गंभीर घटना के लिए जो भी जिम्मेदार पाया जाएगा उसकी पूरी जवाबदेही तय की जाएगी और कानून के अंतर्गत कड़ी कार्रवाई की जाएगी। इस बीच कल देर रात एक और शव मिलने के बाद हादसे में मरने वालों की संख्या 6 हो गई है। घटनास्थल पर राहत और बचाव अभियान जारी है। एनडीआरएफ, अग्निशमन सेवा, दिल्ली पुलिस और अन्य एजेंसियों की टीमें मौके पर राहत और बचाव कार्य में जुटी हैं। दिल्ली के महापौर प्रवेश वाघी ने कहा है कि 4 से अधिक मंजिल वाली सभी अवैध निर्माण वाली इमारतों को तत्काल सील किया जाएगा। दिल्ली विश्वविद्यालय का श्री वेंकटेश्वर कॉलेज आज इमारत हादसे के मद्देनजर बंद रहेगा। आर्यभट्ट कॉलेज ने भी आज शिक्षण कार्य स्थगित कर दिया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृहमंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और स्वास्थ्य मंत्री जगत प्रकाश नड्डा ने इस घटना पर दुख व्यक्त किया है। श्री मोदी ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि अधिकारी घटनास्थल पर राहत और बचाव कार्य में जुटे हैं तथा हादसे से प्रभावित लोगों की मदद की जा रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि पिछले कुछ वर्षों में भारत और फ्रांस के संबंध नई ऊंचाइयों पर पहुंचे हैं। उन्होंने कहा कि राष्ट्रपति मैक्रों के साथ मिलकर दोनों देश एक विशेष वैश्विक रणनीतिक साझेदारी का निर्माण कर रहे हैं। फ्रांस के पेरिस में स्वामी नारायण मंदिर के उद्घाटन के दौरान श्री मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग द्वारा कहा कि प्रौद्योगिकी, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और रक्षा से लेकर अंतरिक्ष और जलवायु परिवर्तन तक दोनों देश नई गति और नई ऊर्जा के साथ मिलकर आगे बढ़ रहे हैं। उन्होंने कहा कि दोनों पक्ष इस वर्ष को भारत फ्रांस नवाचार वर्ष के रूप में मना रहे हैं। प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत फ्रांस रणनीतिक साझेदारी विशेष है क्योंकि ये दीर्घकालिक सांस्कृतिक और राजनीतिक संबंधों की मजबूत नींव पर टिकी है।
2: BAPS के माध्यम से जब अलग अलग देशों में मंदिरों की प्राण प्रतिष्ठा होती है तो वहाँ भारत के प्राचीन विचार और मानवीय मूल्य भी साथ साथ ही जाते हैं। और भारत का विचार कहता है समानम मनः सह चित्तमेषाम, अर्थात हमारे मन समान हो, हमारे हृदय साथ जुड़े। इसलिए आज जब फ्रांस में इतना भव्य मंदिर बनकर तैयार हुआ है, ये फ्रांस की विविधता को तो समृद्ध करेगा ही, इससे भारत और फ्रांस के सांस्कृतिक संबंधों को भी ऊर्जा मिलेगी।
1: मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव कल संयुक्त अरब

0: अमीरात के 3 दिन की यात्रा पर दुबई पहुंचे। वो दुबई में वार्षिक निवेश बैठक कांग्रेस में भाग लेंगे और निवेशकों के मत समक्ष मध्य प्रदेश को एक आकर्षक निवेश स्थल के रूप में प्रस्तुत करेंगे। यात्रा का लक्ष्य रसद, खनन, कृषि, खाद्य प्रसंस्करण, वस्त्र और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सहित सभी क्षेत्रों में निवेश आकर्षित करना है। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो ने मीडिया की उन अटकलों और गलत सूचनाओं पर स्पष्टीकरण जारी किया है जिनमें इसरो के निजीकरण या उसकी भूमिका कम करने के प्रयासों की बात कही गई है। सोशल मीडिया पोस्ट में इसरो ने कहा कि न तो उसका निजीकरण और न ही उसका महत्व कम किया जाएगा। अंतरिक्ष क्षेत्र में निजी क्षेत्र की भागीदारी का उद्देश्य अंतरिक्ष कार्यक्रम को सक्षम बनाना है। ईरान के शीर्ष सुरक्षा अधिकारी ने कहा है कि आने वाले दिनों में हॉर्मुज जलडमरू मध्य के बाहर एक नया प्रतिबंधित क्षेत्र घोषित किया जाएगा। उन्होंने कहा कि ईरान के साथ समन्वय के बिना इस क्षेत्र में प्रवेश करने वाले किसी भी जहाज को ईरान की प्रतिबंध सूची में डाल दिया जाएगा। सुप्रीम नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल के सचिव मेजर जनरल मोहसिन रिजाई ने कहा है कि यह प्रतिबंधित क्षेत्र अमरीकी नौसेना की नाकाबंदी वाली सीमा से शुरू होकर फारस की खाड़ी के कुछ हिस्सों तक फैलेगा। सात्विक साईराज रंकी रेड्डी और चिराग शेट्टी की जोड़ी ने चाइना मास्टर्स बैडमिंटन टूर्नामेंट के पुरुष डबल्स का खिताब जीत लिया है। भारतीय जोड़ी ने कल चीन के खिलाड़ियों को हराया। ये इस प्रतियोगिता में भारत का पहला तथा इस जोड़ी का इस सत्र का दूसरा खिताब है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: दिस इज आकाशवाणी, द न्यूज रेड बाय रेनु कटारिया। Delhi Chief Minister Rekha Gupta has ordered a magisterial inquiry into the building collapse incident in Satyaniketan area of New Delhi and directed registration of an FIR against the building owner. The Chief Minister's office said the decision was taken following an on-site review and a preliminary assessment of the incident. The CMO said those found responsible for the grave incident will be held fully accountable and dealt with under the strictest provisions of law. Death toll in the incident has risen to 6 following the recovery of one more body late last night. Search and rescue operations continued at the site as teams worked to clear the debris and look for any trapped person. Teams from the NDRF, Fire Service, Delhi Police and other agencies are working at the site to clear the debris. Union Home Minister Amit Shah spoke to Delhi Chief Minister, Delhi Police Commissioner and Director General of NDRF and assessed the situation on the ground. Mr. Shah said the injured are being provided with all necessary medical assistance. The building was being used as a paying guest accommodation. A senior police officer said repair work was underway in the basement when the structure collapsed at around 1:30 p.m. yesterday. Delhi Mayor Pravesh Wahi has said that all illegal constructions having more than 4 floors will be sealed with immediate effect. He said strict action will also be taken against officials found responsible, including their immediate dismissal. Prime Minister Narendra Modi has said that over the past several years, the relationship between India and France has reached new heights. He said together with President Macron, both countries are building a special global strategic partnership. Speaking during inauguration of Swami Narayan Hindu Mandir in Paris through video conferencing, Mr. Modi said, from technology, AI and defense to space and climate action, both nations are moving forward together with new momentum and renewed energy. He said both sides are celebrating this year as the India-France year of innovation.
2: BAPS के माध्यम से जब अलग अलग देशों में मंदिरों की प्राण प्रतिष्ठा होती है तो वहाँ भारत के प्राचीन विचार और मानवीय मूल्य भी साथ साथ ही जाते हैं और भारत का विचार कहता है समानम मनः सह चित्तमेषाम अर्थात हमारे मन समान हो हमारे हृदय साथ जुड़े। इसलिए आज जब फ्रांस में इतना भव्य मंदिर बनकर तैयार हुआ है ये फ्रांस की विविधता को तो समृद्ध करेगा ही। इससे भारत और फ्रांस के सांस्कृतिक संबंधों को भी ऊर्जा मिलेगी।
1: Floods have affected normal life in several parts of Bihar with major rivers including the Ganga, Gandak and Kosi flowing above the danger mark. In view of the rising water level of the Ganga, authorities are maintaining heightened vigilance in downstream areas. The river had crossed the highest flood

भगवान शिव को समर्पित ये अगला भाव है अनुराधा पौडवाल और सोनू निगम की आवाज़ में।

0: ये आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है। आइए सुनते हैं भगवती चरण वर्मा के विचारों पर आधारित हमारा अगला कार्यक्रम चिंतन।
1: अपनी एक आत्मकथा कहीं न जाए का कहिए में भगवती चरण वर्मा ने लिखा है, मनुष्य के दो प्रमुख प्रक्रियाएं हैं, पाना और खोना। इस पाने और खोने को समर्थ व्यक्ति लेन और देन का नाम देते हैं, लेकिन अपनी विवशताओं और असमर्थताओं से घिरा मैंने इसे हमेशा पाने और खोने के रूप में ही जाना है। इस लेने और देने का सकारात्मक रूप अभिमान है, उस लेने और देने का नकारात्मक रूप कुंठा है। लेकिन पाने और खोने का न कोई सकारात्मक रूप है और न नकारात्मक रूप। मैं अभिमान और कुंठा दोनों से दूर रहा हूँ। इसका प्रथम सुस्पष्ट अनुभव उन्हें मई सन 1942 में हुआ। दरअसल वो इस दौरान अपनी पत्नी उमा को साथ लेकर राजनाथ गांव से लौट रहे थे। इलाहाबाद में उन्हें कानपुर के लिए गाड़ी बदलनी थी। लंबे सफर की थकान तो थी ही, सेकंड क्लास के जनाना वेटिंग रूम में पत्नी का सामान रखवा कर पत्नी से आराम कर लेने को कहा। खुद अकेले वेटिंग रूम के बाहर बैठे रहे। उधर भोली पत्नी उमा ने अपना ट्रंक खोलकर कपड़े निकाले और बिना ताला लगाए बाथरूम चली गई। बाथरूम से लौटकर उन्होंने ट्रंक में ताला लगाया और शाम की गाड़ी से दोनों कानपुर के लिए रवाना हो गए। दूसरे या तीसरे दिन पता चला कि ट्रंक से उनके सारे गहने गायब हैं। करीब 150 तोले के गहने थे। पुलिस में रिपोर्ट लिखवा दी, लेकिन जो गया फिर मिलने के लिए नहीं गया था। लिहाजा भगवती बाबू ने स्वीकार कर लिया कि पाने के साथ साथ खोना भी उनके जीवन का अनिवार्य भाग है। इसीलिए वो मानने लगे कि उनके जीवन में कभी किसी तरह की योजना जैसे रही ही नहीं। काल और नियति के हिलकोरों में बहते जाना ही जैसे उनके जीवन का क्रम रहा। अच्छी बात ये थी कि उनमें अपराजित आशावादिता बनी रही। वो घोर संकट को हंसते हंसते बर्दाश्त कर लेते थे और फिर एक नए उत्साह के साथ संघर्षरत हो जाते थे। उनका विचार था कि उनका जीवन नियतिवाद के दर्शन से अनुशासित था। इसका कारण संभवतः उनके बचपन की घटनाएं भी रहीं। एक घटना यूं रही, उनके पिता ने कच्चा मकान रहने के लिए किराए पर लिया था। जब भगवती बाबू महज 2 महीने के थे, एक दिन माँ ने उन्हें कोठरी के फर्श पर लिटा दिया और खुद रसोई में काम करने चली गई। खाना बनाकर जब वो लौटी तो ये देखकर हैरान रह गई कि बेटा सो रहा है और एक नागराज उस पर फन फैलाए बैठे हैं। उनके वहां पहुंचते ही नागराज ने बच्चे को माँ के संरक्षण में छोड़कर विदा ले ली। अब देखिए बचपन की इस घटना को बड़े होकर वो किस तरह देखते हैं। कोई सांप रेंगता हुआ मेरे पास से निकल गया होगा और माता राम ने इस घटना पर रंग चढ़ा दिया होगा। भगवती बाबू ने आत्मकथ्य के एक अध्याय में एक अनोखा प्रयोग किया है। यहाँ वो एक पौराणिक आख्यान को अपनी शैली में सामने रखते हुए अपने समय की एक बड़ी समस्या पर चिंतन करते हैं। कलियुग महोदय तेजी के साथ द्वापर युग को धकेलते हुए बढ़े जा रहे थे। द्वापर के अंतिम सम्राट राजा परीक्षित ने ये तय कर लिया कि कलियुग को आने ही न दिया जाए। बड़े जबरदस्त राजा महाराजा हुआ करते थे, तो उन्होंने कलियुग को खदेड़ा। अब आगे आगे कलियुग भाग रहा था अपनी जान बचाने के लिए।

0: और पीछे पीछे राजा परीक्षित कि हम तुम्हारी जान लेकर ही छोड़ेंगे। अंत में राजा परीक्षित ने कलियुग महोदय को दबोच लिया। बहुत रोया, गिड़गिड़ाया, बोला, हमें तो आना ही है, विधि का विधान कुछ ऐसा ही है, और आकर हमें अंत तक रहना भी है। तो राजन, हमें ऐसा स्थान बता दीजिए जहां हम चैन से रहें, आपसे बिना संघर्ष किए हुए। बड़ी बुद्धि लड़ाई राजा परीक्षित ने और बुद्धि काम दे गई। बोले, तुम स्वर्ण में रहो, एव वस्तु कहकर कलियुग महोदय स्वर्ण में प्रविष्ट हो गए। भगवती बाबू के अनुसार ये आख्यान इस संदर्भ में है कि कलियुग स्वर्ण में यानी कि सोने चांदी में जमकर बैठा हुआ है, इसीलिए कलियुग ने वित्त को इतनी महत्ता प्रदान की है।
1: चिंतन के बाद आइए सुनते हैं रामचरितमानस में अयोध्या कांड का भाग 41।

प्रयाग से चित्रकूट के मार्ग में श्री राम, सीता और लक्ष्मण को ग्राम तथा वन वासियों से हृदय स्पर्शी स्नेह प्राप्त हुआ। ग्राम वधुओं ने सीता जी के चरण छूकर उनकी मंगल कामना की, उन्हें आशीष दिया कि जब तक पृथ्वी कायम है उनका सुहाग बना रहे, वे पार्वती की भांति पति का प्रेम प्राप्त करें और वन से लौटते हुए इसी मार्ग से जाएं। लक्ष्मण ने जब विनीत भाव से आगे का मार्ग पूछा तो ग्रामवासियों की आंखों में आंसू उमड़ आए। कर्म की गति कोई नहीं जान सका है, ऐसा मानकर वनवासियों ने उन्हें सुगम मार्ग बता दिया। स्नेह सिक्त वचन से श्री राम ने उन्हें उनके घरों को वापस लौटाया। लौटते हुए स्त्री पुरुषों को ये विषाद है कि विधाता के सभी काम उल्टे होते हैं। यदि उसे इन्हें वनवास ही देना था तो व्यर्थ ही भोग विलास के साधन बनाए। व्यथित ग्रामवासी विधाता की करनी का विश्लेषण करते हैं। किसी को लगता है कि ये ब्रह्मा के बनाए न होकर अपने आप प्रकट हुए हैं। कोई कहता है कि ब्रह्मा इनका अनुपम रूप देखकर इन पर मुग्ध हो गया होगा और इन्हीं की छवि में स्त्री पुरुष बनाने लगा होगा, किंतु बहुत यत्न करके भी अपनी रचना को इन जैसा सुंदर नहीं बना सका होगा, तो ईर्ष्यावश इन्हें वन में छिपाने की योजना बना ली।

0: राज्यानां मध्ये अनेकेषां वेतन अतिथि निवासस्थानानां असुरक्षायाः भावस्य च परिसमाप्तेः अनन्तरं छात्राणां कृते स्वस्य वर्गेषु आवासं कल्पयति। भवनपतनस्य दृष्ट्या आर्यभट्ट महाविद्यालये अपि अद्य अध्यापनं स्थगितमस्ति। बिहार उत्तरप्रदेशयोः विभिन्नेषु भागेषु भीषण जलाप्लावनेन सामान्य जनजीवनं तीव्रतया प्रभावितम् अभवत्। बिहारे गंगा गण्डक कोशी चेति प्रमुखाः नद्यः संकटस्तरं अतीत्य प्रवहन्ति। पटनायां गंगानद्याः जलस्तरः अनेकेषु घट्टेषु उच्चतम आप्लवं स्तरम् अतिक्रमति, येन अधोवर्ति क्षेत्रेषु उच्चसतर्कता वर्तते। उत्तर प्रदेशे 24 मंडलानि आप्लावग्रस्तानि सन्ति, यत्र वृष्टिसंबद्धासु घटनासु 5 जनाः स्वप्राणान् अयच्छन् इति वार्ताः।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं सर फिरोजी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि पिछले कुछ वर्षों में भारत और फ्रांस के संबंध नई ऊंचाइयों पर पहुंचे हैं। उन्होंने कहा कि राष्ट्रपति मैक्रों के साथ मिलकर दोनों देश एक विशेष वैश्विक रणनीतिक साझेदारी का निर्माण कर रहे हैं। फ्रांस के पेरिस में स्वामी नारायण मंदिर के उद्घाटन के दौरान श्री मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग द्वारा कहा कि प्रौद्योगिकी, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और रक्षा से लेकर अंतरिक्ष तथा जलवायु परिवर्तन तक दोनों देश नई गति और नई ऊर्जा के साथ कर आगे बढ़ रहे हैं। उन्होंने कहा कि दोनों पक्ष इस वर्ष को भारत फ्रांस नवाचार वर्ष के रूप में मना रहे हैं। प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत फ्रांस रणनीतिक साझेदारी विशेष है क्योंकि ये दीर्घकालिक सांस्कृतिक और राजनीतिक संबंधों की मजबूत नींव पर टिकी है।
2: BAPS के माध्यम से जब अलग अलग देशों में मंदिरों की प्राण प्रतिष्ठा होती है तो वहाँ भारत के प्राचीन विचार और मानवीय मूल्य भी साथ साथ ही जाते हैं। और भारत का विचार कहता है समानम मनः सहचित्त मेषाम, अर्थात हमारे मन समान हो, हमारे हृदय साथ जुड़े। इसलिए आज जब फ्रांस में इतना भव्य मंदिर बनकर तैयार हुआ है, ये फ्रांस की विविधता को तो समृद्ध करेगा ही, इससे भारत और फ्रांस के सांस्कृतिक संबंधों को भी ऊर्जा मिलेगी।
1: दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने नई दिल्ली के सत्य निकेतन इलाके में इमारत ढहने की घटना की न्यायिक जांच के आदेश दिए हैं। उन्होंने इमारत के मालिक के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज करने के भी निर्देश दिए। मुख्यमंत्री कार्यालय के अनुसार ये फैसला घटनास्थल पर स्थिति का जायजा लेने और हादसे के प्रारंभिक आकलन के बाद लिया गया। मुख्यमंत्री कार्यालय द्वारा बताया गया है कि इस गंभीर घटना के लिए जो भी जिम्मेदार पाया जाएगा उसकी पूरी जवाबदेही तय की जाएगी और कानून के अंतर्गत कड़ी कार्रवाई होगी। इस बीच कल देर रात एक और शव मिलने के बाद हादसे में मरने वालों की संख्या 6 हो गई है। घटनास्थल पर राहत और बचाव अभियान जारी है। NDRF, अग्निशमन सेवा, दिल्ली पुलिस और अन्य एजेंसियों की टीमें घटनास्थल पर राहत और बचाव कार्य में जुटी हैं। गृह मंत्री अमित शाह ने मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता, दिल्ली पुलिस आयुक्त और NDRF के महानिदेशक से बात कर घटनास्थल की स्थिति का जायजा लिया। श्री शाह ने कहा कि घायलों को सभी जरूरी चिकित्सा सहायता दी जा रही है। ये इमारत पेइंग गेस्ट आवास के रूप में इस्तेमाल की जा रही थी। एक वरिष्ठ पुलिस अधिकारी ने बताया कि कल दोपहर करीब 1:30 बजे इमारत ढहने के समय उसके बेसमेंट में मरम्मत का काम चल रहा था। दिल्ली के महापौर प्रवेश वाही ने कहा कि 4 से अधिक मंजिल वाली सभी अवैध निर्माण वाली इमारतों को तत्काल सील किया जाएगा। दिल्ली विश्वविद्यालय का श्री वेंकटेश्वर कॉलेज आज इमारत हादसे के मद्देनजर बंद रहेगा। आर्यभट्ट कॉलेज ने भी आज शिक्षण कार्य स्थगित कर दिया है। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो ने मीडिया की उन अटकलों और गलत सूचनाओं पर स्पष्टीकरण जारी किया है जिनमें इसरो के निजीकरण या उसकी भूमिका कम करने के प्रयासों की बात कही गई है। सोशल मीडिया पोस्ट में इसरो ने कहा कि ना तो उसका निजीकरण और ना ही उसका महत्व कम किया जाएगा। अंतरिक्ष क्षेत्र में निजी क्षेत्र की भागीदारी का उद्देश्य अंतरिक्ष कार्यक्रम को सक्षम बनाना है। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव कल दुबई पहुंचे। वे संयुक्त अरब अमीरात की 3 दिवसीय यात्रा पर हैं। वे दुबई में आयोजित एनुअल इन्वेस्टमेंट मीटिंग कांग्रेस में भाग लेंगे।

यह आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है। मीडियम वेव 366.3 मीटर अर्थात 819 किलो हर्ट्स, DRM 810 किलो हर्ट्स पर। स्टूडियो की घड़ी में 7:30 और 20 सेकंड हो चुके हैं। समय है आपके अपने मनपसंद कार्यक्रम गीतों भरी गुड मॉर्निंग का।

गीतों भरी गुड मॉर्निंग, आपकी मॉर्निंग को गुड करने के लिए आज आपके साथ हूँ मैं, आपकी दोस्त, आपकी होस्ट मनीषा बोस। और दोस्तों, सुबहें हम सभी के जीवन में आती हैं और इन सुबहों में बहुत सारे ख्याल हमारे मन में आते हैं, और उनमें से एक ख्याल जो हमेशा हमें उम्मीद से जोड़ जाता है वो होता है, जो बीत गया वो सपना था लेकिन जो आज है वो हमारा अपना है। और हमारे जो पूर्व राष्ट्रपति हैं डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम जी, उन्होंने भी एक बात कही थी कि सपने वो नहीं जो नींद में देखे जाते हैं, सपने वो होते हैं जो आपको सोने नहीं देते हैं। और वो सपने तभी पूरे होते हैं जब आप उन्हें जागते हुए पूरा करने का प्रयास करते हैं। इसलिए सुबह का समय हमारे जीवन का वो सबसे महत्वपूर्ण पहलू होता है जब हम पूरे दिन भर की योजना के साथ अपने जीवन में आगे बढ़ने की तैयारी कर रहे होते हैं। लेकिन इन सब के बीच ईश्वर की प्रार्थना, ईश्वर का साथ और उनका आशीर्वाद बहुत ज़रूरी होता है। और हमारी बस यही दुआ है कि ये प्रार्थनाएं आपके साथ सदा बनी रहें। तो चलिए एक प्रार्थना आपके लिए

सच में ईश्वर की पनाह के साथ हम जीवन के उन मूल्यों को सीखते हैं और अपने जीवन में सार्थकता की ओर आगे बढ़ते हैं। और जब ईश्वर का आशीर्वाद हमारे साथ होता है तो सुबह सुबह की हमारी जो मॉर्निंग है यानी गीतों भरी जो गुड मॉर्निंग है वो और भी खुशनुमा हो जाती है। और चूंकि यही एक वो समय होता है दोस्तों जो सुबह का हमें हमारी ज़िंदगी में पूरे दिन भर के लिए एक आईने की तरह काम करता है। हम इस समय जो सोचते हैं जैसा सोचते हैं वैसा ही लगभग हमारा पूरा दिन का कलेवर बन जाता है। तो हम चाहते हैं आपका दिन खुशनुमा हो, सफलता से भरा हुआ हो और आप हमारे साथ जुड़कर ऐसे ही खुशियों का और उत्साह का अनुभव करते रहें। तो चलिए प्रकृति की इस छटा को हम एक और गीत उनको समर्पित करते हैं जो प्रकृति के आसपास रहकर अपने जीवन को बहुत खुशियों से भर रहे हैं।

जी हाँ दोस्तों, हमारे जो प्रकृति है वो हमें ऐसा संदेश ही तो देती है, प्यार से भरा हुआ, मिलजुल कर रहने का, जीवन की खुशियों को एक साथ समेट कर जीने का। और प्रकृति की इन्हीं नायाब बातों के साथ, इन्हीं संदेशों के साथ हम अपने आज की जो सुबह है, अपनी आज की सुबह को तरोताज़ा करने का प्रयास कर रहे हैं आपके साथ मिलकर। और आपसे एक सवाल है, आप बताइए, आप रोज़ सुबह उठकर कैसे अपने दिन की शुरुआत करते हैं? क्या मोबाइल के साथ आपके दिन की शुरुआत होती है, या फिर खुशनुमा प्रकृति के नज़ारों को देखकर? और मुझे यकीन है, यदि आप प्रकृति के नज़ारों के साथ अपने दिन की शुरुआत करते हैं, तो फिर सुबह उठते ही आप एक ग्लास गुनगुना पानी पीते होंगे और फिर ज़मीन को प्रणाम करके अपने दिन की शुरुआत के लिए आगे बढ़ते होंगे। और यकीन मानिए, अगर आप ऐसा करते हैं तो आप आशाओं से भर जाते हैं और आपका पूरा दिन आशा से भरा रहे, इसके लिए एक गीत मैं आपको सुनाती हूँ।

जी तो वेरी गुड मॉर्निंग में मनीषा के साथ आप अपने आज के दिन को सुरीला बना रहे हैं और गीत तो भरी गुड मॉर्निंग में हम आपको बताते हैं कि विज्ञान भी कहता है कि जो सुबह सुबह हमारा मन होता है वो एक कोरे पन्ने की तरह होता है। हम जैसा भाव उसमें उस समय रख लेते हैं, सोच लेते हैं, वैसा ही हमारा पूरा दिन बन जाता है। तो आपके दिन को सुरीला बनाने की कोशिश है हमारी और इसीलिए हम ये करते हैं प्रयास आपके लिए। उठे सबके।

0: प्यार के जहां में रजामंद जब हम
1: तुम हम बन गए हैं सनम बेधड़क तू मेरे घर आया करो कभी खुशी कभी गम तारा राम पम।

गीतों भरी गुड मॉर्निंग मनीषा के साथ हैं आप। आज आपके गीतों को, आपके गीतों के साथ आपके इस दिन को सुरीला बनाने के लिए। तो सुबह सुबह आपको याद दिलाना है कि ज़िंदगी बहुत ख़ास है, छोटी छोटी बातों से परेशान नहीं होना, उलझना नहीं है किसी परेशानी में, और हमेशा पॉजिटिव रहना है। लेकिन पॉजिटिविटी का मतलब सिर्फ हंसना नहीं, बल्कि ये भी समझना है कि जो है वो आज है और इसे आज ही जीना है। तो चलते चलते गीतों भरी गुड मॉर्निंग में ये एक गीत आपके लिए जो आपके पूरे दिन को बना जाएगा।

0: यह आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है। मीडियम वेग 366.3 मीटर अर्थात 819 किलोहर्ट्ज पर। लीजिए समाचार सुनिए।
1: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं सर फिरोजी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत फ्रांस रणनीतिक साझेदारी को दीर्घकालिक सांस्कृतिक और राजनीतिक संबंधों की मजबूत नींव पर आधारित होने के कारण खास बताया। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने सत्य निकेतन में इमारत ढहने की घटना की न्यायिक जांच के आदेश दिए। इमारत के मालिक के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज। इसरो ने कहा, अंतरिक्ष क्षेत्र में सुधारों का उद्देश्य एक व्यापक, मजबूत और वैश्विक स्तर पर प्रतिस्पर्धी भारतीय अंतरिक्ष पारिस्थितिकी तंत्र बनाना, इसे निजीकरण के बजाय पारिस्थितिकी तंत्र के विस्तार और क्षमता वृद्धि के रूप में देखा जाना चाहिए। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह गोवा के पणजी में आज पश्चिमी क्षेत्रीय परिषद की 28वीं बैठक की अध्यक्षता करेंगे। ओपेक प्लस समूह ने अक्टूबर के लिए तेल उत्पादन लक्ष्य को अपरिवर्तित रखने का फैसला किया और भारत ने ताशकंद में बांग्लादेश को 30-3 से हराकर 20 वर्ष बाद AFC Under-20 फुटबॉल एशिया कप के लिए क्वालिफाई किया। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि पिछले कुछ वर्षों में भारत और फ्रांस के संबंध नई ऊंचाइयों पर पहुंचे हैं। उन्होंने कहा कि राष्ट्रपति मैक्रों के साथ मिलकर दोनों देश एक विशेष वैश्विक रणनीतिक साझेदारी का निर्माण कर रहे हैं। फ्रांस के पेरिस में स्वामी नारायण मंदिर के उद्घाटन के दौरान वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से श्री मोदी ने कहा कि भारत फ्रांस रणनीतिक साझेदारी विशेष है क्योंकि ये दीर्घकालिक सांस्कृतिक और राजनीतिक संबंधों की मजबूत नींव पर टिकी है।
2: बीते वर्षों में भारत और फ्रांस के संबंध नई ऊंचाइयों तक पहुंचे हैं। मेरे मित्र प्रेसिडेंट मैक्रों के साथ मिलकर दोनों देश एक स्पेशल ग्लोबल स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप बना रहे। टेक्नोलॉजी, AI और डिफेंस से लेकर स्पेस और क्लाइमेट एक्शन तक हम एक नई गति और नई ऊर्जा के साथ मिलकर के आगे बढ़ रहे हैं। हम 2026 को इंडिया फ्रांस ईयर ऑफ इनोवेशन के रूप में भी सेलिब्रेट कर रहे हैं।
1: प्रधानमंत्री ने कहा कि इतिहास फ्रांस में भारतीय सैनिकों के बलिदानों का गवाह है। श्री मोदी ने कहा कि आज योग भारत और फ्रांस के बीच आपसी जुड़ाव का एक महत्वपूर्ण माध्यम बन गया है। प्रधानमंत्री ने कहा कि इन दिनों भारत फ्रांस संयुक्त उद्यमों की संभावनाओं पर काफी चर्चा हो रही है। उन्होंने कहा कि स्वामी नारायण मंदिर ने इस संभावना को भी एक नया आयाम दिया है।
2: भारत फ्रांस ज्वाइंट वेंचर्स की संभावनाओं पर बातें होती है। स्वामीनारायण मंदिर ने इस संभावना में भी एक नया आयाम जोड़ा है। ये मंदिर मेड इन इंडिया है और बिल्ट इन फ्रांस है। इसके काफी पत्थरों को भारत में तराशा गया है। भारत की प्राचीन प्रतिभा यहाँ फ्रांस में आधुनिक इंजीनियरिंग से आकर जुड़ चुकी है। पेरिस में इस भव्य मंदिर ने आकार लिया है, इसलिए मैं आशा करता हूँ ये मंदिर सदियों तक भारत और फ्रांस के बीच सहयोग और संभावनाओं का भी प्रतीक बनकर उभरेगा।
1: दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने नई दिल्ली के सत्य निकेतन इलाके में इमारत ढहने की घटना की न्यायिक जांच के आदेश दिए हैं। उन्होंने इमारत के मालिक के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज करने के भी निर्देश दिए।
3: जो भी व्यक्ति इसके जिम्मेदार हैं, चाहे वो बिल्डिंग का मालिक है या अधिकारी है, क्योंकि बिल्डिंग पुरानी थी और इसमें कुछ कंस्ट्रक्शन का रेनोवेशन का काम चल रहा था। बेसमेंट में किसी प्रकार की खुदाई चल रही थी जिसके कारण से पिलर जो है वो हिला और वो पूरी बिल्डिंग ढह गई। PG के नाते ये बिल्डिंग काम कर रही थी, बच्चे इसके अंदर थे और लगातार सभी एजेंसीज काम कर रही है। हमारे लिए सबसे महत्वपूर्ण है इन बच्चों की पहले जान बचाई जाए। दोषियों को छोड़ा नहीं जाएगा।
1: मुख्यमंत्री कार्यालय के अनुसार ये फैसला घटनास्थल पर स्थिति का जायजा लेने और हादसे के प्रारंभिक आकलन के बाद लिया गया। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
4: मुख्यमंत्री कार्यालय के द्वारा बताया गया कि इस गंभीर घटना के लिए जो भी जिम्मेदार पाया जाएगा उसकी पूरी जवाबदेही तय की जाएगी और कानून के अंतर्गत कड़ी कार्रवाई की जाएगी। कल देर रात एक और शव मिलने के बाद हादसे में मृतकों की संख्या 6 हो गई है। घटनास्थल पर राहत और बचाव अभियान जारी है। NDRF, अग्निशमन सेवा, दिल्ली पुलिस और अन्य एजेंसियों की टीमें घटनास्थल पर राहत और बचाव कार्य में जुटी हैं। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता, दिल्ली पुलिस आयुक्त और NDRF के महानिदेशक से बात कर घटनास्थल की स्थिति का जायजा लिया। श्री शाह ने कहा कि घायलों को सभी जरूरी चिकित्सा सहायता दी जा रही है। दिल्ली के महापौर प्रवेश वाही ने कहा कि 4 से अधिक मंजिल वाली सभी अवैध इमारतें तत्काल सील की जाएंगी। दिल्ली विश्वविद्यालय का श्री वेंकटेश कॉलेज आज इस हादसे के मद्देनजर बंद रहेगा। वहीं आर्यभट्ट कॉलेज ने भी आज शिक्षण कार्य स्थगित कर दिया है। समाचार कक्ष से शक्ति सिंह।
1: भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो ने मीडिया की उन अटकलों और गलत सूचनाओं पर स्पष्टीकरण जारी किया है जिनमें इसरो के निजीकरण या उसकी भूमिका कम करने के प्रयासों की बात कही गई है। सोशल मीडिया पोस्ट में इसरो ने कहा कि ना तो उसका निजीकरण और ना ही उसका महत्व कम किया जाएगा। एक रिपोर्ट।
5: अंतरिक्ष क्षेत्र में निजी क्षेत्र की भागीदारी का उद्देश्य अंतरिक्ष कार्यक्रम को सक्षम बनाना है। इसरो ने कहा कि अंतरिक्ष क्षेत्र में सुधारों का उद्देश्य एक व्यापक, मजबूत और वैश्विक स्तर पर प्रतिस्पर्धी भारतीय अंतरिक्ष पारिस्थितिकी तंत्र का निर्माण करना है। इसलिए इन सुधारों को निजीकरण के बजाय पारिस्थितिकी तंत्र के विस्तार और क्षमता वृद्धि के रूप में देखा जाना चाहिए। इसरो ने कहा कि परिपक्व और विस्तार योग्य तकनीकी क्षमताओं को भारतीय उद्योग द्वारा तेजी से विकसित किया जा सकता है। इससे बड़े पैमाने पर उत्पादन, व्यवसायीकरण, नवाचार और वैश्विक बाजारों तक पहुंच संभव होगी। जबकि इसरो के वैज्ञानिक और तकनीकी मानव संसाधन को उन्नत अनुसंधान, अगली पीढ़ी की प्रौद्योगिकियों और जटिल राष्ट्रीय मिशनों पर ध्यान केंद्रित करने की अनुमति मिलेगी। अक्षित की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से चाहत सिंह।
1: ये समाचार हमारे ऐप न्यूज ऑन AIR और हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in पर भी उपलब्ध हैं।
6: सबके लिए सामाजिक सुरक्षा अटल पेंशन योजना, मोदी जी का संकल्प।
2: योजना उन नौजवानों के लिए है ताकि आप जब 60 साल के होंगे आपको कभी किसी के सहारे की जरूरत न पड़े, आप अपना बुढ़ापा भी गौरव के साथ बिता सको।
6: अब तक इस योजना से 9 करोड़ 50 लाख से अधिक लाभार्थी जुड़ चुके हैं। अगर आप भी 18 से 40 साल की उम्र के हैं तो मासिक अटल पेंशन सहित योजना के 3 गारंटीड फायदों की जानकारी के लिए अपनी बैंक शाखा से संपर्क करें।
7: Every great journey begins with people coming together to listen, to learn, to imagine what's possible. This is the BRICS 2026, a moment where leaders, innovators, businesses and communities from the BRICS nations come together to strengthen partnerships. India welcomes the BRICS countries as the grouping marks the 20 years of its establishment in 2026. BRICS Summit 2026 is being hosted in Bharat Mandapam, New Delhi from 12th to 13th September 2026 under India's chairship theme, Building for Resilience, Innovation, Cooperation and Sustainability with a people-centric approach and the spirit of humanity first. Because when we work together, possibilities become progress.
1: समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। गृह मंत्री अमित शाह आज गोवा के पणजी में पश्चिमी क्षेत्रीय परिषद की 28वीं बैठक की अध्यक्षता करेंगे। हमारे संवाददाता ने बताया है कि ये बैठक गृह मंत्रालय के अंतर राज्य परिषद सचिवालय द्वारा आयोजित की जा रही है।
8: इस बैठक में गोवा, गुजरात और महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री और वरिष्ठ मंत्री शामिल होंगे। दादरा और नगर हवेली तथा दमन और दीव के प्रतिनिधि भी बैठक में हिस्सा लेंगे। परिषद का यह मंच आपसी सहयोग को बढ़ाने और साझा हितों से जुड़े मामलों पर मिलकर आगे बढ़ने का अवसर देता है। बैठक में केंद्र और राज्यों के वरिष्ठ अधिकारी भी मौजूद रहेंगे। इसके बाद अमित शाह गोवा पुलिस को प्रेसिडेंट्स पुलिस कलर प्रदान करेंगे। निखिल उपाध्याय, आकाशवाणी समाचार, पणजी।
1: मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव कल संयुक्त अरब अमीरात के 3 दिन की यात्रा पर दुबई पहुंचे। वे दुबई में वार्षिक निवेश बैठक कांग्रेस में भाग लेंगे और निवेशकों के समक्ष मध्य प्रदेश को एक आकर्षक निवेश स्थल के रूप में प्रस्तुत करेंगे। श्री यादव ने कहा कि मध्य प्रदेश के साथ जुड़कर कई देशों ने अपना व्यापार बढ़ाया है।
9: प्रदेश से जुड़ करके कई सारे देशों ने भी अब अपना व्यापार व्यवसाय बढ़ाया है और यही कारण है कि पिछले साल ही हमारा 76,000 करोड़ का निर्यात मध्यप्रदेश से हुआ। ऐसे में हम अपने इस व्यापार व्यवसाय के साथ राज्य के युवाओं के लिए रोजगार, सभी के लिए समृद्धि और परस्पर द्विपक्षीय संबंधों में एक दूसरे के आधार पर व्यापार व्यवसाय को बढ़ावा देने के लिए हम दोनों कटिबद्ध है।
1: दिल्ली के इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर सीमा शुल्क अधिकारियों ने दो यात्रियों के पास से 484 चांदी के सिक्के और एक सोने का सिक्का जब्त किया है। इनमें 134 चांदी के सिक्के पुरातात्विक महत्व के हैं। सीमा शुल्क अधिनियम 1962 की धारा 110 के अंतर्गत सिक्कों को जब्त कर लिया गया है। मामले में आगे की जाँच जारी है। ओपेक प्लस समूह के सात प्रमुख देशों सऊदी अरब, रूस, इराक, कुवैत, कजाकिस्तान, अल्जीरिया और ओमान ने कल वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से बैठक की। बैठक में वैश्विक तेल बाजार की स्थिति और संभावनाओं की समीक्षा की गई। एक रिपोर्ट।
10: इन देशों ने वैश्विक स्तर पर बनी अनिश्चितता के बीच अक्टूबर के लिए तेल उत्पादन नीति में कोई बदलाव नहीं करने का फैसला किया है। ओपेक प्लस ने सितंबर में प्रतिदिन करीब 1,88,000 बैरल तेल उत्पादन बढ़ाया था। इसके साथ ही वर्ष 2023 में की गई प्रतिदिन करीब 16,50,000 बैरल की स्वैच्छिक उत्पादन कटौती को वापस लेने की प्रक्रिया पूरी हो गई। यह बैठक ईरान से जुड़े संघर्ष और हॉर्मुज जलडमरू मध्य के आसपास जारी व्यवधानों सहित तेल निर्यात में रुकावटों की पृष्ठभूमि में हुई। इन व्यवधानों के कारण वैश्विक तेल आपूर्ति और कीमतों पर ओपेक प्लस के उत्पादन संबंधी फैसलों का असर सीमित रहा है। समाचार कक्ष से प्राची वाजपेयी।
1: भारत ने AFC अंडर 20 फुटबॉल एशिया कप में प्रवेश कर लिया है। भारत ने ताशकंद में कल अंतिम क्वालिफाइंग मुकाबले में बांग्लादेश को 3-0 से हराकर 20 वर्षों में पहली बार इस प्रतियोगिता में जगह बनाई। AFC अंडर 20 एशिया कप अगले वर्ष 24 मार्च से 10 अप्रैल तक चीन में खेला जाएगा। मौसम विभाग ने आज बिहार, मध्य प्रदेश, पूर्वी उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, पश्चिम बंगाल और पूर्वोत्तर भारत के कुछ हिस्सों में मूसलाधार बारिश का अनुमान व्यक्त किया है। राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली में भी कुछ स्थानों पर हल्की बारिश होने की संभावना है। जम्मू कश्मीर में दो दिन के भव्य लोक महोत्सव का समापन कल शाम रामबन जिले में हुआ। महोत्सव में पहाड़ी समुदाय की समृद्ध लोक परंपराओं, सांस्कृतिक विरासत और जातीय पहचान का प्रदर्शन किया गया। आकाशवाणी का समाचार सेवा प्रभाग आज रात 9:30 बजे फोन इन कार्यक्रम पब्लिक स्पीक में लोक अदालत त्वरित, किफायती और सुलभ न्याय विषय पर परिचर्चा प्रसारित करेगा। कार्यक्रम के दौरान श्रोता हमारे टेलीफोन नंबर 0112331041, 0112371717 और 0112331444 पर अपने प्रश्न पूछ सकते हैं। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।
11: खबरों और अपडेट्स के लिए कभी भी कहीं भी expert@AIRNewsHindi और फेसबुक पर ऑल इंडिया रेडियो न्यूज को फॉलो करें।
1: और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं नवीन सक्सेना।
12: धन्यवाद सर फिरोजी। आज प्रकाशित अखबारों ने अलग अलग खबरों को अपनी सुर्खी बनाया है। अमर उजाला ने गृहमंत्री अमित शाह के इस बयान को दिया है नक्सलवाद खत्म किया, देश को अब ड्रग्स मुक्त बनाएंगे। ड्रग्स मुक्त युवाओं से 2047 में विकसित भारत का नेतृत्व करने का आह्वान। नवभारत टाइम्स ने विदेश मंत्रालय के इस कथन को सुर्खी बनाया है पूरा जम्मू कश्मीर हमारा, नक्शे में यही दिखे। भारत ने संयुक्त राष्ट्र के समान क्षेत्रफल वाले मानचित्र के प्रस्ताव का समर्थन किया। प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा भारत की अखंडता और संप्रभुता से कोई समझौता नहीं। हिंदुस्तान के अनुसार भारत ने बाल विवाह और जबरन विवाह रोकने के लिए 27 नवंबर को अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाने के संयुक्त राष्ट्र के प्रस्ताव का भी समर्थन किया। दैनिक भास्कर ने अपने आर्थिक पन्ने पर लिखा है महिलाओं के काम पर जाने से घरों में बराबरी बढ़ी। एक शोध के अनुसार महिलाओं के नौकरी करने का असर सिर्फ परिवार की आय पर नहीं पड़ता, घर में उनकी स्थिति भी बदलती है। 2025 की एक श्रम सेवा रिपोर्ट के अनुसार भारत में 100 में से 39 महिलाएं काम कर रही हैं। दिल्ली में 10,000 स्टार्टअप से 4,00,000 युवाओं को मिलेगा रोजगार, पंजाब केसरी की सुर्खी है। दिल्ली सरकार ने स्टार्टअप और इंक्यूबेशन नीति की घोषणा की। दैनिक भास्कर लिखता है नए विचारों और उद्यमशीलता को गति देने के लिए सरकार की बड़ी पहल, स्टार्टअप पॉलिसी के लिए 400 करोड़ का बजट। कई अखबारों ने अपने खेल पृष्ठ पर सात्विक साईराज रंकी रेड्डी और चिराग शेट्टी की पहली चाइना बैडमिंटन टूर्नामेंट खिताबी जीत को सचित्र प्रकाशित किया है।
1: और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत फ्रांस रणनीतिक साझेदारी को दीर्घकालिक सांस्कृतिक और राजनीतिक संबंधों की मजबूत नींव पर आधारित होने के कारण खास बताया। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने

0: नृत्य निकेतन में इमारत ढहने की घटना की न्यायिक जांच के आदेश दिए। इमारत के मालिक के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज। इसरो ने कहा, अंतरिक्ष क्षेत्र में सुधारों का उद्देश्य एक व्यापक, मजबूत और वैश्विक स्तर पर प्रतिस्पर्धी भारतीय अंतरिक्ष पारिस्थितिकी तंत्र बनाना। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह गोवा के पणजी में आज पश्चिमी क्षेत्रीय परिषद की 28वीं बैठक की अध्यक्षता करेंगे। और भारत ने ताशकंद में बांग्लादेश को 3-0 से हराकर एएफसी अंडर 20 फुटबॉल एशिया कप के लिए क्वालिफाई किया। इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
1: आकाशवाणी प्रेजेंट्स मॉर्निंग न्यूज। Good morning, I am Abhishek Mukhopadhyay. The headlines. Prime Minister Narendra Modi says India-France strategic partnership is special because it rests upon strong foundation of long-standing cultural and political connections. Delhi Chief Minister Rekha Gupta orders magisterial inquiry into Satya Niketan building collapse incident. FIR lodged against building owner. ISRO says space sector reforms are aimed at creating larger, stronger and globally competitive Indian space ecosystem, and it should be seen as ecosystem expansion and capability multiplication rather than privatization. Union Home Minister Amit Shah to chair 20th meeting of the Western Zonal Council at Panaji in Goa today. OPEC plus countries decide to keep oil production target for October unchanged. And in football, India qualify for AFC Under 20 Asian Cup after 20 years following 3-0 victory over Bangladesh in Tashkent. Prime Minister Narendra Modi has said that over the past several years, the relationship between India and France has reached new heights. He said together with President Macron, both countries are building a special global strategic partnership. Speaking during inauguration of the Swami Narayan Hindu Mandir in Paris through video conferencing, Mr. Modi said from technology, AI and defense to space and climate action, both nations are moving forward together with new momentum and renewed energy. He said both sides are also celebrating this year as the India-France Year of Innovation. The Prime Minister said the India-France strategic partnership is special because it rests upon the strong foundation of the long-standing cultural and political connections.
2: बीते वर्षों में भारत और फ्रांस के संबंध नई ऊंचाइयों तक पहुंचे हैं। मेरे मित्र प्रेसिडेंट मैक्रों के साथ मिलकर दोनों देश एक स्पेशल ग्लोबल स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप बना रहे। टेक्नोलॉजी, एआई और डिफेंस से लेकर स्पेस और क्लाइमेट एक्शन तक हम एक नई गति और नई ऊर्जा के साथ मिलकर के आगे बढ़ रहे हैं। हम 2026 को इंडिया फ्रांस ईयर ऑफ इनोवेशन के रूप में भी सेलिब्रेट कर रहे हैं।
1: He said history bears witness to the sacrifices of the Indian soldiers in France, a history that continues to live in the collective memory and hearts. Mr. Modi said those interested in languages also know the important role French scholars have played in promoting and popularizing Sanskrit. He added that now, through the magnificent BAPS Swaminarayanan Temple, a new chapter has been added to the India-France deep cultural relationship.
2: BAPS के माध्यम से जब अलग अलग देशों में मंदिरों की प्राण प्रतिष्ठा होती है तो वहाँ भारत के प्राचीन विचार और मानवीय मूल्य भी साथ साथ ही जाते हैं। और भारत का विचार कहता है समानम मनः सहचित्तमेषां, अर्थात हमारे मन समान हो, हमारे हृदय साथ जुड़े। इसलिए आज जब फ्रांस में इतना भव्य मंदिर बनकर तैयार हुआ है, ये फ्रांस की विविधता को तो समृद्ध करेगा ही, इससे भारत और फ्रांस के सांस्कृतिक संबंधों को भी ऊर्जा मिलेगी।
1: Delhi Chief Minister Rekha Gupta has ordered a magisterial inquiry into the building collapse incident in Satya Niketan area of New Delhi and directed registration of an FIR against the building owner. The Chief Minister's office said the decision was taken following an on-site review and a preliminary assessment of the incident. The CMO said those found responsible for the grave incident will be held fully accountable and dealt with under the strictest provisions of law. Death toll in the incident has risen to 6 following the recovery of one more body late last night. Search and rescue operations continued at the site as teams worked to clear the debris and look for any trapped person. Teams from the NDRF, Fire Service, Delhi Police and other agencies are working at the site

0: आकाशवाणी से पेश है खबरनामा। आदाब, खबरनामे के साथ मैं कौनैन हैदर। पहले इस वक्त की खास खास खबरें। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने कहा है कि भारत फ्रांस दिफाई शराकत दारी की खास अहमियत है क्योंकि ये देरीना सकाफती और सियासी राबतों की मजबूत बुनियाद पर कायम है। दिल्ली की वजीर आला रेखा गुप्ता ने सत्य निकेतन इमारत इन्हदाम हादसे की मजिस्ट्रेट के जरिए जांच के अहकाम जारी किए हैं। इमारत के मालिक के खिलाफ FIR दर्ज कर ली गई है। इसरो ने कहा है कि खला के शोबे में असलाहत का मकसद एक वसी तर मजबूत तर और आलमी सतह पर मुकाबला जाति भारतीय खलाई इको निज़ाम तश्कील देना है और इसे इको निज़ाम की वसत और सलाहियत में इजाफे के तौर पर देखा जाए न कि निजकारी के जरिए से। मरकजी वजीर दाखिला अमित शाह गोवा की राजधानी पनाजी में मगरबी जोनल कौंसिल की 28वीं मीटिंग की सदारत करेंगे। ओपेक प्लस मुल्कों ने अक्टूबर के लिए तेल की पैदावार के निशाने में कोई तब्दीली न करने का फैसला किया है। और फुटबॉल में भारत ने ताशकंद में बांग्लादेश पर 3-0 से कामयाबी हासिल करके 20 साल तक की उम्र वाले AFC एशियन कप के लिए क्वालिफाई कर लिया है। अब खबरें तफसील से। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने कहा है कि पिछले कई बरसों में भारत और फ्रांस के ताल्लुकात नई ऊंचाइयों तक पहुंचे हैं। उन्होंने कहा कि सदर मैखों के साथ मिलकर दोनों ममालिक एक खसूसी आलमी दिफाई शराकत दारी की तामीर कर रहे हैं। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए पेरिस में स्वामी नारायण हिंदू मंदिर के इफ्तिताह के दौरान जनाब मोदी ने कहा कि टेक्नोलॉजी, मसनूई जहानत AI और दिफा से लेकर खला और आबो हवा से मुतालिक कार्रवाई तक दोनों ममालिक मिलकर एक नई रफ्तार और नई तवानाई के साथ आगे बढ़ रहे हैं। उन्होंने कहा कि दोनों ममालिक ये साल इख्तरा के भारत फ्रांस साल के तौर पर मना रहे हैं। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि भारत फ्रांस दिफाई शराकत दारी की एक खसूसी नौइयत है क्योंकि ये देरीना सकाफती और सियासी राबतों की मजबूत बुनियाद पर कायम है।
1: बीते वर्षों में भारत और फ्रांस के संबंध नई ऊंचाइयों तक पहुंचे हैं। मेरे मित्र प्रेसिडेंट मैक्रों के साथ मिलकर दोनों देश एक स्पेशल ग्लोबल स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप बना रहे। टेक्नोलॉजी, AI और डिफेंस से लेकर स्पेस और क्लाइमेट एक्शन तक हम एक नई गति और नई ऊर्जा के साथ मिलकर के आगे बढ़ रहे हैं। हम 2026 को इंडिया फ्रांस ईयर ऑफ इनोवेशन के रूप में भी सेलिब्रेट कर रहे हैं।
0: उन्होंने कहा कि तारीख फ्रांस में भारतीय सिपाहियों की कुर्बानियों की गवाह है, एक ऐसी तारीख जो इज्तिमाई यादों और जज्बात में पिन्हा है। जनाब मोदी ने कहा कि जो लोग जबानों में दिलचस्पी रखते हैं वो ये भी जानते हैं कि फ्रांसीसी दानिश्वरों ने संस्कृत को फ़रोग देने और मकबूल आम करने में अहम रोल अदा किया है। उन्होंने ये भी कहा कि अब अजीमुशान BAPS स्वामी नारायण मंदिर की शक्ल में भारत फ्रांस गहरे सकाफती ताल्लुकात में एक नए बाब का इजाफा किया जा रहा है।
1: BAPS के माध्यम से जब अलग अलग देशों में मंदिरों की प्राण प्रतिष्ठा होती है तो वहाँ भारत के प्राचीन विचार और मानवीय मूल्य भी साथ साथ ही जाते हैं। और भारत का विचार कहता है समानम मनः सह चित्तमेषाम, अर्थात हमारे मन समान हो, हमारे हृदय साथ जुड़े। इसलिए आज जब फ्रांस में इतना भव्य मंदिर बनकर तैयार हुआ है, ये फ्रांस की विविधता को तो समृद्ध करेगा ही, इससे भारत और फ्रांस के सांस्कृतिक संबंधों को भी ऊर्जा मिलेगी।
0: वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि आजकल भारत फ्रांस मुश्तरका प्रोजेक्टों के इम्कानात पर काफी बातचीत की जा रही है। उन्होंने कहा कि स्वामी नारायण मंदिर ने इस इम्कान में भी एक नए पहलू का इजाफा किया है। उन्होंने ये भी कहा कि ये मंदिर मेड इन इंडिया है जबकि इसे फ्रांस में तामीर किया गया है। दिल्ली की वजीर आला रेखा गुप्ता ने नई दिल्ली के सत्य निकेतन इलाके में एक इमारत मुनदम होने के वाकये की मजिस्ट्रेट के जरिए जांच का हुक्म दिया है और इस इमारत के मालिक के खिलाफ FIR दर्ज करने की हिदायत जारी की है। वजीर आला के दफ्तर ने बताया कि यह फैसला जाय हादसा के जायजे और इस वाकये की इब्तदाई जाँच के बाद किया गया है। वजीर आला के दफ्तर ने कहा कि इस अलमनाक वाकये के जिम्मेदार अफराद को बख्शा नहीं जाएगा और उनके खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी। कल रात जाए हादसा से एक और लाश निकाले जाने के बाद इस वाकये में मरने वालों की तादाद 6 हो गई है

0: एनडीआरएफ, फायर सर्विस, दिल्ली पुलिस और दीगर एजेंसियां तलाश और बचाव की कार्रवाई में मसरूफ हैं। मरकजी वजीर दाखिला अमित शाह ने दिल्ली के वजीर आला रेखा गुप्ता से बात की। जनाब शाह ने बताया कि जख्मियों को तमाम जरूरी इमदादी तिब्बी इमदाद फराहम की जा रही है। दिल्ली के पुलिस कमिश्नर और एनडीआरएफ के डायरेक्टर जनरल ने जाए हादसा का मुआयना किया। एक सीनियर पुलिस अफसर ने बताया कि इस इमारत के बेसमेंट में मरम्मत का काम जारी था। इस अलमनाक वाकये के बाद दिल्ली यूनिवर्सिटी का श्री वेंकटेश्वर कॉलेज आज बंद रहेगा। भारत की खलाई तहकीक की तंजीम इसरो ने कयासाराइयों और गुमराहकुन मालूमात पर मबनी मीडिया में गर्दिश करने वाली इन खबरों पर वजाहत जारी की है कि इसरो को प्राइवेट करने या इसके रोल को कम करने की कोशिश की जा रही है। एक सोशल मीडिया पोस्ट में इसरो ने कहा कि न तो इसे प्राइवेट हाथों में दिया जाएगा और न ही इसकी अहमियत को किसी तरह कम किया जाएगा। तंजीम ने यह भी कहा कि खला में प्राइवेट शोबे की शराकत का मकसद यह है कि इसरो भारत के खलाई प्रोग्राम के अगले दौर में पुख्ता टेक्नोलॉजीज़ और सलाहियतों में इजाफा करने के साथ साथ अपनी सरगर्मियों को मजबूत तर बनाने पर तवज्जो मरकूज करे। इसरो ने कहा कि खलाई शोबे की असलाहत का मकसद एक वसी तर, मजबूत तर और आलमी सतह पर मुकाबला जाती भारतीय खलाई इको निज़ाम तश्कील देना है। इसरो ने कहा कि भारतीय सनत अपनी पुख्ता सरगर्मियों में इजाफा कर सकती है। इससे बड़े पैमाने पर पैदावार तिजारती अंदाज इख्तियार करने, इख्तरा और आलमी मार्केट तक रसाई की जा सकेगी और इसरो की साइंसी और तकनीकी अफरादी कुव्वत, जदीद तरीन तहकीक, अगले दौर की टेक्नोलॉजीज और पेचीदा कौमी मिशनों पर तवज्जो मरकूज करने में मदद मिलेगी। मरकजी वजीर दाखिला अमित शाह आज गोवा की राजधानी पनाजी में मगरबी जोनल काउंसिल की 28वीं मीटिंग में शिरकत करेंगे। इस मीटिंग का इनेकाद उमूर दाखिला की वजारत के बैन रियासती काउंसिल का सेक्रेटरिएट करेगा और इसकी मेज़बानी गोवा सरकार करेगी। मगरबी जोनल काउंसिल गोवा, गुजरात और महाराष्ट्र, नीज मरकज के ज़ेर इंतज़ाम इलाके दादरा और नगर हवेली, नीज दमन और दीव पर मुश्तमिल है। तफसील हमारे नामा निगार से।
1: इस मीटिंग में गोवा, गुजरात और महाराष्ट्र के वज़रा आला और सीनियर वज़रा शिरकत करेंगे। दादरा और नगर हवेली, नीज दमन व दीव के नुमाइंदे भी इसमें हिस्सा लेंगे। मीटिंग में ऐसे मामलात पर तबादले ख्याल किया जाएगा जिनके हल के लिए रियासतों के दरमियान या मरकज रियासतों के दरमियान बेहतर तालमेल ज़रूरी है। काउंसिल के इस प्लेटफॉर्म से बाहमी तालमेल में इजाफा करने और मुश्तरका मफादात के मामलात पर यकजा होकर आगे बढ़ने का मौका फराहम होता है। मीटिंग में मरकज और रियासतों के सीनियर अफसरान भी मौजूद रहेंगे। इसके बाद अमित शाह गोवा पुलिस को परचम अता करेंगे। पणजी से निखिल उपाध्याय की रिपोर्ट के साथ खबरनामे के लिए मैं असलम बेग।
0: मरकजी वजीर दाखिला अमित शाह आज गोवा पुलिस को प्रेसिडेंट्स पुलिस कलर अता करेंगे। आज रियासत के उनके दौरे का आखिरी दिन है। हुसूलियाबी की यह तकरीब रियासती पुलिस फोर्स के लिए एक फख्रिया लम्हा होगा। तफसील हमारे नामा निगार से।
2: ये तकरीब तलाई गांव में डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी इंडोर स्टेडियम में मुनाकिद की जाएगी। प्रेसिडेंट्स पुलिस कलर या राष्ट्रपति का निशान पुलिस फोर्स को दिए जाने वाले आला तरीन एजाजात में शामिल है। गोवा पुलिस के लिए ये एजाज खुद को वक्फ कर देने वाली खिदमात, उसूल पसंदी और रियासत के अवाम के तई साबित कदमी का एतराफ़ है। इस तकरीब से पहले जनाब अमित शाह मगरबी जोनल काउंसिल की मीटिंग में शिरकत करेंगे जिसमें इलाकाई अहमियत के मामलों पर बातचीत की जाएगी। निखिल उपाध्याय की रिपोर्ट के साथ खबरनामे के लिए मैं असदुल्ला।
0: ये खबरनामा आकाशवाणी से नशर किया जा रहा है। ओपेक प्लस के सात असल ममालिक सऊदी अरब, रूस, इराक, कुवैत, कजाकिस्तान, अल्जीरिया और ओमान में कल वर्चुअल वसीले से एक मीटिंग का इनेकाद किया जिसका मकसद आलमी मार्केट में तालमेल और मजमूई हालात का जायजा लेना था। उन्होंने आलमी गैर यकीनी सूरतहाल के दौरान अक्टूबर के लिए तेल की पैदावार से मुतालिक अपनी पॉलिसी में कोई तब्दीली न करने का फैसला किया। पेश है एक रिपोर्ट।
1: ये फैसला ओपेक प्लस की तरफ से तेल की पैदावार में सितंबर के महीने में तकरीबन 188,000 बैरल रोजाना के इजाफे के बाद किया गया है। ये इजाफा तेल की पैदावार में तकरीबन 10,65,000 बैरल रोजाना की रजाकाराना कटौती के अमल को पूरा करने के बाद किया गया है। अमल का ये सिलसिला 2023 में शुरू हो गया था। ये मीटिंग ईरान और आबनाए हुरमुस के आसपास तनाज़े में मुलविस मुल्कों समेत तेल बरामदात में लगातार रखना अंदाजी के पस मंज़र में मुनक़द की गई है। इस रुकावट की वजह से आलमी तेल सप्लाई और तेल की कीमतों से मुतालिक ओपेक प्लस की पैदावार के फैसलों पर महदूद तौर पर असर पड़ा है। متحدہ عرب امارات اس سال مئی میں اتحاد سے الگ ہو

0: आया था। उसने कहा था कि वो कौमी मफाद और मार्केट की अशद ज़रूरतों को पूरा करने के लिए मौसर तौर पर तआवुन का पाबंद है। उम्मीद है कि ओपेक प्लस की मीटिंग मार्केट के हालात और पैदावार की सतह का जायज़ा लेने के लिए अक्टूबर में मुनक़द होगी। ईशानी की रिपोर्ट के साथ खबरनामे के लिए मैं असलम बेग।
1: ईरान के सरकर्दा अफसर ने ऐलान किया है कि आइंदा दिनों में आबनाए हुरमुज से बाहर एक नए पाबंदी वाले इलाके का ऐलान किया जाएगा और उनके साथ राबता किए बगैर इस इलाके में दाखिल होने वाले किसी भी जहाज को ईरान की बंदिशों वाली फहरिस्त में शामिल कर लिया जाएगा। कौमी सलामती की सुप्रीम काउंसिल के सेक्रेटरी मेजर जनरल मोहसिन रिजाई ने कहा कि ये इलाका अमरीकी बहरिया की नाकाबंदी की हद से खलीज फारिस के इलाकों की हद तक होगा, जो जहाज किसी भी तरफ से आबनाए हुरमुज की तरफ जाएंगे और इस इलाके में दाखिल होंगे उन्हें बंदिशों का सामना करना होगा। ये बात ईरान के सरकारी मीडिया ने बताई है। उज्जैन में भगवान महाकालेश्वर की शाही सवारी को आज आकाशवाणी पर लाइव नशर किया जाएगा। आकाशवाणी उज्जैन इसे दिन में 2 बजे से रात 10 बजे तक नशर करेगा। ये नशरिया मध्य प्रदेश में आकाशवाणी के सभी स्टेशनों पर दस्तियाब होगा। सैलाब ने बिहार के मुख्तलिफ हिस्सों में मामूलाती जिंदगी को मुतासिर किया है। गंगा, गंडक और कोसी नदी समेत तमाम बड़े दरिया खतरे के निशान से ऊपर बह रहे हैं। पानी की सतह के पेश नज़र हुक्काम करीबी नज़र रखे हुए हैं। पटना में मुख्तलिफ घाटों पर दरिया की आबी सतह खतरे की बुलंद तरीन सतह को पार कर गई है। उत्तर प्रदेश में सैलाब की सूरत हाल संगीन है। 24 जिले अब भी सैलाब से मुतासिर हैं और कई नदियों में अब भी तुखियानी है। इंतजामिया ने गर्रा और ककरा नदियों के किनारे और नशेबी इलाकों में रहने वाले लोगों को चौकस रहने का मशवरा दिया है। इधर मौसमियात के महकमे ने अगले 2 दिन के दौरान बिहार, मशरकी मध्य प्रदेश, मशरकी उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, मगरबी बंगाल और मुल्क के शिमाल मशरकी हिस्सों में शदीद से इंतहाई शदीद बारिश की पेशगोई की है। फुटबॉल में भारत ने 20 साल तक की उम्र के AFC एशियाई कप के लिए क्वालिफाई कर लिया है। भारत को यह कामयाबी 20 साल में पहली बार हासिल हुई है। उसने ताशकंद में ग्रुप बी के अपने फाइनल क्वालिफाइंग मैच में बांग्लादेश को 3-0 से शिकस्त दी। AFC का 20 साल तक की उम्र का ये एशियन कप टूर्नामेंट चीन में अगले साल 24 मार्च से 10 अप्रैल तक खेला जाएगा। बैडमिंटन में सत्विक साईराज रंकी रेड्डी और चिराग शेट्टी की भारतीय जोड़ी ने कल शेंजेन में चाइना मास्टर्स में मर्दों के डबल्स का खिताब हासिल कर लिया। भारतीय जोड़ी ने इस फाइनल मैच में चीन की हे जिनतिंग और रेंग जियांग यू की जोड़ी को 11-21, 21-13, 21-17 से हराकर चाइना मास्टर्स का पहली बार ये खिताब जीत लिया। इस जोड़ी का इस सीजन का ये दूसरा खिताब है। ये थी खबरें और अब अखबारात के आईने के साथ हैं असदुल्लाह।
2: शुक्रिया कौनैन। कौमी राजधानी दिल्ली से शायब होने वाले आज के बेशतर उर्दू अखबारों ने अलग अलग खबरों को अपनी शह सुर्खी बनाया है। रोजनामा इनकलाब और प्रताप समेत आज के सभी अखबारों ने दिल्ली में एक कसीर मंजिला इमारत के मुनहदिम होने की खबर को सफ़े अव्वल पर शाये करते हुए लिखा है कि ये इमारत पुरानी थी और बेसमेंट में मरम्मत के दौरान यह हादसा पेश आया। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी समेत सरकर्दा रहनुमाओं ने इस हादसे पर दुख का इजहार करते हुए महलुकीन के अहल खाना से ताज़ियत का इजहार किया है। मरकजी वज़ीर दाखिला अमित शाह ने गोवा में नशीले मादों की रोकथाम से मुतालिक एक खाका जारी करते हुए कहा कि भारत को 2029 तक इस लानत से छुटकारा दिलाना है। इस खबर को आज के अखबारों ने अहमियत के साथ जगह दी है। रोजनामा इनकलाब ने वजारत खारजा के तर्जुमान रणधीर जायसवाल के इस बयान को नुमाया किया है कि आलमी नक्शे पर भारत का मौकिफ वाज़ह है।
1: आखिर में खास खास खबरें एक बार फिर। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने कहा है कि भारत फ्रांस दिफाई शराकत दारी की खास अहमियत है क्योंकि ये देरीना सकाफती और सियासी राबतों की मजबूत बुनियाद पर कायम है। दिल्ली की वजीर आला रेखा गुप्ता ने सत्य निकेतन इमारत इनदाम हादसे की मजिस्ट्रेट के जरिए जांच के अहकाम जारी किए हैं। इमारत के मालिक के खिलाफ FIR दर्ज कर ली गई है। इसरो ने कहा है कि खला के शोबे में असलाहत का मकसद एक वसी तर, मजबूत तर और आलमी सतह पर मुकाबला जाति भारतीय खलाई इको निज़ाम तश्कील देना है और इसे इको निज़ाम की वसत और सलाहियत में इजाफे के तौर पर देखा जाए, न कि निजकारी के नज़रिए से। मरकजी वजीर दाखिला अमित शाह गोवा की राजधानी पनाजी में मगरबी जोनल काउंसिल की 28वीं मीटिंग की सदारत करेंगे। ओपेक प्लस मुल्कों ने अक्टूबर के लिए तेल की पैदावार के निशाने में कोई तब्दीली न करने का फैसला किया है। और फुटबॉल में भारत ने ताशकंद में बांग्लादेश पर 3-0 से कामयाबी हासिल करके 20 साल तक की उम्र वाले AFC एशियन कप के लिए क्वालिफाई कर लिया है। इसके साथ ही ये खबरनामा खत्म हुआ।

यह आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है। मीडियम वेग 366.3 मीटर अर्थात 819 किलो हर्ट्ज, डीआरएम 810 किलो हर्ट्ज पर। हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत के कार्यक्रम में आइए सुनते हैं राग नट भैरव में शुभम कुमार का गायन। तबले पर संगति दी है मुस्तफा हुसैन ने और सारंगी पर हैं गुलाम मोहम्मद।

من العين.

Come on, come on, come on, come on.

Yeah.

हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत के कार्यक्रम में आप सुन रहे थे राग नटभैरव में शुभम कुमार का गायन। तबले पर संगति दी थी मुस्तफ़ा हुसैन ने और सारंगी पर थे गुलाम मोहम्मद। यह आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है। मीडियम वेग 366.3 मीटर अर्थात 819 किलो हर्ट्स, डीआरएम 810 किलो हर्ट्स पर। आइए सुनते हैं हमारा अगला कार्यक्रम।

0: अभी आप सुन रहे थे पंजाबी प्रोग्राम मिट्टी दी महक। ये आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है। मीडियम वेव 366.3 मीटर अर्थात 819 किलो हर्ट्स, DRM 810 किलो हर्ट्स पर। कुछ ही पलों में आप सुनेंगे समाचार, कृपया प्रतीक्षा कीजिए।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं नवीन सक्सेना। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि पिछले कुछ वर्षों में भारत और फ्रांस के संबंध नई ऊंचाइयों पर पहुंचे हैं। उन्होंने कहा कि राष्ट्रपति मैक्रों के साथ मिलकर दोनों देश एक विशेष वैश्विक रणनीतिक साझेदारी का निर्माण कर रहे हैं। फ्रांस के पेरिस में स्वामीनारायण मंदिर के उद्घाटन के दौरान वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से श्री मोदी ने कहा कि

0: भारत फ्रांस रणनीतिक साझेदारी विशेष है क्योंकि ये दीर्घकालिक सांस्कृतिक और राजनीतिक संबंधों की मजबूत नींव पट्टी की है।
1: बीते वर्षों में भारत और फ्रांस के संबंध नई ऊंचाइयों तक पहुंचे हैं। मेरे मित्र प्रेसिडेंट मैक्रों के साथ मिलकर दोनों देश एक स्पेशल ग्लोबल स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप बना रहे। टेक्नोलॉजी, एआई और डिफेंस से लेकर स्पेस और क्लाइमेट एक्शन तक हम एक नई गति और नई ऊर्जा के साथ मिलकर के आगे बढ़ रहे हैं। हम 2026 को इंडिया फ्रांस ईयर ऑफ इनोवेशन के रूप में भी सेलिब्रेट कर रहे हैं।
0: श्री मोदी ने कहा कि आज योग भारत और फ्रांस के बीच आपसी जुड़ाव का एक महत्वपूर्ण माध्यम बन गया है। प्रधानमंत्री ने कहा कि इन दिनों भारत फ्रांस संयुक्त उद्यमों की संभावनाओं पर काफी चर्चा हो रही है। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने नई दिल्ली के सत्य निकेतन इलाके में इमारत ढहने की घटना की न्यायिक जांच के आदेश दिए हैं। उन्होंने इमारत के मालिक के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज करने के भी निर्देश दिए हैं। मुख्यमंत्री कार्यालय के अनुसार ये फैसला घटनास्थल पर स्थिति का जायजा लेने और हादसे के प्रारंभिक आकलन के बाद लिया गया। अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान ने बताया कि हादसे में घायल हुए 11 मरीजों को चिकित्सा के लिए लाया गया है। इन 11 मरीजों में से 5 को मृत अवस्था में ट्रॉमा सेंटर लाया गया, जबकि एक अन्य घायल की बाद में मृत्यु हो गई। 3 घायलों का इलाज जारी है। एक घायल की सर्जरी की गई, जबकि एक अन्य को निगरानी में रखने के बाद छुट्टी दे दी गई। इस बीच आज सफदरजंग अस्पताल से धौलाकुआं की ओर जाने वाले मार्गों पर यातायात प्रभावित रहेगा। दिल्ली यातायात पुलिस ने बताया कि आरटीआर और बिनौती ज्वारिज मार्ग से आने वाले मार्गों पर भी यातायात प्रभावित होगा। दिल्ली यातायात पुलिस ने नागरिकों से आग्रह किया है कि यदि संभव हो तो इन मार्गों से बचें और वैकल्पिक मार्गों का उपयोग करें तथा यातायात कर्मियों के निर्देशों का पालन करें। गृहमंत्री अमित शाह आज गोवा के पणजी में पश्चिमी क्षेत्रीय परिषद की 28वीं बैठक की अध्यक्षता करेंगे। ये बैठक गृह मंत्रालय के अंतर राज्य परिषद सचिवालय द्वारा आयोजित की जा रही है और इसकी मेजबानी गोवा सरकार कर रही है। पश्चिमी क्षेत्रीय परिषद में गोवा, गुजरात, महाराष्ट्र तथा केंद्रशासित प्रदेश दादरा और नगर हवेली तथा दमन और द्वीप शामिल हैं। श्री शाह पश्चिमी क्षेत्रीय परिषद के अध्यक्ष हैं, जबकि गोवा के मुख्यमंत्री इसके वर्तमान उपाध्यक्ष हैं। गृहमंत्री आज गोवा राज्य पुलिस को प्रतिष्ठित राष्ट्रपति पुलिस ध्वज प्रदान करेंगे। ये सम्मान राज्य पुलिस बल के लिए गौरवपूर्ण उपलब्धि होगा। लग्जमबर्ग के उप प्रधानमंत्री और विदेश मंत्री जेवियर बेटेल आधिकारिक दौरे पर नई दिल्ली पहुंच गए हैं। विदेश मंत्रालय ने बताया कि श्री बेटेल आज विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर से मुलाकात करेंगे। ओपेक समूह प्लस समूह के 7 प्रमुख देशों सऊदी अरब, रूस, इराक, कुवैत, कजाकिस्तान, अल्जीरिया और ओमान ने कल वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से बैठक की। बैठक में वैश्विक तेल बाजार की स्थिति और संभावनाओं की समीक्षा की गई। इन देशों ने वैश्विक स्तर पर बनी अनिश्चितता के बीच अक्टूबर के लिए तेल उत्पादन नीति में कोई बदलाव नहीं करने का फैसला किया है। ओपेक प्लस ने सितंबर में प्रतिदिन करीब 1,88,000 बैरल तेल उत्पादन बढ़ाया था। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो ने मीडिया के उन अटकलों और गलत सूचनाओं पर स्पष्टीकरण जारी किया है जिनमें इसरो के निजीकरण या उसकी भूमिका कम करने के प्रयासों की बात कही गई है। सोशल मीडिया पोस्ट में इसरो ने कहा, न तो उसका निजीकरण और न ही उसका महत्व कम किया जाएगा। मौसम विभाग ने आज बिहार, मध्य प्रदेश, पूर्वी उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, पश्चिम बंगाल और पूर्वोत्तर भारत के कुछ हिस्सों में मूसलाधार बारिश का अनुमान व्यक्त किया है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

जी हाँ, सलाम, सत श्री अकाल और गुड मॉर्निंग। इसी के साथ आपकी पसंद यानी आपकी फरमाइश का हम पूरा ख्याल रखते हैं और साथ में ख्याल रखते हैं आपकी बहुत सारी ढेर सारी मैसेज जो आते हैं उनको पढ़ने का ध्यान रखते हैं कि कोई मैसेज हमसे छूट ना जाए, क्योंकि अगर छूट जाएगा तो आप हमसे नाराज़ हो जाएंगे, लेकिन हम ऐसा नहीं करेंगे कि आप हमसे नाराज़ हो जाएं। जी हाँ, और बहुत ही खूबसूरत एक मैसेज और भी आ गया है मेरे पास। यह है चंडीगढ़ मोहाली से, रविंदर सिंह, हरजिंदर सिंह, रवनीत सिंह, सुप्रीत और कुलदीप सिंह का। इन्होंने फरमाइश की है एक खूबसूरत गीत की, तो चलिए इनकी खूबसूरत सी फरमाइश को हम पहले पूरा करते हैं और फिर करेंगे आपसे ढेर सारी बातें।

और अब कुछ मैसेज हमारे पास बहुत सारे आ गए हैं, लेकिन हम सबसे पहले एक मैसेज लेंगे जिन्होंने लिखा है कि सुनैना गुप्ता, राखी गुप्ता, नीना गुप्ता और सुनीता गुप्ता का। ये आया है मेरठ से और इन्होंने भी अपनी एक फरमाइश भेजी है गीत की। तो चलिए पहले इनका गीत सुनते हैं और फिर आपसे करेंगे बातें।

और दोस्तों बहुत सारे मैसेज मेरे पास आ गए हैं ख़ास तौर पर, और कई लोगों ने तो ये भी शिकवा किया है कि आप हमारे मैसेज नहीं पढ़ते। पर ऐसा कुछ भी नहीं है, हमारे सभी साथी आपके सारे मैसेजेस पढ़ते हैं। जो जो मैसेज आप लोग भेजते हैं हम उन्हें बहुत प्यार से पढ़ते हैं। और देखिए ना, ये तो आप ही की पसंद का कार्यक्रम है, यानी कि आपकी फरमाइश, आपकी पसंद, तो हम आपके मैसेज क्यों नहीं पढ़ेंगे, हम तो खुश होकर पढ़ेंगे। ऐसे आप हमें प्यारे प्यारे से मैसेज करते रहिए और प्यारे प्यारे से गाने आपके लिए हम लेकर आते रहेंगे, क्योंकि हंसते हंसते जो दिन बीत जाए वो ही खुशी का दिन होता है। और सबसे पहले आपसे खूब ढेर सारी बातें हो जाएं, तो फिर सोचिए कि दिन कितना खूबसूरत बीतेगा, क्योंकि हमारे जो श्रोताएं हैं, जो हमें सुन रहे हैं, हमारे सुनने वाले हमारे दोस्त हैं, वो भी खुश रहें और हम भी खुश रहें उनके खत पढ़कर। जी हाँ, पहले तो खतों का ज़माना होता था, यानी हमारे पास खूब ढेर सारे पत्र आते थे, लेकिन अब मैसेजेज आते हैं, तो वो भी एक ही बात है। तो आपकी पसंद से हमें याद आया, रविंद्र मोहनदास जी का एक मैसेज आया। इन्होंने कहा कोई भी गीत सुना दे किशनगंज बिहार से, रविंद्र मोहनदास और आशा देवी का। तो चलिए कोई भी गीत सुनिए अपनी पसंद से।

0: वीडियो लाइक करने के पैसे मिलेंगे। सो इजी।
1: अनजान लिंक्स पर क्लिक मत कीजिए। RBI कहता है,
2: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
3: और अब हमारे पास एक मैसेज आ गया है जिला खरगोन सनातन मध्य प्रदेश से। मास्टर अशोक शर्मा, मास्टर अशोक वर्मा, अर्चना वर्मा, अनुज वर्मा, आयुषी वर्मा, रमेश चंद्र वर्मा और शेख मूसा भाई जानका और भाई राजकुमार बुड़ाना और सदामा नगर खंडवा से सभी नंदिनी रोहित का मैसेज है। और इन्होंने भी एक गाने की फरमाइश की है, बहुत ही खूबसूरत से गाने की। तो चलिए इनकी पहले फरमाइश सुनते हैं, उसके बाद आगे बढ़ते हैं।

और मैसेजों का सिलसिला तो बढ़ता ही है। आप सुन रहे हैं आपकी फरमाइश यानी आपकी पसंद, आपकी दोस्त और होस्ट सिमरन कौर के साथ। जी हाँ, और एक मैसेज आया है हमारे पास मुखर्जी नगर दिल्ली से रमेश शर्मा, मुन्नी शर्मा, रानी, सुरेश और रेखा का। इन्होंने भी कहा है कि हमें आपका कार्यक्रम बहुत ही अच्छा लगता है और हम हर रोज़ ये कार्यक्रम सुनते हैं, चाहे किसी की भी आवाज़ हो, लेकिन हमारी फरमाइश पूरी ज़रूर होती है। और हमारी फरमाइश पूरी करने के लिए हम आपको जो गीत लिख के भेजते हैं वो भी बहुत पूरे होते हैं हमारे, तो हम बहुत खुश हैं आपके कार्यक्रम से। तो बहुत बहुत शुक्रिया आपका। जी हाँ, और ये कहते हुए कि हमें बहुत ही सुकून मिलता है कि आपको हमारा कार्यक्रम अच्छा लगता है और हर कोई आपकी फरमाइश पूरी करता है, ये भी बहुत अच्छा लगता है। आज भी इन्होंने कहा है कि आपकी जो पसंद हो, आपको जो पसंद हो गाना बहुत ही अच्छा, चाहे कैसा भी हो हमें पसंद आएगा ज़रूर, और आप हमारी ये फरमाइश पूरी कर दीजिए। तो लीजिए, आपकी फरमाइश हम अभी पूरी किए देते हैं।

और इन्होंने लिखा है, ये है भोपालगढ़ राजस्थान से, धर्मेंद्र छीपा, कपिल छीपा, ईशान छीपा, पूजा परिहार, और लिखा है, आदरणीय मैडम जी नमस्कार, आपका प्रोग्राम बहुत ही अच्छा लगता है। आखिर कितना इंतज़ार करें, कितने मैसेज भेजने पड़ेंगे आपको कि आप हमारा मैसेज शामिल करें, लेकिन ऐसा तो कुछ भी नहीं है। मैंने पहली बार आपका मैसेज पढ़ा है और पहली बार अभी देखा है, तो मैंने तो फर्स्ट टाइम मैंने देखकर आपका फटाफट से आपका मैसेज पढ़ डाला कि आपको पसंद है हमारा कार्यक्रम और आपको गीत भी हमारे पसंद आते हैं। तो ऐसे कई सारे हैं जिन्होंने मैसेज लिखा है कि हमने पहली बार मैसेज भेजा है, और कईयों ने ये भी लिखा है कि बहुत बार हम भेजते हैं लेकिन हमारा शामिल नहीं किया जाता। पर ऐसा कुछ नहीं है, हम पूरी कोशिश हमारी रहती है कि आपके भी मैसेजेस हम पढ़ें और आपके सभी मैसेजेस हम शामिल करें, और हमारे सारे साथी आपके मैसेजेस भी शामिल करते हैं, क्योंकि हमारे पास टाइम की भी कमी होती है। हम सभी का पढ़ चाहते हैं कि कोई छूटे ना, किसी को बुरा ना लगे, तो इसीलिए हमारी यही कोशिश रहती है। चलिए अब हम आपको सुनाते हैं एक बहुत ही प्यारा सा गीत, जो आपने कहा है कि कोई भी गीत हमें सुनवा दीजिए।

हम जल्दी जल्दी से मैसेज शामिल कर लेते हैं अपने कार्यक्रम में, कि ऐसा ना हो जाए कि देर हो जाए और सब कहें फिर ओहो सिमरन जी आपने हमारा मैसेज शामिल नहीं किया। ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि सिमरन जी से शिकायत किसी को नहीं होनी चाहिए। सब खुश होकर जाएं और मतलब हमारे काम जो गीत हैं प्यारे प्यारे से सुने, और फिर कल जब फिर से रेडियो खोलें तो अपने पसंद के कार्यक्रम फिर सुने। तो चलिए अब पहाड़गंज मुल्तानी ढांडा से अनिल मोहन, उषा मोहन, टिल्लो नायक, मधु नायक, इनका एक मैसेज आया है और इन्होंने कहा है कि हमें ये गीत सुनना है और इनकी फरमाइश हम तुरंत पूरी कर देते हैं।

और मैसेज है, कोई भी गीत सुना दें धनौरी तेलीवाला से निसार सलमानी, नौशाद सलमानी, बेबी आलिया आयान का। आपका बहुत हार्दिक धन्यवाद कि आपने कोई भी गीत सुनाने की हमारी फरमाइश पूरी की है और हम सुनते हैं। और साथ में ये भी लिखा है कि हमने पहले भी जितने भी बार कोई भी फरमाइश का गीत हमने अपने आप से नहीं लिख के भेजा, जो भी लिखा है आप हमारी अपनी फरमाइश से सुनवा दीजिए, हमें वही अच्छा लगता है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। और साथ में एक मैसेज और है, जिला मुरादाबाद, सायरा, रुबीना, अमीना, जीनत और फरहाद अंसारी का। ये भी इन्होंने कहा अपनी फरमाइश से कोई गीत सुनवा दीजिए। चलिए सुनते हैं इनका गीत।

और हमारे पास एक मैसेज आया है मुखर्जी नगर से, यानी दिल्ली से, राकेश शर्मा, मुन्नी शर्मा, रानी, सुरेश और रोज़ा का। और राजस्थान से भेजा है ओंकार सिंह ने, सुरेंद्र, निर्मला, आरती और मीना सिंह ने ये मैसेज भेजा है। और साथ में आया है बुलडाड़ा महाराज से, सहदेव दामोदर, शशिकला दामोदर, सुमित कुमार दामोदर, साधना, पवन पाटिल, अमोल मानकर, शोभा ताई मानकर और शलोक दीपाली का। इन्होंने भी एक गीत की फरमाइश की है, बहुत ही खूबसूरत सा गीत है। चलिए फरमाइश पूरी की जाती है।

और आपकी फरमाइश पूरी होने के साथ साथ आपका पूरा ख्याल रखा जाएगा अगली बार भी। तो आपकी दोस्त और होस्ट सिमरन कौर आपका पूरा ध्यान रखेगी। अगली बार फिर मिलूंगी किसी और कार्यक्रम के साथ, तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार और सुनते रहिए ये फरमाइशी कार्यक्रम, आपकी पसंद आपकी फरमाइश।

0: ये आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है। मीडिया वेव 366.3 मीटर अर्थात 819 किलो हर्ट्स, DRM 810 किलो हर्ट्स पर। कुछ ही पलों में आप सुनेंगे हिंदी और अंग्रेजी में समाचार।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं कनकलता। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि पिछले कुछ वर्षों में भारत और फ्रांस के संबंध नई ऊंचाइयों पर पहुंचे हैं। उन्होंने कहा कि राष्ट्रपति मैक्रों के साथ मिलकर दोनों देश एक विशेष वैश्विक रणनीतिक साझेदारी का निर्माण कर रहे हैं। फ्रांस के पेरिस में स्वामी नारायण मंदिर के उद्घाटन के दौरान वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से श्री मोदी ने कहा कि भारत फ्रांस रणनीतिक साझेदारी विशेष है, क्योंकि ये दीर्घकालिक सांस्कृतिक और राजनीतिक संबंधों की मजबूत नींव पर टिकी है।
2: प्रेसिडेंट मैक्रों के साथ मिलकर दोनों देश एक स्पेशल ग्लोबल स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप बना रहे। टेक्नोलॉजी, AI और डिफेंस से लेकर स्पेस और क्लाइमेट एक्शन तक हम एक नई गति और नई ऊर्जा के साथ मिलकर के आगे बढ़ रहे हैं। हम 2026 को इंडिया फ्रांस ईयर ऑफ इनोवेशन के रूप में भी सेलिब्रेट कर रहे हैं।
1: दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने

0: मंत्री मनजिंदर सिंह सिरसा के साथ आज सत्य निकेतन इलाके में ढही इमारत स्थल का जायजा लिया। मुख्यमंत्री ने बताया कि मलबे का लगभग 80% हिस्सा दशकों पुरानी बहुमंजिले भवन स्थल से हटा दिया गया है।
1: ये निश्चित है कि बेसमेंट में पानी था और पानी भरने के कारण जो रिपेयर हो रही थी उसके कारण से पुरानी बिल्डिंग थी और वो ढह गई। अभी इसमें 12 लोग जो मिले हैं जिसमें से 6 डेड हैं और 6 जो हैं अभी ठीक स्थिति में हैं। उन सभी के पेरेंट्स जो हैं हमारे टच में हैं। हम पूरी कोशिश कर रहे हैं कि उनको किसी भी तरह की कोई परेशानी ना हो, बच्चों को ठीक इलाज मिल रहा है।
0: श्रीमती गुप्ता ने कहा कि भवन के मालिक की अनदेखी के कारण ये दुखद घटना हुई है।
1: इस बिल्डिंग पे भी कार्रवाई हो गई, इसके मालिक पे कार्रवाई होगी और जो इसके आसपास की जितनी डेंजरस बिल्डिंग है उनको भी आइडेंटिफाइड करके ध्वस्त किया जाएगा। विशेष रूप से इस बिल्डिंग के बिल्कुल पीछे वाली बिल्डिंग को भी हमने खाली करवा दिया है और तुरंत प्रभाव में उसे भी डेमोलिश किया जाएगा।
0: इस बीच घटना स्थल पर बचाव और राहत कार्य जारी है। आज सफदरजंग अस्पताल से धौलाकुआं की ओर जाने वाले मार्ग पर यातायात प्रभावित रहेगा। गृहमंत्री अमित शाह आज गोवा के पणजी में पश्चिमी क्षेत्रीय परिषद की 28वीं बैठक की अध्यक्षता कर रहे हैं। ये बैठक गृह मंत्रालय के अंतर्राज्य परिषद सचिवालय द्वारा आयोजित की जा रही है और इसकी मेजबानी गोवा सरकार कर रही है। पश्चिमी क्षेत्रीय परिषद में गोवा, गुजरात, महाराष्ट्र तथा केंद्र शासित प्रदेश दादरा और नगर हवेली तथा दमन और दीव शामिल हैं। गृहमंत्री आज गोवा राज्य पुलिस को प्रतिष्ठित राष्ट्रपति पुलिस ध्वज भी प्रदान करेंगे। ये सम्मान राज्य पुलिस बल के लिए गौरवपूर्ण उपलब्धि होगा। विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर और लग्जमबर्ग के उप प्रधानमंत्री तथा विदेश मंत्री जेवियर बेटेल की आज नई दिल्ली में मुलाकात होगी। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि श्री बेटेल की यह यात्रा दोनों देशों के बीच बहुआयामी संबंधों को और मजबूत करने का अवसर है। ओपेक प्लस समूह के 7 प्रमुख देशों ने वैश्विक स्तर पर बनी अनिश्चितता के बीच अक्टूबर के लिए तेल उत्पादन नीति में कोई बदलाव न करने का फैसला किया है। इन देशों में सऊदी अरब, रूस, इराक, कुवैत, कजाकिस्तान, अल्जीरिया और ओमान शामिल हैं। कल वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से इन देशों ने वैश्विक तेल बाजार की स्थिति और संभावनाओं की समीक्षा की। ओपेक प्लस ने सितंबर में प्रतिदिन करीब 188,000 बैरल तेल उत्पादन बढ़ाया था। घरेलू शेयर बाजार के संवेदी सूचकांक में आज गिरावट देखी गई। ताजा समाचार मिलने तक सेंसेक्स 69.38 अंक गिरकर 76,446 पर और निफ्टी 14.55 अंक गिरकर 23,883 पर कारोबार कर रहा था। भारत ने AFC अंडर 20 फुटबॉल एशिया कप में प्रवेश कर लिया है। भारत ने ताशकंद में कल अंतिम क्वालिफाइंग मुकाबले में बांग्लादेश को 3-0 से हराकर 20 वर्ष में पहली बार इस प्रतियोगिता में जगह बनाई। AFC अंडर 20 एशिया कप अगले वर्ष 24 मार्च से 10 अप्रैल तक चीन में खेला जाएगा। मौसम विभाग ने आज बिहार, मध्य प्रदेश, पूर्वी उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, पश्चिम बंगाल और पूर्वोत्तर भारत के कुछ हिस्सों में मूसलाधार बारिश का अनुमान व्यक्त किया है। आज आंध्र प्रदेश, झारखंड, ओडिशा, कर्नाटक और तमिलनाडु में तेज हवाएं चल सकती हैं। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: This is Akashvani, the news read by Abhishek Mukhopadhyay. Prime Minister Narendra Modi has said that over the past several years, the relationship between India and France has reached new heights. Speaking during inauguration of the Swami Narayan Hindu Mandir in Paris through video conferencing, Mr. Modi said from technology, AI and defense to space and climate action, both nations are moving forward together with new momentum and renewed energy. The Prime Minister added, together with President Emmanuel Macron, both countries are building a special global strategic partnership.
3: बीते वर्षों में भारत और फ्रांस के संबंध नई ऊंचाइयों तक पहुंचे हैं। मेरे मित्र प्रेसिडेंट मैक्रों के साथ मिलकर दोनों देश एक स्पेशल ग्लोबल स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप बना रहे। टेक्नोलॉजी, AI और डिफेंस से लेकर स्पेस, और क्लाइमेट एक्शन तक हम एक नई गति और नई ऊर्जा के साथ मिलकर के आगे बढ़ रहे हैं। हम 2026 को इंडिया फ्रांस ईयर ऑफ

0: और इस बात की कि एक शिक्षक का व्यवहार बच्चे के जीवन पर कितना गहरा असर डाल सकता है। जी हाँ श्रोताओं, तो चलिए शुरू करते हैं आज का खास कार्यक्रम एक गुरु एक रोशनी। जी हाँ श्रोताओं, भारत में हर साल 5 सितंबर को शिक्षक दिवस मनाया जाता है। यह दिन भारत के महान शिक्षक, दार्शनिक और देश के दूसरे राष्ट्रपति डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन की जयंती के अवसर पर मनाया जाता है। डॉक्टर राधाकृष्णन का जन्म 5 सितंबर 1888 को हुआ था। वे मानते थे कि शिक्षा का उद्देश्य केवल नौकरी पाना नहीं है, शिक्षा इंसान की सोच, उसके चरित्र और उसके जीवन को बेहतर बनाने का माध्यम है। श्रोताओं, कहा जाता है कि जब उनके विद्यार्थियों और मित्रों ने उनका जन्मदिन मनाने की इच्छा व्यक्त की तो उन्होंने सुझाव दिया कि उनके जन्मदिन को व्यक्तिगत रूप से मनाने के बजाय इस दिन को शिक्षकों के सम्मान के दिन के रूप में मनाया जाए। जी हाँ श्रोताओं, और इसी विचार से 5 सितंबर को शिक्षक दिवस के रूप में मनाने की परंपरा शुरू हुई थी। यानी यह दिन सिर्फ एक शिक्षक को हैप्पी टीचर्स डे कहने का नहीं है, यह दिन हमें याद दिलाता है कि शिक्षक समाज के भविष्य को तैयार करने में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। एक सच्चा शिक्षक केवल ये नहीं कहता कि क्या करना चाहिए, श्रोताओं वह अपने व्यवहार और अपने जीवन से भी प्रेम, क्षमा, दया और सेवा का उदाहरण प्रस्तुत करता है। क्योंकि बच्चे केवल हमारी बातें सुनते नहीं हैं, वे हमारे व्यवहार को देखते भी हैं। अगर शिक्षक बच्चों से सम्मान से बात करता है तो बच्चा भी सम्मान करना सीखता है। अगर शिक्षक अपनी गलती स्वीकार करता है तो बच्चा भी अपनी गलती स्वीकार करना सीखता है। अगर शिक्षक किसी कमजोर बच्चे को प्रोत्साहित करता है तो उस बच्चे के अंदर आत्मविश्वास पैदा होता है। जी हाँ, यही कारण है कि शिक्षक का व्यवहार बहुत मायने रखता है। और यहाँ एक बात हम सभी के लिए सोचने वाली है, शिक्षक होना आसान काम नहीं है। हर दिन शिक्षक के सामने अलग अलग स्वभाव के बच्चे होते हैं, कोई बहुत शरारती है, कोई बहुत शांत स्वभाव के हैं, कोई पढ़ाई में तेज, और कभी किसी बच्चे को एक बात समझने में थोड़ा ज्यादा समय लगता है। ऐसे में शिक्षक को कभी कभी डांटना भी पड़ता है, अनुशासन भी रखना पड़ता है, और ये जरूरी भी है। लेकिन बच्चे को सुधारना जरूरी है, साथ ही उसे ये महसूस कराना भी जरूरी है कि मेरे शिक्षक मेरे खिलाफ नहीं है, मेरे साथ है। जी हाँ श्रोताओं, इसी बात को समझने के लिए आइए सुनिए छोटा सा नाटक।
1: अरब, तुमने फिर होमवर्क पूरा नहीं किया?
2: सर वो मैं नहीं कर पाया।
1: अरब, कितनी बार समझाया है कि रोज थोड़ा थोड़ा पढ़ा करो, ऐसा कैसे चलेगा? कल तक पूरा होमवर्क करके लाना।
2: जी सर। पता नहीं सर, मुझे ही क्यों बार बार डांटते रहते हैं, मुझे लगता है मैं उन्हें बिल्कुल पसंद नहीं आता।
3: क्या हुआ बेटा, आज इतने चुप क्यों हो?
2: कुछ नहीं माँ।
3: कुछ तो हुआ है, बताओ।
2: अरे आज फिर से सर ने सबके सामने मुझे डांट लिया, मुझे लगता है सर को मैं बिल्कुल भी पसंद नहीं हूँ।
3: अच्छा, लेकिन उन्होंने डांटा क्यों?
2: अरे माँ, वो होमवर्क पूरा नहीं किया था ना।
3: तो आरब, गलती किसकी है?
2: हाँ है तो मेरी।
3: देखो बेटा, हो सकता है तुम्हें उनकी डांट अच्छी ना लगी हो, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि वे तुम्हारे खिलाफ हैं। शायद वो चाहते हैं कि तुम अपनी पढ़ाई को लेकर थोड़ा और गंभीर हो जाओ।
2: लेकिन माँ, अगर वे मुझे प्यार से समझाते तो?
3: बिल्कुल, तुम्हारी बात भी सही है, डांट के साथ प्यार और समझ हो तो बात दिल तक ज्यादा आसानी से पहुँचती है। तुम कल सर से जाकर बात कर।
2: पर क्या कहूँ?
3: बस अपनी बात शांति से कहना, पूछना कि आप मुझे बताइए कि मैं अपनी पढ़ाई कैसे बेहतर कर सकता हूँ।
2: सर, क्या मैं आपसे एक बात कह सकता हूँ?
1: हाँ आरव, बोलो।
2: सर, कल आपने मुझे

0: डांटा तो मुझे बहुत बुरा लगा। मुझे लगा कि शायद आप मुझसे कुछ नाराज हैं।
1: मुझे अफसोस है कि तुम्हें ऐसा महसूस हुआ। देखो बेटा, मैं तुमसे नाराज नहीं हूँ। मैं चाहता हूँ कि तुम अपनी क्षमता को पहचानो। तुम कर सकते हो, बस तुम्हें थोड़ी मेहनत और नियमितता की जरूरत है।
0: तो आप मुझसे नाराज नहीं हैं?
1: बिल्कुल नहीं बेटा। एक शिक्षक का काम केवल ये कहना नहीं है कि गलती मत करो। हमारा काम ये भी है कि जब तुम गलती करो तो तुम्हें ये बताएं कि उसे कैसे सुधारा जाए। हाँ, कभी कभी मुझे सख्त होना पड़ता है, लेकिन मेरी सख्ती का उद्देश्य तुम्हें डराना नहीं, तुम्हें जिम्मेदार बनाना है।
0: सर, अब मैं समझ गया। मैं भी कोशिश करूंगा कि अपना काम समय पर करूं।
1: बस यही तो मैं चाहता हूं। और हाँ, अगली बार अगर मेरी कोई बात तुम्हें बुरी लगे तो बिल्कुल खामोश मत रहना, मुझसे बात करना।
0: जी सर।
1: और याद रखना, गलती करने वाला बच्चा बुरा बच्चा नहीं होता।
0: जी सर, गलती से सीखना भी तो जरूरी है ना।
1: बिल्कुल सही।
2: तो दोस्तों, आपने सुना, कभी कभी शिक्षक की डांट के पीछे चिंता होती है और बच्चे के चुप्पी के पीछे भी कई भावनाएं हो सकती हैं। इसलिए शिक्षक और विद्यार्थी दोनों की तरफ से थोड़ा सा प्रयास जरूरी है। श्रोताओं, शिक्षक अनुशासन रखें, लेकिन बच्चे की भावनाओं को भी समझें, और बच्चे शिक्षक का सम्मान करें, लेकिन अपनी बात कहने से डरे नहीं, क्योंकि शिक्षक और विद्यार्थी एक दूसरे के विरोधी नहीं हैं, दोनों एक ही तरफ हैं, बच्चे के अच्छे भविष्य की तरफ। श्रोताओं, अब बहुत जरूरी है कि इस रिश्ते में माता पिता की भूमिका भी बहुत महत्व रखती है। अगर बच्चा स्कूल से आकर कहता है कि आज मैडम ने मुझे डांटा, या फिर आज मैडम ने मुझे बहुत गुस्सा किया, या आज सर ने मेरे साथ ऐसा कहा, तो तुरंत यह तय करने की जरूरत नहीं है कि कौन सही है और कौन गलत। पहले बच्चे की बात शांति से सुनिए, उससे पूछिए तुम्हें कैसा लगा, उसके बाद स्थिति को समझिए और जरूरत हो तो शिक्षक से भी शांतिपूर्वक बात कीजिए, क्योंकि बच्चे को ये भरोसा होना चाहिए कि मेरी बात सुनी जाएगी, और शिक्षक को भी ये महसूस होना चाहिए कि माता पिता मेरे विरोध में नहीं, बच्चे के हित में मेरे साथ बात कर रहे हैं। जी हाँ श्रोताओं, आखिर हम सभी एक उद्देश्य के ही हैं, बच्चा पढ़े भी, सीखे भी, खुश रहे और एक अच्छा इंसान भी बने। जी हाँ, थोड़ा सा प्यार, थोड़ा सा अनुशासन। जी हाँ, देखिए, बच्चों को केवल प्यार देना भी पर्याप्त नहीं है, और केवल सख्ती करना भी नहीं, बच्चों को चाहिए प्यार भी, सीमाएं भी, स्वतंत्रता भी और जिम्मेदारी भी। जी हाँ श्रोता, उन्हें ये पता होना चाहिए कि गलती करना गलत नहीं है, लेकिन अपनी गलती से सीखना जरूरी है। उन्हें सवाल पूछने की आजादी हो, लेकिन दूसरों का सम्मान करना भी आना चाहिए। उन्हें अपने सपने देखने की आजादी हो, लेकिन मेहनत और अनुशासन का महत्व भी बच्चे को समझना चाहिए, और यही संतुलन एक अच्छे शिक्षक और एक अच्छे परिवार की पहचान बन सकता है। श्रोताओं, ये नीति वचन है कि बुद्धिमान को शिक्षा दे और वो और भी बुद्धिमान होगा, है ना श्रोताओं? कितनी सुंदर बात है ना। इसका मतलब है कि सीखना कभी बंद नहीं होना चाहिए, यही एक अच्छे शिक्षक की खूबसूरती है। वो जो सिखाता है उसे अपने जीवन में जीने की कोशिश भी करता है, और विद्यार्थियों के लिए भी संदेश है, अपने शिक्षक का सम्मान कीजिए, उनकी बात सुनिए, अगर कोई बात समझ में ना आए तो सवाल पूछिए। श्रोताओं, अब एक पल के लिए अपने स्कूल के दिनों को याद कीजिए जरा। जी हाँ, थोड़ी देर रुक जाइए, शांत हो जाइए और थोड़ी देर अपने स्कूल के उन दिनों को याद कीजिए। क्या आपको कोई ऐसा शिक्षक याद आ रहा है जिसने आपको कभी कहा हो, कभी इनकरेज किया हो, या कभी डांटा हो और कहा हो तुम कर सकते हो, या फिर शायद कोई ऐसा शिक्षक जिसने आपकी गलती पर आपको डांट लगाई हो, या फिर उस समय शायद आपको बहुत बुरा लगा हो उस डांट का, लेकिन आज जब पीछे मुड़कर देखते हैं तो लगता है शायद उस डांट की जरूरत थी, और हो सकता है कि किसी शिक्षक की कोई

छोटी सी तारीफ आज भी आपको याद आती हूँ। श्रोताओं, यही शिक्षक की ताकत है। उनकी कही हुई बातें हमारे साथ स्कूल से बाहर भी चली आती हैं, है ना? श्रोताओं, इसी पर एक छोटी सी चुनौती मैं आपके सामने रखना चाहती हूँ। शिक्षक दिवस के अवसर पर हमारी तरफ से आपके लिए एक छोटी सी चुनौती ये है, आज अपने जीवन के किसी एक शिक्षक को याद कीजिए। जरूरी नहीं कि वह आपके वर्तमान शिक्षक हो, कोई पुराने शिक्षक, कोई कॉलेज के प्रोफेसर या कोई ऐसा व्यक्ति जिसने आपको जीवन में कुछ महत्वपूर्ण सिखाया हो। उन्हें फोन कीजिए, जी हाँ, फोन उठाइए, उन्हें फोन कीजिए या एक छोटा सा संदेश भेजिए, या सिर्फ ये मत लिखिए हैप्पी टीचर्स डे श्रोताओं, बल्कि ये भी लिखिए कि आपने मेरे जीवन में क्या बदलाव किया। हो सकता है आपका एक छोटा सा संदेश उनके लिए पूरे दिन की सबसे बड़ी खुशी बन जाए।

श्रोताओं, आज हमने जाना कि शिक्षक दिवस केवल एक सेलिब्रेशन नहीं है, ये एक सम्मान का दिन है। उन दिनों को याद करने का दिन है जिन्होंने हमें पढ़ाया, समझाया, कभी डांटा, कभी प्रोत्साहित किया और आगे बढ़ने की हिम्मत दी। लेकिन आज का संदेश सिर्फ शिक्षकों के लिए नहीं है, ये बच्चों के लिए भी है और माता-पिता के लिए भी, क्योंकि बच्चे के बेहतर भविष्य के लिए शिक्षक का ज्ञान, माता-पिता का सहयोग और बच्चे की मेहनत तीनों जरूरी है। और शायद आज की पूरी बात को हम कुछ शब्दों में कह सकते हैं, और वो ऐसे, बच्चों को इतना डरा कर मत सिखाइए कि वह सवाल पूछना ही भूल जाए, और इतना भी छोड़ मत दीजिए कि अनुशासन भूल जाए। उसे प्यार, समझ और सही दिशा तीनों की जरूरत है, क्योंकि डांट में भी सुधार हो, अनुशासन में भी सम्मान हो, शिक्षा में भी संवेदनशीलता हो और हर बच्चे को यह एहसास हो, मैं महत्वपूर्ण हूँ, मैं सीख सकता हूँ और मैं आगे बढ़ सकता हूँ। श्रोताओं, यही तो शिक्षा की असली खूबसूरती है, जहाँ ज्ञान के साथ इंसानियत भी सीखी जाती है। सभी शिक्षकों को शिक्षक दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। तो श्रोताओं, आशा करते हैं कि आपको ये कार्यक्रम पसंद आया होगा। अगर आप अधिक जानकारी चाहते हैं या आप अपने अनुभवों को हमसे बांटना चाहते हैं तो हमें जरूर बताएं। हमारा पता है, कार्यक्रम हमारी बेड़ियां, पोस्ट बॉक्स नंबर 6, नई दिल्ली 11001, और हमारा फोन नंबर है 8527449955। जी हाँ, 8527449955। तो आपसे हम फिर मुलाकात करेंगे, तब तक के लिए खुश रहें, स्वस्थ रहें। नमस्कार।

अभी आप सुन रहे थे प्रायोजित कार्यक्रम हमारी बेड़ियां, और आइए अब सुनते हैं सबरस में ये गजल।

यह आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है। मीडियम वेव 366.3 मीटर अर्थात 819 किलो हर्ट्स, डीआरएम 810 किलो हर्ट्स पर। हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत के कार्यक्रम में आइए सुनते हैं कार्यक्रम सुर मंजरी, जिसमें आप सुनेंगे राजपाल सिंह के गायन में राग बसंत मुखारी।

हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत के कार्यक्रम सुरमंजरी में आप सुन रहे थे राजपाल सिंह के गायन में राग बसंत मुखारी।

0: ये आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है। मीडियम वेव 366.3 मीटर अर्थात 819 किलो हर्ट्स, डीआरएम 810 किलो हर्ट्स पर। कुछ ही पलों में आप समाचार सुनेंगे, पहले हिंदी में और फिर अंग्रेजी में।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं कनकलता। गृहमंत्री अमित शाह आज गोवा के पणजी में पश्चिमी क्षेत्रीय परिषद की 28वीं बैठक की अध्यक्षता कर रहे हैं। ये बैठक गृह मंत्रालय के अंतर्राज्य परिषद सचिवालय द्वारा आयोजित की जा रही है और इसकी मेजबानी गोवा सरकार कर रही है। पश्चिमी क्षेत्रीय परिषद में गोवा, गुजरात, महाराष्ट्र तथा केंद्र शासित प्रदेश दादरा और नगर हवेली तथा दमन और दीव शामिल हैं। गृहमंत्री आज गोवा राज्य पुलिस को प्रतिष्ठित राष्ट्रपति पुलिस ध्वज भी प्रदान करेंगे। ये सम्मान राज्य पुलिस बल के लिए गौरवपूर्ण उपलब्धि होगा। विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर और लग्जमबर्ग के उप प्रधानमंत्री तथा विदेश मंत्री जेवर बेटल की आज नई दिल्ली में मुलाकात होगी। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि श्री बेटल की यह यात्रा दोनों देशों के बीच बहुआयामी संबंधों को और मजबूत करने का अवसर है। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने मंत्री मनजिंदर सिंह सिरसा के साथ आज सत्य निकेतन इलाके में ढही इमारत स्थल का जायजा लिया। मुख्यमंत्री ने बताया कि मलबे का काफी हिस्सा दशकों पुरानी बहुमंजिले भवन स्थल से हटा दिया गया है।
2: लगभग 80% मलबा हट चुका है, केवल बेसमेंट जितना मलबा रहा है। अभी इसमें 12 लोग मिले हैं, जिसमें से 6 डेड हैं और 6 अभी ठीक स्थिति में हैं। उन सभी के पेरेंट्स हमारे टच में हैं। हम पूरी कोशिश कर रहे हैं कि उनको किसी भी तरह की कोई परेशानी ना हो, बच्चों को ठीक इलाज मिल रहा है।
1: मुख्यमंत्री ने कहा कि भवन के मालिक की अनदेखी के कारण ये दुर्घटना हुई।
2: इस बिल्डिंग के मालिक पे कार्रवाई होगी और जो इसके आसपास की जितनी डेंजरस बिल्डिंग है उन

0: आइडेंटिफाइड करके ध्वस्त किया जाएगा। विशेष रूप से इस बिल्डिंग के बिल्कुल पीछे वाली बिल्डिंग को भी हमने खाली करवा दिया है और तुरंत प्रभाव में उसे भी डेमोलिश किया जाएगा।
1: इस बीच घटनास्थल पर बचाव और राहत कार्य जारी है। आज सफदरजंग अस्पताल से धौलाकुआं की ओर जाने वाले मार्गों पर यातायात प्रभावित रहेगा। प्रवर्तन निदेशालय ने उर्दू दैनिक अखबार मशरिक और उसके निदेशक तथा तृणमूल कांग्रेस के सांसद नदीमुल हक से जुड़े एक मामले में कोलकाता, दिल्ली और रांची में 7 परिसरों में छापेमारी की है। जांच एजेंसी ने बताया कि यह मामला सांप्रदायिक सद्भाव को कथित तौर पर बढ़ावा देने संबंधी सामग्री के प्रसार और प्रकाशन तथा अवैध लेन देन के आरोपों से जुड़ा है। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो ने मीडिया की उन अटकलों और गलत सूचनाओं पर स्पष्टीकरण जारी किया है जिनमें इसरो के निजीकरण या उसकी भूमिका कम करने के प्रयासों की बात कही गई है। सोशल मीडिया पोस्ट में इसरो ने कहा कि न तो उसका निजीकरण होगा और न ही उसका महत्व कम किया जाएगा। ओपेक प्लस समूह के 7 प्रमुख देशों ने वैश्विक स्तर पर बनी अनिश्चितता के बीच अक्टूबर के लिए तेल उत्पादन नीति में कोई बदलाव न करने का फैसला किया है। इन देशों में सऊदी अरब, रूस, इराक, कुवैत, कजाकिस्तान, अल्जीरिया और ओमान शामिल हैं। कल वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से इन देशों ने वैश्विक तेल बाजार की स्थिति और संभावनाओं की समीक्षा की। ओपेक प्लस ने सितंबर में प्रतिदिन करीब 1,88,000 बैरल तेल उत्पादन बढ़ाया था। घरेलू शेयर बाजार के संवेदी सूचकांक में आज गिरावट देखी गई। अंतिम समाचार मिलने तक सेंसेक्स 443 अंक गिरकर 76,000 पर और निफ्टी 138 अंक गिरकर 23,759 पर कारोबार कर रहा था। दिग्गज सिनेमाटोग्राफर टीएन कृष्णन कुट्टी का 96 वर्ष की उम्र में निधन हो गया। मलयालम सिनेमा में उनके योगदान को हमेशा याद रखा जाएगा। श्री कृष्णन कुट्टी ने 1960 में अपने करियर की शुरुआत उम्मा फिल्म में कैमरा ऑपरेटर के रूप में की थी। इसके बाद उन्होंने 70 से अधिक फिल्मों में सिनेमाटोग्राफर के रूप में काम किया। जम्मू कश्मीर अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव आज से शुरू हो रहा है। इस महोत्सव को स्थानीय फिल्मकारों और रचनात्मक पेशेवरों को व्यापक फिल्म उद्योग से परिचित कराने और क्षेत्र में निवेश तथा रोजगार के नए अवसर पैदा करने के एक बड़े अवसर के रूप में देखा जा रहा है। 4 दिवसीय इस महोत्सव में 40 देशों की 135 फिल्में दिखाई जाएंगी। भारत ने AFC अंडर 20 फुटबॉल एशिया कप में प्रवेश कर लिया है। भारत ने ताशकंद में कल अंतिम क्वालिफाइंग मुकाबले में बांग्लादेश को 3-0 से हराकर 20 वर्ष में पहली बार इस प्रतियोगिता में जगह बनाई। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

हर आंगन। घर आंगन कार्यक्रम के आज की प्रस्तुति में आप सबका स्वागत है। आज मैं हूँ आपके साथ मंजुला, स्वीकार कीजिए मेरा प्यार भरा नमस्कार। और अभी आप हमें सुन रहे हैं आकाशवाणी के एफएम गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज़ पर, साथ ही साथ आप हमें सुन सकते हैं इंद्रप्रस्थ चैनल मीडियम वेव 386.3 मीटर यानी 819 किलो हर्ट्ज़ पर। और दोस्तों, जिस हवा में हम सांस लेते हैं वो सिर्फ प्रकृति का उपहार नहीं, आने वाली पीढ़ियों के लिए हमारे

जिम्मेदारी भी है। तो आज का दिन समर्पित है एक ऐसी चीज के नाम जो हमारे जीवन का सबसे जरूरी हिस्सा है, हवा। आज है अंतर्राष्ट्रीय स्वच्छ वायु नीला आकाश दिवस। स्वच्छ हवा हो, आसमान नीला हो, पेड़ों की हरियाली हो और शहरों में सांस लेना आसान हो, इसके लिए बड़े बदलावों के साथ हमारी छोटी छोटी कोशिशें भी मायने रखती हैं। पेड़ लगाना, अनावश्यक वाहन का इस्तेमाल कम करना, बिजली और पानी की बचत करना, प्लास्टिक का इस्तेमाल कम करना, ऐसे छोटे कदम मिलकर प्रकृति के लिए एक बड़ा बदलाव ला सकते हैं दोस्तों। तो आज के दिन से ही संबंधित है हमारा आज का सवाल, पर्यावरण की रक्षा के लिए आपका योगदान क्या होता है। हमें लिखकर भेजिए अपने जवाब, अपने छोटे से प्रयास या कोई ऐसी आदत जो आप प्रकृति के लिए अपनाते हैं। हमें ईमेल भेजिए, हमारा ईमेल आईडी है fmgoldga@gmail.com। तो चलिए कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं इस खूबसूरत से गीत के साथ।

अभी हम सुन रहे थे महेंद्र कपूर को फिल्म हमराज से। और दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि हमारे रसोई घर से निकलने वाले सब्जियों और फलों के छिलके जो हमें बेकार लगते हैं, वही धरती के लिए सबसे कीमती खजाना बन सकते हैं। इस सोच को लाखों लोगों तक पहुंचाने का काम किया है बेंगलुरु की पर्यावरण कार्यकर्ता वाणी मूर्ति ने, जिन्हें लोग प्यार से वर्म रानी भी कहते हैं। और बहुत इंटरेस्टिंग बात यह है कि वाणी मूर्ति हमेशा से पर्यावरण कार्यकर्ता नहीं थी, वे गृहिणी थी। लेकिन जब उन्होंने एक विशाल लैंडफिल में कूड़े के पहाड़, दूषित मिट्टी और प्रदूषित पानी को अपनी आंखों से देखा, तो उन्होंने तय किया कि उनके घर का कचरा अब कभी लैंडफिल में नहीं जाएगा। और यहीं से शुरू हुई एक ऐसी

यात्रा जिसने हजारों नहीं बल्कि लाखों लोगों की सोच बदल दी। उन्होंने घर में गीले और सूखे कचरे को अलग करना शुरू किया, खाद बनाना सीखा और फिर दूसरों को भी सिखाने लगी। वे सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट राउंड टेबल की संस्थापक सदस्यों में शामिल रहीं और वर्षों से लोगों को समझा रही हैं कि कचरे की असली जिम्मेदारी उसी की है जो उसे पैदा करता है। सोशल मीडिया पर उनके छोटे छोटे वीडियो आज युवाओं के बीच में बहुत ही ज़्यादा पॉपुलर हैं। इनमें से वे रसोई के कचरे को खाद बनाना, प्लास्टिक का कम उपयोग करना, छत पर सब्जियां उगाना, प्राकृतिक सफाई के उपाय अपनाना और कम से कम कचरा पैदा करने वाली जीवन शैली सिखाती हैं और उनकी यही पहल उन्हें नेशनल ज्योग्राफी के वन फॉर चेंज अभियान तक भी ले गई। वाणी मूर्ति का संदेश बहुत ही सिंपल है, पृथ्वी को बचाने के लिए हमेशा बड़े अभियानों की जरूरत नहीं होती है। दोस्तों, यदि हर घर अपने गीले कचरे को खाद में बदल दे, प्लास्टिक का उपयोग कम कर दे और जिम्मेदारी से कचरे का प्रबंधन करे तो शहरों के कूड़े के पहाड़ अपने आप छोटे होने लगेंगे। तो आज का संदेश यही है कि पर्यावरण की रक्षा केवल सरकार या संस्थाओं का काम नहीं बल्कि हर घर की छोटी छोटी आदतों से शुरू होने वाली एक सामूहिक जिम्मेदारी है और शायद बदलाव की शुरुआत हमारे अपने रसोई घर से ही हो सकती है।

अभी हम सुन रहे थे लता मंगेशकर को, फिल्म थी हरियाली और रास्ता। और कहते हैं कि किसी भी रिश्ते की शुरुआत मुस्कान से होती है, लेकिन उसे लंबे समय तक निभाने के लिए केवल आकर्षण या प्यार ही काफ़ी नहीं होता है। एक और चीज़ है जो रिश्ते को गहराई देती है, और वो है बौद्धिक सामंजस्य, इंटेलेक्चुअल कॉम्पैटिबिलिटी। हम अक्सर स्वभाव, आदतों और पसंद नापसंद की बात करते हैं, लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि किसी ऐसे व्यक्ति के साथ होना कितना सुंदर अनुभव है, जिसके साथ आप घंटों बातें कर सके, जहां बातचीत केवल मौसम, खरीदारी या दिन भर की घटनाओं तक सीमित ना रहे, बल्कि किताबों, यात्राओं, विज्ञान, कला, समाज, इतिहास, सपनों और जीवन के अनुभव तक पहुँचे। बौद्धिक सामंजस्य का मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि दोनों की डिग्री एक जैसी हो या दोनों बहुत विद्वान हो। इसका अर्थ है एक दूसरे के विचारों का सम्मान करना, नई बातें सीखने की जिज्ञासा रखना और बिना किसी अहंकार के एक दूसरे से सीखने के लिए तैयार रहना। सोचिए कितना खूबसूरत रिश्ता होगा जहाँ पे एक दूसरे को नई किताबें सुझाएं, कोई रोचक तथ्य बताएं, किसी विषय पर चर्चा करें, किसी समस्या का समाधान साथ मिलकर खोजें और हर बातचीत के बाद महसूस करें कि आज कुछ नया सीखा है। ऐसे रिश्तों में बहस जीतने की नहीं, समझ बढ़ाने की कोशिश होती है। मतभेद भी होते हैं लेकिन मनभेद नहीं, क्योंकि दोनों जानते हैं कि अलग सोच होना गलत नहीं है बल्कि सीखने का अवसर है। जब दो लोग एक दूसरे को आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करते हैं, नई कौशल सीखने का उत्साह जगाते हैं, एक दूसरे के सपनों का साथ देते हैं और हर एक दिन एक दूसरे को पहले से बेहतर इंसान बनने में मदद करते हैं, तब रिश्ता केवल साथ रहने का नहीं, साथ बढ़ने का बन जाता है। और याद रखिए दोस्तों, सुंदर चेहरा समय के साथ बदल सकता है, फैशन बदल सकता है, परिस्थितियां बदल सकती है, लेकिन अच्छी बातचीत, गहरे विचार और एक दूसरे से सीखते रहने की आदत रिश्ते को हर दिन नया बनाए रखती है। इसलिए अपने रिश्तों में समय नहीं, संवाद भी निवेश कीजिए। ऐसे प्रश्न पूछिए जो सोचने पर मजबूर करे। साथ में पढ़िए, नई जगह देखिए, नई बातें सीखिए, क्योंकि जब दो लोग साथ साथ सीखते हैं तो उनका रिश्ता भी साथ साथ विकसित होता है। और आज का सवाल एक बार फिर से बता दूं कि पर्यावरण की सुरक्षा के लिए आपका योगदान क्या होता है। अपने जवाब हमें ईमेल भेजिए। ईमेल आईडी है fmgoldga@gmail.com।

और अभी हम सुन रहे थे लता मंगेशकर और किशोर कुमार को फिल्म शर्मिली से, और हमारे सवाल के जवाब आ चुके हैं। नवीन भाटिया जी लिखते हैं कि पब्लिक ट्रांसपोर्ट का ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ करना, और चरण दास जी लिखते हैं कि मैं सामान लाने के लिए कपड़े का थैला साथ रखता हूँ, खेत में फसल के अवशेष कभी नहीं जलाए, पेड़ों के नीचे से गुठली उठाकर इधर उधर लगा देता हूँ, कभी पटाखे नहीं जलाता हूँ, बस या रेल से सफ़र करता हूँ। और चरण दास जी लिखते हैं कि, चरण दास जी का मेल तो मैंने पढ़ लिया, श्रीपाल गोयल जी लिखते हैं कि पर्यावरण की रक्षा के लिए सबसे पहले हमको अधिक से अधिक पेड़ लगाने चाहिए, प्लास्टिक का उपयोग नहीं करना चाहिए, कपड़े के थैले का उपयोग करें, निजी वाहन के बजाय सार्वजनिक परिवहन का उपयोग करें ताकि प्रदूषण ना हो। और उसके बाद हनी रे लिखते हैं कि वी कैन स्टार्ट सिंपली विथ टेकिंग स्टील स्ट्रॉज, यानी आप जहाँ भी जाएं अपने साथ जो स्ट्रॉज होते हैं प्लास्टिक के उसके बदले स्टील के स्ट्रॉ ले जाएं, और जो कोकोनट होते हैं उसके शेल इधर उधर ना फेंके, गार्बेज में ही डालें। और सुदर्शन मुखी जी लिखते हैं कि हवा शुद्ध रखने के लिए हमने घर में बहुत सारे गमले रखे हुए हैं, बहुत

अच्छी बात है, बिजली पानी बहुत सोच समझ कर उपयोग करते हैं और ईवी स्कूटी चलाते हैं, पब्लिक ट्रांसपोर्ट का उपयोग करते हैं। और उसके बाद और भी हमारे पास मेल्स हैं। अनिल मेहता जी लिखते हैं कि ऊर्जा की बचत, डिजिटल जागरूकता फैलाना और कागज़ रहित कार्य प्रणाली को बढ़ावा देना। और उसके बाद अनन्या श्रेष्ठा जी लिखती हैं कि पर्यावरण की रक्षा के लिए मैं अपनी रोज़मर्रा की

जी ने लिखा है कि आने वाली पीढ़ी के लिए पर्यावरण सबसे बड़ी दौलत है, रुपया पैसा अपने आप कमा लेंगे, निर्मला देवी प्रीति चौधरी जी। और उसके बाद ऐना लिखती हैं, नमस्ते, मैं पर्यावरण की रक्षा के लिए कोशिश करती हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा पैदल चलूँ और पब्लिक ट्रांसपोर्ट का इस्तेमाल करूँ, साथ ही मैं अपने आसपास सफाई रखती हूँ और दूसरों को भी पर्यावरण के प्रति जागरूक करती हूँ। क्या बात है। संदीप राय जी लिखते हैं कि मैं पेड़ पौधों की देखभाल, अधिक से अधिक पेड़ लगाने में योगदान देता हूँ, पानी और बिजली के बर्बादी नहीं करता, प्लास्टिक का कम उपयोग करता हूँ, कूड़े को इधर उधर ना फेंक कर गीले और सूखे कचरे को अलग अलग रखने का प्रयास करता हूँ, छोटी दूरी के लिए पैदल चलने या साइकिल का उपयोग करके प्रदूषण कम करने में मदद करता हूँ। क्या बात है। और खुशबू कश्यप जी का भी मेल आया है कि उन्होंने मेल इम्प्टी छोड़ा हुआ है, अभी उसमें कुछ दिख नहीं रहा, चलिए बाद में कोशिश करेंगे। तो बहुत बहुत धन्यवाद आप सबके मेल्स का, और आप अभी भी हमें मेल लिख सकते हैं कि पर्यावरण के योगदान में, जो पर्यावरण की सुरक्षा की में आपका क्या योगदान है।

अभी हम सुन रहे थे लता मंगेशकर और मोहम्मद रफ़ी को फिल्म सरगम से। और दोस्तों, आज साड़ी पहनने के कितने अंदाज़ हैं, कहीं पल्लू कंधे पर, कहीं बेल्ट के साथ, कहीं जैकेट के साथ, तो कहीं बिल्कुल आधुनिक रूप में। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि साड़ी का ये आधुनिक अंदाज़ आया कहाँ से? तो साड़ी भारत में सदियों से पहनी जाती रही, जो सांची है, भरहूत है, अमरावती की प्राचीन मूर्तियों में भी बिना सिले कपड़े को बहुत ही खूबसूरती से शरीर पर लपेटने की परंपरा दिखाई देती है। लेकिन आज हम जिस तरह से साड़ी पहनते हैं, वो समय के साथ विकसित हुआ। और इस बदलाव की कहानी में एक बेहद खास नाम है, ज्ञानदा नंदिनी देवी। ज्ञानदा नंदिनी देवी रविंद्रनाथ ठाकुर की भाभी थी, यानी उनके भाई सत्येंद्रनाथ ठाकुर की पत्नी थी। वो अपने समय की बेहद प्रगतिशील और कॉन्फिडेंट महिला थी, और उन्होंने सिर्फ सामाजिक सोच को चुनौती नहीं दी, बल्कि महिलाओं के पहनावे में एक बहुत बड़ा बदलाव किया। उन्होंने बम्बई की पारसी महिलाओं की साड़ी पहनने की शैली से प्रेरणा ली, ब्लाउज, पेटीकोट और कंधे पर सलीके से पिन किया हुआ पल्लू, और इस शैली को उन्होंने बंगाली महिलाओं के लिए अपनाया और लोकप्रिय बनाया। और आगे चलकर दोस्तों, यही शैली ब्रह्मिका साड़ी के नाम से जानी गई। और ये बदलाव सिर्फ खूबसूरती के लिए नहीं था, ब्लाउज, पेटीकोट और पिन किया हुआ पल्लू महिलाओं के लिए साड़ी को एक अधिक सुविधाजनक बनाते थे। उन्हें बार बार पल्लू संभालने की चिंता नहीं रहती थी, वे आसानी से यात्रा कर सकती थी, काम कर सकती थी, पढ़ाई कर सकती थी और सार्वजनिक जीवन में सक्रिय रूप से भाग ले सकती थी। यानी ज्ञानदा नंदिनी देवी ने साड़ी को छोड़ा नहीं, उसे समय के साथ एक नया रूप दिया, जिसने महिलाओं को गतिशीलता और स्वतंत्रता को आसान बनाया। और अंत में बस इतना ही कहना चाहेंगे कि फैशन के हर दौर में अपना रंग बिखेरती है, साड़ी सिर्फ पहनी नहीं जाती, ये भारत की पहचान बनकर निखरती है।

अभी हम सुन रहे थे किशोर कुमार और लता मंगेशकर को, फिल्म थी सिलसिला। और दोस्तों, जो भारतीय विवाह होते हैं उसमें चावल, जिसे अक्षत भी कहा जाता है, केवल एक अनाज नहीं, एक स्टेपल फूड नहीं, बल्कि समृद्धि, अखंडता और मंगल कामना का प्रतीक माना जाता है। और यही कारण है कि विवाह जैसे शुभ संस्कार में चावल का बहुत ही खास जगह है। अखंड दाम्पत्य जीवन का प्रतीक है साबुत चावल। ये संदेश देता है कि नवविवाहित जोड़े का प्रेम, विश्वास और साथ हमेशा अटूट बना रहे। समृद्धि और अन्नपूर्णा का आशीर्वाद। भारत में अन्न को लक्ष्मी का स्वरूप माना गया है। चावल उर्वरता, संपन्नता और भरपूर जीवन का प्रतीक है। इसलिए वर वधु पर चावल अर्पित कर उनके सुखी और समृद्ध जीवन की कामना की जाती है। और विवाह के बाद जब परिवारजन नव दंपति पर अक्षत बरसाते हैं, तो उसका अर्थ होता है उनके जीवन में सुख, शांति, सौभाग्य और समृद्धि की निरंतर वर्षा होती रहे। विदाई के समय दुल्हन द्वारा पीछे की ओर चावल फेंकने की परंपरा ये दर्शाती है कि वो अपने मायके के लिए समृद्धि, सौभाग्य और कृतज्ञता का आशीर्वाद छोड़कर जा रही है। यह भावनात्मक रूप से माता पिता के ऋण और उनके स्नेह के प्रति सम्मान का प्रतीक भी माना जाता है। और दोस्तों, पश्चिम बंगाल में विवाह के बाद होने वाली जो बौभात होता है, उसके रस्म में नववधू पहली बार अपने नए परिवार के लिए चावल परोसती है। और ये इस बात का प्रतीक है कि अब वो इस परिवार की समृद्धि, प्रेम और अन्नपूर्णा का हिस्सा बन चुकी है। और ओडिशा में लाजा होम की रस्म होती है, जिसमें वधू अपने भाई द्वारा दिए गए लाजा, यानी जो पफ्ड राइस होते हैं, अग्नि को समर्पित करती है। और ये नए जीवन की मंगल कामना, त्याग और पारिवारिक स्नेह का प्रतीक माना जाता है। साउथ इंडिया में भी कई राज्यों में विवाह के दौरान वर वधु एक दूसरे के सिर पर हल्दी मिले हुए अक्षत डालते हैं। इसे शुभता, प्रेम, समृद्धि और समानता का प्रतीक माना जाता है। धार्मिक और वैदिक महत्व भी है। अक्षत को पूजा, यज्ञ और सभी शुभ कार्यों में अनिवार्य माना गया है, क्योंकि ये पुण्यता, पवित्रता और शुभ फल का प्रतीक है।

0: अभी हम सुन रहे थे लता मंगेशकर और किशोर कुमार को फिल्म प्रेम नगर। और दोस्तों, एक ना आपकी पूरी ज़िंदगी का फैसला नहीं हो सकता, लेकिन अफसोस कई बच्चे और युवा एक अस्वीकृति को अपनी पूरी पहचान बना लेते हैं। शायद मुझ में ही कमी है, शायद मैं किसी लायक नहीं हूँ, अब मेरे लिए कुछ नहीं बचा। और यहीं से माता पिता की सबसे बड़ी जिम्मेदारी शुरू होती है। बच्चों को मानसिक रूप से मजबूत बनाना किसी असफलता के बाद शुरू नहीं होता, इसकी नींव बचपन से ही पड़ती है। उन्हें सिर्फ जीतना मत सिखाइए, हारना भी सिखाइए। सिर्फ तारीफ सुनने की आदत मत डालिए, आलोचना सुनकर खुद को सुधारना भी सिखाइए। हर मुश्किल से उन्हें बचाइए मत, मुश्किलों का सामना करना भी सिखाइए। और जब कभी बच्चा अस्वीकार हो जाए तो तुरंत ये मत कहिए कि कोई बात नहीं, इससे बेहतर विकल्प मिल जाएगा। उसके पास बैठिए, उसे सुनिए, पूछिए कि तुम्हें सबसे ज़्यादा दुख किस बात का है। उसकी निराशा को छोटा मत कीजिए, उसे रोने दीजिए, दुखी होने दीजिए, थोड़ा सा समय लेने दीजिए। क्योंकि मजबूत होना भावनाएं छिपाना नहीं है दोस्तों, उन्हें समझकर उनसे आगे बढ़ना है। और माता पिता हर बार बच्चे की ओर से लड़ना भी ज़रूरी नहीं है। हर असफलता पर शिकायत करना, हर समस्या का समाधान खुद करके देना, हर बंद दरवाज़ा उसके लिए खोल देना, ये सुरक्षा नहीं, कभी कभी उसकी भावनात्मक ताकत को कम कर देता है। उसे छोटे फैसले लेने दीजिए, गलतियां करने दीजिए, उसके परिणाम को समझने दीजिए और फिर पूछिए, अब इसे ठीक करने के लिए तुम क्या कर सकते हो। लेकिन एक बात हमेशा सुनिश्चित कीजिए कि जब दुनिया उसको ठुकराए, तब उसे घर में एक ऐसी जगह मिले जहां वो बिना डर के कह सके कि मैं हार गया हूं, और जवाब मिले, हार गए हो लेकिन हमारे लिए कम नहीं हुए हो। बच्चे को विश्वास दीजिए कि आपकी मोहब्बत उसके अंकों, नौकरी, सफलता, रिश्ते या उपलब्धियों पर निर्भर नहीं है। क्योंकि जिस बच्चे को बचपन से ही ये भरोसा मिल जाता है कि दुनिया तुम्हें चुने या ना चुने, हम तुम्हारे साथ खड़े हैं, वो रिजेक्शन से कभी नहीं डरता।
1: उठे सबके कदम।

अभी हम सुन रहे थे अमित कुमार और लता मंगेशकर को फिल्म बातों बातों में। और दोस्तों, हमारे रसोई घर में सिर्फ स्वाद नहीं, सदियों पुराना आयुर्वेद भी पकता है। भारतीय परंपरा में कई ऐसे व्यंजन हैं जिन्हें आज विज्ञान भी फंक्शनल फूड मानता है, क्योंकि ये केवल पेट नहीं भरते, शरीर को संतुलित भी रखते हैं। जैसे दक्षिण भारत का रसम, और इसे सूप सिर्फ सूप समझने की भूल मत कीजिए। इसमें काली मिर्च, जीरा, लहसुन, इमली और करी पत्ता होते हैं, और आयुर्वेद के अनुसार ये पाचन को सक्रिय करता है, मौसम बदलने पर गले और जुकाम में राहत देता है, भूख बढ़ाने में भी हेल्प करता है। और वहीं गुजरात और राजस्थान की बाजरे की खिचड़ी सर्दियों की औषधि कही जाती है। अगर बिहार की बात करें तो सत्तू किसी सुपर फूड से कम नहीं है। भुने हुए चने से बना सत्तू प्रोटीन, आयरन, घुलनशील रेशे का अच्छा स्रोत है। गर्मियों में ये शरीर को शीतलता देने के साथ लंबे समय तक तृप्त भी रखता है। कश्मीर का कहवा भी केवल चाय नहीं, केसर, दालचीनी, इलायची और बादाम से बना ये पेय जो है ड्रिंक शरीर में गर्माहट बनाए रखने, पाचन को सहज करने और थकान को कम करने में सहायक माना जाता है। तो अगली बार जब कोई विदेशी सुपर फूड चर्चा में है तो अपनी थाली पर भी एक नज़र डालिए, हो सकता है स्वास्थ्य का सबसे बड़ा खजाना आपके रसोई घर में ही मौजूद हो।

अभी हम सुन रहे हैं लता मंगेशकर को फिल्म बरसात की एक रात, और इसी गीत के साथ देते हैं आज की खूबसूरत प्रस्तुति को यहीं विराम। फिर मिलेंगे, तब तक के लिए रखिए अपना और अपने पर्यावरण दोनों का ख्याल। दीजिए मंजुला को इजाजत, नमस्कार।

आपके अस्तित्व आपके व्यक्तित्व से जुड़ा। आपका घर आंगन। घर आंगन।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं कनकलता। गृहमंत्री अमित शाह आज गोवा के पणजी में पश्चिमी क्षेत्रीय परिषद की 28वीं बैठक की अध्यक्षता कर रहे हैं। इस परिषद में गोवा, गुजरात और महाराष्ट्र के साथ दादरा और नगर हवेली तथा दमन और दीव शामिल हैं। बैठक में गोवा के मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत, गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल और महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस शामिल हैं। बैठक में केंद्र और राज्यों से जुड़े कई अहम मुद्दों पर चर्चा हो रही है। गृहमंत्री आज गोवा राज्य पुलिस को प्रतिष्ठित राष्ट्रपति पुलिस ध्वज भी प्रदान करेंगे। ये सम्मान राज्य पुलिस बल के लिए गौरवपूर्ण उपलब्धि होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल गुजरात और महाराष्ट्र का दौरा करेंगे। वडोदरा में प्रधानमंत्री 35,000 करोड़ रुपए से अधिक की विभिन्न विकास परियोजनाओं की आधारशिला रखेंगे और उनका उद्घाटन करके राष्ट्र को समर्पित करेंगे। महाराष्ट्र में प्रधानमंत्री ग्लोबल फिनटेक फेस्ट का उद्घाटन करेंगे और सभा को संबोधित करेंगे। दिल्ली के मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने सुरक्षा उपायों और जारी बचाव अभियान की समीक्षा करने के लिए नई दिल्ली के सत्य निकेतन में ढही इमारत स्थल का आज फिर दौरा किया। मुख्यमंत्री ने बताया कि मलबे का काफी हिस्सा दशकों पुराने बहुमंजिले भवन स्थल से हटा दिया गया है।
1: लगभग 80% मलबा हट चुका है, केवल बेसमेंट जितना मलबा रहा है। अभी इसमें 12 लोग मिले हैं, जिसमें से 6 डेड हैं और 6 अभी ठीक स्थिति में हैं। उन सभी के पेरेंट्स हमारे टच में हैं। हम पूरी कोशिश कर रहे हैं कि उनको किसी भी तरह की कोई परेशानी ना हो, बच्चों को ठीक इलाज मिल रहा है।
0: मुख्यमंत्री ने कहा कि जिन अधिकारियों की अनदेखी के कारण ये दुर्घटना हुई है, उन्हें तुरंत निलंबित किया जाएगा।
1: इस बिल्डिंग के मालिक पे कार्रवाई होगी और जो इसके आसपास की जितनी डेंजरस बिल्डिंग है उनको भी आइडेंटिफाइड करके ध्वस्त किया जाएगा। विशेष रूप से इस बिल्डिंग के बिल्कुल पीछे वाली बिल्डिंग को भी हमने खाली करवा दिया है और तुरंत प्रभाव में उसे भी डेमोलिश किया जाएगा।
0: इस बीच भवन मालिक के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की गई है। घटनास्थल पर बचाव और राहत कार्य जारी है। आज सफदरजंग अस्पताल से धौलाकुआं की ओर जाने वाले मार्गों पर यातायात प्रभावित रहेगा। प्रवर्तन निदेशालय

0: नई उर्दू दैनिक अखबार मशरिक और उसके निदेशक तथा तृणमूल कांग्रेस के सांसद नदीमुल हक से जुड़े एक मामले में कोलकाता, दिल्ली और रांची में 7 परिसरों में छापेमारी की है। जांच एजेंसी ने बताया कि मामला सांप्रदायिक वैमनस्य को कथित तौर पर बढ़ावा देने संबंधी सामग्री के प्रसार और प्रकाशन तथा अवैध लेन देन के आरोपों से जुड़ा है। बिहार में बाढ़ की स्थिति गंभीर बनी हुई है। गंगा और कई अन्य नदियां अब भी खतरे के निशान से ऊपर बह रही हैं। हालांकि सोन नदी के जलस्तर में कमी से कुछ राहत मिली है। सोन नदी पटना के पास गंगा में मिलती है। इसमें पानी कम होने से दीघा तथा गांधी घाट पर गंगा के जलस्तर का दबाव कम हुआ है। प्रभावित इलाकों में राहत और बचाव कार्य जारी है। उधर मध्य प्रदेश में मॉनसून एक बार फिर सक्रिय है। राज्य में अगले 4 दिन तेज बारिश का अलर्ट है। रीवा और सागर संभाग के 6 जिलों निवाड़ी, टीकमगढ़, छतरपुर, पन्ना, सतना और रीवा में तेज बारिश की चेतावनी जारी की गई है। विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर और लग्जमबर्ग के उप प्रधानमंत्री तथा विदेश मंत्री जेवर बिटल की आज नई दिल्ली में बैठक हो रही है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि श्री बिटल की यह यात्रा दोनों देशों के बीच बहुआयामी संबंधों को और मजबूत करने का अवसर है। ओपेक प्लस समूह के 7 प्रमुख देशों ने वैश्विक स्तर पर बनी अनिश्चितता के बीच अक्टूबर के लिए तेल उत्पादन नीति में कोई बदलाव न करने का फैसला किया है। इन देशों में सऊदी अरब, रूस, इराक, कुवैत, कजाकिस्तान, अल्जीरिया और ओमान शामिल हैं। घरेलू शेयर बाजार के संवेदी सूचकांक में आज गिरावट का रुख है। अंतिम समाचार मिलने तक सेंसेक्स 485 अंक गिरकर 76,000 पर और निफ्टी 145 अंक गिरकर 23,753 पर कारोबार कर रहा था। मध्य प्रदेश के उज्जैन में भगवान महाकालेश्वर की आज शाही सवारी का आयोजन हो रहा है। अंतिम शाही सवारी में भगवान महाकाल के 7 अलग अलग रूपों के दर्शन होंगे। सवारी शाम 4 बजे मंदिर से शुरू होगी और महाकाल घाटी, गुदरी चौराहा और रामानुज कोट होते हुए राम घाट पहुंचेगी। आकाशवाणी उज्जैन दोपहर 2 बजे से रात 10 बजे तक इसका लगातार प्रसारण करेगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: This is Akashvani, the news read by Valsa Williams. Union Home Minister Amit Shah is chairing the 28th meeting of the Western Zonal Council in Panaji today. Chief ministers and senior ministers of Goa, Gujarat and Maharashtra, along with representatives of Dadra and Nagar Haveli and Daman and Diu, are participating in the meeting. The council provides a structured platform to discuss issues affecting two or more states or the centre and states together and strengthen mutual cooperation. Matters requiring coordinated action and those remaining unresolved at the official level could be taken up for consideration. Later, Amit Shah will present the President's police colour to Goa Police. The Enforcement Directorate ED has conducted searches at 7 premises in Kolkata, Delhi and Ranchi in connection with a case involving Akhbar-e-Mashriq Private Limited, an Urdu daily newspaper, and its director and TMC MP, Nadeemul Haq. ED has recorded an enforcement case information report on the basis of an FIR registered by Bidhannagar Police Commissionerate. The investigation agency said the case relates to allegations concerning the publication and dissemination of material allegedly promoting communal disharmony. It said the case also contains allegations regarding illegal transactions, unaccounted cash transactions and funding from suspicious sources. Delhi Chief Minister Rekha Gupta, along with Delhi Minister Manjinder Singh Sirsa, visited the site of the building collapse and took stock of the situation in the Satyaniketan area of New Delhi this morning. Talking to reporters, Ms. Gupta stated that the government is in touch with the parents of the affected students.
2: Around 80% of the debris has been removed. Only debris equivalent to the basement levels remain. So far, 12 people have been found, of whom 6 are dead and 6 are in stable condition. We are in touch with the parents of all of them and are making every possible effort to ensure that they do not face any difficulties. Action will be taken against the owner of the building. All dangerous buildings in the surrounding area will also be identified and demolished.
1: Manjinder Singh Sirsa said the National Disaster Response Force team is continuously engaged in the operation

0: Mr. Singh said the Chief Minister has directed the Commissioner and the Chief Secretary to immediately suspend all officials responsible for this matter and to take strict action. External Affairs Minister Dr. S. Jaishankar met Deputy Prime Minister and Minister of Foreign Affairs of Luxembourg, Xavier Bettel, in the national capital today. In a social media post, Ministry of External Affairs spokesperson Randhir Jaiswal said the visit provides an opportunity to further strengthen the multifaceted relations between India and Luxembourg. Mr. Bettel arrived in New Delhi for an official visit earlier today. The Indian Space Research Organization, ISRO, has issued a clarification on reports circulating in the media regarding speculations and misinformation that there is an attempt to privatize ISRO or reduce its role. In a social media post, ISRO said it will neither be privatized nor will its importance be diminished. It added that participation of the private sector in space is aimed at enabling ISRO to focus even more strongly on the next generation of India's space program while industry scales up mature technologies and capabilities. The United States, South Korea and Japan today began a 5-day joint military exercise, Freedom Edge, in international waters east and south of South Korea's Jeju Island. The exercise is proceeding on schedule even as key Seoul, Washington drills were recently scaled back upon U.S. President Donald Trump's order. South Korea's Joint Chiefs of Staff said the annual defensive exercise will focus on strengthening the three countries' operational and joint response capabilities across maritime, air and cyber domains. The drills are aimed at countering North Korean nuclear and missile threats and maintaining regional stability. The fourth edition of Freedom Edge is being held as scheduled despite the recent scaling back of the U.S.-South Korea Ulchi Freedom Shield exercise following an order from U.S. President Donald Trump. Benchmark domestic equity indices were trading in negative zone during the afternoon session today. The Sensex declined 485 points to 76,030, while the Nifty fell 145 points to 23,753 when reports last came in. And with that, we end this news bulletin.
1: आकाशवाणी का ये इंद्रप्रस्थ चैनल है. मीडियम वेव 366.3 मीटर अर्थात 819 किलो हर्ट्स, डीआरएम 810 किलो हर्ट्स पर. वक्त हुआ है दोपहर के 1:10 और ये वक्त है आपके पसंदीदा प्रोग्राम जिसका रहता है आपको हर रोज इंतजार, प्रोग्राम एक ही फिल्म से. प्रोग्राम एक ही फिल्म स्टार्ट करें उससे पहले सुनते हैं ये संदेश.
2: 10 लाख की लॉटरी मुझे.
3: फर्जी ऑफर्स से सावधान.
4: आरबीआई कहता है
5: जानकार बनिए, सतर्क रहिए.
1: जी हाँ दोस्तों, कहते हैं कि फिल्में जिंदगी का आईना होती हैं. कई फिल्में ऐसी होती हैं जिन्हें हम जितनी बार भी देख लें उतना ही मन करता है उन फिल्मों को बार बार देखने का. अगर हम 70 के दशक के, 60 के दशक की, 80 के दशक की फिल्मों की बात करें तो एक से एक ऐसी फिल्में आई हैं जो अपने संगीत के ज़रिए, अपने कलाकारों के ज़रिए, अपनी जो कहानी है उसके ज़रिए लोगों के दिल में आज भी बसी हुई है. तो क्यों ना आज भी हम पुराने पन्नों की वो किताब खोलें जिसमें कोई एक ऐसी कहानी है, ऐसा चेहरा है, ऐसे गीत हैं जो बरसों बाद भी दिल को छू जाते हैं. तो आज हम चलते हैं 1976 की तरफ और वहाँ से चुनते हैं आपके लिए एक ऐसी फिल्म जिसमें रोमांच था, एक्शन था, प्यार था, रहस्य था और सबसे बढ़कर था उस दौर के सितारों का आकर्षण. तो चलिए अब आपको हम उस फिल्म का नाम बताएं, उससे पहले हमेशा की तरह आपको गीत सुनवा देते हैं. लेकिन हाँ, ये ज़रूर बता देते हैं कि जब आप उस फिल्म को देखते हैं और उस फिल्म में पर्दे पर नज़र आते हैं धर्मेंद्र जी, हेमा मालिनी, अमजद खान जैसे कलाकार, तो दर्शक ताली बजाने के से अपने आप को रोक नहीं सकते हैं. तो वो कौन सी फिल्म है ये तो आप गीत सुनकर पता लगा ही लेंगे. और जब आप पता लगा ही लेंगे तो फिर आप हमेशा की तरह जो करते हैं वही आपको करना है, मेल के ज़रिए अपने जवाब भेज देना है. मेल आईडी है ipradiodelhi@gmail.com. अब आपको बता दूं

आपके ढेर सारे संदेश पहुंच रहे हैं सही जवाब के साथ। और ये फिल्म ऐसी है जिसके गीत आज भी वही कशिश रखते हैं जब ये फिल्म रिलीज हुई थी। साल था 1976, फिल्म थी चरस, उस दौर की सबसे बड़ी ब्लॉकबस्टर फिल्मों में से एक, जिसका निर्देशन रामानंद सागर जी ने किया था। वहीं रामानंद सागर जिन्हें हम सब जानते हैं रामायण सीरियल के लिए, लेकिन उससे पहले उन्होंने बॉलीवुड को कई शानदार थ्रिल फिल्में भी दी हैं। फिल्म में नजर आए थे धर्मेंद्र, हेमा मालिनी, अजीत, अमजद खान, असरानी, टॉम अल्टर, एक से एक कलाकार थे और साथ ही साथ एक से एक इस फिल्म के गीत भी थे। अगर हम बात करें तो धर्मेंद्र ने सूरज का किरदार इस फिल्म में निभाया था, हेमा मालिनी सुधा के किरदार में नजर आई थी, अजीत कालीचरण बने थे, अमजद खान रोबर्ट के रूप में नजर आए थे, अरुणा ईरानी निम्बू के किरदार में दिखी थी और सेठ वृंदावन के रूप में नज़ीर हुसैन दिखे थे, असरानी पुलिस इंस्पेक्टर रुस्तम की भूमिका में थे, कैस्ट्रो मुखर्जी ने भी एक पुलिस इंस्पेक्टर की भूमिका निभाई थी, वहीं सुजीत कुमार लॉरेंस और शेख अब्दुल सत्तार के रूप में नज़र आए थे। तो इसके अलावा भी इसमें और भी जो सह कलाकार थे सभी ने अपनी अपनी भूमिकाओं के साथ पूरा न्याय किया था।

0: फिल्म चरस की कहानी अंतर्राष्ट्रीय ड्रग तस्करी पर आधारित है। सूरज यानी कि धर्मेंद्र के पिता की हत्या और बहन का अपहरण एक अंतर्राष्ट्रीय स्मगलिंग गिरोह कर लेता है। अपनी बहन की तलाश और अपराधियों को सजा दिलाने के लिए सूरज एक सीक्रेट एजेंट बन जाता है। इस सफर में उसकी मुलाकात रोम में सुधा यानी कि हेमा मालिनी से होती है। धर्मेंद्र का एक्शन और हेमा मालिनी के साथ उनकी ऑन स्क्रीन केमिस्ट्री ने थिएटर्स में आग लगा दी थी। ये फिल्म 1976 की सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली टॉप 5 फिल्मों में शामिल थी। इस फिल्म की शूटिंग इटली यानी कि रोम जैसे खूबसूरत अंतर्राष्ट्रीय लोकेशंस पर हुई थी, जो उस दौर की हिंदी फिल्मों के लिए एक बहुत बड़ी बात मानी जाती थी। धर्मेंद्र और हेमा मालिनी की रियल लाइफ जोड़ी का जादू इस फिल्म में सर चढ़कर बोला था।
1: गुड नाइट।
2: हाँ गुड नाइट।
1: अच्छा गुड नाइट।

फिल्म चरस का संगीत दिया था लक्ष्मीकांत प्यारेलाल की मशहूर संगीतकार जोड़ी ने। गीतों को आवाज देने वाले प्रमुख गायकों में किशोर कुमार, लता मंगेशकर, आशा भोसले और मोहम्मद रफी जैसे दिग्गज नाम शामिल थे। फिल्म के गीतों ने उस दौर के संगीत की वो खासियत, जो गीत है उनमें वो खासियत सुनाई देती है जिसमें ऑर्केस्ट्रियन धुन और जो गायकी है तीनों का खूबसूरत मेल एक साथ दिखाई देता है। कोई भी गीत ले लीजिए, अपने आप में आज भी वो गीत बहुत ही मधुर है।

जब बात 1970 के दशक की फिल्मों की होती है तो धर्मेंद्र और हेमा मालिनी की जोड़ी का जिक्र होना तो स्वाभाविक ही है। धर्मेंद्र अपने दमदार व्यक्तित्व और एक्शन भूमिकाओं के लिए बहुत लोकप्रिय थे, वहीं हेमा मालिनी अपनी खूबसूरती, अभिनय और नृत्य के कारण दर्शकों की पसंदीदा अभिनेत्रियों में शामिल थी। अब इनके बीच में हम एक नाम को कैसे भुला सकते हैं, वो है अमजद खान। अमजद खान उस दौर में अपनी दमदार अदाकारी से अपनी अलग पहचान

और अब वक्त है कि आपने जो संदेश भेजे हैं उनमें उन संदेशों को लेना और आपके नामों को पढ़ना। तो हमारे पास सबसे पहला जो संदेश आया है वो पलारी छत्तीसगढ़ से नितेश कुमार देवानगन दुर्गा प्रसाद पराग जी का आया है। अगला संदेश गुरमीत सिंह मीता साउथ एक्सटेंशन से हमें भेज रहे हैं। पद्मा टॉकीज नेपा नगर से सुदर्शन शाह पल्लवी प्रखर और कुशल जी हमारे साथ हैं। तेलंगाना निज़ामाबाद से शेख अल्लाह बख्श बेगम रागबिया और शेख मुन्ना जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अजीत भापसर जी प्रमिला जी के साथ ढेर सारी जानकारी के साथ वीरनगांव जंक्शन से गुजरात से हमारे साथ हैं। गांव फरासी जिला हिसार से राजकुमार डूडी प्रमोद कुमार डूडी हैं। जलालाबाद बेस्ट से सुरेश गंगनेजा पूनम जी हमारे साथ हैं। ऊपरकोट मोहल्ला चौखंडी बुलंदशहर से मोहम्मद सईद अब्बासी निगत परवीन शनवा सरफराज फरदीन परिवार के सभी सदस्य हैं। डीवी राणा नेहरू बिहार दिल्ली से जुड़ चुके हैं। बटिंगेड़ा पंजाब से मिंटू टोमस पिंकी लवलिया आरती जी हमारे साथ हैं। पिपरिया से कमलकांत गुप्ता दीपा रिमझिम जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। बिलाईगढ़ छत्तीसगढ़ से रोशनलाल कौशल्या देवनगन हेमलता डिम्पल जी हमारे साथ हैं। संबलपुर कांकेर से फागुन राम ज्योति ओजस्वी यादव जी हमारे साथ हैं। देवशंकर तामुरिया जयदेव जी हमारे साथ डोंजी लोहारा बालो छत्तीसगढ़ से जुड़ चुके हैं। भोपाल का राजस्थान से धर्मेंद्र छिपा कपिल पूजा ईशान जी हमारे साथ हैं। छत्तीसगढ़ पलारी से प्रकाश ब्रह्मा प्रिंस निखिल जी हमारे साथ हैं। अगला संदेश हमारे पास सुदर्शन मुखिया नेता सिमरन जी का शांतिनगर सोनीपत से आया है। और ग्राम नागर कोहरा जिला राजनांदगांव छत्तीसगढ़ से बबलू साहू जामुन देवी जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। कस्बा गुनेर यूपी से फारूक अली और फैजी फरान जी हमारे साथ हैं। संजय डिंगिया नमन जी अपार जी बागपत उत्तर प्रदेश से हमें सुन रहे हैं। भबरपुर बसना से चंपा देवानगन राधेश्याम जी हमारे साथ हैं। जनकपुरी सहारनपुर से जॉन ट्रिकेस्टो रोजी जी हमें सुन रहे हैं। संदीप मक्कर जी जालंधर पंजाब से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अगला संदेश हमारे पास पहुँचा है, ये आया है हमारे पास। बहुत सारी जानकारी इन्होंने हमसे शेयर करी है और इनका नाम है अजीत भापसर जी का ही एक और संदेश पहुंचा है। तो आप सभी का हम ढेर सारा शुक्रिया अदा करते हैं हमारे सफ़र में हम सफ़र बनने के लिए। कुछ और संदेश भी हैं। पहाड़गढ़ मुल्तानी ढांडा से अनिमोहन उषा मोहन टिल्लू नायक जी हमें सुन रहे हैं। रघुनाथपुरा श्री गंगानगर राजस्थान से लालगिरी गोस्वामी हेमलता हिना हर्षित जी हमें हमारे साथ हैं। इशक मोहम्मद जी हमारे साथ छत्तीसगढ़ चूड़ी लाइन मुगेरी से जुड़े हुए हैं। टीवी राणा नेहरू विहार दिल्ली से हमें सुन रहे हैं। और बसंत कुमार सिन्हा जी दमदम कोलकाता से हमारे साथ जुड़े हैं। तो आप सभी का हम शुक्रिया अदा करते हैं और हमेशा की तरह आपसे हम इतना ही कहेंगे कि अगर आपने अभी तक अपनी लिस्ट में चरस फिल्म को शामिल नहीं किया तो वक्त निकालिए और इस फिल्म को ज़रूर देखिए। फिलहाल वक्त हो रहा है आपसे अनुमति लेने का 2:30 पर प्रोग्राम एक ही कलाकार सुनना ना भूलिए। और 3:00 आपके लिए प्रोग्राम लेकर आएंगे मैटिनी मेलोडीज़। तब तक के लिए अनुमति दीजिए। नमस्कार।

0: अभी आप सुन रहे थे प्रोग्राम एक ही फिल्म से, आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है। 1:40 होने को है, कुछ ही देर में समाचार होंगे।
1: नमस्कार, ये आकाशवाणी है। खबरां दे नाल मैं सरबजीत कौर, पहला इस बुलेटिन दियां खास खबरां। विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर ने कहा कि एक अनिश्चितता बारे चिंतित युग में भारत लक्समबर्ग विचकार एक भरोसेयोग रिश्ता है। उन्होंने लक्समबर्ग के प्रधानमंत्री और विदेश मामले बारे मंत्री जेवियर बटालियन मुलाकात की है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह आज गोवा में पश्चिमी जोनल काउंसिल की 28वीं मीटिंग की प्रधानगी कर रहे हैं। एनफोर्समेंट डायरेक्टोरेट वालों उर्दू रोजाना अखबार मशरूक इसके डायरेक्टर तृणमूल कांग्रेस के संसदर नदीम उल हक ने जुड़े एक मामले के संबंध में कोलकाता दिल्ली के रांची में छापेमारी। इसलिए का कहना है कि बलाड़ खेतर के सुधार निजीकरण से नहीं सगो इको सिस्टम के प्रसार से केन्द्रित है। अब टेनिस मौजूदा चैंपियन आरिना सावलिंका कार्लोस अल्कराज यूएस ओपन के क्वार्टर फाइनल में पहुंच गए हैं। विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर ने कहा कि एक अजिहे युग में जिथे पूरी दुनिया अनिश्चितता बारे चिंतित है, भारत और लक्समबर्ग विचकार एक भरोसेयोग रिश्ता है। डॉ जयशंकर ने यह गल आज नई दिल्ली में लक्समबर्ग के उप प्रधानमंत्री, विदेश मामले और विदेशी व्यापार मंत्री जेवियर बटालियन मुलाकात दौरान कही। उन्होंने कहा कि श्री बटालियन यात्रा भारत और लक्समबर्ग विचकार बढ़ती और दूनी होंगी भाईवाली दर्शाती है। डॉ जयशंकर ने इस साल की शुरूआत में आपने लक्समबर्ग यात्रा में याद किया। उन्होंने कहा कि हाल ही के सालों में 2013 के नेतावान ने एक दूसरे नाल कई बार गलबात की थी। विदेश मंत्री ने कहा कि व्यापार निवेश माली सहयोग संबंध का केंद्र है। उन्होंने कहा कि इन्होंने तो परे दोवें धिर पुलाड़ डिजिटल चुगिरते पक्षी तकनालोजिया भी सहयोग की भाल कर रही है। डॉ जयशंकर ने कहा कि कोविड महामारी तो बाद भारत के लक्समबर्ग विचकार सेहत सहयोग भी वध्या है। उन्होंने कहा कि सप्लाई लड़ी लचकीलेपन और यूरोप नाल भिन्नता के मामले में हूं मुक्त व्यापार समझौते की प्रवानगी नाल नवीं दिशावां खुल गई हैं। विदेश मंत्री ने लक्समबर्ग का एफटीए में मजबूत हमारे देने लिए धन्यवाद किया। अपने संबोधन में लक्समबर्ग के प्रधानमंत्री, विदेश मामले और विदेशी व्यापार बारे मंत्री जेवियर बटालियन ने कहा कि लक्समबर्ग का भारत नाल एक भरोसेमंद और ईमानदार रिश्ता है। उन्होंने कहा कि दोवे धिर ने संबंधों को डूंगा करने लिए बहुत कुछ किया है। श्री बटालियन ने शांति स्थापित करने वाले वजो भारतीय लीडरशिप की भूमिका और टकराव तो प्रभावित देशों विचकार राबता बनाने की कोशिश करने लिए धन्यवाद किया। श्री बटालियन ने सड़के भारत के 3 दिन दौरे से नई दिल्ली पहुंचे। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह आज गोवा में पश्चिमी जोनल काउंसिल की 28वीं मीटिंग की प्रधानगी कर रहे हैं। यह मीटिंग सवेरे 11 बजे पणजी में शुरू हुई। श्री शाह गोवा के 3 दिन दौरे से ने अधिकारियों ने दस्सिया कि गोवा के मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत, महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस

0: बाद मुख्यमंत्री भूपेन्द्र पटेल और दादरा नगर हवेली तथा दमन तथा दीव के प्रशासक प्रफुल्ल पटेल मीटिंग में शामिल हुए। केंद्रीय गृह मंत्रालय और राज्य सरकार के सीनियर अधिकारी भी मौजूद हैं। मीटिंग में अंतरराज्यी तालमेल सहयोग शासन मेंबर राज्यों के केंद्र शासित प्रदेशों विचकार सब तो वधिया ढंग तरीके साझा करने से संबंधित मुद्दों पर चर्चा की जाएगी। अधिकारियों ने बताया कि अंतरराज्यी कौंसल सक्रेट की मीटिंग में हिस्सा लेने वाले राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के वफद भी पेशकारियां देंगे। बाद में श्री शाह गोवा पुलिस को राष्ट्रपति के कलश प्रदान करेंगे। एनफोर्समेंट डायरेक्टोरेट ने उर्दू रोजाना अखबार मशरक से डायरेक्टर तृणमूल कांग्रेस के संसद मेंबर नदीम खल्क जुड़े एक मामले के संबंध में कोलकाता दिल्ली और रांची में सात इमारतों पर छापेमारी की है। एनफोर्समेंट डायरेक्टोरेट ने बुधाननगर पुलिस कमिश्नरेट वालों दर्ज की गई एक एफआईआर के आधार पर एक एनफोर्समेंट केस इन्फॉर्मेशन रिपोर्ट दायर की थी। जांच एजेंसी ने किया है कि यह मामला कथित तौर पर फिरकू वैरपुणे ने उत्साहित करने वाली सामग्री के प्रसारण प्रकाशन के इल्जाम संबंधित है। एनफोर्समेंट डायरेक्टोरेट ने किया है कि इस मामले में गैर कानूनी लैन देन बेहिसाब नकदी लैन देन और शक्की वसीलों तो प्राप्त फंडा के इल्जाम भी शामिल हैं। दिल्ली के मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने आज नई दिल्ली के सत्य निकेतन इलाके में इमारत डिगण वाली थां का दोबारा दौरा किया ता जो सुरक्षा उपायों और चल रहे बचाव कार्यों की समीक्षा की जा सके। पत्रकारों नाल गलबात करदे उन्होंने कहा कि दहाके पुरानी बहुमंजिला इमारत के स्थान तो करीब 80% मलबा हटा दिता गया। मुख्यमंत्री ने दसा कि 12 लोगों को कढ़ लिया गया जिन्हों में 6 की मौत हो गई जबकि 6 की हालत स्थिर है।
1: लगभग 80% मलबा हट चुका है, केवल बेसमेंट जितना मलबा रहा है। अभी इसमें 12 लोग मिले हैं जिसमें से 6 डेड हैं और 6 अभी ठीक स्थिति में हैं। उन सभी के पेरेंट्स हमारे टच में हैं। हम पूरी कोशिश कर रहे हैं कि उनको किसी भी तरह की कोई परेशानी ना हो, बच्चों को ठीक इलाज मिल रहा है।
0: मुख्यमंत्री ने कहा कि यह दुखदायक घटना इमारत के मालिक की लापरवाही कारण वापरी है। उन्होंने भरोसा दिया कि मालिक विरुद्ध कार्रवाई की जाएगी,
1: मालिक की कार्रवाई होगी और जो इसके आसपास की जितनी डेंजरस बिल्डिंग है उनको भी आइडेंटिफाई करके ध्वस्त किया जाएगा। विशेष रूप से इस बिल्डिंग के बिल्कुल पीछे वाली बिल्डिंग को भी हमने खाली करवा दिया है और तुरंत प्रभाव में उसे भी डेमोलिश किया जाएगा।
0: उन्होंने आगे कहा कि जिन अधिकारियों की लापरवाही कारण यह हादसा होया उन्होंने बख्शा नहीं जाएगा और उन्होंने तुरंत मुअत्तल किया जाएगा। मुख्यमंत्री ने आगे कहा कि आज ही मुअत्तल करने के हुक्म जारी किए जाएंगे। दिल्ली सरकार के मंत्री मनजिंदर सिंह सिरसा ने भी इस घटना वाली थान का दौरा किया। उन्होंने कहा कि राष्ट्रीय आपद प्रतिक्रम बल एनडीआरएफ की टीम लगातार कार्रवाई में लगी हुई है।
2: मुख्यमंत्री जी ने कमिश्नर साहब को चीफ सेक्रेटरी साहब को आदेश दिया है जितने अधिकारी हैं जिनकी जिम्मेवारी थी चाहे वो किसी भी रैंक का उनको तुरंत सस्पेंड किया जाए, सख्ती से कार्रवाई की जाए। जो बच्चे हैं यहां से उनको अकोमोडेट किया गया अलग अलग जगह पर और आगे के लिए भी जितनी पब्लिक यूटिलिटीज हैं उनको अपना स्ट्रक्चरल ऑडिट देना होगा ताकि ये मन मर्जी से बच्चों की जान के साथ खिलवाड़ न कर पाए।
0: इस दौरान इमारत के मालिक विरुद्ध एफआईआर दर्ज कर ली गई है। दिल्ली के मुख्यमंत्री दफ्तर ने कहा कि दिल्ली में गैर कानूनी 5 मंजिला इमारतों को तुरंत सील करने के निर्देश जारी किए गए हैं। सीएमओ ने आगे कहा कि मुख्यमंत्री ने स्पष्ट कर दिया है कि दिल्ली के वसनीकों की सुरक्षा नाल कोई समझौता नहीं किया जाएगा और लापरवाही के मामले में किसी को भी बख्शा नहीं जाएगा। यह खबर आकाशवाणी तो सुन रहे हो साडा @AIRRA जलंधर। भारतीय पुराण खोज संगठन इसरो ने मीडिया में फैल रही क्या सराइया और गलत जानकारी संबंधी रिपोर्टा से स्पष्टीकरण जारी किया। इसरो का निजीकरण कर इसकी भूमिका को घटाने की कोशिश की जा रही है। एक सोशल मीडिया पोस्ट में इसरो ने कहा कि इसका न तो निजीकरण किया जाएगा और न ही इसकी महत्ता को घटाया जाएगा। इसने भी कहा कि पुलाड़ में निजी खेतर की हिस्सेदारी का उद्देश्य इसरो ने भारत के पुलाड़ प्रोग्राम की अगली पीढ़ी से होर भी मजबूती ध्यान केन्द्रित करने योग बनाना जदों की सनत परिपक् टेक्नोलॉजियां और समर्थावां हासिल करें। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने नवी दिल्ली के राष्ट्रपति भवन विखे डूरेंट कप टूर्नामेंट 2026 का प्रेजिडेंट कप जेतू टीम ईस्ट बंगाल फुटबॉल क्लब को सौंपा। डूरेंट फुटबॉल टूर्नामेंट सोसायटी के प्रधान चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल एमएस राजा सुब्रमणि, आर्मी स्टाफ चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल तीरथ सेठ, एयर चीफ स्टाफ मुखी एयर चीफ मार्शल एपी सिंह और चीफ ऑफ नेवल स्टाफ एडमिरल कृष्णा स्वामीनाथन सोसायटी के प्रधान ईस्ट बंगाल फुटबॉल क्लब के अधिकारी और खिलाड़ी इस मौके मौजूद सन। आज शुरू होने वाले जम्मू कश्मीर अंतर्राष्ट्रीय फिल्म समारोह में स्थानक फिल्म निर्माताओं और रचनात्मक पेशेवरों

0: ही सीखने पर तवज्जो मरकूज की जाएगी। राष्ट्रीय पोषण माह हर सितंबर में तग्ज़िए को अवामी तहरीक बनाने और सुपोषित भारत को फ़रोग देने की हुकूमत की कोशिशों के हिस्से के तौर पर मनाया जाता है। भारतीय मौसमियात महकमे IMD ने कल तक बिहार, मध्य प्रदेश, मशरक़ी उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, मगरबी बंगाल और मुल्क के शुमाल मशरक़ी हिस्सों में शदीद बारिश की पेशगोई की है। मौसमियात के महकमे ने कहा है कि आंध्र प्रदेश, झारखंड, ओडिशा, छत्तीसगढ़ और तमिलनाडु में कल तक गरज चमक के साथ छींटे पड़ने का सिलसिला जारी रहेगा। जम्मू कश्मीर के बैन अलाक़वामी फिल्म फेस्टिवल का आज आगाज हो रहा है। इस चार रोज़ा फेस्टिवल में 40 ममालिक से 135 फिल्में दिखाई जाएंगी। आखिर में खास खास खबरें एक बार फिर। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी कल गुजरात और महाराष्ट्र का दौरा करेंगे। वो 35,000 करोड़ रुपये से ज़्यादा मालियत के तरक्याती प्रोजेक्टों का आगाज करेंगे। दिल्ली के सत्य निकेतन इलाके में मुनहदम हुई इमारत में हलाक होने वालों की तादाद बढ़कर 7 हो गई है। साउथ जोन MCD के डिप्टी कमिश्नर और 4 इंजीनियरों को मुअत्तल कर दिया गया है। वजीर खारजा डॉक्टर एस जयशंकर ने लग्जमबर्ग के नायब वजीर आज़म जेवियर बेटल के साथ बाहमी मुलाकात की है। उन्होंने कहा कि एक ऐसे दौर में जब पूरी दुनिया गैर यकीनी के सिलसिले में फिक्रमंद है, भारत और लग्जमबर्ग के पुरैतमाद रिश्ते हैं। मरकजी वजीर दाखिला अमित शाह गोवा में मगरबी जोनल काउंसिल की 28वीं मीटिंग की सदारत कर रहे हैं और IMD ने कल तक बिहार, मध्य प्रदेश, मशरकी उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, मगरबी बंगाल और शिमाल मशरकी हिस्सों में शदीद बारिश की पेशगोई की है। इसके साथ ही खबरों का ये बुलेटिन खत्म हुआ।
1: Good afternoon. This is Akashvani and I am Valsa Williams with the midday news. The headlines. Union Home Minister Amit Shah chairs 28th meeting of Western Zonal Council in Goa. External Affairs Minister Dr. S. Jaishankar holds bilateral meeting with Luxembourg Deputy Prime Minister Xavier Bettel. Says in an era where whole world is worried about uncertainty, India and Luxembourg have a trusted relationship. Death toll in Delhi's building collapse rises to 7. MCD South Zone Deputy Commissioner for Engineers suspended. Enforcement Directorate conducts searches at 7 premises linked to TMC MP Nadeemul Haq's Urdu Daily over money laundering. IMD forecasts heavy rainfall over Bihar, Madhya Pradesh, Eastern Uttar Pradesh, Uttarakhand, West Bengal and parts of Northeast till tomorrow. And in tennis, defending champions Arina Sabalenka and Carlos Alcaraz storm into quarterfinals of US Open. Union Home Minister Amit Shah is chairing the 28th meeting of the Western Zonal Council in Panaji today. The council comprises Goa, Gujarat and Maharashtra along with the union territories of Dadra and Nagar Haveli and Daman and Diu. We have more from our correspondent.
2: Goa CM Pramod Sawant, Gujarat CM Bhupendra Patel and Maharashtra CM Devendra Fadnavis are among those participating in the meeting. Representatives from Dadra and Nagar Haveli and Daman and Diu are also taking part. Issues of common concern between the centre and the states are on the agenda, including matters requiring joint action. After the meeting, Home Minister Amit Shah is scheduled to attend the function for presentation of President's Police Colour to the Goa Police. Nikhil Upadhyay, Akashwani News, Parji.
1: External Affairs Minister Dr. S. Jaishankar has said that in an era where the whole world is worried about uncertainty, India and Luxembourg have a trusted relationship. Dr. Jaishankar said this while meeting Deputy Prime Minister and Minister for Foreign Affairs and Foreign Trade of Luxembourg, Xavier Bettel, in New Delhi this afternoon. Dr. Jaishankar recalled his visit to Luxembourg in the beginning of this year. The External Affairs Minister said, trade, investment, financial cooperation have been at the heart of the relationship.
3: It's a great pleasure to welcome you and your delegation to India. Your visit, along with, I believe, your Minister of Economy, reflects the growing, deepening partnership between us. Ours is a very trusted relationship. It is a relationship we've done a lot, where we have the confidence in being able to do even more. And particularly, I think in terms of supply chain resilience, diversification, and now with the free trade agreement ratification,

0: bed flash floods has reached 1,355. According to the National Disaster Risk Reduction and Management Authority, the highest number of fatalities have been reported in Chitwan, followed by Navalparasi East. In tennis, defending champions Aryna Sabalenka and Carlos Alcaraz have stormed into the quarterfinals of the US Open. In the women's singles round of 16 yesterday, Belarusian top seed Aryna Sabalenka defeated American Taylor Townsend 6-4, 6-3 at Arthur Ashe Stadium. Sabalenka will face Czech player Linda Noskova in the quarterfinals tomorrow. In another round of 16 clash, Spain's Carlos Alcaraz thrashed American Tommy Paul in the pre-quarterfinals at Arthur Ashe Stadium. Benchmark domestic equity indices extended losses during the afternoon session today. The Sensex declined 467 points to 76,049, while the Nifty fell 138 points to 23,760 when reports last came in. And now before we end the bulletin, the headlines once again. Union Home Minister Amit Shah chairs 28th meeting of Western Zonal Council in Goa. External Affairs Minister Dr. S. Jaishankar holds bilateral meeting with Luxembourg Deputy Prime Minister Xavier Bettel, says in an era where whole world is worried about uncertainty, India and Luxembourg have a trusted relationship. Death toll in Delhi's building collapse rises to 7. MCD South Zone Deputy Commissioner for Engineers suspended. Enforcement Directorate conducts searches at 7 premises linked to TMC MP Nadimul Haq's Urdu Daily over money laundering. And with that, we end the midday news.
1: नमस्कार, आकाशवाणी से दोपहर समाचार के साथ मैं कनकलता। गृहमंत्री अमित शाह ने गोवा में पश्चिमी क्षेत्रीय परिषद की 28वीं बैठक की अध्यक्षता की। विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर ने लक्जमबर्ग के उप प्रधानमंत्री जेवियर बेटल के साथ द्विपक्षीय बैठक की। कहा, जब पूरी दुनिया अनिश्चितता से चिंतित है, भारत और लक्जमबर्ग के बीच भरोसेमंद संबंध है। दिल्ली में सत्य निकेतन में इमारत ढहने की घटना में मृतकों की संख्या बढ़कर 7 हुई। एमसीडी दक्षिण जोन के उपायुक्त और 4 इंजीनियर निलंबित। प्रवर्तन निदेशालय ने तृणमूल कांग्रेस सांसद नदीमुल हक के उर्दू दैनिक से जुड़े 7 परिसरों में धन शोधन के आरोप में छापेमारी की। बिहार, मध्य प्रदेश, पूर्वी उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, पश्चिम बंगाल और पूर्वोत्तर के कुछ हिस्सों में कल तक तेज बारिश का अनुमान। और टेनिस में आर्यना सबालेंका और कार्लोस अल्काराज अमरीकी ओपन के क्वार्टर फाइनल में पहुंचे। अब समाचार विस्तार से। गृहमंत्री अमित शाह ने पणजी में पश्चिमी क्षेत्रीय परिषद की 28वीं बैठक की अध्यक्षता की। हमारे संवाददाता ने बताया है कि बैठक में केंद्र और सदस्य राज्यों से जुड़े मुद्दों पर ध्यान केंद्रित किया गया। इसमें समन्वय और संयुक्त कार्रवाई की आवश्यकता वाले मामलों पर विशेष बल दिया गया।
2: बैठक में गोवा के मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत, गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल और महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस शामिल हुए। बैठक में केंद्र और राज्यों से जुड़े कई अहम मुद्दों पर चर्चा हुई। इसके बाद गृह मंत्री अमित शाह गोवा पुलिस को प्रेसिडेंट्स पुलिस कलर यानी राष्ट्रपति पुलिस ध्वज प्रदान करने के समारोह में शामिल होंगे। निखिल उपाध्याय, आकाशवाणी समाचार, पणजी।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल गुजरात और महाराष्ट्र का दौरा करेंगे। वे वडोदरा में 35,000 करोड़ रुपए से अधिक के विभिन्न विकास परियोजनाओं का शिलान्यास और शुभारंभ करेंगे। वे 20,700 करोड़ रुपए से अधिक की लागत से विकसित 326 किलोमीटर लंबे पश्चिमी माल गलियारे के 3 महत्वपूर्ण खंडों को भी राष्ट्र को समर्पित करेंगे। प्रधानमंत्री वडोदरा और टांडा रोड के बीच एक नई रेल सेवा को हरी झंडी दिखाएंगे। इससे वडोदरा, छोटा उदयपुर और अलीराजपुर जिलों के लोगों को लाभ होगा। प्रधानमंत्री मुंबई में ग्लोबल फिनटेक फेस्ट का उद्घाटन करेंगे और सभा को संबोधित करेंगे। उपराष्ट्रपति सीपी राधा कृष्णन ने युवाओं से मादक पदार्थों के दुरुपयोग के खिलाफ दृढ़ रुख अपनाने और नशा मुक्त समाज के निर्माण में सक्रिय योगदान देने का आह्वान किया है। गुवाहाटी विश्वविद्यालय में आयोजित एक कार्यक्रम में छात्रों को संबोधित करते हुए उन्होंने युवा पीढ़ी से मादक पदार्थों के खिलाफ लड़ाई में प्रतिबद्ध रहने का आग्रह किया। उपराष्ट्रपति ने उपस्थित सभी लोगों को नशामुक्त समाज के निर्माण की दिशा में काम करने की शपथ भी दिलाई। उपराष्ट्रपति ने तमिल साहित्य कृतियों का

0: असमिया में अनुवाद करने की विश्वविद्यालय की पहल की प्रशंसा की। उन्होंने गुवाहाटी विश्वविद्यालय में 110 करोड़ रुपए की अवसंरचना विकास परियोजनाओं की आधारशिला भी रखी। विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर ने कहा है कि ऐसे समय में जब पूरी दुनिया अनिश्चितता से चिंतित है, भारत और लग्जमबर्ग के बीच एक मजबूत और भरोसेमंद संबंध है। डॉक्टर जयशंकर ने ये बात आज नई दिल्ली में लग्जमबर्ग के उप प्रधानमंत्री, विदेश मामलों तथा व्यापार मंत्री ज़ेवियर बेटल से मुलाकात के दौरान कही। विदेश मंत्री ने मुक्त व्यापार समझौते को दिए गए मजबूत समर्थन के लिए लग्जमबर्ग का आभार व्यक्त किया।
1: हमारा रिश्ता बहुत भरोसेमंद है। ये एक ऐसा रिश्ता है जिसमें हमने बहुत कुछ किया है और हम आगे भी और अधिक करने का भरोसा करते हैं, खासकर आपूर्ति श्रृंखला की मजबूती, विविधता लाने और भविष्य में मुक्त व्यापार समझौते को मंजूरी मिलने की संभावना के संदर्भ में।
0: डॉक्टर जयशंकर ने इस साल की शुरुआत में अपनी लग्जमबर्ग यात्रा को याद किया। उन्होंने कहा कि हाल के वर्षों में दोनों पक्षों के नेताओं ने कई बार एक दूसरे से बातचीत की है। विदेश मंत्री ने कहा कि व्यापार, निवेश और वित्तीय सहयोग दोनों देशों के संबंधों का आधार रहे हैं। उन्होंने कहा कि दोनों देश अंतरिक्ष, डिजिटल और हरित प्रौद्योगिकियों में सहयोग की संभावनाओं को भी तलाश रहे हैं। डॉक्टर जयशंकर ने कहा कि कोविड महामारी के बाद भारत और लग्जमबर्ग के बीच स्वास्थ्य के क्षेत्र में सहयोग में वृद्धि हुई है। इस अवसर पर श्री बेटल ने कहा कि लग्जमबर्ग का भारत के साथ विश्वासपूर्ण और ईमानदार संबंध है। श्री बेटल 3 दिवसीय भारत यात्रा पर आज तड़के नई दिल्ली पहुंचे। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।
2: अपडेट रहें, आगे रहें। @AIRNewsHindi और Instagram पर AIR News Alerts को फॉलो करें।
0: ये आकाशवाणी है। दिल्ली के मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने सत्य निकेतन में ढही इमारत स्थल का आज फिर दौरा किया और सुरक्षा उपायों तथा जारी बचाव अभियान की समीक्षा की। मुख्यमंत्री ने बताया कि मलबे का 80% हिस्सा दशकों पुराने बहुमंजिले भवन स्थल से हटा दिया गया है। हादसे में मरने वालों की संख्या 7 हो गई है और 3 की हालत गंभीर है। श्रीमती गुप्ता ने कहा कि भवन के मालिक की अनदेखी के कारण ये दुर्घटना हुई।
3: इस बिल्डिंग के मालिक पे कार्रवाई होगी और जो इसके आसपास की जितनी डेंजरस बिल्डिंग है उनको भी आइडेंटिफाइड करके ध्वस्त किया जाएगा। विशेष रूप से इस बिल्डिंग के बिल्कुल पीछे वाली बिल्डिंग को भी हमने खाली करवा दिया है और तुरंत प्रभाव में उसे भी डेमोलिश किया जाएगा।
0: दिल्ली सरकार में मंत्री मनजिंदर सिंह सिरसा ने भी आज दुर्घटना स्थल का दौरा किया। उन्होंने कहा कि राष्ट्रीय आपदा मोचन बल की टीम अभियान में निरंतर काम कर रही है।
4: माननीय मुख्यमंत्री जी ने कमिश्नर साहब को और चीफ सेक्रेटरी साहब को आदेश दिया है, जितने अधिकारी हैं जिनकी जिम्मेवारी थी चाहे वो किसी भी रैंक का, उनको तुरंत सस्पेंड किया जाए, सख्ती से कार्रवाई की जाए। जो बच्चे हैं यहाँ से उनको अकोमोडेट किया गया अलग अलग जगह पर, और आगे के लिए भी जितनी पब्लिक यूटिलिटीज हैं उनको अपना स्ट्रक्चरल ऑडिट देना होगा ताकि ये मन मर्जी से बच्चों की जान के साथ खिलवाड़ ना कर पाए।
0: इस बीच दक्षिण जोन के एमसीडी उपायुक्त राकेश कुमार, अधीक्षण अभियंता रणवीर सिंह, कार्यकारी अभियंता ललित कुमार, सहायक अभियंता सुनील चौहान और एक कनिष्ठ अभियंता को निलंबित कर दिया गया है। भवन मालिक के विरुद्ध प्राथमिकी दर्ज की गई है। दिल्ली के मुख्यमंत्री कार्यालय ने बताया कि दिल्ली में अवैध 5 मंजिला भवनों को तत्काल सील करने के निर्देश जारी किए गए हैं। राष्ट्रीय आपदा मोचन बल के महानिरीक्षक नरेंद्र सिंह बुंदेला ने बताया है कि मलबे की भारी मात्रा के कारण बचाव अभियान शाम तक जारी रहने की संभावना है। आकाशवाणी से विशेष बातचीत में श्री बुंदेला ने बताया कि एनडीआरएफ बचाव अभियान के लिए विशेष और आधुनिक उपकरणों का इस्तेमाल कर रहा है।
5: इसमें मतलब स्ट्रक्चर सर्च एंड रेस्क्यू के ऑपरेशंस में बेसिकली ब्रीचिंग सिस्टम, कटिंग सिस्टम यूज करते हैं, जो है इक्विपमेंट्स है सीमेंट और कंक्रीट काटने के लिए, लिफ्टिंग इक्विपमेंट होते हैं इनको स्लैब्स को रिमूव करने के लिए, इन्फ्लेक्टेबल बैग्स वगैरह भी है जो इस्तेमाल करते हैं, और शोरिंग सिस्टम है कि हाइड्रोलिक शोरिंग है, वुडन शोरिंग है, ये डिपेंड करता है किस तरह का वहाँ पर स्ट्रक्चर है, क्या रिक्वायरमेंट है वो करती है। और डिटेक्शन सिस्टम, इसमें कैनाइन या लाइट डिटेक्टर्स इक्विपमेंट वगैरह हम इस्तेमाल करते हैं।
0: प्रवर्तन निदेशालय ने उर्दू दैनिक अखबार मशरिक और उसके निदेशक तथा तृणमूल कांग्रेस के सांसद नदीमुल हक से जुड़े एक मामले में कोलकाता, दिल्ली और रांची में 7 परिसरों में छापेमारी की है।

0: जांच एजेंसी ने बताया कि यह मामला सांप्रदायिक वैमनस्य को कथित तौर पर बढ़ावा देने संबंधी सामग्री के प्रसार और प्रकाशन तथा अवैध लेन देन के आरोपों से जुड़ा है। राष्ट्रीय हरित अधिकरण के अध्यक्ष न्यायमूर्ति प्रकाश श्रीवास्तव ने कहा है कि स्वच्छ वायु एक मूलभूत आवश्यकता है। नई दिल्ली में आज स्वच्छ वायु दिवस के अवसर पर आयोजित कार्यक्रम में न्यायमूर्ति श्रीवास्तव ने कहा कि स्वच्छ वायु जीवन की गुणवत्ता बनाए रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है।
1: ये उन प्रयासों को पहचानने के लिए है जो पूरे देश में विभिन्न शहरों और वार्डों द्वारा ये सुनिश्चित करने के लिए किए गए हैं कि हवा की गुणवत्ता बनी रहे और प्रदूषक तत्व PM10 तथा PM2.5 का स्तर उन सीमाओं तक नीचे लाया जाए जो नियामकों द्वारा तय की गई है। स्वच्छ हवा सिर्फ एक आकांक्षा नहीं है बल्कि ये एक व्यवहारिक लक्ष्य है जिसे समर्पित प्रयासों, उचित योजना और जमीनी स्तर पर प्रभावी काम के माध्यम से हासिल किया जा सका है।
0: केंद्रीय वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा है कि भारत में चिकित्सा पर्यटन में आर्थिक विकास, रोजगार सृजन और अंतर्राष्ट्रीय सहयोग बढ़ाने की बड़ी क्षमता है। नई दिल्ली में स्वास्थ्य सेवा और कल्याण एक्सपो संजीवनी 2026 में श्री गोयल ने कहा कि भारत अपनी मजबूत चिकित्सा व्यवस्था के जरिए दुनिया की स्वास्थ्य संबंधी जरूरतों को पूरा कर सकता है। उन्होंने कहा कि भारत को उच्च गुणवत्ता, पारदर्शिता और मरीजों की जरूरतों को प्राथमिकता देते हुए वैश्विक स्वास्थ्य सेवाओं के लिए नए मानक स्थापित करने चाहिए। श्री गोयल ने बताया कि पिछले 7 वर्ष में 35 लाख अंतर्राष्ट्रीय मरीजों ने भारतीय स्वास्थ्य सेवाओं का लाभ उठाया है। ये समाचार हमारे न्यूज ऑन EIR ऐप और हमारी वेबसाइट www.newsoneir.gov.in पर भी उपलब्ध हैं।
2: आपको हर खबर से रखे अपडेट expert@airnewshindi और पब्लिक पर @airnewsalerts को फॉलो करें।
0: दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। मौसम विभाग ने बिहार, मध्य प्रदेश, पूर्वी उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, पश्चिम बंगाल और पूर्वोत्तर के कुछ हिस्सों में कल तक मूसलाधार बारिश की संभावना व्यक्त की है। मौसम विभाग ने बताया कि आंध्र प्रदेश, झारखंड, ओडिशा, छत्तीसगढ़ और तमिलनाडु में कल तक गरज और बिजली चमकने की स्थिति बनी रहेगी। आज शाम दिल्ली के कुछ स्थानों पर हल्की बारिश की संभावना है। मध्य प्रदेश में मॉनसून एक बार फिर सक्रिय है। राज्य में अगले 4 दिन तक तेज बारिश का अलर्ट है। एक रिपोर्ट।
3: प्रदेश के ऊपरी हिस्से में बने 2 मॉनसून सिस्टम ने मौसम का मिजाज बदल दिया है। मौसम केंद्र भोपाल ने रीवा और सागर संभाग के 6 जिलों निवाड़ी, टीकमगढ़, छतरपुर, पन्ना, सतना और रीवा में भारी बारिश की चेतावनी जारी की है। वहीं इंदौर, उज्जैन संभाग समेत प्रदेश के करीब 40 जिलों में हल्की से तेज बारिश का सिलसिला जारी रहेगा। बारिश का असर राजधानी भोपाल में भी साफ नजर आया। यहां कलियासोत बांध के 2 गेट एक बार फिर खोलने पड़े। अभिनव गोयल, आकाशवाणी समाचार, भोपाल।
0: बिहार में भी बाढ़ की स्थिति गंभीर है।
4: पटना, भोजपुर, सारण, वैशाली, भागलपुर, मुंगेर, कटिहार समेत 12 जिलों की 10 लाख से अधिक की आबादी बाढ़ की चपेट में है। इधर गंगा के डाउनस्ट्रीम में हाथीदह, बेगूसराय, खगड़िया, मुंगेर और भागलपुर में नदी के रौद्र रूप से भयावह बाढ़ की स्थिति बनी हुई है। पुनपुन और सोन नदी में अभी भी उफान जारी है। पूर्व मध्य रेलवे ने पुनपुन रेल पुल संख्या 21 पर सोन नदी का जलस्तर बढ़ने के कारण आज भी 10 मेमू रेलगाड़ियों के परिचालन को रद्द कर दिया है। इस बीच आपदा प्रबंधन मंत्री रत्नेश सदा ने मुंगेर में बाढ़ की स्थिति की समीक्षा की। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार पूरी तरह सतर्क है और बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में पीड़ितों की हर प्रकार से मदद की जा रही है। आकाशवाणी समाचार के लिए पटना से निधिश्री।
0: उधर नेपाल तिब्बत में आई भीषण बाढ़ से मरने वालों की संख्या बढ़कर 1355 हो गई है। सबसे अधिक मौतें चितवन में 363 हुई है। 26 अगस्त को नेपाल में आई विनाशकारी बाढ़ में जान गंवाने वाले लोगों के लिए आज नेपाल में राष्ट्रीय शोक दिवस मनाया जा रहा है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने आज नई दिल्ली स्थित राष्ट्रपति भवन में वर्ष 2026 डूरंड कप के विजेता टीम वेस्ट बंगाल फुटबॉल क्लब को राष्ट्रपति कप प्रदान किया। टेनिस में आरेना सबालिंका और कार्लोस अल्काराज अमरीकी ओपन के क्वार्टर फाइनल में पहुंच गए हैं। महिला सिंगल्स क्वार्टर फाइनल में बेलारूस की शीर्ष वरीयता प्राप्त आरेना सबालिंका ने अमरीकी खिलाड़ी टेलर टाउनसेंट को हराया। पुरुष सिंगल्स में स्पेन के कार्लोस अल्काराज ने अमरीका के टॉमी पॉल को पराजित किया। भारत ने AFC अंडर 20 फुटबॉल

0: फुटबॉल एशिया कप में प्रवेश कर लिया है। भारत ने ताशकंद में कल अंतिम क्वालिफाइंग मुकाबले में बांग्लादेश को 3-0 से हराकर 20 वर्ष में पहली बार इस प्रतियोगिता में जगह बनाई। एएफसी अंडर 20 एशिया कप अगले वर्ष 24 मार्च से 10 अप्रैल तक चीन में खेला जाएगा। आकाशवाणी का समाचार सेवा प्रभाग आज रात 9:30 बजे फोन इन कार्यक्रम पब्लिक स्पीक में लोक अदालत त्वरित किफायती और सुलभ न्याय विषय पर परिचर्चा प्रसारित करेगा। कार्यक्रम के दौरान श्रोता स्टूडियो में मौजूद विशेषज्ञों से विषय से संबंधित प्रश्न पूछ सकते हैं। टेलीफोन नंबर है 01-2331-4812-3717-1717-1 और 2331-4444। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। गृहमंत्री अमित शाह ने गोवा में पश्चिमी क्षेत्रीय परिषद की 28वीं बैठक की अध्यक्षता की। विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर ने लग्जमबर्ग के उप प्रधानमंत्री जेवियर बेटल के साथ द्विपक्षीय बैठक की। कहा, जब पूरी दुनिया अनिश्चितता से चिंतित है, भारत और लग्जमबर्ग के बीच भरोसेमंद संबंध है। दिल्ली में सत्य निकेतन में इमारत ढहने की घटना में मृतकों की संख्या बढ़कर 7 हुई। एमसीडी दक्षिण जोन के उपायुक्त और 4 इंजीनियर निलंबित। प्रवर्तन निदेशालय ने तृणमूल कांग्रेस सांसद नदीमुल हक के उर्दू दैनिक से जुड़े 7 परिसरों में धन शोधन के आरोप में छापेमारी की। बिहार, मध्य प्रदेश, पूर्वी उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, पश्चिम बंगाल और पूर्वोत्तर के कुछ हिस्सों में कल तक तेज बारिश का अनुमान। और टेनिस में आरना सबालेंका तथा कार्लोस अल्काराज अमरीकी ओपन के क्वार्टर फाइनल में पहुंचे। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
1: हम आकाशवाणी दिल्ली के इंद्रप्रस्थ चैनल से बोल रहे हैं। मीडियम वेव 366.3 मीटर अर्थात 819 किलोहर्ट्ज पर। दोस्तों, आप अपने घड़ी का वक्त मिला सकते हैं और हमारे स्टूडियो घड़ी में वक्त हुआ है 2:30 और 25 सेकेंड और ये वक्त है प्रोग्राम एक ही कलाकार का। आज के हमारे कलाकार हैं बॉलीवुड के जाने माने फिल्म डायरेक्टर और स्क्रीन प्ले राइटर बी आर इशारा।

आकाशवाणी दिल्ली के इंद्रप्रस्थ चैनल पर दोस्तों इस वक्त प्रोग्राम चल रहा है कि कलाकार, जिसमें बात हो रही है बॉलीवुड के जाने माने डायरेक्टर बी आर इशारा की। दोस्तों, बी आर इशारा एक बॉलीवुड के जाने माने डायरेक्टर और साथ में पटकथा लेखक भी थे, जिन्हें खास तौर पर मुख्य रूप से 1970 के दशक की बोल्ड और लीक सेट कर फिल्में बनाने के लिए जाना जाता था। उन्होंने 1964 से 1996 के बीच लगभग 35 बॉलीवुड की फिल्में बनाई और अपनी फिल्में, जिनमें चेतना, लोग क्या कहेंगे, मिलाप, मान जाइए, घर की लाज, वो फिर आएगी, सौतेला भाई, दिल की राहें, मेरे हम सफ़र, दो कैदी, एक नज़र, एक नारी दो रूप और धरती कहे पुकार के जैसी फिल्में थीं। दोस्तों, बी आर इशारा बॉलीवुड के एक पॉपुलर फिल्म मेकर्स में से एक थे और इसके साथ ही वो फिल्म इंडस्ट्री के एक मंझे हुए स्क्रिप्ट राइटर भी थे। 70 के दशक में उन्होंने बॉलीवुड में बोल्ड कंटेंट से धूम मचाई। असल में बी आर इशारा ही वो एक ऐसे डायरेक्टर थे जो कम बजट में बोल्ड फिल्में बनाने का जो ट्रेंड था वो फिल्म इंडस्ट्री में लेकर आए थे। उनकी एक ऐसी पहली सुपरहिट फिल्म चेतना थी जो 1970 में रिलीज हुई। दोस्तों, एक युवा कॉल गर्ल की इस कहानी ने पूरे देश में उस वक्त तहलका मचा दिया था। फिल्म में रेहाना सुल्तान, शत्रुघ्न सिन्हा और अनिल धवन जैसे कलाकार थे। आइए आपको सुनाते हैं इसी फिल्म का गीत मुकेश की आवाज़ में, जैसे लिखा नक्शलाल पुरी ने और संगीत दिया था सपन जगमोहन ने।

आकाशवाणी दिल्ली के इंद्रप्रस्थ चैनल से दोस्तों इस वक्त आप सुन रहे हैं प्रोग्राम एक ही कलाकार और जिसमें आज बात हो रही है पीआर इशारा की। दोस्तों पीआर इशारा जी का जन्म चिंतपूर्णी ऊना हिमाचल प्रदेश में 7 सितंबर 1934 को हुआ। बॉम्बे में अपनी किस्मत आजमाने के लिए घर छोड़ने के बाद वो एक फिल्म डायरेक्टर बन गए, पर यह सब उनके लिए इतना आसान नहीं था। इससे पहले उन्होंने एक फिल्म स्टूडियो में चाय देने तक का काम किया, फिर बाद में फिल्म से जुड़े कुछ छोटे मोटे काम वो करने लग गए। और कुछ उस वक्त के ऐसे डायरेक्टर्स थे जिनको असिस्ट करने की भूमिका तक वो पहुंच गए। उन्होंने बासु भट्टाचार्य के अलावा दुलाल गुहा जैसे फिल्म डायरेक्टर्स को असिस्ट किया। उन्होंने शुरुआत में कई लेखकों की मदद भी की और बाद में वो खुद एक बेहतरीन लेखक बन गए। और दोस्तों आपको बता दें कि बी आर इशारा जी का असली नाम रोशन लाल शर्मा था। फिल्म इंडस्ट्री में आने के बाद उन्होंने अपना नाम बी आर इशारा रखा। दोस्तों अब हम आपको सुनवाते हैं मुकेश की आवाज़ में प्रोग्राम का ये अगला गीत।

और दोस्तों, प्रोग्राम में एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। श्रोताओं, बी आर इशारा जी को बोल्ड और समाज में बर्निंग इश्यूज़ पर फिल्में बनाने के लिए जाना जाता था। उन्होंने हिंदी फिल्मों में बोल्ड फिल्मों की शुरुआत की। ज़रूरत और चेतना जैसी फिल्मों से उन्होंने 8वें दशक के आरंभ में हिंदी फिल्मों के जो पारंपरिक ऑडियंस थे उनको झकझोर दिया। वो अक्सर नए कलाकारों को लेकर बोल्ड फिल्में बनाते थे। दोस्तों, बी आर इशारा जी को एक ऐसे डायरेक्टर के रूप में जाना जाता है जिन्होंने उस दौर में जो स्ट्रगलिंग और न्यू कमर एक्टर एक्ट्रेसेस थे उनको मौका दिया, जिनमें रेहाना सुल्तान, परवीन बॉबी, अमिताभ बच्चन, जया भादुड़ी, रीना रॉय, अनिल धवन, शत्रुघ्न सिन्हा, रजा मुराद, डैनी, विजय अरोड़ा और राज किरण जैसे कलाकारों के करियर के शुरुआती दौर में बहुत बड़े बड़े मौके दिए। और दोस्तों, सुनने में आता है कि एक्ट्रेस परवीन बॉबी को सबसे पहला जो ब्रेक मिला था वो बी आर इशारा जी ने ही दिया था।

दोस्तों, बी आर इशारा जी 70 के दशक के वो फिल्म मेकर थे जिसने इंडियन फिल्म इंडस्ट्री में अपनी फिल्मों से क्रांति ला दी। उन्होंने कम बजट में सामाजिक मुद्दों पर फिल्म बनाने का जो ट्रेंड है वो शुरू किया। उस दौर में वैश्यवृत्ति जैसे मुद्दों पर समाज की सच्चाई को इतने बोल्ड अंदाज में फिल्मों में प्रस्तुत करना अपने समय से काफ़ी आगे माना जाता था। दोस्तों, बी आर इशारा ने रिश्तों, सामाजिक वर्जनाओं और मानवीय भावनाओं की जटिलताओं को फिल्मों में उजागर किया। उन्होंने साल 1972 में अमिताभ बच्चन और जया भादुड़ी के साथ फिल्म एक नज़र बनाई, जिसमें एक युवा कवि वैश्यवृत्ति को मजबूर युवती से विवाह करना चाहता है। और इसी फिल्म का आखिरी गीत जो इस प्रोग्राम का है वो हम आपको सुनवाते हैं, आवाज़ें किशोर कुमार और साथियों की है।

अभी आप सुन रहे थे एक ही कलाकार अनुपम जी के साथ। ये आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है। दोपहर के 3 बज चुके हैं, आइए सुनते हैं प्रोग्राम मैचिनी मेलोडीज। और आपके साथ मैं हूँ आपकी दोस्त एंड होस्ट अंजू पांडे। आप सभी का अभिनंदन स्वागत है।

जी हाँ, हमने तो आपको बुला लिया प्रोग्राम मैटिनी में लेडीज में, और आप कैसे उसमें आ चुके हैं ये इसका पता तो हमें तभी चलेगा जब आप अपने

हम तक पहुंचाएंगे। और संदेश भेजने का तरीका तो आपको भी पता है, मेल के जरिए। मेल भेजने के लिए मेल आईडी की भी जरूरत पड़ती है। हमारे पुराने दोस्तों को तो याद ही हो गई है, लेकिन हमारे जो नए दोस्त हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं, सफर में हम सफर बनना चाहते हैं, उनके लिए हम बता दें हमारी मेल आईडी है ipradiodelhi@gmail.com। और ये जो प्रोग्राम है मैचिनी मेलेडीज, इसमें हम आपके लिए गोल्डन इरा के गीत चुन चुन कर लेकर आते हैं। 1913 में बनी दादा साहब फाल्के की फिल्म राजा हरिश्चंद्र को भारतीय सिनेमा की शुरुआत मान लेना चाहिए, ऐसा कई लोग कहते हैं। कोलकाता में हीरामन सेठ, जो कि फ्लावर ऑफ पार्शिया 1998 की बात है, और महाराष्ट्र में हरिश्चंद्र सखाराम भाटवाड़केकर, ये पहले ही बना चुके थे फिल्में। लेकिन इसी तरीके से 1912 में आरजी टोर्नी ने एक फीचर फिल्म बनाई जिसका वो निर्देशन उन्होंने किया था। लेकिन अगर इन सबको हम भुला दें तो बात नहीं बनेगी, इन सबका योगदान भी मायने रखता है। खैर, शुरुआत हुई जिस तरीके से शायद किसी ने सपने में भी नहीं सोचा था कि आज जो ब्लैक एंड वाइट फिल्म है वो कल रंग बिरंगी हो जाएगी। आज जो चलचित्र एक स्थिर रूप में दिखाई देते हैं, कल उसमें बहुत सारे एनिमेशंस आ जाएंगे। लेकिन कहते हैं कि समय के साथ बहुत कुछ बदल जाता है, कुछ ऐसा ही जलवा, ऐसा ही रूप हमारी फिल्म इंडस्ट्री ने भी देखा। अपने आप को समय के साथ उसने ढाला, बदला, और आज सिनेमा का एक अलग रूप हमारे सामने आया है। लेकिन इस अलग रूप के सामने हम अपने उस पुराने रूप को कभी नहीं भूल सकते, और भूलना भी नहीं चाहिए, क्योंकि जड़ें हमेशा हमारे साथ रहती हैं और साथ देती भी हैं। सुनते हैं एक और खूबसूरत सा गीत।

दोस्तों, हिंदी सिनेमा अकेला था जिसने अखिल भारतीय स्तर पर वर्चस्व स्थापित करने का एक सपना देखा था। ऐतिहासिक कारणों से मुंबई नगरी हिंदी सिनेमा का केंद्र ही नहीं बनी, बल्कि अन्य जो भाषाई सिनेमा है उनके केंद्रों को वो पछाड़ कर आगे भी निकल गई। गैर हिंदी सिनेमा को क्षेत्रीय सिनेमा कहा जाने लगा, ठीक वैसे ही जैसे हिंदी भाषी गैर हिंदी भाषाओं को क्षेत्रीय दर्जा दिया करते थे। और इसी तरीके से जो मुंबई नगरी थी, आज की जो पहले पहले के अगर हम बात करें तो वो बम्बई थी। पहले उसको बम्बई नगरी कहते थे, आज मुंबई नगरी है, जहाँ पर ऐसे ऐसे सितारों ने जन्म लिया, ऐसे ऐसे सितारों ने अपने कला का जलवा बिखेरा कि आज भी वो हजारों करोड़ों लाखों दिलों के चहेते बने हुए हैं।

मुकेश जी, लता और गीता जी की आवाज़ में अभी आपने सुना फिल्म जिस देश में गंगा बहती से एक खूबसूरत सा गीत, और आपके संदेश भी हम तक पहुंच रहे हैं। तेलंगाना निज़ामाबाद से शेख अल्लाबख्श, शेख राविया शेख और शेख रही मुन्ना जी हमारे साथ इस प्रोग्राम में जुड़े हुए हैं। पिपरिया से कमलकांत गुप्ता, दीपा रिमझिम गुप्ता, समडील नवापारा से मुकेश गुप्ता, श्रद्धा अदिति, राधे दीपक जी हमारे साथ हैं, और वीरनगांव गुजरात से जीत भापसर, प्रमिला भापसर जी हमारे साथ हैं और इस प्रोग्राम का आनंद ले रहे हैं। सुदर्शन मुखी, नीता मुखी, सिमरनजीत, शांतिनगर सोनीपत से हमारे साथ हैं। ऊपरकोट मोहल्ला चौखंडी बुलंदशहर से मोहम्मद सैदाबासी, निगत परवीन, शनवास, सरफराज, फरदीन, सुहान, अरजान, अबान और परिवार के सभी सदस्य हमारे साथ जुड़े हुए हैं, बहुत बहुत शुक्रिया। और अगला गीत हमने जो लिया है, फिल्म है दिल अपना और प्रीत पराई, आवाज़ लता मंगेशकर और गीता दत्त की।

दिल अपना और प्रीत पर आई लता जी की आवाज में ये खूबसूरत सा गीत। और ऐसे ही एक से एक गीत हमारे हिंदी सिनेमा में हैं जिन्हें हम कभी भी अपने दिल से नहीं निकाल सकते। और भला निकाल भी क्यों, क्योंकि वो तो हमारे लिए एक अनमोल धरोहर है और धरोहर को सहेज कर रखना तो हमारा फर्ज बनता है। तो बस कोशिश हमारी यही रहती है इस प्रोग्राम में कि आपको हम अपने जो फिल्मी सफ़र है, अपनी फिल्मी दुनिया है, उसके उस दौर में लेके जाएं, वो सुनहरा दौर आप तक फिर से लेकर आएं, वो बातें, वो गीत, वो नगमे आपको फिर से सुनवाएं जिनको दिल सुनने की हमेशा बार बार इच्छा जाहिर करता है। तो उम्मीद करती हूँ कि आज की ये कोशिश एक छोटी सी थी, उस दौर के कुछ गीत मैं आपके लिए लेकर आई हूँ, आपको ज़रूर पसंद आए होंगे। और इस प्रोग्राम में आपको हमेशा इसी तरीके के गीत सुनाई देंगे। एक और खूबसूरत सा गीत मैंने चुना है, फिल्म है फिर सुबह होगी, मुकेश और आशा जी की आवाज़ में।

और दोस्तों, अब वक्त हो रहा है कि मुझे आपसे अनुमति लेनी है। फिर जल्दी ही आपकी और हमारी मुलाकात होगी एक नई फिल्म, एक नए कलाकार और एक नए सफ़र के साथ। तब तक अपनी दोस्त एंड होस्ट अंजू पांडे को अनुमति दीजिए, लेकिन जाते जाते आपको सुनवा रही हूँ आशा जी और मोहम्मद रफ़ी साहब की आवाज़ में फिल्म फागुन से ये गीत।

अभी आप सुन रहे थे प्रोग्राम मैटिनी मेलोडीज, आकाशवाणी दिल्ली का ये इंद्रप्रस्थ चैनल है। 3:30 हुए हैं, आइए सुनते हैं कार्यक्रम उर्दू मजलिस।

हम लोगों ने जब शुरुआत की थी तो टॉलस्टॉय के बारे में पढ़ा था, दोस्तोयेवस्की के बारे में पढ़ा था, तो ऐसा लगता था कि जो लिटरेचर है और जो आपका फ़न है, जो आपकी कोशिशें हैं, इससे समाज बदला जा सकता है, ये सारी चीज़ें समाज पे असरअंदाज होती हैं। लेकिन फिर बहुत सी नई चीज़ें आ गईं और वो असरअंदाज होने लगीं, लेकिन ये जो हमारा यकीन था यानी लिटरेचर में,

0: एक परफॉर्मिंग आर्ट है, लेकिन ड्रामा दरअसल लाता क्या है आप तक। और इसी तरह से जो मास मीडिया है उसमें खबरों के अलावा जो दुनिया में हो रहा है वो तो आपको बताया
1: जी
0: जाता है, उसके अलावा जो चीज़ें आप तक पहुंचाई जाती हैं वो क्या होती हैं, तो या तो मालूमात होती हैं, साइंसी मालूमात होती हैं,
1: मैटर ऑफ फैक्ट।
0: हाँ, या फिर वो लिटरेचर से ही मुतालिक चीज़ें होती हैं। तो वो जो जिसे हम हायर लिटरेचर कहते हैं, वर्ल्ड लिटरेचर, जिसके बारे में कहा जाता है कि जितना असर दुनिया पे मजाहिब का हुआ है, मजहब ने बदला है इंसान को अखलाकियात से लेके और मतलब
1: आदात और अतबार
0: हाँ
1: तमाम
0: हाँ
1: चीज़ें।
0: हाँ तो इसी तरह से जो ग्रेट लिटरेचर है उसने भी दुनिया को बदला है। बल्कि कुछ लोगों का तो ये भी कहना है कि जिसे आज हम मजहब कहते हैं वो कभी ग्रेट लिटरेचर था।
1: जी, तो आपने शुरुआत यहाँ से की कि आप फनकार बनना चाहते थे, आप मुसन्निफ बनना चाहते थे, लेकिन ये सब तो आप हैं,
0: नहीं ये सब नहीं हो पाया।
1: तो आपको
0: देखिए
1: इन इन सब में खासा अमल दखल है, मुझे अंदाज़ा है और दुनिया भी जानती है, लेकिन वो कौन सी कमी है जिससे आपको लग रहा है कि आप ये नहीं हो पाए?
0: देखिए दुनिया तो समझती है कि भाई दानिश इकबाल साहब एक राइटर हैं, लेकिन क्या दानिश इकबाल साहब भी अपने को राइटर समझते हैं? नहीं समझते। तो दानिश इकबाल साहब कोशिशें करते रहते हैं और
1: दानिश
0: वो
1: इकबाल साहब क्यों नहीं समझते?
0: कोशिशें कामयाब होती नज़र नहीं आती। देखिए होता क्या, आपने एक ड्रामा लिखा
1: जी
0: और आप समझते हैं कि आपने बहुत अच्छा ड्रामा लिख दिया, और फिर उसके शोज़ होते हैं, तो 10 शोज़ हो गए, 20 शोज़ हो गए, तो अगर वो बहुत अच्छा होता तो वो अभी भी हो रहा होता।
1: जी
0: अगर उसकी पेशकश नहीं की जा रही है तो इसका मतलब ये कि वो ड्रामा नहीं है जिसकी ज़रूरत थी। और दानिश इकबाल साहब ने जो लिखा और जो आवाम को चाहिए है, जो मुल्क को चाहिए, समाज को चाहिए, उनको शायद कुछ और चाहिए और हम कुछ और दे रहे हैं।
1: जी,
0: तो अब यहाँ पे ये है कि हम तो समझ रहे हैं कि हम कर रहे हैं वो काम,
1: जी
0: लेकिन क्या वो काम हो पा रहा है? क्या हम दानिश इकबाल साहब कभी दोस्तोयेवस्की हो पाएंगे, या अब कोई भी इंसान क्या दोस्तोयेवस्की हो पाएगा?
1: तो जो आपका सब्जेक्ट है, जो आपको सुनने वाले, आपके चाहने वाले, आपके प्रस्तार हैं, उनके रिस्पांस के हिसाब से आप अपनी चीज़ों को जज कर रहे हैं। मैं आपको खुश करने के लिए एक बात कहना चाहता हूँ।
0: जी जी जी फरमाएं।
1: वो ये कि
0: बहुत दिन से हम खुश नहीं हुए हैं,
1: नहीं
0: आज
1: मैं
0: हो जाए
1: आपको ये मौका आज देना चाहता हूँ।
0: जी जी जी नवाजिश।
1: लता और रफ़ी के गाने कई बहुत अच्छे हैं, बहुत प्यारे, बहुत मेलोडियस, बहुत फुल ऑफ मीनिंग, पैशंस, जज्बात हैं, एहसासात हैं, लेकिन वो आज सुने नहीं जा रहे हैं। तो क्या उनकी कीमत और उनकी अफादियत में कहीं कोई सवालिया निशान लगता है? जैसे आप अपने काम कर रहे हैं, हो सकता है एक वक्त में उसकी पजीराई उतनी हो रही हो जितनी आप तवक्को रखते हैं।
0: काश
1: हो
0: काश
1: सकता
0: ऐसा
1: है।
0: हो सके। नहीं देखिए अभी यह है कि लता और मोहम्मद रफ़ी को भी जिस तरह से समाज ने दरकिनार कर दिया है,
1: जी,
0: और जो नई नस्ल है वो उससे कोई भी मीनिंग अक्स करने को तैयार नहीं है। वो मास्टरपीसेस थे
1: जी,
0: और मेरे नज़दीक आज भी हैं और मेरे नज़दीक हमेशा रहेंगे।
1: हुँ.
0: लेकिन जो नए मास्टरपीसेस हैं वो जो पंजाब के सिंगर्स और लड़के लड़कियां कोशिशें
1: जो
0: कर
1: भी
0: रहे
1: वो
0: हैं,
1: स्पोर्ट्समैन हो या बाकी हैं, जो
0: नहीं जिस तरह के म्यूजिक और लिरिक्स लिखे जा रहे हैं
1: जी,
0: मतलब इंटॉक्सिकेटेड हालत में, अब नए दौर
1: ये
0: के
1: बहुत सारे इलाकों में, मेरे ख्याल से इसे हम सिर्फ पंजाब तक महदूद नहीं समझते हैं, बहुत सारे इलाकों में
0: नहीं
1: जो
0: वो हो रहा है, लेकिन पंजाब में वो मोनिटाइज हो चुका है, पंजाब में उससे करोड़ों रुपए कमाए जा रहे हैं।
1: चलिए हम अपनी बात को आगे बढ़ाते हैं। आपने फरमाया कि नई नस्ल की तरबियत उस तरह से नहीं हुई कि वो उन चीज़ों की कदरों का तयन कर सके, तो नई नस्ल की रहनुमाई में आपका भी बहुत बड़ा रोल एक उस्ताद की हैसियत से भी है। तो आप जो नई नस्ल तैयार कर रहे हैं उसमें क्या क्या इनपुट्स आप दे रहे हैं जिससे वो एक मच्योर और फन की कदर को समझने और जानने वाली नस्ल के तौर पर सामने आए?
0: देखिए फिर भी उसमें भी हमें यही कहना चाहिए कि वो भी कोशिशें ही कोशिशें हैं। तो क्या होता है कि आप जब अपने स्टूडेंट्स के साथ होते हैं तो 1 घंटा 1.5 घंटा आप उनके साथ होते हैं, और उस 1 घंटे और 1.5 घंटे में आप उनको बदलना चाहते हैं, और उनको पहले ही बदला जा चुका है उनके स्कूल ने, उनके कॉलेज ने, मैं पोस्ट ग्रेजुएट स्टूडेंट्स
1: माहौल ने
0: को पढ़ाता हूँ
1: जी,
0: तो उनको बहुत कुछ, बहुत सारे लोग उन्हें पहले ही बदल चुके हैं, तो उनके काफ़ी डिस्टॉर्शंस हो चुके हैं। और अब तो हालत यह है कि अगर उनके तलफ़ुस पे आप उनसे कह दें कि ये फिर नहीं, ये फिर होता है
1: जी,
0: तो वो इस पर भी बहस करना चाहते हैं कि आप गलत कह रहे हैं। उनको मैं हमेशा ये कहता हूँ कि ये जो आपने स्क्रिप्ट लिखी, ये जो आपने कहानी लिखी, ये जो आपने स्क्रीन प्ले लिखा, क्या ये वर्ल्ड क्लास है? और वर्ल्ड क्लास का तयन कैसे होगा क्या ये किसी तरह की हैप्पीनेस में इजाफा

0: पकड़ रहा है? क्या ये किसी को सोचने के लिए कुछ दे रहा है? क्या इसके अंदर कोई समाजी हैसियत मौजूद है? तो जो कुछ कदरें हैं कि क्या ये इंसान को किसी बात पे सोचने के लिए मजबूर कर रहा है? अगर दो सवाल भी वो करता है, आपका प्रोडक्शन या आपकी कहानी, और एक और जो आजकल हम कहते हैं बेगडल टेस्ट
1: जी,
0: तो बेगडल टेस्ट ये है कि जितनी भी फिल्में हिंदुस्तान में बनती हैं, क्या उसमें जो भी औरतों के रोल होते हैं वो मर्द कैरेक्टर को आगे बढ़ाने के लिए लिखे जाते हैं, तो क्या एक पूरे प्रोडक्शन में कोई एक औरत 5 मिनट तक अपने साथ होती है, और क्या वो अपने जेंडर की बात कर पाती है या अपनी बात कर पाती? नहीं, वो किसी और की बात कर रही होती है। तो इस तरह की बुनियादी चीज़ें हैं जिससे मतलब हम उन्हें आगाह करने की कोशिश करते हैं कि ये जो रैट रेस है, जिस तरह का कंटेंट अभी बनाया जा रहा है, तो अगर आप उससे अलग नहीं जाएंगे तो आप जैसे नाले में भी बहाव होता है और दरिया में भी बहाव होता है और समंदर में भी
1: जी
0: बहाव होता है, तो आप समंदर तक नहीं पहुँच पाएंगे। अब ये एक ऐसी कोशिश है जो हम लोग किए जा रहे हैं, लेकिन यहाँ पे 2-4 टीचर्स जो पूरा सामाजिक बदलाव है उसके आगे सीना से पर होके तो नहीं खड़े हो सकते,
1: तो लेकिन किसी को खड़े होना होता है।
0: कोशिशें जारी हैं। देखिए इस वक्त मैं अपनी बात नहीं कर रहा हूँ, इस वक्त देखिए इस वक्त सारी यूनिवर्सिटीज में जितने टीचर्स होंगे
1: जी,
0: उनका ये एक स्ट्रगल होगा, अगर वो अदब पढ़ा रहे हैं या वो मास मीडिया पढ़ा रहे हैं
1: जी,
0: या वो परफॉर्मिंग आर्ट्स पढ़ा रहे हैं। मेरा तो खैर इतना मसला नहीं है। आप सोचिए उस आदमी का जो शास्त्रीय संगीत किसी को सिखाने की कोशिश कर रहा है, तो शास्त्रीय संगीत उससे खूबसूरत क्या चीज़ हो सकती है
1: जी?
0: लेकिन वो जो स्टूडेंट है सीखने वाला, तो उसको बहुत से डाउट्स हैं कि मैं क्यों सीखूं इससे, इस तरह के बहुत से मसाइल हैं। लेकिन यह है, ठीक है, जो संगीत है वो तो रूह की ग़िज़ा है, वो आपको अंदर से बहुत कुछ देता है, लेकिन जो बाहर से देने की चीज़ें हैं, जो आपकी सोच को बदलने की चीज़ें हैं, जो लिटरेचर करता है
1: जी,
0: कि आपको एक एस्थेटिक्स देता है, आपको एक ख़ास तरह का हुस्न अता करता है, आपको एक ख़ास तरह की नज़र अता करता है, और आपको एक पीस देता है, और आपको सलामती के रास्ते पे आगे ले जाना चाहता है, और सबसे बड़ी बात कि इंसानियत को एक करके देखता है।
1: बिल्कुल,
0: वरना जो रिडक्शनिज्म आजकल चल रहा है कि बस मैं हूँ, उसके बाद मेरा खानदान, उसके बाद मेरा कम्युनिटी, जात,
1: जो भी उसे जितना फैलाते जाएं,
0: ये जो खाने हैं, तो ये अगर क्या आप पूरी इंसानियत की बात कर रहे हैं तो कौन कर रहा है? जो कंटेंट क्रिएशन करने वाले लोग हैं, जो आने वाले ज़माने में फिल्में लिखने वाले हैं, जो ड्रामे लिखने वाले हैं, जो सीरीज़ लिखने वाले हैं, अगर उनके अंदर ये नज़र होगी तो कुछ मुस्तकबिल में आप उम्मीद कर सकते हैं।
1: जी
0: जी,
1: दानिश इकबाल साहब, आपने कई दहाइयां आकाशवाणी को दी हैं
0: जी,
1: यहाँ बहुत सारे प्रोडक्शंस, बहुत सारे ड्रामे और अलग अलग तरह के, अलग अलग नौइयत के प्रोग्राम्स, जिनके मौजूआत से लेके जिनके स्टाइल तक में बहुत ज़्यादा वैरायटी है, एक तरह का तनव्वो है। तो इन बरसों में आपको बहुत सारे अवार्ड्स से नवाजा गया। आप अपने यहाँ किए गए, आकाशवाणी के लिए किए गए कामों में से किस काम को, किस नौइयत का, और कैसे एक मिसाली तौर पर आप समझते हैं कि उसे आप रिप्रेजेंट कर सकते हैं या उसको आप दिखा सकते हैं, बता सकते हैं?
0: जी जी, देखिए जो भी अवार्ड प्रोडक्शंस होते हैं तो बेसिकली एक जूरी होती है, और जब उसके टेस्ट पे वो चीज़ पूरी उतरती है तो आपको अवार्ड मिल जाता है। तो मेरे वो प्रोग्राम बहुत अच्छे थे जिनको अवार्ड नहीं मिल पाए।
1: अच्छा, ये दिलचस्प है।
0: क्योंकि क्या होता है कि कई बार ऐसा हुआ कि ऐसी चीज़ों को अवार्ड मिल गया कि थोड़ी सी हैरत भी हुई
1: जी।
0: अच्छा, अरे वाह, इसको इस्लाह समझा गया
1: जी।
0: क्योंकि वो प्रोग्राम बहुत ऊपर का नहीं था, तो एक बात तो ये समझ में आती है उन प्रोग्राम से कि जब आप अपने ज़ौक के हिसाब से कंटेंट क्रिएशन करते हैं
1: जी,
0: तो आप थोड़े से एलिटिस्ट होने लगते हैं, और फिर उसको उतना कनेक्ट नहीं मिल पाता। जबकि मैं ये हमेशा मानता था कि जूरी मुझसे बेहतर लोग होते हैं, लेकिन बाद में पता चला कि वो नहीं। तो एक मैंने अमृता प्रीतम की एक मशहूर कहानी का एक प्रोडक्शन किया था, जो कि मैं समझता हूँ कि मेरा शायद सबसे अच्छे प्रोडक्शंस में आता हो। उसे सिर्फ इस वजह से अवार्ड नहीं दिया गया कि उनका, हमारे लाहौर में ऐसी तवायफ़ें नहीं होती थी
1: जी।
0: तो अब ये उनका परसेप्शन था कि तवायफ़ें ऐसी नहीं होती थी उनके लाहौर में, और उनकी उम्र ऐसी नहीं थी कि उन्होंने वो लाहौर देखा था
1: जी।
0: तो सुनी सुनाई बात पर उन्होंने कह दिया, और वो एक बेहतरीन प्रोडक्शन था, लेकिन नहीं हो पाया। खैर, आपका जो बुनियादी सवाल था कि वो कौन कौन सी चीज़ें हैं जो आपको याद आती हैं, देखिए कई बार ऐसा हुआ, जैसे कोसी में बाढ़ आ गई और वहाँ एक ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस हो गया और सैलाब में बहुत सारे लोग जो हैं तबाही हुई, तो हमने वहाँ से कुछ रिकॉर्डिंग मंगाई और उसे जो है एक फीचर बना दिया, डॉक्यूमेंट्री बना दी जो कि रियल लाइफ थी, उसे अवार्ड मिल गया
1: जी।
0: तो अब अगर आप मुझसे पूछें कि क्या ये एक शाहकार था, नहीं था। तो बहुत से ऐसे प्रोडक्शंस होते हैं जिनकी टॉपिकलिटी और वो जो वक्त होता है
1: उस वक्त के अलमिये को अपनी गिरफ्त में ले रहा था ये उस,
0: हाँ मतलब वो उसी वक्त रिलेवेंट होते हैं। तो आज अगर आप डॉक्यूमेंट्री को सुने तो फिर आप सोचेंगे इसको क्यों अवार्ड दिया गया
1: जी,
0: है ना, इसमें क्या ऐसी खास बात थी। तो यहाँ पे जिसे हिंदी में एक बहुत ही खूबसूरत लफ्ज है उसे हम कहते हैं कालजयी रचना
1: जी।
0: कालजयी रचना का मतलब यह हुआ कि वक्त बदल जाएगा लेकिन इसकी रेलिवेंस रहेगी,
1: जो जमाने की तब्दीलियों को नकारते हुए
0: जी, जी, जी, जी,
1: आगे बढ़ती है।
0: तो इस हिसाब से अगर देखा जाए तो मैंने कुरतुलन हैदर के मतलब कहानियों के प्रोडक्शंस किए, मैंने अमृता प्रीतम की कहानियों के प्रोडक्शंस किए, मैंने मंटो की कहानियों के प्रोडक्शंस किए, और मैंने जो जितने भी बड़े वेस्टर्न राइटर्स हैं उन सब की, यानी कि दोस्तोवस्की से लेके और चेखव से लेके, तो मैं समझता हूँ कि ये
1: उर्दू सर्विस के लिए आपने पूरी सीरीज की थी मुझे याद है।
0: जी जी जी, लेकिन ड्रामों की फॉर्म में नहीं की थी, वो जो है वो फीचर्स की शक्ल में थी। लेकिन देखिए मैं उसे अपनी कामयाबी इसलिए समझता हूँ कि एक आम इंसान जो इस वक्त उत्तराखंड में है या गुजरात में है और वो हमारा रेडियो सुन रहा है और उसे नहीं मालूम कि चेखव कौन है और दोस्तोवस्की कौन है, और वो हमारा एक ड्रामा सुनता है, ठीक है, और उसके बाद उसे मालूम होता है कि अरे वाह ये भी एक चीज़ है। तो ये जो पैकेजिंग हम कहते हैं कि जो ग्रेट लिटरेचर को हमने पैकेज किया और उसे आवाम तक लाने का काम, यही मीडिया का काम है। देखिए कि दुनिया में बहुत ही खूबसूरत चीज़ें मौजूद हैं, बहुत ही जैसे आप सुकरात से लेके और अरस्तु से लेके और चाणक्य से लेके और कालिदास से लेके और इकबाल से लेके, मतलब गालिब व मीर, ये सब है, बहुत खूबसूरत है, लेकिन सवाल ये आवाम तक पहुंचेगा कैसे और ये काम कौन करेगा। तो ये काम है कंटेंट क्रिएशन करने वालों का, ये काम है प्रोड्यूसर्स का, डायरेक्टर्स का, ड्रामे वालों का, म्यूजिक वालों का, कि जो हीरे मोती हमारे खजानों में रखे हुए हैं उन्हें आप लाएं और उनको फिर से जो है चमकाएं और उनको फिर से नए फैशन के हिसाब से, जैसे जेवरात बनते हैं, अभी आप नेशनल म्यूजियम जाएं तो आपको राजपूत पीरियड की ज्वेलरी मिल जाएगी, मुगल पीरियड की मिल जाएगी, उन्हीं को अगर आप नई तराश के साथ
1: जी
0: नए अंदाज से अगर पेश करें, तो मैं समझता हूँ इस हिसाब से कुरतुलन हैदर की मशहूर कहानी है कलंदर
1: जी,
0: जो कि सक्सेना साहब की कहानी है, और वो किस तरह से इंटरेक्ट करते हैं, वो एक मैं समझता हूँ उसका प्रोडक्शन बहुत अच्छा है। इसी तरह से जंगली बूटी हमारी अमृता प्रीतम की बहुत मशहूर कहानी है जिसपे एक अवार्ड भी मिला मुझे। इसी तरह एक पंजाबी एक कहानी है बैल जो धरती नीचे, तो एक बाप अपने बच्चे के लिए, ख़ानदान के लिए क्या क्या करता है और कितनी खामोशी से करता है, उस कहानी में इसे बयान किया गया है और बहुत खूबसूरती से बयान किया गया। तो मैं समझता हूँ ये जो प्रोडक्शंस हैं, जो ऐसी कहानियाँ थी जिन्हें लोगों ने नज़रअंदाज कर रखा था, बहुत ज़्यादा तवज्जो
1: उस शक्ल में नहीं आई थी जिसमें आपने उन्हें ढाला।
0: हाँ देखिए ऐसी बहुत खूबसूरत कहानियाँ हैं हर जबान की जो बहुत खूबसूरत हैं, और सिर्फ वो लोग जानते हैं। तो जब मैं प्रोडक्शन करता था और मैं एक्टिव था ड्रामे में, तो मैं देखिए लोगों से पूछता था, हिंदी लिटरेचर वालों से पूछता था, हिंदी साहित्य वालों से, कि इस साल की 3 बेहतरीन कहानियाँ बता दीजिए, ठीक है। उर्दू वालों से पूछता था कि 3 बेहतरीन अफसाने बता दीजिए, और अंग्रेज़ी वालों से पूछता था, और फिर मैं कोशिश करता था कि उन कहानियों को मैं पढ़ूँ, और अगर वो सारा ज़माना कह रहा है कि ये बेहतरीन कहानियाँ हैं तो ये बाकी आवाम तक भी पहुँचनी चाहिए। अब वो कहानी छपी हुई तो नहीं पढ़ेंगे, बहुत से ऐसे लोग हैं जिन्हें पढ़ना नहीं आता, बहुत से ऐसे लोग हैं होममेकर्स हैं, हाँ नहीं नहीं, अब जैसे एक औरत है अपने घर में काम कर रही है और वो कहाँ जाएगी रिसाले पढ़ने और किताबें पढ़ने, तो रेडियो से आ रहा है सुन लेगी। तो इसी तरह से बहुत से लोग हैं जो विजुअली चैलेंज्ड हैं, ऐसे लोग हैं जो किसान हैं, मजदूर हैं या कारीगर हैं, रेडियो बहुत सारे ऐसे लोग सुनते हैं जो बाल काट रहे होते हैं और पूरे टाइम रेडियो सुन रहे होते हैं, या जरदोजी का काम कर रहे हैं और पूरे टाइम। तो हमारे देखिए टारगेट जो है वो लोग हैं जो आम इंसान है। तो इंटेलेक्चुअल्स के लिए कंटेंट क्रिएट करना तो बिल्कुल गुंबद वाली आवाज़ हो गई कि आपने ही आवाज़ लगाई, आप ही ने सुन ली। जी
1: तो ये तो वो काम थे जो आपने किए, अभी पाइपलाइन में क्या क्या है जो आपके मंसूबों में है और जिसे अमली जामा पहनाने के लिए आप मशक्कत कर रहे हैं, वो क्या चीज़ें हैं?
0: जी इसके जवाब में एक लंबी आह मुझे भरनी चाहिए थी।
1: लेकिन दूसरी
0: आपने बहुत ही ज़ालिम सवाल कर लिया है, तो इससे क्या होगा कि वो सारे दुख दर्द जो हैं बाकी दुनिया तक पहुंच

0: जाएंगे।
1: ना करदा गुनाहों की भी हजरत की मिले दाल।
0: जी जी जी। तो देखिए कोशिशें तो इंसान क्या करता है, पूरी उम्र कोशिशें करता है। और बहुत से लोग समझते हैं कि साहब वो फला साहब बड़े कामयाब हैं, लेकिन आप उन साहब से पूछिए तो वो उन्हीं ने जितनी कोशिशें की उसमें से 5% ही कामयाबी तक पहुंचती हैं। तो हम लोग बहुत से ख्वाब देखते रहते हैं। सबको मालूम है कि बॉलीवुड बहुत कामयाब चीज़ है और बहुत खूबसूरत है। तो अब मेरा इरादा है कि जो गोल्डन पीरियड था हमारा म्यूज़िक का और हमारी फिल्मों का, यानी कि बरुआ से लेके और बिमल रॉय से लेके और गुरुदत्त और महबूब खान और राज कपूर, इस तरह के लोग, इवन कमाल अमरोही, तो इस पीरियड को पैकेज किया जाए और ड्रामे लिखे जाएं, स्टेज पे जो है वो पेश किए जाएं और उसको रिक्रिएट किया जाए। तो जैसे अभी मेरा एक प्रोडक्शन नूर जहाँ पे जा रहा है
1: जी।
0: तो इसी तरह से मैंने मीना कुमारी, मधुबाला, राज कपूर, गुरुदत्त, तो इसमें क्या है कि जो ड्रामे की टेक्निक है वो ड्रामा भी है और वो हमारी कल्चरल हिस्ट्री भी है। तो ये एक तरह का कन्वर्जेंस है। और इसमें यह है कि हो सकता है भाई आपको लिटरेचर में इंटरेस्ट ना हो, आपको शायरी में इंटरेस्ट ना हो, लेकिन आपको फिल्मों में इंटरेस्ट
1: जी।
0: तो हमारा पूरा मुल्क तो देखिए फिल्म ऑब्सेस्ड है और क्रिकेट ऑब्सेस्ड है, तो क्रिकेट के ड्रामे तो करना बहुत मुश्किल है। तो इसलिए ये एक नया जॉनरा क्रिएट करने की कोशिश कर रहा हूँ। और जहाँ पर ड्रामे नहीं मुमकिन हो पाते हैं तो वहाँ पर हम क्या करते हैं कि वही बात दास्तान को दो लोग बैठ के सुना देते हैं, और अगर बजट अच्छा होता है तो उसके साथ कुछ साजिंदे बैठ जाते हैं, सिंगर बैठ जाते हैं, गा लेते हैं। बजट और अच्छा है तो हम डांसर्स को शामिल कर लेते हैं और वो प्रोडक्शन और खूबसूरत हो जाता है,
1: उसका ज़्यादा हो जाता है।
0: लेकिन हमारा बुनियादी काम तो देखिए कम्युनिकेशन का है, तरसील का है कि जो वो माहौल था, जो बातें थीं, वो ज़ौक जो है लोगों में बचा रहे और सलामत रहे। इस तरह के बहुत से ईजी प्रोडक्शन हमने कर दिए हैं। अब यह है कि देखिए आजकल ड्रामा बहुत महंगी चीज़ हो गई है और 1,00,000 रुपए से कम में ऑडिटोरियम नहीं मिलता
1: जी।
0: तो जब आपका पहला शो होता है तो आप 4,00,000 रुपए कर चुके होते हैं। अगर आप सारे टिकट बेचते हैं तो आपको 40-50,000 रुपए आते हैं, तो भी आप 3.5 लाख के नुकसान में होते हैं
1: जी।
0: तो ये घर पूख तमाशा देखने वाली बात है। इसलिए क्या किया है कि भाई इसे स्टोरी टेलिंग की फॉर्म में कर दिया। दास्तान गोई में क्या है, ज़्यादा आपको वो नहीं चाहिए, आपको सेट नहीं चाहिए, तो आप बैठिए, और आपको वो ऑडिटोरियम भी नहीं चाहिए
1: जी।
0: आप दीवान खाने में, आप ड्राइंग रूम में, लिविंग रूम में आप उसे पेश कर सकते हैं, स्कूल में पेश कर सकते हैं, किसी छोटी महफिल में कर सकते हैं, आप ऑडिटोरियम में भी कर सकते हैं। तो इस तरह के जो फॉर्मेट्स हैं इन पे कोशिश कर रहा हूँ। और ये है कि मैंने ये इस बात को महसूस किया कि जैसे हम लोग कहते हैं कि एक जवाल आमादा मुआशरा है और हमारी सारी चीज़ जवाल पे हैं और चीज़ें छूट रही हैं, पीछे जा रही हैं और हम कुछ नहीं कर पा रहे हैं, तो यही क्राइसिस म्यूज़िक वालों का है
1: जी,
0: यही क्राइसिस डांस वालों का है। तो अभी मैंने कई आर्टिस्टों से जब बात की तो हमने रियलाइज़ किया कि अब सीधा डांस भी नहीं पॉपुलर हो सकता है, सीधा म्यूज़िक भी नहीं, उसमें जब तक आप स्टोरी टेलिंग नहीं करेंगे
1: जी,
0: उसके अंदर कोई कहानी नहीं है, वो कुछ कहता नहीं है। इससे पहले क्या था कि कथक जो है अपने उससे कहता
1: भाव
0: था,
1: से,
0: भाव से कहता था, समझने वाले लोग मौजूद थे तो वो समझ लेते थे, लेकिन अब ज़रूरत है इस बात की है कि कथक के साथ जो है एक स्टोरी टेलिंग का फॉर्मेट भी शुरू किया जाए। तो ये मंजरी चतुर्वेदी हैं, उनके साथ हमने बहुत से प्रोडक्शंस किए हैं और दिल्ली के जितने भी लीडिंग सिंगर्स हैं, डांसर्स हैं
1: जी,
0: तो उनके साथ एक कोलैबोरेशन की कोशिश कर रहा हूँ ताकि एक थोड़ा सा इकोसिस्टम जनरेट हो।
1: दास्तानों का सिलसिला उसी तरह चल रहा है या
0: दास्तानों का भी चल रहा है?
1: की है
0: नहीं, दास्तानों का अच्छा चल रहा है। इसमें यह है कि अगर आप एक फेस्टिवल कर रहे हैं, अदबी फेस्टिवल कर रहे हैं, तो क्या होता है कि आपने एक डिस्कशन रख दिया, एक मुशायरा रख दिया, तो वैरायटी नहीं होती, तो थोड़ा सा वो वैरायटी भी चाहिए, एंटरटेनमेंट भी चाहिए, और ड्रामा एक बड़ा फॉर्मेट है तो वो बजट नहीं होता है, तो उसमें क्या है उसी पैकेज में दास्तान कोई आसानी से फिट हो जाती है। और इसमें यह है कि आप शेर व अदब से लेके और तारीख से लेके और तहजीब तक
1: तमाम चीज़ों
0: सारी चीज़ों को आप छू सकते हैं, लेकिन उसमें जितना डिवोशन चाहिए, जितना डेडिकेशन चाहिए, उस लेवल के आर्टिस्ट मिलना बहुत मुश्किल है। तो यही वजह है कि फॉर्मेट अच्छा है और उसकी पजीराई भी अच्छी हो रही है, लेकिन उसमें ग्रोथ नहीं हो पा रही है क्योंकि देखिए नई दास्तान लिखना बहुत
1: वैरायटी नहीं आ रही है उसमें।
0: नहीं, ज़्यादातर लोग तो पुरानी चीज़ें सुना देते हैं, तो उससे क्या समाज को मिल रहा है, उससे ये मालूम होता है कि हाँ भाई तब पिद्रम सुल्तान बूद जो है एक ज़माना था, सब कुछ बहुत अच्छा था। तो सवाल यह है कि आज के ज़माने की चीज़ें उसी अंदाज से अगर पेश की जाएं तो फॉर्मेट वो हो, कंटेंट आज का हो
1: जी, जी।
0: तो हमें दास्तान गांधी से लेके, दास्तान मीना कुमारी से लेके, दास्तान मधुबाला से लेके, आप जो कहें वो हम क्रिएट कर सकते हैं। मैं काफ़ी दिनों से अम्बेडकर पे काम कर रहा हूँ,

0: जी
1: तो बहुत जल्दी इस बात की भी तवक्को है कि हम उनकी दास्तान भी लोगों को सुना सकेंगे।
0: जी तो ये बाबा साहब पे आप काम कर रहे हैं और साथ ही आप मौलाना आजाद पर भी काम कर रहे हैं जहां तक मुझे
1: जी जी
0: इत्तला है।
1: मौलाना आजाद पे देखिए ड्रामा पहले से मौजूद है, हमारे टॉम अल्टर साहब करते थे, तो ड्रामा तो हमने छोड़ दिया बिकॉज वो तो पहले से एक हिट
0: जी
1: ड्रामा मौजूद है और अभी सईद आलम साहब उसे करते हैं। तो मैंने इस बात को महसूस किया कि हमारी जो नई नस्ल है, जो हमारे लड़के लड़कियां हैं, जब वो इंटरनेट पे ढूंढते हैं तो उन्हें हमारे अकाबरीन में से कोई ऐसी चीज़ नहीं मिलती जिससे कुछ इंस्पिरेशन ले सकें, और ऐसे बहुत कम लोग हैं जिनका एक्सेप्टेंस अक्रॉस द स्पेक्ट्रम मौजूद हो। तो ऐसे बहुत कम लोग हैं, जैसे आप गालिब कहेंगे तो साहब एक ज़बान के हैं, उर्दू के हैं, आप किसी और का नाम लीजिए तो पता चलेगा ना वो एक रीजन के हैं। तो अल्लामा इकबाल हैं जैसे, अब वो बड़े अहम हैं लेकिन आजकल ये है कि भाई
0: जी
1: वो एक ज़बान
0: बहुत
1: हो बल्कि
0: सारे
1: एक इलाके के हो
0: सिंबल्स
1: गए हैं।
0: जी
1: तो एक ऐसी शख्सियत को ढूंढ पाना जिसका इम्पैक्ट हो और उसे कश्मीर से कन्याकुमारी तक लोग जानते हों, नॉर्थ ईस्ट से लेकर गुजरात तक जानते हों, ऐसा कौन हो सकता है? तो मेरी समझ में आया कि मौलाना आज़ाद इस तरह की शख्सियत हैं जिनकी एक अदबी अहमियत भी है और उनकी एक सियासी अहमियत भी है, और ही वॉज़ ए नेशन बिल्डर। आज़ादी के बाद जो हमारा पूरा तालीमी निज़ाम है उसमें उनका बहुत कंट्रीब्यूशन है।
0: जो
1: उसके
0: बहुत
1: अलावा
0: सारी
1: वो,
0: एकेडमीज हैं।
1: हाँ उसके अलावा वो एक रिफॉर्मर भी थे,
0: जी
1: और जो उनका रिलीजियस मत उसका भी एक बहुत अच्छा स्पेक्ट्रम मौजूद है कि उन्होंने रिफॉर्म करने की कोशिश की, जैसे राजा राम मोहन राय ने रिफॉर्म करने की कोशिश की, ऐसे ही मौलाना आज़ाद ने भी अपने लेवल पे एक रिफॉर्मेशन किया। अब उसे वही लोग जानते हैं जो उस तरह की फिक्र से उनका तारुफ है, जानते
0: जी
1: हैं, तो अब ये बातें लोगों को मालूम नहीं है। तो अब हम कहें अफसोस इस बात पे करते रहें कि लेकिन लोग जानते नहीं, तो हमारी जिम्मेदारी है कि हमने क्या कोशिश की लोगों को बराबर करने की और बताने की। तो मैं समझता हूँ कि हम में से हर इंसान का ये फ़र्ज़ है कि जो भी थोड़े से चमकदार रोशन गोशे हैं, लम्हे हैं, वाक़यात हैं, शख्सियात हैं, तो उनके बारे में बात की जाए और पीछे मुड़ के उन्हें देखा जाए। तो एक बड़ा प्रोजेक्ट है और मैं एक साल की छुट्टी ले रहा हूँ जिसके लिए,
0: अभी
1: और
0: शुरुआत इसकी होना बाकी है।
1: इसकी शुरुआत तकरीबन हो चुकी है, मतलब बीज लगा दिया है लेकिन गमले में है अभी, समझे? तो जब ये इसमें से कल्ले फूटेंगे, अंकुर निकलेंगे, तो उम्मीद ये है कि एक साल हम इसे शूट करेंगे। जहाँ जहाँ उनके कदम पड़े हम वहाँ जाएंगे, जिस जेल में वो रहे हम वहाँ जाएंगे, जहाँ उनका घर था, जहाँ उनके साथी थे, तो वो सारी चीज़ें डॉक्यूमेंट की जाएंगी। और हम ड्रामे की फॉर्म में, जैसे गांधी है अटनबरा साहब की बहुत अहम फिल्म है, तो उस लेवल की फिल्म तो नहीं बना सकते क्योंकि उसमें बहुत ज़्यादा खर्चा होता है जब हम ड्रामे की फॉर्म में किसी चीज़ को पेश करते
0: जी,
1: हैं।
0: वो एक बड़े बैनर का काम मुख्तलिफ ही होता है।
1: बैनर तो कभी इन चीज़ों में दिलचस्पी लेते नहीं हैं,
0: जी,
1: ठीक है?
0: बिल्कुल
1: तो अब यह है कि हम इसे डॉक्यूमेंट्री की ही फॉर्म में कर सकते हैं, तो
0: बेहतर।
1: इसमें एक ही किरदार होने वाला है और वो मौलाना आज़ाद हैं, और मौलाना आज़ाद में भी उन्हीं की आवाज़ होने वाली है, उन्हीं की तहरीरों से ही वो पूरी डॉक्यूमेंट्री निकाली जाएगी। यानी हम एक लफ्ज़ भी नहीं लिखना चाहते,
0: बहुत खूब।
1: उन्हीं
0: उन्हीं
1: तहरीरों
0: के अदा
1: से,
0: किए गए लफ्जों से
1: उन
0: एक
1: जी
0: एक
1: उनका
0: मुजस्समा
1: नैरेटिव।
0: उनका तैयार करेंगे आप,
1: जी जी जी जी
0: और उससे आपकी बात,
1: आपने
0: आपका
1: इस बात
0: मैसेज
1: को ज़्यादा खूबसूरती से कह
0: पहुंच जाएगा। नहीं,
1: दिया।
0: यकीनन इसे आप मजीद
1: जी जी
0: खूबसूरती से कहने वाले हैं, तो मैंने ये मौका पहले ग्रैब किया।
1: जी जी काश हम कह सकें। देखिए तसव्वुर जब आप किसी चीज़ का करते हैं हर चीज़ बहुत खूबसूरत लगती है, लेकिन जब वो उस पर पहुँचती है एडिटिंग टेबल पे तो वो कितनी अच्छी होती है ये तो
0: तो
1: वक्त ही बताता
0: इस
1: है।
0: खूबसूरती को तकमील तक पहुंचाने के लिए मेरी नेक ख्वाहिशात आपके साथ हैं, और मैं चाहता हूं कि ऐसी तमाम हस्तियां जो रही हैं, ऐसी तमाम शख्सियात, ऐसे तमाम वाकयात जिनको आप अपने तौर पर नज़्म करना चाहते हैं किसी भी हयात में, किसी भी शक्ल में, आप उसमें कामयाब हों, आपकी मेहनतें रंग लाएं। बहुत बहुत शुक्रिया आपका
1: इसमें
0: इस
1: सिर्फ यह है
0: कीमती
1: कि
0: वक्त के
1: आपने
0: लिए।
1: ख्वाहिश का इजहार किया, अगर आप दुआ कर देते और आपके सभी सुनने वाले भी दुआ कर देते तो शायद कुछ हो
0: अगर मुझे
1: जाता।
0: यकीन होता कि कबूल हो जाएगी तो मैं यकीनन करता।
1: कोशिश तो इंसान को करनी चाहिए जैसे हम कर रहे
0: जी,
1: हैं,
0: मैं
1: तो
0: भी दुआ
1: आप
0: कर रहा हूं कि आप कामयाब
1: भी।
0: हो। बहुत शुक्रिया।
1: नवाजिश।
2: सामीन, अभी आप प्रोफेसर दानिश इकबाल से की गई बातचीत सुन रहे थे। आपसे महवे गुफ्तगू थे जनाब नौमान शौक। इसी के साथ आज का उर्दू मजलिस प्रोग्राम अब यहीं ख़त्म होता है। अपनी मेज़बान नसरीन बेगम को दीजिए इजाज़त। खुदा हाफिज़।

0: अभी आप सुन रहे थे प्रोग्राम उर्दू मजलिस, ये आकाशवाणी का इंद्रप्रस्थ चैनल है। ये आकाशवाणी का इंद्रप्रस्थ चैनल है। शाम के 4 बजने को हैं, कुछ ही देर में समाचार प्रसारित किए जाएंगे।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं मुकेश कुमार। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने पणजी में पश्चिमी क्षेत्रीय परिषद की 28वीं बैठक की अध्यक्षता की। हमारे संवाददाता ने बताया कि बैठक में केंद्र और सदस्य राज्यों से जुड़े मुद्दों पर ध्यान केंद्रित किया गया।
2: इस बैठक में गोवा के मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत, गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल और महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस शामिल हुए। बैठक में केंद्र और राज्यों से जुड़े कई अहम मुद्दों पर चर्चा हुई। इसके बाद गृह मंत्री अमित शाह गोवा पुलिस को प्रेसिडेंट्स पुलिस कलर यानी राष्ट्रपति पुलिस ध्वज प्रदान करने के समारोह में शामिल होंगे। निखिल उपाध्याय, आकाशवाणी समाचार, पणजी।
1: विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने कहा है कि ऐसे समय में जब पूरी दुनिया अनिश्चितता से चिंतित है, भारत और लग्जमबर्ग के बीच मजबूत और भरोसेमंद संबंध हैं। डॉक्टर जयशंकर ने आज ये बात नई दिल्ली में लग्जमबर्ग के विदेश मंत्री जेवियर बेटल से मुलाकात के दौरान कही। विदेश मंत्री ने मुक्त व्यापार समझौते को दिए गए मजबूत समर्थन के लिए लग्जमबर्ग का आभार व्यक्त किया। डॉक्टर जयशंकर ने इस वर्ष के शुरू में अपनी लग्जमबर्ग यात्रा का स्मरण किया। उन्होंने कहा कि हाल के वर्षों में दोनों पक्षों के नेताओं ने कई बार बातचीत की है। विदेश मंत्री ने कहा कि व्यापार, निवेश और वित्तीय सहयोग दोनों देशों के संबंधों का आधार रहे हैं। इस अवसर पर श्री जेवियर बेटल ने कहा कि लग्जमबर्ग का भारत के साथ विश्वासपूर्ण और ईमानदार संबंध है। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने नई दिल्ली के सत्य निकेतन में ढही इमारत स्थल का आज फिर दौरा किया। मुख्यमंत्री ने बताया कि मलबे का काफी हिस्सा दशकों पुराने बहुमंजिले भवन स्थल से हटा दिया गया है। श्रीमती गुप्ता ने कहा कि भवन के मालिक की अनदेखी के कारण ये घटना हुई। मुख्यमंत्री ने कहा कि जिन अधिकारियों की अनदेखी के कारण ये दुर्घटना हुई है, उन्हें तुरंत निलंबित किया जाएगा।
3: इस बिल्डिंग के मालिक पे कार्रवाई होगी और जो इसके आसपास की जितनी डेंजरस बिल्डिंग है उनको भी आइडेंटिफाइड करके ध्वस्त किया जाएगा। विशेष रूप से इस बिल्डिंग के बिल्कुल पीछे वाली बिल्डिंग को भी हमने खाली करवा दिया है और तुरंत प्रभाव में उसे भी डेमोलिश किया जाएगा।
1: इस बीच पुलिस ने इमारत के मालिक हरिराम गुप्ता को राजस्थान की भिवाड़ी से गिरफ्तार कर लिया है। मुख्यमंत्री कार्यालय ने बताया कि दिल्ली में अवैध 5 मंजिला भवनों को तत्काल सील करने के निर्देश दिए गए हैं। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन ने युवाओं से मादक पदार्थों के दुरुपयोग और नशा मुक्त समाज के निर्माण में सक्रिय योगदान देने का आह्वान किया है। गुवाहाटी विश्वविद्यालय में उपराष्ट्रपति ने आज उपस्थित सभी लोगों को नशा मुक्त समाज के निर्माण की दिशा में काम करने की शपथ भी दिलाई। श्री राधाकृष्णन ने कहा कि शैक्षिक संस्थानों का उद्देश्य सिर्फ अपनी रैंकिंग बढ़ाना नहीं बल्कि समाज में भी परिवर्तन लाने में योगदान देना है। उपराष्ट्रपति ने विश्वविद्यालय में 110 करोड़ रुपए की अवसंरचना विकास परियोजनाओं की आधारशिला भी रखी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने केंद्रीय शिक्षा राज्य मंत्री जयंत सिंह को लिखे एक लेख को सोशल मीडिया पर साझा किया है। श्री मोदी ने कहा कि शिक्षक शिक्षा के कलाकार शीर्षक वाले इस लेख में जयंत सिंह ने बताया है कि शिक्षण एक कला और रचनात्मक कार्य है। इसके लिए मानवीय जुड़ाव, शिक्षण पद्धति और विद्यार्थियों की क्षमताओं को पहचानने की क्षमता जरूरी है। लेख में श्री सिंह ने यह भी बताया कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 उल्लास, विद्यांजलि और कई अन्य पहलें शिक्षण और सीखने की प्रक्रिया को मजबूत कर रही हैं। साथ ही हर शिक्षक के राष्ट्र निर्माण में योगदान को भी मान्यता दी जा रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल गुजरात और महाराष्ट्र की यात्रा पर रहेंगे। वडोदरा में प्रधानमंत्री 35,000 करोड़ रुपए से अधिक की विभिन्न विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास करेंगे। श्री मोदी 20,700 करोड़ रुपए से अधिक की लागत से विकसित 326 किलोमीटर लंबे पश्चिमी समर्पित माल गलियारे के 3 महत्वपूर्ण खंडों का भी लोकार्पण करेंगे। प्रधानमंत्री मुंबई में ग्लोबल फिनटेक फेस्ट 2026 का उद्घाटन करेंगे और एक जनसभा को संबोधित करेंगे। प्रवर्तन निदेशालय ने उर्दू दैनिक अखबार मशरिक और उसके निदेशक तथा तृणमूल कांग्रेस

0: The Prime Minister will also flag off freight train services from New Sanand North, New Makarpura, New Umbergaon and New JNPT Mumbai. The IMD has forecast heavy rainfall over Bihar, Madhya Pradesh, eastern Uttar Pradesh, Uttarakhand, West Bengal and parts of northeast India till tomorrow. The Met Department said that thunderstorms and lightning conditions will continue over Andhra Pradesh, Jharkhand, Odisha, Chhattisgarh and Tamil Nadu till tomorrow. Benchmark domestic equity indices ended 0.5% lower today. The Sensex declined 383 points to close at 76,133, while the Nifty shed 119 points to settle at 23,779. And that is the end of this news bulletin.
1: ये आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है. मीडियम वेव 366.3 मीटर अर्थात 819 किलो हर्ट्स, डीआरएम 810 किलो हर्ट्स पर. स्टूडियो की घड़ी में इस वक्त 4:10 हुए हैं. आइए आपको जानकारी देते हैं गुमशुदा व्यक्तियों के बारे में. खोई हुई महिला का पूरा नाम आसमीन है. ये यूसुफ की पत्नी है. इन्हें अंतिम बार पेनोसिस सोसाइटी सेक्टर 70 में देखा गया. इनकी आयु 28 वर्ष है. शरीर की बनावट औसत है एवं कद 5 फीट 4 इंच है. यह बिना बताए अपने घर से कहीं चली गई हैं. इनके बारे में अधिक जानकारी के लिए आप प्रभारी निरीक्षक थाना फेस 3 नोएडा, कमिश्नरेट गौतम बुद्ध नगर से संपर्क कर सकते हैं. अज्ञात पुरुष का नाम पता मालूम नहीं. इन्हें अंतिम बार ईस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेसवे पर ग्राम बम्बावड़ के पास देखा गया. इनकी आयु करीब 50 वर्ष है. इखरा शरीर है एवं कद करीब 5 फीट है. इनके बारे में अधिक जानकारी के लिए आप थाना बादलपुर, कमिश्नरेट गौतम बुद्ध नगर से संपर्क कर सकते हैं. एक अज्ञात पुरुष का शव मिला है. इन्हें अंतिम बार सेक्टर 55 नोएडा के गेट नंबर 6 के पास नाले में दिनांक 19 अगस्त 2026 को देखा गया. इनकी आयु करीब 45 वर्ष है. कद 5 फीट 5 इंच है. शरीर की बनावट मजबूत है एवं चेहरे की बनावट गोल है. इनके बारे में अधिक जानकारी के लिए आप सेक्टर 55 नोएडा के नज़दीकी पुलिस स्टेशन से संपर्क कर सकते हैं. अज्ञात मृतक पुरुष का नाम रिंकू चौहान है. निवासी अघापुर सेक्टर 41 नोएडा. इन्हें अंतिम बार 21 अगस्त 2026 को दिन शुक्रवार जिला अस्पताल सेक्टर 39 में देखा गया. मृतक शराब के नशे में नाली में गिर गया, जिसके कारण उनके सर पर आई चोट के वजह से इलाज के दौरान उनकी मृत्यु हो गई. इनकी आयु लगभग 30 वर्ष की है. कद 5 फीट 5 इंच. इखरा शरीर है एवं चेहरे का रंग सांवला है. इनके बारे में अधिक जानकारी के लिए आप प्रभारी निरीक्षक थाना सेक्टर 39 गौतम बुद्ध नगर से संपर्क कर सकते हैं. अज्ञात शव का नाम जितेंद्र है. इन्हें अंतिम बार 26 अगस्त 2026 को खोड़ा रोड नियर विशाल मेगा मार्ट के पास देखा गया. इनकी आयु करीब 35 वर्ष है. कद लगभग 5 फीट 6 इंच. इखरा शरीर है. गोल चेहरा है. लंबे घने काले व घनी काली दाढ़ी है. इनके बारे में अधिक जानकारी के लिए आप प्रभारी निरीक्षक कोतवाली सेक्टर 58 नोएडा जनपद गौतम बुद्ध नगर से संपर्क कर सकते हैं. अज्ञात मृतक पुरुष का नाम पता मालूम नहीं. इन्हें अंतिम बार दिनांक 12 अगस्त 2026 को ईस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेसवे पर सड़क दुर्घटना में मृत पाया.

गया। इनकी आयु लगभग 37 वर्ष है। कद 5 फीट 5 इंच। इखरा शरीर है, रंग सांवला है। इनके बारे में अधिक जानकारी देने वाले को 2000 रुपये की शुल्क राशि पुरस्कार स्वरूप दी जाएगी। इनके बारे में और अधिक जानकारी के लिए आप प्रभारी निरीक्षक कोतवाली धनकौर गौतम बुद्ध नगर से संपर्क कर सकते हैं। अज्ञात मृतक पुरुष का नाम पता मालूम नहीं। इन्हें अंतिम बार धनकौर रेलवे स्टेशन के पास दिनांक 3 अगस्त 2026 को रात्रि 12:25 पर मृत हालत में पाया गया। इनकी आयु लगभग 45 से 50 वर्ष की बताई जा रही है। इन कद 5 फीट 6 इंच है लगभग। सर के बाल हल्के काले सफ़ेद रंग के हैं और इनके बाजू पर काले सफ़ेद रंग का फूल बना है। इनके बारे में अधिक जानकारी के लिए आप थाना अलीगढ़ जंक्शन मोबाइल नंबर 9756679201 पे संपर्क कर सकते हैं। मोबाइल संख्या एक बार फिर से 9756679201। और अंत में अज्ञात पुरुष का नाम पता मालूम नहीं। इन्हें अंतिम बार दिनांक 13 अगस्त 2026 को समय 5:45 पर पहला गोल चक्कर सेक्टर 10 के पहले देखा गया। इनकी आयु करीब 40 वर्ष की है। शरीर की बनावट औसत है। चेहरे का रंग गेहुआ है। इनके बारे में अधिक जानकारी के लिए आप थाना सेक्टर 113 नोएडा से संपर्क कर सकते हैं। गुमशुदा व्यक्तियों के बारे में सूचना समाप्त हुई। यह आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है। आइए सुनते हैं कार्यक्रम युववाणी।

0: आसमान का रंग अब करवट लेने लगा है। वो भारी बरसात की बूंदें अब मध्यम हो चली हैं। मॉनसून विदा ले रहा है और शाम की हवा में एक हल्की सी अंगड़ाई, एक नया सुकून घुलने लगा है। नमस्कार श्रोताओं, मैं हूं आपकी होस्ट अमेया।
1: और मैं हूं आपकी को होस्ट उन्नति। और युववाणी के इस कार्यक्रम में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज तारीख है 7 सितंबर एंड एज वी लुक आउटसाइड वी कैन फील दैट द सीजन्स आर स्लोली टर्निंग। इट इज़ द टाइम व्हेन द मॉनसून इज जेंटली प्रिपेयरिंग टू पैक इट्स बैग्स एंड बिड अस अ बिटर स्वीट फेयरवेल।
0: बिल्कुल सही कहा उन्नति, पर फेयरवेल्स तो अक्सर बिटर स्वीट ही होते हैं ना। सावन की वो तेज फुहारें भले ही अब थम रही हों, बट द मैजिक ऑफ द रेन्स हैजंट लेफ्ट आवर हार्ट्स येट। और ऐसे मौसम में पुरानी यादें और पुरानी धुनें दिल के और करीब आ जाती हैं।
1: एग्जैक्टली, इट्स द परफेक्ट टाइम टू सेलिब्रेट अ म्यूजिकल जॉनरा दैट इज लिटरली बॉर्न फ्रॉम द हार्ट ऑफ द मॉनसून। हम बात कर रहे हैं कजरी की। कजरी शब्द कजरा या काजल से आता है, जो उन गहरे कजरारे सावन के बादलों का प्रतीक है जो अभी कुछ हफ्ते पहले तक हमारे आसमान पर छाए हुए थे।
0: ये महज एक क्लासिकल जॉनरा नहीं है, इट इज़ अ टाइमलेस इमोशन ऑफ लव, लॉन्गिंग एंड लाइफ। इसकी शुरुआत उत्तर प्रदेश के मिर्ज़ापुर से हुई थी। लेजेंड हैज़ इट दैट अ वुमन नेम्ड कजली स्टार्टेड सिंगिंग दी सोलफुल वर्सेज इन डीप लॉन्गिंग फॉर हर हस्बैंड हु वाज़ फार फार अवे।
1: एंड व्हाट्स फैसिनेटिंग इज हाउ कजरी ब्रिजेस टू एंटायरली डिफरेंट वर्ल्ड्स। एक तरफ गांव में बरगद के पेड़ों पर झूला झूलती महिलाएं कजरी गाकर अपने जीवन को रंगों से भर देती हैं, वाइल ऑन द अदर हैंड द क्लासिकल कॉम्पोजिशंस ऑफ बनारस घराना, स्पेशली द लेजेंडरी वॉइस ऑफ पंडित छन्नूमल मिश्रा जी, हैव रेज्ड कजरी टू अ सबलाइन स्पिरिचुअल लेवल।
0: वैसे उन्नति, सावन और विरह का ये कनेक्शन सदियों पुराना है। महाकवि कालिदास ने भी तो इसी बदलते मौसम और बादलों को हमेशा के लिए अमर कर दिया था।
1: Are you referring to the legendary मेघदूत? कालिदास की वो मशहूर रचना जहाँ एक यश एक उड़ते हुए बादल को अपना डाकिया बना लेता है। He begs the rain cloud to carry a message of his love to his wife.
0: Exactly. From the earth-soaked beats of Kajri to Kalidas's classical Sanskrit verses, badal hamesha se hame jode hue hain. But you know what else connects the entire world right now?
1: What's that?
0: Our health. Mausam badal raha.

0: है एंड वाइल इट लुक्स पोएटिक आर बॉडीज फील द शिफ्ट टू
1: परफेक्ट क्यू बिकॉज टुडे ऑन आर शो वी आर ट्रैवलिंग अराउंड द वर्ल्ड टू ब्रिंग यू द बेस्ट हेल्थ प्रैक्टिसेस ग्लोबल वेलनेस ट्रेंड्स एंड टिप्स टू ट्रांजिशन स्मूथली नॉट जस्ट इन टू द नेक्स्ट सीजन ऑफ द ईयर बट द न्यू सीजन्स ऑफ आर लाइव्स टू
0: जी हाँ मौसम बदलेगा पर आपकी फिटनेस और मुस्कान नहीं बदलनी चाहिए Stay tuned, dear listeners. See you on the next side of this short musical break.

0: वेलकम बैक डियर लिसनर्स। दोस्तों, आज जब मैं ऑफिस के लिए तैयार हो रही थी ना, तो बगल की मेज पर रखी एक किताब ने मेरा ध्यान अपनी ओर खींच लिया। वो किताब जेन गोडल की थी, द एस्टीम्ड एनवायरमेंटलिस्ट, जो कहा करती थी कि यू कैन नॉट स्पेंड अ सिंगल डे ऑन दिस प्लानट विदाउट हैविंग एन इम्पैक्ट ऑन द वर्ल्ड अराउंड यू। वट यू डू मेक्स अ डिफरेंस एंड यू हैव टू डिसाइड वट काइंड ऑफ डिफरेंस यू वॉन्ट टू मेक। हर वर्ड्स हैव स्टेड विद मी।
1: सच में कितनी सादगी से उन्होंने कितनी बड़ी बात कह दी। कई बार एक छोटा सा विचार जहन में बहुत बड़ा बदलाव ले आता है। तो चलिए इसी प्यारे से थॉट को थोड़ा और आगे बढ़ाते हैं और रुख करते हैं हमारे अगले सेगमेंट की ओर। दोस्तों, वक्त हो चला है आज की बात का।
0: आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे पर्टिनेंट टॉपिक पर जो हम सबके दिमाग में कहीं ना कहीं बैकग्राउंड म्यूजिक की तरह बजता रहता है। लिसनर्स, आज का हमारा फोकस है क्लाइमेट एंजाइटी। पर इस विषय पर डिस्कशन आगे बढ़ाने से पहले सुनते हैं विशाल दिदलानी की आवाज़ में एक बढ़िया सा गीत।

0: वेलकम बैक लिसनर्स, हम बात कर रहे थे क्लाइमेट एंजाइटी की। ये सुनने में शायद एक भारी भरकम मेडिकल या साइंटिफिक टर्म लगे, लेकिन ये बहुत ही गहरी और खामोश भावना है। इट्स दैट क्रॉनिक ओवरवेलमिंग फियर ऑफ एनवायरमेंटल डूम।
1: करेक्ट। जिस ग्लोबल वार्मिंग के फ्यूचर को हम स्कूलों की किताबों में पढ़ा करते थे, उसे आज हम अपने प्रेजेंट में जी रहे हैं। यू वोंट बिलीव इट अमैया, द फीलिंग एसोसिएटेड विद सच चेंज नेगेटिवली अफेक्ट आवर डेली लाइफ एंड ईटिंग हैबिट्स। और इसे बढ़ावा देने में सबसे बड़ा साथी पता है कौन है? हमारा स्मार्टफोन।
0: ओह, द इन्फिनिट स्क्रोल ऑफ डूम। सोशल मीडिया बिहेव्स लाइक फ्यूल टू दिस फायर। सुबह उठो, इंस्टाग्राम खोलो और रील स्क्रोल करते ही क्या दिखता है? कहीं जंगल की आग, कहीं सूखा तो कहीं ग्लेशियर का पिघलना। कॉन्टिन्यूस एक्सपोजर टू नेगेटिव एनवायरमेंटल न्यूज़, जिसे हम डूम स्क्रोलिंग कहते हैं, हमारे दिमाग को एक कॉन्स्टेंट फाइट और फ्लाइट मोड में डाल देता है।
1: Social media algorithms are designed to keep us hooked to sensationalism. We observe the trauma of the entire planet in a 15-second video clip.
0: पर ये डर बेवजह नहीं है दोस्तों, ये इस बात का सबूत है कि हमें हमारी धरती कितनी प्यारी है।
1: तो श्रोताओं, अगर आपको भी ये डर सताता है तो एक लंबी सांस लीजिए और याद रखिए, यू aren't alone.
0: बिल्कुल। दिस रिमाइंड्स मी, रॉबर्ट स्वान हैड वंस गिवन द वर्ल्ड अ वार्निंग। ही हैड सेड, द ग्रेटेस्ट थ्रेट टू आवर प्लैनेट इज द बिलीफ दैट समवन एल्स विल सेव इट। यानी दोस्तों, हम सब सोचते रहते हैं कि कोई गवर्नमेंट, कोई साइंटिस्ट या कोई सुपर हीरो आकर सब ठीक कर देगा, पर सच तो ये है कि वो सुपर हीरो हम खुद हैं।
1: बिल्कुल सही कहा मैया। सो लेट्स फ्लिप द स्क्रिप्ट एंड टर्न दिस एंजाइटी इनटू एक्शन। सबसे पहले तो अपने स्मार्टफोन को थोड़ा रेस्ट दीजिए और सोशल मीडिया पर ये जो डूम स्क्रॉलिंग की आदत लगी है ना, उसे बंद कीजिए।
0: दुनिया भर की तबाही का बोझ अकेले अपने दिमाग पर मत उठाइए, इसके बजाय ग्राउंड पर उतरिए और छोटे छोटे रियल बदलाव शुरू कीजिए।
1: बिल्कुल, और शुरुआत क्यों ना अपने ही घर से की जाए। इस संडे अपने दोस्तों के साथ मिलकर सिर्फ एक पेड़ लगाइए। सिंगल यूज प्लास्टिक से जितना हो सके दूरी बनाए रखें और अपनी रील्स की दुनिया से बाहर निकलकर इस असली खूबसूरत दुनिया को महसूस करिए।
0: रियल लाइफ को त्याग कर रियल लाइफ का आनंद लीजिए। जब आप एक्शन लेते हैं ना, तो वो डर अपने आप गायब होने लगता है।
1: यानी पैनिक होना छोड़िए और प्लैनेट के लिए थोड़ा संवेदनशील बनिए। याद रखिए कि बदलाव हमेशा हमारे अपने घर से और हमारे अपने छोटे छोटे कदमों से ही शुरू होता है।
0: तो दोस्तों, इस सेगमेंट को इसी पॉजिटिव नोट पर छोड़ते हुए अपने ओवर स्टिम्युलेटेड माइंड्स को देते हैं रेस्ट और चलिए सुनते हैं आज की शाम का अगला गीत।

0: रहे कप्तान ईशान किशन, जिन्होंने शानदार 270 रन की मैराथन पारी खेलकर इतिहास रच दिया। पहले दिन 111 रन पर नाबाद लौटे ईशान किशन ने दूसरे दिन भी शानदार बल्लेबाजी जारी रखी। उन्होंने 334 गेंदों में 270 रन बनाए, जिसमें 30 चौके और 7 छक्के शामिल रहे। ईशान ने अपना दोहरा शतक 270 गेंदों में पूरा किया और वह दिलीप ट्रॉफी के फाइनल में दोहरा शतक लगाने वाले चुनिंदा बल्लेबाजों में शामिल हो गए हैं। ईशान किशन को दूसरी छोर का पर कुमार कुशाग्र का शानदार साथ मिला। दोनों ने मिलकर 230 रन की बड़ी साझेदारी की, जो इस संस्करण में सबसे बड़ी साझेदारी रही। कुशाग्र ने भी बेहतरीन बल्लेबाजी करते हुए 101 रन बनाए। हालांकि 471 के स्कोर पर कुशाग्र के आउट होने के बाद भी ईस्ट जोन का रन बनना जारी रहा। पहले दिन ईस्ट जोन के लिए अभिमन्यु ईश्वरन ने 72, युवा वैभव सूर्यवंशी ने 44 और शिखर मोहन ने 85 रन बनाए थे। सूर्यवंशी और ईश्वरन ने पहले विकेट के लिए 100 रन के साझेदारी कर टीम को तेज शुरुआत दिलाई थी। दूसरे दिन ईशान और कुशाग्र के बाद अनुकूल राय ने 45 रन, मोहम्मद शमी ने 28 रन और मोहम्मद कोनेन कुरेशी ने 40 रन की उपयोगी पारियां खेली और ईस्ट जोन ने 163 ओवर में 708 रन बनाए और पूरी टीम आउट हो गई। साउथ जोन की गेंदबाजी की बात करें तो त्रिपुराना विजय अपने सबसे सफल गेंदबाज रहे, जिन्होंने 4 विकेट लिए। चामा मिलिंद और श्रेयस गोपाल को 2-2 विकेट मिले, जबकि शेख रशीद और अन्य गेंदबाजों को 1-1 सफलता मिली। भारत के तेज गेंदबाज मोहम्मद सिराज 25 ओवर में 140 रन देने के बावजूद कोई विकेट नहीं ले पाए।
1: टेनिस की दुनिया के सबसे बड़े टूर्नामेंट में शामिल यूएस ओपन 2026 अब अपने निर्णायक दौर में पहुंच चुका है। 23 अगस्त से शुरू हुआ यूएस ओपन 13 सितंबर तक चलेगा और अब सिंगल्स ड्रॉ में खिलाड़ियों की संख्या लगातार कम होती जा रही है। राउंड ऑफ 16 के मुकाबलों के बाद अब क्वार्टर फाइनल की तस्वीर भी साफ होने लगी है। सबसे पहले बात करते हैं पुरुष एकल की। डिफेंडिंग चैंपियंस और दुनिया के तीसरे नंबर के खिलाड़ी कार्लोस अल्कराज ने राउंड ऑफ 16 में अमेरिका के टॉमी पॉल को सीधे सेट्स में हरा कर क्वार्टर फाइनल में जगह बनाई है। अल्कराज ने ये मुकाबला 6-4, 6-3, 6-4 से अपने नाम किया। मैच करीब 2 घंटे और 21 मिनट चला। इस जीत के साथ अल्कराज ने ग्रैंड स्लैम में लगातार 18वीं जीत दर्ज की है, जिसमें 11 जीत यूएस ओपन में है। लेकिन अल्कराज के सामने अब बड़ी चुनौती होगी। अमेरिका के बेन शेल्टन ने शानदार प्रदर्शन करते हुए ग्रीस के स्टेफानोस सिट्सिपास को सीधे सेट्स में हरा दिया। शेल्टन ने मुकाबला 6-2, 6-3, 6-4 से जीत लिया है। इस जीत के साथ शेल्टन ने क्वार्टर फाइनल में जगह बनाई और उनका सामना अब कार्लोस अल्कराज से होगा। यानी यूएस ओपन के क्वार्टर फाइनल में अब एक तरफ डिफेंडिंग चैंपियन अल्कराज होंगे और दूसरी तरफ घरेलू दर्शकों के सामने खेल रहे बेन शेल्टन। ये मुकाबला निश्चित तौर पर टूर्नामेंट के सबसे चर्चित मुकाबलों में से एक होगा। अमेरिका के फ्रांसिस टेफो ने 7वीं वरीयता प्राप्त 2021 यूएस ओपन चैंपियन डेनियल मेदवेदेव को सीधे सेट्स में हरा दिया। इस जीत की अहमियत इसलिए भी ज्यादा है क्योंकि मेदवेदेव के खिलाफ पिछली 7 भिड़ंत में टीएफओ सिर्फ एक बार जीते थे, लेकिन इस बार अमेरिकी खिलाड़ी ने घरेलू दर्शकों के सामने शानदार प्रदर्शन किया और मेदवेदेव को टूर्नामेंट से बाहर कर दिया। अब बात करते हैं महिला सिंगल्स की। दुनिया की नंबर एक खिलाड़ी और 2 बार की डिफेंडिंग चैंपियन एरियाना सेबेलेंका ने भी अपना शानदार प्रदर्शन जारी रखा। सेबेलेंका ने अमेरिका की टेलर टाउनसेंट को 6-4, 6-3 से हरा कर क्वार्टर फाइनल में जगह बनाई है। टाउनसेंट ने उन्हें कड़ी चुनौती दी, लेकिन सेबेलेंका महत्वपूर्ण मौकों पर अपना दबदबा बनाए रखने में कामयाब रही। इस जीत के साथ सेबेलेंका ने यूएस ओपन में लगातार 17वीं जीत दर्ज की और लगातार 6ठी बार इस टूर्नामेंट के क्वार्टर फाइनल में पहुंची। अब उनकी नजर लगातार तीसरी यूएस ओपन सिंगल्स टाइटल पर है, यानी सेबेलेंका के पास इतिहास रचने का शानदार मौका है। वहीं अमेरिका की जेसिका पेगुला ने भी राउंड ऑफ 16 में शानदार जीत दर्ज की। तीसरी वरीयता प्राप्त पेगुला ने 16वीं वरीयता प्राप्त अनुभवी खिलाड़ी सोरेना क्रिस्टी को 6-3, 6-4 से हराया। इस जीत के साथ पेगुला क्वार्टर फाइनल में पहुंच गई हैं और अब उनकी नजर दुनिया की नंबर एक रैंकिंग की दौड़ पर भी है। महिला वर्ग में अमेरिका की एमा नवारो ने भी शानदार प्रदर्शन किया। 26वीं वरीयता प्राप्त नवारो ने 21वीं वरीयता प्राप्त अना केलिनसाकिया को 6-4, 6-2 से हराया। नवारो के लिए ये जीत इसलिए खास है क्योंकि ये 2024 US ओपन में सेमीफाइनल तक पहुंच चुकी थी।

0: अब एक बार फिर वो अपने सर्वश्रेष्ठ ग्रैंड स्लैम प्रदर्शन की ओर बढ़ रही हैं। यूएस ओपन के इस दौर में एक और दिलचस्प कहानी जैंग क्विनवेन की रही। तीसरे दौर में उन्होंने मेडिसन के खिलाफ जबरदस्त वापसी की थी। जैंग ने मुकाबले में 5-0 से पिछड़ने के बाद मैच पॉइंट भी बजाया और आखिरकार जीत दर्ज की। वो राउंड ऑफ 16 तक पहुंचने वाली सबसे कम रैंक वाली महिला खिलाड़ी बनी। उनकी रैंकिंग 121 थी, यानी यूएस ओपन 2026 का राउंड ऑफ 16 सिर्फ बड़े नामों के आगे बढ़ने की कहानी नहीं रहा, बल्कि युवा खिलाड़ियों, घरेलू सितारों और बड़े उलटफेरों ने भी टूर्नामेंट को बेहद रोमांचक बना दिया है। अब जैसे जैसे टूर्नामेंट क्वार्टर फाइनल और फिर सेमीफाइनल की ओर बढ़ रहा है, सभी की नजरें अल्कराज, शेल्टन, टियोफो और सबलेंका जैसे सितारों पर है।
1: और अब खिताबी जीत पर नज़र डालते हैं। चाइना मास्टर्स में 3 फाइनल, 2 दिल तोड़ने वाली हार और लंबे इंतजार के बाद आखिरकार वो पल आ ही गया जिसका सात्विक साईराज रैंकी रेड्डी और चिराग शेट्टी को बेसब्री से इंतजार था। रविवार को खेले गए रोमांचक फाइनल में सात्विक और चिराग ने शानदार वापसी करते हुए चीन की घरेलू जोड़ी हे जी तिंग और रेन जियांग यू को 3 गेम तक चले मुकाबले में 11-21, 13-11, 21-17 से हराया है। 1 घंटा 10 मिनट चले इस मुकाबले में भारतीय जोड़ी ने शुरुआत में जरूर संघर्ष किया, लेकिन जैसे जैसे मैच आगे बढ़ा सात्विक और चिराग ने अपनी रणनीति बदली और मैच का रुख पूरी तरह अपने पक्ष में कर लिया। पहले गेम की शुरुआत भारतीय जोड़ी के लिए बेहद खराब रही। सात्विक और चिराग देखते ही देखते 0-5 से पिछड़ गए। चीनी खिलाड़ियों ने तेज रैलियां और लगातार हमलों से भारतीयों को दबाव में रखा। कोर्ट के बीच से किए जा रहे उनके हमलों का सात्विक चिराग के पास कोई तत्काल जवाब नहीं था। नतीजा रहा, पहला गेम चीन के खिलाड़ियों ने 21-11 से जीत लिया, लेकिन इसके बाद भारतीय जोड़ी ने जिस अंदाज में वापसी की वही इस फाइनल को सबसे बड़ी कहानी बन गई। और दूसरे गेम में चिराग ने नेट पर खेल की रफ्तार बदलने की जिम्मेदारी संभाली और उन्होंने शटल को जल्दी रोकना शुरू किया और चीनी जोड़ी को अपनी पसंद की रफ्तार से खेलने का मौका नहीं दिया। इस बदलाव से सात्विक और चिराग ने अपने विरोधियों को पूरे कोर्ट में दौड़ाया और उन्होंने डिफेंस भी बेहतर हुआ और स्मैश के साथ साथ शॉट्स में वेरिएशन दिखाई दिए। भारतीय जोड़ी ने दूसरा गेम 21-13 से जीतकर मुकाबले को निर्णायक तीसरे गेम में पहुंचा दिया। तीसरे गेम में दोनों जोड़ियों के बीच जबरदस्त टक्कर देखने को मिली। एक समय हे और रैन 11-10 से आगे थे और भारतीय खिलाड़ियों से कुछ गलतियां भी हुई, लेकिन सात्विक और चिराग ने आक्रामक खेल जारी रखा और कोर्ट के पिछले हिस्से से सात्विक ने चीनी खिलाड़ियों के बैकहैंड को लगातार निशाना बनाया और इससे उनके रिटर्न कमज़ोर हुए और भारतीय जोड़ी को अटैक के मौके मिलते रहे। फिर आया मैच का सबसे बड़ा मोड़। तीसरे गेम में ज़्यादातर समय पीछे रहने के बाद सात्विक चिराग ने 18-17 की बढ़त हासिल कर ली। जवाब अब चीनी जोड़ी पर था और अब घरेलू दर्शकों के सामने खेल रहे हे और रैन से गलतियां होने लगी। निर्णायक क्षण में सात्विक ने शानदार फ्लिक सर्व करके चीनी खिलाड़ियों को चौंका दिया। उनका सल्तनत बिगड़ा और भारतीय जोड़ी ने इसका पूरा फायदा उठाया। इसके साथ ही सात्विक और चिराग को मैच पॉइंट मिला और उन्होंने उसे भुनाते हुए 21-17 से तीसरा गेम अपने नाम कर लिया और खिताबी जीत हासिल की। आइए सुनते हैं क्या कहते हैं सात्विक चिराग इस जीत के बाद।
2: Yeah, playing here is always good. We have played always coming back from injury. I think in 2024 after Olympics we played here, we played semis. Then last year we played, we weren't in a good shape. We played finals. I think this also like after coming back from injury, I think this has been a tournament where gave us a lot of confidence. I think this week has been same story from the except the first round. I think second game all the games we have played 3 games. I think today, I think more than that, I think today we kind of hurled the nerve. We didn't do mistakes in the last, easy mistakes, so that was a positive from the today's match, and we are just sticking to the game plan. We made a game plan before coming. We wanted to do that. If we work, then it's good. If not, we'll go back and work again. So I think that has worked today, and really happy we kind of broke things, and I think second title in 2026, really happy.
3: In the first game, I think it wasn't lacking, but I think we were not playing the right strokes. We were playing a style which favored them, and when we play a style which favors them, they come all guns blazing. You don't really find any space to play against them because they are extremely fast and furious. So when in the second game.

0: When we started, we wanted to be aggressive, but mindfully aggressive, and that's what he was telling.
1: I think it's very rare I get 5 points in my service. It's always Chirag takes the game. But I think again, I think in quarterfinals when we played with Kim Ashton, I think that match gave confidence. Same scenario, 17 all, we are down. I was serving, then I was practicing more in the services because I was injured. When I was injured also, I was doing a lot of services and catching it. So I think that has helped me in the last two tournaments. But I think it's just a feeling, mental thing. You just need to catch something, serve and believe yourself. Your serve is good and catch. So I think there has been a lot of behind the scenes with the coach training the same thing, because we know opponent will target me when I'm serving. So we have seen a lot of videos, people targeting me in the service. They want to challenge me. So I think I've been practicing that. I think that has helped me. But yeah, in the third game, I think we were pretty much calm. Even Chirag was telling, it'll be calm down. It's okay. We are under control. So I think we didn't do much panic actually. So we just serve, then we'll play according to the schedule. So I think that has helped.
0: Yeah, it feels really special. Obviously, going into the Asian Games, winning a title definitely gives a huge boost that yes, what we are working for is in the right direction. But yeah, I think we'll go back home, push ourselves to the limit, train for the next 10 days and go all guns blazing at the Asian Games. We want to go out there and have some fun.
2: बिल्कुल, यह सिर्फ एक खिताबी जीत नहीं बल्कि चीन से मिली पिछली दो हार का जवाब भी है। 2023 और 2025 में चाइना मास्टर्स के रनर अप रहे सात्विक और चिराग ने इस बार इतिहास बदल दिया। यह उनका इस सीजन का दूसरा खिताब है। इससे पहले भारतीय जोड़ी ने सिंगापुर ओपन सुपर 750 भी जीता था और थाईलैंड सुपर ओपन सुपर 500 के फाइनल तक भी ये जोड़ी पहुंची थी। इस जीत के साथ सात्विक और चिराग ने अपना 10वां BWF वर्ल्ड टूर खिताब भी हासिल कर लिया। एक गेम से पिछड़ने के बाद वापसी, रणनीति में बदलाव, घरेलू दर्शकों का दबाव और निर्णायक पलों में संयम, सात्विक और चिराग ने साबित कर दिया चैंपियन वही जो मुश्किल पलों में हार नहीं मानता। चीन में दो दर्दनाक हार के बाद आखिरकार भारतीय जोड़ी का इंतजार खत्म हुआ और चाइना मास्टर्स का खिताब पहली बार सात्विक और चिराग ने अपने नाम किया। और वहीं बैडमिंटन की बात को ही आगे बढ़ाते हैं और इंडोनेशिया मास्टर्स की अगर बात करें तो युवा भारतीय बैडमिंटन खिलाड़ी मानसी सिंह को इंडोनेशिया मास्टर्स सुपर 100 के महिला एकल फाइनल में हार का सामना करना पड़ा। चीन के शू वेनजिंग ने मानसी को 16-21, 8-21 से हरा कर खिताब अपने नाम किया। इसके साथ ही मानसी को उपविजेता बनकर संतोष करना पड़ा। विश्व रैंकिंग में 76वें स्थान पर 21 वर्षीय मानसी ने पूरे टूर्नामेंट में शानदार प्रदर्शन किया और फाइनल तक का सफर तय किया। सेमीफाइनल में मानसी ने कनाडा की रोशेल चान को हरा कर खिताबी मुकाबले में जगह बनाई थी। वहीं चीन की शू वेनजिंग ने सेमीफाइनल में भारत की तीसरी वरीयता प्राप्त अनमोल खरब को मात दी थी। मानसी का टूर्नामेंट में सफर शानदार रहा। उन्होंने हांगकांग की लो सिन यान हैप्पी हमवतन और दूसरी वरीयता प्राप्त रक्षिता रामराज और हांगकांग की सलोनी समीरबाई मेहता को हराकर सेमीफाइनल में प्रवेश किया था। फाइनल में हालांकि शू वेनजिंग ने शुरुआत से ही दबाव बनाए रखा। पहले गेम में मानसी ने संघर्ष करते हुए 16 अंक हासिल किए लेकिन चीनी खिलाड़ी ने 21-16 से गेम अपने नाम कर लिया। दूसरे गेम में शू ने तेज शुरुआत की और मानसी की वापसी को कोई मौका नहीं दिया और उन्होंने दूसरे गेम 21-8 से जीत कर मैच और खिताब अपने नाम कर लिया।
3: बीस साल के लंबे इंतजार के बाद भारत की अंडर 20 पुरुष फुटबॉल टीम ने AFC अंडर 20 एशियन कप के लिए क्वालिफाई कर लिया है। कल ताशकंद में खेले गए ग्रुप बी के आखिरी क्वालिफायर मुकाबले में बांग्लादेश को 3-0 से शिकस्त दी। इस जीत के साथ भारत ने अपनी 3 मैचों में 6 अंक हासिल किए और ग्रुप बी में दूसरे स्थान पर रहा। उज्बेकिस्तान ने 9 अंकों के साथ ग्रुप में शीर्ष स्थान हासिल किया। भारत ने 7 सर्वश्रेष्ठ रनर अप टीमों में जगह बना ली है। AFC अंडर 20 एशियन कप चाइना 2027 का टिकट भी इस तरह हासिल कर लिया है। मुकाबले की शुरुआत में दोनों टीम के बीच कड़ा मुकाबला देखने को मिला। भारत को 25वें मिनट में पहली सफलता मिली। डेनी ने पेनल्टी एरिया के अंदर से शानदार फिनिश करते हुए भारत को इस तरह 1-0 की बढ़त दिला दी। दूसरे हाफ में भी भारत ने आक्रामक खेल जारी रखा। 60वें मिनट में भारत ने अपनी बढ़त दुगनी कर ली और विशाल यादव ने शानदार एक्रोबेटिक फिनिश करते हुए गेंद को बांग्लादेश के गोल में पहुंचा दिया। इस गोल के साथ भारत ने मुकाबले में 2-0 की बढ़त बना ली। आखिरी मिनटों में कोच गवली ने अनिकेत यादव, उमंग डोडुम और दानियाल को भी मैदान पर उतारा। भारत ने बाकी समय आराम से निकालते हुए 3-0 से शानदार जीत दर्ज की। इस जीत के साथ भारत ने AFC अंडर 20 एशियन कप चाइना 2027 में अपनी जगह पक्की कर ली है। भारत के लिए ये उपलब्धि इसलिए भी खास है क्योंकि टीम करीब 20 साल बाद AFC अंडर 20 एशियन कप में वापसी करेगा। अब भारतीय टीम के सामने अगली बड़ी चुनौती एशियन कप होगी। वहां शीर्ष 4 स्थान हासिल करने वाली टीम्स फीफा अंडर 20 वर्ल्ड कप 2027 के लिए भी क्वालिफाई करेंगी। यानी भारत के युवा खिलाड़ियों के पास एशियन कप के साथ साथ विश्व कप का टिकट हासिल करने का भी सुनहरा मौका होगा। बिल्कुल, एशियन कप के बाद अब बात कर लेते हैं सुब्रतो कप की। 65वें सुब्रतो कप इंटरनेशनल फुटबॉल टूर्नामेंट में युवा खिलाड़ियों के बीच रोमांचक मुकाबले जारी हैं। इस टूर्नामेंट में देश भर की स्कूली टीमें हिस्सा ले रही हैं और इस बार मुकाबले दिल्ली और बेंगलुरु में हो रहे हैं। सब जूनियर बॉयज अंडर 15 कैटेगरी की बात करते हैं, जहाँ रविवार यानी कि कल पहले क्वार्टर फाइनल में वेस्ट बंगाल ने चंडीगढ़ को 5-0 से हराकर सेमीफाइनल में जगह बनाई। इसके बाद SCE ने दिल्ली को 8-0 से हराते हुए शानदार जीत दर्ज की। तीसरे क्वार्टर फाइनल में CBSE ने उत्तराखंड को 6-0 से मात दी, जबकि दिन के आखिरी क्वार्टर फाइनल में असम ने केरला को 2-1 से हराकर अंतिम चार में जगह बनाई। अब सेमीफाइनल में पहुंचने वाली चार टीमें हैं वेस्ट बंगाल, CISCE, CBSE और असम। अब पहला सेमीफाइनल आज वेस्ट बंगाल का सामना CISCE से होगा। इसके बाद शाम 7 बजे CBSE और असम के टीमें आमने सामने होंगी। दोनों मुकाबले सुब्रतो फुटबॉल ग्राउंड जलाहली में खेले जाएंगे। इन दोनों मुकाबलों के विजेता 9 सितंबर को फाइनल में आमने सामने होंगे। फाइनल शाम 6 बजे निर्धारित है। यानी आज युवा फुटबॉल खिलाड़ियों के लिए सबसे बड़ा दिन है। चार टीमें फाइनल में जगह बनाने के लिए मैदान पर उतरेंगी और हर गोल उन्हें खिताब के एक कदम और करीब ले जाएगा। अहमदाबाद का साबरमती रिवर फ्रंट इन दिनों दुनिया के शीर्ष पैरा तीरंदाजों के शानदार प्रदर्शन का गवाह बन रहा है। वर्ल्ड आर्चरी पैरा सीरीज 2026 का तीसरा चरण 5 से 9 सितंबर तक अहमदाबाद में आयोजित किया जा रहा है। खास बात ये है कि भारत पहली बार इस प्रतिष्ठित अंतर्राष्ट्रीय पैरा तीरंदाजी सीरीज के एक चरण की मेजबानी कर रहा है। इस प्रतियोगिता में 19 देशों के 109 पैरा तीरंदाज हिस्सा ले रहे हैं। कल भारत की स्टार पैरा तीरंदाज शीतल देवी ने शानदार प्रदर्शन करते हुए महिलाओं के कंपाउंड वर्ग की क्वालिफिकेशन में 698 अंक हासिल किए और शीर्ष स्थान हासिल किया। ये उनका इस सीजन का सर्वश्रेष्ठ स्कोर भी रहा। शीतल मौजूदा वर्ल्ड पैरा आर्चरी चैंपियंस और विश्व नंबर एक खिलाड़ी हैं। शीतल ने यही नहीं रुकते हुए राकेश कुमार के साथ कंपाउंड मिक्स्ड टीम क्वालिफिकेशन में नया वर्ल्ड रिकॉर्ड भी बनाया। दोनों ने मिलकर 1400 में से 1400 अंक हासिल किए और भारतीय पैरा तीरंदाजी को एक बड़ी उपलब्धि दिलाई। भारत के लिए कंपाउंड विमेन्स टीम क्वालिफिकेशन में भी शानदार प्रदर्शन देखने को मिला। शीतल देवी, लालपति और सरिता की भारतीय टीम ने कुल 1368 अंक हासिल करके पहला स्थान हासिल किया और चाइना से 2 अंक आगे रही। वहीं पुरुष की रिकर्व क्वालिफिकेशन में रियो 2016 पैरा ओलंपिक चैंपियन गोलमिर्रज़ा रहीमी ने 647 अंक के साथ शीर्ष स्थान हासिल किया। महिलाओं की रिकर्व क्वालिफिकेशन में इंडोनेशिया की नोविएरा रोस ने 603 अंक के साथ पहला स्थान हासिल किया। अब अहमदाबाद में नजरें एलिमिनेशन राउंड्स और मेडल्स मुकाबलों पर है। घरेलू दर्शकों के सामने भारतीय तीरंदाजों का शानदार प्रदर्शन रहा और शीतल देवी तथा राकेश कुमार की वर्ल्ड रिकॉर्ड उपलब्धि ने इस ऐतिहासिक आयोजन को और खास बना दिया है। कुल मिलाकर अहमदाबाद में पहली बार आयोजित हो रही वर्ल्ड आर्चरी पैरा सीरीज में भारत ने शुरुआत से ही अपनी मजबूत दावेदारी पेश की है और अब निगाहें आगामी मेडल्स राउंड पर टिकी हैं।
2: और अब नज़र एक बार मार लेते हैं PSA लंदन क्लासिक पर, जो 1 से 6 सितंबर 2026 तक लंदन में आयोजित किया गया था। PSA वर्ल्ड टूर गोल्ड टूर्नामेंट इसे कहा जाता है। और भारत की ओर से चुनौती पेश की थी अनंत सिंह, रमित टंडन और वी चौधरानी ने। और महिला वर्ग में भारत की युवा स्टार और हाल ही में जूनियर विश्व चैंपियन बनी अनंत सिंह ने शानदार शुरुआत की थी, लेकिन क्वार्टर फाइनल तक पहुंची और क्वार्टर फाइनल में उनका सामना मलेशिया की विश्व नंबर 5 और तीसरी वरीयता प्राप्त शिवा सांगरी सुब्रमण्यम से हुआ और 17 मिनट के मुकाबले में अनंत को 11-4 से हराकर भारतीय खिलाड़ी का अभियान वहीं समाप्त हो गया। पुरुष वर्ग में रमित टंडन ने भी जीत के साथ शुरुआत की। उन्होंने कतर के अब्दुल्ला अलम तमीमी को 11-6 11-7 से हराकर दूसरे दौर में प्रवेश किया, लेकिन दूसरे दौर में उन्हें 8वीं वरीयता प्राप्त मिस्र के मोहम्मद अलशोर बागी से कड़े मुकाबले में 10-12 9-11 से हार मिली। इस हार के साथ रमित का दौर भी दूसरे दौर में समाप्त हो गया। और वहीं वीर चौधरानी को पहले ही दौर में स्विट्जरलैंड के यानिक विल्हेमी से 9-11 9-11 से शिकस्त मिली और उनका अभियान शुरुआती दौर में ही समाप्त हो गया। और वहीं अगर विजेताओं की बात करें तो मिस्र की अमीना ऑर्फी और न्यूजीलैंड के पॉल कॉल ने अलेक्जेंड्रा पैलेस में इंग्लैंड की जॉर्जिना कैनेडी और फ्रांस के विक्टर क्रोइन को हराकर लंदन स्क्वैश क्लासिक में अपना खिताब बचाए रखा। ऑर्फी ने इंग्लैंड के नंबर एक खिलाड़ी कैनेडी को 11-6 11-8 11-2 से शानदार जीत के साथ अपने करियर का 14वां पीएसए खिताब जीता। और कैनेडी ने 24 घंटे पहले ही वर्ल्ड नंबर एक हानिया और अहल ममामी को हराकर एक बड़ी जीत हासिल की थी, लेकिन आज वह ऑर्फी की सटीक और ज़बरदस्त हिटिंग का सामना नहीं कर सकी। इस जीत का मतलब है कि ऑर्फी इस महीने के आखिर में कतर क्लासिक में हिस्सा लेंगी, जहाँ उन्हें पास अल हमामी को हटाकर वर्ल्ड नंबर एक बनने वाले सबसे कम उम्र की महिला खिलाड़ी बनने का मौका मिलेगा।
3: और आइए बात कर लेते हैं जूनियर एशिया कप हॉकी की। चीन में खेले जा रहे 2026 मेंस जूनियर एशिया कप में युवा हॉकी टीमों के बीच मुकाबले लगातार रोमांचक होते जा रहे हैं। टूर्नामेंट 4 से 13 सितंबर तक आयोजित किया जा रहा है। पूल ए में भारत, जापान, इंडोनेशिया और चाइनीज ताइपे जैसे टीमें शामिल हैं। भारतीय टीम ने कल जापान के खिलाफ मुकाबला 3-3 से ड्रॉ खेला और अब पूल ए में भारत का मुकाबला 8 सितंबर को दक्षिण कोरिया से होगा, जबकि इंडोनेशिया और जापान भी आमने सामने होंगी। वहीं वुमेन्स जूनियर एशिया कप 2026 में गत चैंपियन भारत ने अपने शानदार अभियान को जारी रखा। कल भारत ने मलेशिया को एक तरफा मुकाबले में 11-1 से करारी शिकस्त दी। इस जीत के साथ भारत ने टूर्नामेंट में लगातार दूसरी जीत दर्ज की और एलीट पूल में अपनी स्थिति मजबूत कर ली। मलेशिया को 11-1 से हराकर शानदार जीत करने के बाद भारतीय जूनियर महिला हॉकी टीम अब अपने अगले मुकाबले के लिए तैयार है। भारत का सामना 8 सितंबर को जापान से होगा। भारत ने टूर्नामेंट की शुरुआत दक्षिण कोरिया को 4-1 से हराकर की थी। इसके बाद दूसरे मुकाबले में मलेशिया के खिलाफ भारत ने गोलों की झड़ी लगाते हुए 11-1 की एक तरफा जीत दर्ज की, यानी दो मैच में भारत ने शानदार आक्रामक हॉकी दिखाई। अब जापान के खिलाफ मुकाबला भारत के लिए अहम है, क्योंकि पूल चरण में हर अंक टीम की स्थिति को मजबूत करेगा। जापान ने भी टूर्नामेंट की शुरुआत कोरिया के खिलाफ 2-0 की जीत से की थी। ऐसे में भारतीय टीम को जापान के खिलाफ अपनी लय को बरकरार रखना होगा।
2: और अब एथलेटिक्स की बात करें, डायमंड लीग फाइनल 2026 की बात करें तो रमेश थारंगा पथिराज ने कल ब्रुसेल्स में आयोजित 2026 डायमंड लीग फाइनल में पुरुषों की भाला फेंक स्पर्धा का खिताब जीता और इस प्रतिष्ठित स्पर्धा को जीतने वाले पहले श्रीलंकाई एथलीट बन गए हैं। 23 वर्षीय खिलाड़ी ने किंग बॉयडन स्टेडियम में तीसरे दौर में 89.04 मीटर का सर्वश्रेष्ठ थ्रो दिया और पोलैंड के डेविड विग्नर से आगे रहे, जिन्होंने 87.47 मीटर का अपना व्यक्तिगत सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन दिया था। और अगर बाकी जो प्रदर्शन थे उन पर अगर नज़र डालें तो किशन वॉलकॉट ने 83.99 मीटर का सीज़न का सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन किया और महिला फाइनल का नतीजा रहा जिसमें काफ़ी शानदार सबके स्कोर रहे। और आज के लिए बस इतना ही। कार्यक्रम के प्रोड्यूसर शाहनवाज खान के साथ मुझे दीपिका जसवाल को
3: और मुझे विजेता चतुर्वेदी को दीजिए इजाजत। नमस्कार।
4: खेल खिलाड़ी, खेलों का आईना।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं मुकेश कुमार। निर्वाचन आयोग ने असम की नागांव लोकसभा सीट पर उपचुनाव की घोषणा कर दी है। इसके साथ ही तमिलनाडु और पश्चिम बंगाल की दो दो विधानसभा सीट और पुदुचेरी की एक सीट पर उपचुनाव की भी घोषणा की गई। आयोग ने बताया कि तमिलनाडु की मदुरंतकम और धर्मपुर सीट, पश्चिम बंगाल की रिजयनगर और नंदीग्राम सीट तथा पुदुचेरी की थट्टन चावड़ी विधानसभा सीट पर मतदान होगा। लोकसभा और विधानसभा उपचुनाव की अधिसूचना बुधवार को जारी की जाएगी। नामांकन इस महीने की 16 तारीख तक दाखिल किए जा सकते हैं। मतदान 6 अक्टूबर को होगा और मतगणना 16 अक्टूबर को की जाएगी। गृह मंत्री अमित शाह ने आज गोवा पुलिस को प्रतिष्ठित राष्ट्रपति पदक पुलिस ध्वज प्रदान किया। इस अवसर पर गृहमंत्री ने गोवा पुलिस की सेवा, व्यावसायिकता, साहस और अनुशासन की सराहना की।
1: 8 दशकों की गौरवशाली गोवा पुलिस की सेवा राष्ट्रपति जी के दिए हुए निशान के साथ देश भर की पुलिस की कतार में खड़ी है। ये गौरव जिन जिन राज्यों की पुलिस को मिला वो पुलिस के गौरवशाली इतिहास, साहस, अनुशासन और समर्पण के कारण ही राष्ट्रपति महोदय ने गोवा को प्रेसिडेंट कलर से सम्मानित करने का काम किया है।
0: गोवा के तले गांव में आयोजित समारोह में श्री शाह ने 1930 साइबर धोखाधड़ी हेल्पलाइन के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आधारित वॉइस असिस्टेंट सेवा भी शुरू की। यह 12 भाषाओं में नागरिकों और पर्यटकों को त्वरित सहायता उपलब्ध कराएगा। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की अध्यक्षता में आज रक्षा खरीद परिषद ने सशस्त्र बलों के लिए 1,10,000 करोड़ रुपए से अधिक के पूंजीगत प्रस्तावों को मंजूरी दी। रक्षा मंत्रालय ने कहा कि 98% सामान भारतीय कंपनियों से खरीदे जाएंगे। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने आज नई दिल्ली में अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के उप प्रबंध निदेशक नाइजेल क्लार्क से भेंट की। बैठक में भारत और कोष के बीच संबंधों पर चर्चा हुई। इस दौरान कोष के दक्षिण एशिया क्षेत्रीय प्रशिक्षण और तकनीकी सहायता केंद्र को मजबूत करने में भारत की भूमिका की सराहना की गई। लग्जमबर्ग के ऊर्जा तथा पर्यटन मंत्री लेक्स डेल्स ने आज नई दिल्ली में विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री जितेंद्र सिंह से मुलाकात की। दोनों नेताओं ने अंतरिक्ष क्षेत्र में मौजूदा सहयोग, भविष्य की संभावनाओं और संस्थागत तथा व्यावसायिक सहयोग बढ़ाने पर चर्चा की गई। डॉक्टर सिंह ने कहा कि अंतरिक्ष क्षेत्र में दोनों देशों की साझेदारी का महत्वपूर्ण हिस्सा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने केंद्रीय शिक्षा राज्य मंत्री जयंत सिंह का एक लेख सोशल मीडिया पर साझा किया है। श्री मोदी ने कहा कि शिक्षक शिक्षा के कलाकार शीर्षक वाले इस लेख में जयंत सिंह ने बताया कि शिक्षण एक कला और रचनात्मक कार्य है। लेख में श्री सिंह ने यह भी बताया कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020, उल्लास, विद्यांजलि और कई अन्य पहलें शिक्षण और सीखने की प्रक्रिया मजबूत कर रही हैं। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा है कि भारत को दुनिया की फार्मेसी के रूप में अपनी स्थिति मजबूत करते हुए वैश्विक चिकित्सा और स्वास्थ्य सेवा केंद्र के रूप में उभरना चाहिए। नई दिल्ली में फार्मा मैक टेक और लैब नेक्स्ट एक्सपो 2026 के उद्घाटन समारोह में श्री गोयल ने कहा कि स्वास्थ्य सेवा का दायरा केवल इलाज तक सीमित नहीं है। केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने आज नई दिल्ली में एक उच्च स्तरीय बैठक की अध्यक्षता की। बैठक में राज्यों की भागीदारी बढ़ाकर कृषि विज्ञान केंद्रों को मजबूत करने की कार्ययोजना की समीक्षा की गई। श्री चौहान ने निर्धारित समय सीमा में लक्ष्य हासिल करने के लिए राज्य सरकारों की सक्रिय भागीदारी और समय पर सहयोग की आवश्यकता पर बल दिया। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने नई दिल्ली के सत्य निकेतन में ढही इमारत स्थल का आज फिर दौरा किया। मुख्यमंत्री ने कहा कि जिन अधिकारियों की अनदेखी के कारण ये दुर्घटना हुई है उन्हें तुरंत निलंबित किया जाएगा। इस बीच पुलिस ने इमारत के मालिक हरिराम गुप्ता को आज राजस्थान के भिवाड़ी से गिरफ्तार किया। दिल्ली उच्च न्यायालय ने इस दुर्घटना को बेहद दुर्भाग्यपूर्ण बताया है। न्यायालय ने कहा कि इस त्रासदी के लिए केवल भवन मालिक के साथ दिल्ली नगर निगम और दिल्ली विश्वविद्यालय भी जिम्मेदार है। अहमदाबाद में शीतल देवी ने विश्व तीरंदाजी पैरा श्रृंखला के महिला कंपाउंड के व्यक्तिगत वर्ग के फाइनल में प्रवेश कर लिया है। शीतल देवी ने सेमीफाइनल में आज सरिता को हराया। खिताबी मुकाबले में शीतल का सामना कजाकिस्तान की एजदा सेदान से होगा। इसके साथ ही समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: Good evening. This is Akashvani, the news read by Saira Mujtaba. The Defence Acquisition Council today cleared capital acquisition proposals worth over 1,10,000 crore rupees for the Defence Forces. The approval was granted during a meeting of the Council held under the chairmanship of

आपको बता दें कि अब से कुछ ही देर में यानी 6:20 पर आप सुनेंगे संस्कृत में समाचार। 6:30 का समय रहेगा कार्यक्रम ग्राम संसार का। ठीक 7 बजे आप सुनेंगे हिंदी में समाचार। 7:05 पर आप सुनेंगे कार्यक्रम कृषि जगत। 7:35 का समय रहेगा गजलों के कार्यक्रम का। और ठीक 8 बजे आप सुनेंगे कार्यक्रम गीत मालिका।

0: अब से कुछ ही देर में आप सुनेंगे संस्कृत में समाचार।
1: यम आकाशवाणी संप्रति वार्ताः श्रूयन्ताम्। प्रवाचकः जतिन शर्मा। आदौ मुख्य वार्ताः। केन्द्रीय गृहमन्त्री अमित शाहः अद्य गोवायाः पणजी नगरे पश्चिमक्षेत्रीय परिषदः 28 तम

0: ग्राम संसार कार्यक्रम सुनने वाले सभी साथियों को
1: राम
0: राम
1: राम।
0: राम। और शाहिद भाई कहते हैं कि अगर किसी को किसी का साथ मिल जाए तो जो कठिन काम होता है ना वो भी सरल हो जाता है, और जो दुर्गम रास्ते होते हैं वो भी आसान हो जाते हैं।
1: वाकई बिल्कुल सही कह रहे हैं वीरेंद्र भाई। ये इंसान जो है ना, ये जो हमारा पूरा सिस्टम है, ये पूरी पृथ्वी पे जो इंसानियत चल रही है ना, इसका नाम ही अगर सहयोग कहें तो बुरा नहीं होगा।
0: जी बिल्कुल सही कहा आपने। और इस सहयोग से ही जो दुनिया के कार्य हैं वो निपटते हैं, उनको पूरा किया जाता है। और इसमें एक खास काम एक संस्था ज़रूर करती है, वो है पुलिस। और ये सिर्फ देश देश की पुलिस नहीं होती है साजिद
1: ये
0: भाई।
1: पूरी दुनिया की पुलिस होती है वीरेंद्र भाई, आपने बिल्कुल सही कहा। दरअसल ये पूरी दुनिया जो है ना, सहयोग इसी का नाम, या कह लें कि जो सामाजिकता है वो सहयोग का दूसरा नाम है,
0: जी
1: और इसी के जरिए से ये जो पुलिसिंग का काम है ना पूरी दुनिया में,
0: जी
1: समाज को सही रास्ते पे रखने का काम पुलिस करती है।
0: जी
1: नियम कानून बनाए जाते हैं, उसको पालन कराने का काम करती है। और जब पूरी दुनिया में मामला आ जाता है ना, आतंकवाद बढ़ रहा है, ये बढ़ रहा है, वो संगठित क्राइम बढ़ रहा है, तो उसको काबू में रखने के लिए ये पुलिस का काम होता है। फिर वो पूरी दुनिया में कहीं भी कोई भाग के जाए, उसको कोऑर्डिनेशन के साथ ना बताती है, पकड़ती है, और फिर जो है कि उसको अदालत तक लेके आती है और सज़ा मिलती है।
0: जी शाजिद भाई, आप जो बता रहे हैं उसमें महत्वपूर्ण बात यह है कि इंटरपोल जो है, इंटरनेशनल पुलिस को संक्षेप में इंटरपोल कहते हैं, तो
1: हाँ
0: उसकी भी बात आती है। जिला, राज्य, देश और दुनिया सब में पुलिस कार्य करती है। और आज इसी का ही खास दिन है, अंतर्राष्ट्रीय पुलिस सहयोग दिवस है
1: जी,
0: ना।
1: ये सहयोग दिवस दरअसल इसलिए है कि पूरी दुनिया में, चूंकि हर पुलिस की एक टेरिटरी होती है ना, उससे आगे वो नहीं जा सकती है, तो उसको सहयोग करने के लिए, या कहें कि कोऑर्डिनेशन के लिए, के अपराध कहीं भी हो, फैल रहा है, तो उसको काबू में रखने के लिए जो है कि ये पुलिसिंग का जो कोऑर्डिनेशन सिस्टम है, ये इसी का नाम है इंटरपोल।
0: जी
1: इंटरनेशनली ये जो है कि कहीं भी अपराधी भाग के जाए, आतंकवादी भाग के जाए, उसको लोकेट करना और फिर बताना कि ये कहाँ पे है, और उसको जो है कि उसकी जानकारी देना। ये पूरा एक साझा सहयोग सिस्टम डेवलप किया हुआ है।
0: जी शाहिद भाई, आज का जो दिन है उसका जो वैश्विक महत्व है वो सुरक्षा को लेकर है। और ये जनहित में जो पुलिस का समुदाय है उसके कार्यों को पहचानने और उसका सम्मान करने का दिन है।
1: वाकई हम ये सराहते हैं और सम्मान करते हैं, और इसके ज़रिए से ये जताते भी हैं कि अगर ना पुलिस होती तो क्या होता।
0: जी सोच के देखिएगा। और पुलिस का काम ऐसा है कि उसमें अगर लोग भी थोड़ी सी मदद कर दें, उनके काम को समझ सकें और उनको सम्मान भी दें और सहायता भी दें और सहयोग भी करें, तो फिर देखिए बात कुछ और ही निकल कर आती
1: बिल्कुल, ये
0: है।
1: सही भी है, और मनोविज्ञान भी ये कहता है कि अगर कोई अच्छा कर रहा है तो उसको प्रोत्साहन दिया जाए, और
0: जी
1: अगर कोई गलत कर रहा है तो कोशिश करिए कि वो भी सही रास्ते पे आए, और जब सही रास्ते पे आ जाए तो उसको शनै शनै ज़्यादा प्रोत्साहित करिए, तो सारी बुराइयाँ मिट जाएंगी और वो अच्छा ही काम करेगा।
0: जी बहुत ही अच्छी बात बताई है। और अच्छी बातों का जो सिलसिला है वो जारी रहना चाहिए। और जो पुलिस का काम है ना वो आर्थिक अपराध को कम करना भी होता है ना।
1: हाँ बिल्कुल सही कह रहे हैं आप।
0: तो अब पैसे से जुड़ी हुई बहुत सारी ऐसी चीज़ें भी होती हैं, पुलिस का काम पुलिस करेगी लेकिन सरकार का काम सरकार करेगी और बैंकों का काम बैंक करेंगे। जी
1: जी हाँ बिल्कुल सही कह रहे हैं। और दरअसल ये जिसकी तरफ आप बता रहे हैं वो उसी से जुड़ा हुआ ना, ये ज़िंदगी जो है ना, खाना पीना चलना, ये सारी चीज़ें कहीं ना कहीं पैसे पे आके केंद्रित होता है, और ये जो है कि इसी पे एक बड़ी अच्छी जानकारी दे रही हैं ना ममता गांधी, जो कि RBI की पूर्व AGM रही हैं, और ये बता रही हैं कि जनधन खाते, बीमा और पेंशन योजनाओं का सही उपयोग क्या हो सकता है।
0: जी महत्वपूर्ण जानकारी है तो आपको सुनवाते हैं ये बातचीत।
2: नमस्कार श्रोताओं, मैं ममता गांधी। आज हम एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा करेंगे। जनधन खाते, बीमा एवं पेंशन योजनाएं, महिलाओं के लिए उपयोग एवं लाभ। आज की महिला केवल घर तक सीमित नहीं है, वो परिवार की आर्थिक शक्ति भी बन रही है। चाहे गृहिणी हो, किसान महिला हो, मजदूर हो, स्वरोजगार करने वाली महिला हो, नौकरी पेशा महिला हो या

परंतु समस्या ये है कि हम लोगों को उन योजनाओं के बारे में, हम महिलाओं को कुछ अधिक पता नहीं होता, इसलिए हम उन योजनाओं का लाभ नहीं उठा पाते। इसीलिए आज हम योजनाओं की चर्चा करेंगे जो आपके लिए बहुत लाभकारी सिद्ध हो सकती हैं। तो जो मुख्य सरकार की योजना है वो है प्रधानमंत्री जनधन योजना। सामाजिक सुरक्षा बीमा योजनाएं भी हैं और पेंशन योजनाओं के बारे में भी बताऊंगी। और बहुत ही सरल भाषा में आज हम बात करेंगे सबसे पहले प्रधानमंत्री जनधन योजना की। पहले देश में बहुत से लोगों, विशेषकर महिलाओं के पास बैंक खाता नहीं होता था। पैसा घर में रखा रहता था जिससे सुरक्षा की समस्या रहती थी। सरकारी सहायता भी सीधे नहीं मिल पाती थी। इसी समस्या को दूर करने के लिए सरकार ने प्रधानमंत्री जन धन योजना शुरू की। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया और सरकार के प्रयासों से आज करोड़ों महिलाओं के बैंक खाते खुले हैं। जन धन खाते के जो मुख्य लाभ हैं, सबसे बड़ा जो इसमें लाभ है, शून्य बैलेंस खाता। अब आपको ये चिंता करने की जरूरत नहीं है, आपको अपने खाते में कुछ मिनिमम बैलेंस रखना है। अगर आप मिनिमम बैलेंस नहीं रखते तो पैसे कट जाएंगे। इस चीज़ की चिंता अब खत्म हो चुकी है क्योंकि इस खाते में न्यूनतम राशि रखना जरूरी नहीं है और गरीब से गरीब महिला भी अपना खाता खुलवा सकती है क्योंकि शून्य बैलेंस खाते में कोई भी न्यूनतम बैलेंस की वजह से पैसा नहीं कटता है। और सरकारी योजनाओं का सीधा लाभ, ये इसका दूसरा बहुत ही महत्वपूर्ण लाभ है। जैसे गैस सब्सिडी है, पेंशन है, या छात्रवृत्ति है, या मनरेगा मजदूरी, इस तरह का कोई भी जो लाभ सरकार हमें देती है वो सीधे ही हमारे खातों में आ जाता है। इससे बिचौलियों की भूमिका भी समाप्त हो जाती है। इसमें बस करना क्या होता है, आपको बैंक में जाकर लिंक करना होता है, जो अपना खाता है उसको अपने फोन नंबर से और बैंक अकाउंट से लिंक करना होता है, तो ये सभी योजनाओं का आपको लाभ मिल जाता है। इसके अलावा यदि आप जनधन खाता खुलवाते हैं तो आपको रुपे डेबिट कार्ड भी मिलता है। ये हमें खाते के साथ ही मिलता है जिससे कि एटीएम से पैसे निकाले जा सकते हैं। इसके अलावा दुर्घटना बीमा सुविधा भी है। इसी खाते में रुपे कार्ड के साथ ही दुर्घटना बीमा का लाभ भी मिलता है। और सबसे बड़ी बात है, इसका जो लाभ है वो है बचत की आदत। महिलाएं छोटी छोटी बचत कर आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बन सकती हैं क्योंकि इस खाते में ये जरूरी नहीं है कि आपको कम से कम कुछ 100 रुपये या 200 रुपये जमा कराने, आप कितने भी रुपये कभी भी जाकर अपने खाते में जमा कर सकती हैं। फिर ओवरड्राफ्ट सुविधा, इस खाते में कुछ शर्तों के साथ। ओवरड्राफ्ट होता है कि आपके खाते में बैलेंस नहीं है लेकिन फिर भी आपको जरूरी कुछ काम पड़ गया और पैसा निकालना है, तो कुछ शर्तें हैं बैंक की। अगर आप वो शर्तें पूरी करते हैं, वो जो डॉक्यूमेंट्स मांगते हैं वो उनको देते हैं, तो अतिरिक्त राशि निकालने की सुविधा भी मिल सकती है। अब मैं आपको बीमा योजनाओं के बारे में बताऊंगी। सबसे पहले तो यही हम बात करेंगे कि जरूरी क्यों है। जीवन तो अनिश्चित है ना, कभी दुर्घटना, बीमारी या कमाने वाले सदस्य की अचानक किसी भी वजह से मृत्यु हो जाए तो परिवार आर्थिक संकट में आ सकता है। ऐसे समय में बीमा सुरक्षा हमारे लिए कवच का कार्य करती है। सरकार ने कम प्रीमियम में सामाजिक सुरक्षा बीमा योजनाएं शुरू की हैं। तो सबसे पहली योजना जो मैं आपको बताना चाहूंगी उसका नाम है प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना। ये एक दुर्घटना बीमा योजना है। यदि दुर्घटना में मृत्यु हो जाती है या गंभीर विकलांगता हो जाती है तो इसमें आर्थिक सहायता मिलती है। और प्रीमियम की अगर मैं बात करूं तो इसमें सिर्फ और सिर्फ 20 रुपये प्रति वर्ष आपको प्रीमियम देना होता है, यानी प्रति माह लगभग 2 रुपये से भी कम। और आयु सीमा जो इसकी है, आपकी जो आयु है वो 18 वर्ष से लेकर 70 वर्ष के बीच में होनी चाहिए। और बीमा राशि दुर्घटना में मृत्यु या पूर्ण विकलांगता पर 2 लाख रुपए की राशि आपको मिलती है, और अगर भगवान न करे आंशिक विकलांगता है तो 1 लाख रुपए की राशि आपको प्राप्त होती है। इस बीमा की और भी विशेषताएं हैं, जैसे कि बैंक खाते से प्रीमियम स्वतः ही कट जाता है, यानी आपको बार बार बैंक जाकर पैसे नहीं जमा कराने पड़ते। अगर आप एक बार बैंक को इंस्ट्रक्शंस दे देते हैं तो हर साल आपके खाते से खुद ही प्रीमियम कट जाता है। महिलाओं के लिए भी लाभ है क्योंकि घर से बाहर काम करने वाली महिलाएं, घरेलू कामगार, खेतों में काम करने वाली महिलाएं, स्वरोजगार करने वाली महिलाएं, सभी के लिए यह योजना अत्यंत उपयोगी है। अब मैं बात करूंगी एक और बीमा योजना की, प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना। यह एक जीवन बीमा योजना है। यदि किसी कारणवश बीमा धारक की मृत्यु हो जाती है तो परिवार को आर्थिक सहायता मिलती है। इसमें जो प्रीमियम है वो लगभग 436 रुपये प्रति वर्ष का है, यानी लगभग 36 रुपये प्रति माह। आयु सीमा इसमें 18 वर्ष से 50 वर्ष तक है। इस आयु के बीच में आप कभी भी इस पॉलिसी को ले सकते हैं और इसका जो कवरेज है वो 55 वर्ष तक रहता है।

0: और मृत्यु होने पर बीमा राशि 2 लाख रुपए मिलती है। और इसके लाभ क्या है, जो कम आय वाले परिवार हैं उनके लिए बहुत ही उपयोगी है। अब बात करते हैं पेंशन योजनाओं की। जी हाँ, वृद्धावस्था की सुरक्षा। पेंशन योजनाएं क्या है, वृद्धावस्था की सुरक्षा देती हैं, इसलिए पेंशन योजना बहुत ही आवश्यक है। जो सबसे महत्वपूर्ण पेंशन योजना सरकार की है वो है अटल पेंशन योजना। ये वृद्धावस्था में नियमित आय देने वाली योजना है। इसका मुख्य उद्देश्य है असंगठित क्षेत्र के लोगों को बुढ़ापे में आर्थिक सुरक्षा देना। इसकी जो आयु सीमा है वो है 18 वर्ष से लेकर 40 वर्ष तक। तो इसमें जो पेंशन की राशि है वो 60 वर्ष की आयु के बाद मिलनी शुरू होती है। आप हिसाब से अपना प्रीमियम तय करेंगे, आपको 1000, 2000, 3000, 4000 या 5000, इतने अमाउंट की, इतनी राशि की प्रति माह तक के पेंशन विकल्प मिलते हैं। कितना योगदान देना होता है आपको, आप जानना चाहेंगे तो ये जो व्यक्ति की वर्तमान आयु पे 18 साल में ले रहे हैं या आप 40 साल में ले रहे हैं, या इस पे निर्भर होता है कि आपकी आयु कितनी है, उसके हिसाब से और चुनी गई पेंशन राशि, जैसे आपको 1000 चाहिए, 2, 3 या 4 या 5, जितने हजार की पेंशन चाहिए 1 से 5 हजार के बीच में, और आपकी आयु के हिसाब से आपका जो प्रीमियम है उसकी राशि तय की जाती है। जैसे उदाहरण के लिए अगर मैं बताऊं कि कोई अगर महिला 25 वर्ष की आयु में जुड़ती है और वो 5000 रुपये मासिक पेंशन चाहती है, तो उसको लगभग 376 रुपये प्रति माह जमा करने होंगे। और यदि वही महिला 1000 रुपये पर माह की पेंशन चुनती है तो उसका योगदान इससे भी कम होगा, यानी 376 रुपए से भी कम होगा अगर उसको 5000 नहीं 1000 रुपए महीना चाहिए। तो अटल पेंशन योजना की और विशेषताएं जो मैंने आपको बताई, एक तो 60 वर्ष के बाद निश्चित मासिक आय है आपकी, और खाता धारक की मृत्यु के बाद जीवन साथी को पेंशन मिलती है, ये एक इसका बहुत बड़ा लाभ है। और इसके अलावा यदि दोनों की मृत्यु हो जाती है तो दोनों की मृत्यु के बाद जो नामांकित व्यक्ति होता है उसको भी संचित राशि मिलती है। इसके अलावा पेंशन फंड रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी है हमारी, ये योजना उसके द्वारा संचालित की जाती है और असंगठित क्षेत्र के लोगों के लिए ये बहुत ही उपयोगी है। और दूसरी बात, आज तो डिजिटल बैंकिंग का ज़माना है, इसका भी बहुत बड़ा महत्व है। आप सब जानते होंगे कि आजकल आपकी जो बैंकिंग है वो आपके हाथ में होती है, तो इसको भी सीखना बहुत ज़रूरी है। आज मोबाइल बैंकिंग, UPI और डिजिटल भुगतान का समय है। महिलाएं यदि डिजिटल बैंकिंग सीख लें तो वो घर बैठे पैसे भेज सकती हैं, बिजली पानी के बिल जमा कर सकती हैं, सुरक्षित लेन देन कर सकती हैं, लेकिन सावधानी बहुत ज़रूरी है। मैं आपको कुछ छोटी छोटी बातें बताना चाहूँगी जो आपको डिजिटल बैंकिंग करते समय ध्यान रखनी चाहिए। सबसे पहले, आपने बार बार सुना होगा अपना OTP किसी को ना बताएं। OTP का मतलब होता है वन टाइम पासवर्ड, तो OTP आपको किसी को नहीं बताना। दूसरा, आपका जो ATM कार्ड है, रुपे कार्ड अगर आपने लिया जनधन खाते के साथ मिला, तो वही आपका ATM कार्ड होता है, उसका एक पिन होता है। पिन आप जब चाहें बदल सकती हैं और समय समय पर आपको बदलना भी चाहिए, और उस वो जो पिन है उसको आप कभी भी साझा नहीं करना है। और फर्जी कॉल से सावधान रहें, किसी की बातों में ना आए। कोई बैंक का बनकर फोन कर रहा है तो ये जान लें कि बैंक का कोई भी अधिकारी आपको बिना बात के फोन नहीं करता है। तो कोई अगर फर्जी फोन है उससे सावधान रहें, केवल अधिकृत बैंक से संपर्क करें। महिलाओं को आर्थिक रूप से मजबूत बनाना सरकार का ही काम नहीं है, पूरे समाज की जिम्मेवारी है। परिवार वाले अगर सुन रहे हैं तो उन्हें भी बताना चाहूंगी कि वे महिलाओं के बैंक खाते खुलवाएं, उन्हें बैंकिंग सिखाएं, बचत और बीमा के लिए प्रेरित करें। जब महिला आर्थिक रूप से मजबूत होगी तभी परिवार और देश मजबूत होगा। योजना से जुड़े भविष्य के लिए पेंशन योजना अपनाएं, छोटी शुरुआत भविष्य में बड़ी सुरक्षा देती है। अंत में यही कहना चाहूंगी, सशक्त महिला सुरक्षित परिवार और समृद्ध राष्ट्र की पहचान है। इसी संदेश के साथ नमस्कार।
1: साथियों, अभी आप सुन रहे थे ये बातचीत, विषय था जन धन खाते, बीमा और पेंशन योजनाओं का उपयोग। और इस विषय पर असिस्टेंट जनरल मैनेजर RBI पूर्व ममता गांधी जानकारी दे रही थी।
2: भाई वीरेंद्र भाई, देखिए अभी बात पैसे की हो रही थी, तो मैं तो कहूँगा कि अब हमारे बहनों भाइयों का मनोरंजन कराना है और वो रागनी जो भी हो ना, वो भी पैसे की होनी चाहिए।
1: अच्छा, नेकी और पूछ
2: नहीं, नेकी और पूछ।
1: जी ठीक कहा आपने, तो चलिए बात करते हैं पैसे की। और गायक हैं जयवीर भाटी।

0: वीरेंद्र भाई, अभी देखिए जयवीर भाटी कह रहे थे कि चक्कर खा के गिरा धरण पे, मरता मरता रह गया रे।
1: जी शाहिद भाई, बिल्कुल ना मरण दें किसी ने, क्योंकि हमारे पास एक खास योजना है, प्रधानमंत्री जन औषधि
0: ये
1: योजना।
0: तो बड़े काम की योजना है भाई। इसमें
1: जी
0: जो है ना,
1: हाँ
0: वाकई आपने जो बात बताई ना कि मरने नहीं देंगे, ये दरअसल जो ये स्कीम है, सरकार की मंशा ही यही है कि किसी की जान दवाई के बिना न जाए। भाई
1: बिल्कुल
0: मरना तो सभी को है
1: जी
0: ना, एक न एक दिन जाना है, लेकिन कोई बीमार कोई परेशान सिर्फ इसलिए न रह जाए कि उसको
1: कैसे
0: दवाई नहीं
1: नहीं
0: मिले।
1: मिल रही। तो जन औषधि योजना के तहत क्या क्या मिलता है बताने वाले हैं आपको शाहिद भाई। जो इसकी खास बात है ना, वो ये है कि जगह जगह पे जन औषधि केंद्र खोले जाते हैं, जिसमें तकरीबन 50% से लेके 90% तक सस्ती दवाएं मिलती हैं और गुणवत्ता उनकी उतनी होती है।
0: ये तो बहुत बड़ी बात है। मतलब अगर कोई दवाई 100 रुपए की मिल रही है, तो 50 रुपए से लेके 10 रुपए तक उसकी कीमत हो सकती है।
1: जी बिल्कुल सही कहा आपने। और इसमें 2000 से लेके 300 तक जो दवाइयां हैं, मतलब उनकी जो नंबर ऑफ मेडिसन्स हैं, दवाइयों की संख्या
0: इतनी
1: है।
0: आर्टिकल, इतनी
1: जी
0: इतने तरह की दवाइयां आपको मिल
1: जी
0: रही हैं।
1: जी और ये जितने भी जन औषधि केंद्र हैं, उन पे गुणवत्ता की भी पूरी मतलब खैर खबर ली जाती है, ऐसी नहीं मिल जाती वो
0: भाई ये
1: दवाइयां।
0: तो सरकार ने चला रखी है, सरकार का सिस्टम। और बड़ी चीज़ ये है कि देश भर में ना लगभग लगभग हम समझते हैं कि 20,000 इसके जो है कि सेंटर खोले गए हैं।
1: जी और जो साथी वेबसाइट के थ्रू इसको देखना चाहते हैं, जानना चाहते हैं कि भाई इसकी लोकेशन कहाँ है, कहाँ पे जन औषधि केंद्र हैं, तो इसके लिए आपको लॉगिन करना पड़ेगा प्रधानमंत्री जन औषधि परियोजना पोर्टल।
0: एक चीज़ और भी है वीरेंद्र भाई,
1: जी
0: अगर किसी को ये शक है कि सस्ती मिल रही है तो ये दवाई ऐसी काम नहीं करेगी, पूरी नहीं है, तो बिल्कुल ये दिमाग से बात निकाल दें, क्योंकि पूरी तरीके से जांची परखी दवाई है। और जो कई तरह के टैक्स होते हैं, बड़ी बड़ी कंपनियों का मुनाफा होता है ना, उसको कम करके सरकार ने यहाँ पे लाया है, ताकि आपको 50 से 90% कम दाम में ये मिले।
1: जी महत्वपूर्ण योजना है, और जो कोशिश करनी चाहिए, सरकार कोशिश कर रही है, हम कोशिश कर रहे हैं, बीमार हो जाए उसे भी कोशिश करनी है कि भाई अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखें। लेकिन बाकी तो जो कुछ लिखा है वो
0: ऊपर वाले के ही हाथ में है भाई,
1: जी
0: तकदीर जिसको कहते हैं।

0: वाकई तकदीर का कोई बेरा नहीं होता है। अभी आप सुन रहे थे जयवीर की आवाज़ में ये प्रस्तुति, और इसी के साथ आज का ये ग्राम संसार कार्यक्रम यहीं पर संपन्न होता है। सभी सुनने वालों को राम
1: राम राम।
0: राम। इस कार्यक्रम के प्रस्तुत करता हैं तुषार पराशर और संयोजक शिव नंदन लाल।

0: ये आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ है। मीडियम वेव 366.3 मीटर अर्थात 800 किलोहर्ट्ज़ या 810 किलोहर्ट्ज़ पर। अब से कुछ ही देर में आप सुनेंगे हिंदी में समाचार।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं करिश्मा राय। निर्वाचन आयोग ने असम की नागांव लोकसभा सीट पर उपचुनाव की घोषणा की है। इसके साथ ही तमिलनाडु और पश्चिम बंगाल की दो दो विधानसभा सीटों और पुद्दुचेरी की एक सीट पर उपचुनाव की घोषणा की गई है। आयोग ने बताया कि तमिलनाडु की मदुरंतकम और धरपुरम सीट, पश्चिम बंगाल की रजीनगर और नंदीग्राम सीटें तथा पुद्दुचेरी की थट्टन चावड़ी विधानसभा सीट पर मतदान होगा। लोकसभा और विधानसभा उपचुनाव की अधिसूचना बुधवार को जारी की जाएगी। नामांकन इस महीने की 16 तारीख तक दाखिल किए जा सकते हैं। मतदान 6 अक्टूबर को और मतगणना 9 अक्टूबर को होगी। गृह मंत्री अमित शाह ने आज गोवा पुलिस को प्रतिष्ठित राष्ट्रपति पुलिस ध्वज प्रदान किया। इस अवसर पर गृह मंत्री ने गोवा पुलिस की सेवा, व्यावसायिकता

0: साहस और अनुशासन की सराहना की।
1: 8 दशकों की गौरवशाली गोवा पुलिस की सेवा राष्ट्रपति जी के दिए हुए निशान के साथ देश भर की पुलिस की कतार में खड़ी है। ये गौरव जिन जिन राज्यों की पुलिस को मिला वो पुलिस के गौरवशाली इतिहास, साहस, अनुशासन और समर्पण के कारण ही राष्ट्रपति महोदय ने गोवा को प्रेसिडेंट कलर से सम्मानित करने का काम किया है।
0: समारोह गोवा के तलेगांव स्थित डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी इंडोर स्टेडियम में आयोजित किया गया। श्री शाह ने 1930 साइबर धोखाधड़ी हेल्पलाइन के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आधारित वॉइस असिस्टेंट सेवा भी शुरू की। यह 12 भाषाओं में नागरिकों और पर्यटकों को त्वरित सहायता उपलब्ध कराएगा। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की अध्यक्षता में आज रक्षा खरीद परिषद ने सशस्त्र बलों के लिए 1,10,000 करोड़ रुपए से अधिक के पूंजीगत प्रस्तावों को मंजूरी दी। रक्षा मंत्रालय ने कहा कि 98% सामान भारतीय कंपनियों से खरीदे जाएंगे। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने आज नई दिल्ली में अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के उप प्रबंधन निदेशक नाइजेल क्लार्क से भेंट की। बैठक में भारत और कोष के बीच संबंधों पर चर्चा हुई। इस दौरान कोष के दक्षिण एशिया क्षेत्रीय प्रशिक्षण और तकनीकी सहायता केंद्र को मजबूत करने में भारत की भूमिका की सराहना की गई। लक्जमबर्ग के ऊर्जा तथा पर्यटन मंत्री लेक्स डेल्स ने आज नई दिल्ली में विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री जितेंद्र सिंह से मुलाकात की। दोनों नेताओं ने अंतरिक्ष क्षेत्र में मौजूदा सहयोग, भविष्य की संभावनाओं और संस्थागत तथा व्यावसायिक सहयोग बढ़ाने पर चर्चा की। डॉ जितेंद्र सिंह ने कहा कि अंतरिक्ष क्षेत्र दोनों देशों की साझेदारी का महत्वपूर्ण हिस्सा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने केंद्रीय शिक्षा राज्य मंत्री जयंत सिंह का एक लेख सोशल मीडिया पर साझा किया। श्री मोदी ने कहा कि शिक्षक शिक्षा के कलाकार शीर्षक वाले इस लेख में जयंत सिंह ने बताया है कि शिक्षण एक कला और रचनात्मक कार्य है। लेख में श्री सिंह ने यह भी बताया है कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020, उल्लास, विद्यांजलि और कई अन्य पहले शिक्षण और सीखने की प्रक्रिया को मजबूत कर रही हैं। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा कि भारत को दुनिया की फार्मेसी के रूप में अपनी स्थिति मजबूत करते हुए वैश्विक चिकित्सा और स्वास्थ्य सेवा केंद्र के रूप में उभरना चाहिए। नई दिल्ली में फार्मा मैकटेक और लैब नेक्स्ट एक्सपो 2026 के उद्घाटन समारोह में श्री गोयल ने कहा कि स्वास्थ्य सेवा का दायरा केवल इलाज तक सीमित नहीं है। केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने आज नई दिल्ली में एक उच्च स्तरीय बैठक की अध्यक्षता की। बैठक में राज्यों की भागीदारी बढ़ाकर कृषि विज्ञान केंद्रों को मजबूत करने की कार्य योजना की समीक्षा की गई। श्री चौहान ने निर्धारित समय सीमा में लक्ष्य हासिल करने के लिए राज्य सरकारों की सक्रिय भागीदारी और समय पर सहयोग की आवश्यकता पर बल दिया। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने नई दिल्ली के सत्य निकेतन में ढही इमारत स्थल का आज फिर दौरा किया। मुख्यमंत्री ने कहा कि जिन अधिकारियों की अनदेखी के कारण यह दुर्घटना हुई है उन्हें तुरंत निलंबित किया जाए। अहमदाबाद में शीतल देवी ने विश्व तीरंदाजी पैरा श्रृंखला में महिला कंपाउंड के व्यक्तिगत वर्ग के फाइनल में प्रवेश कर लिया है। शीतल देवी ने सेमीफाइनल में आज सरिता को हराया। इसके साथ ही यह समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

ये आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है। मीडियम वेव 366.3 मीटर अर्थात 819 किलो हर्ट्स, DRM 810 किलो हर्ट्स पर। आइए अब सुनते हैं कार्यक्रम कृषि जगत।

0: कृषि जगत कार्यक्रम सुनने वाले सभी भाई बहनों को
1: राम
0: राम राम।
1: राम।
0: और शाहिद भाई, जो कृषि का व्यवसाय है ना,
1: हाँ महेंद्र
0: वो
1: भाई,
0: इंसानों का सबसे पुराना व्यवसाय है। सबसे पहले उन्होंने कृषि ही करनी शुरू की, उसके बाद कृषि से ही अन्य व्यवसाय आरंभ हुए हैं।
1: महेंद्र भाई बड़े पते की बात बताई आपने, 100% 100% एकदम सही बात बता रहे हैं। और वाकई कृषि से पुराना कोई इतिहास है ही नहीं। मानव सभ्यता जब शुरू हुई, बल्कि इंसान धरती पे जी किसी भी रूप में आया, पैदा हुआ, उसके बाद पहला इतिहास कृषि का है। और अगर पहली तलाश करें तो आवश्यकताएं, चूंकि आविष्कार की जननी है, तो वो भोजन और पानी की तलाश है।
0: जी
1: ये दो चीज़ें बड़ी अहम हैं।
0: जी शाहिद भाई, जितनी भी अगर हम पुरानी सभ्यताओं को देखें तो वो नदियों के किनारे ही पनपी, जहाँ मीठे पानी की नदियाँ थीं उनके पास ही सभ्यताएं बनी। और वहाँ सबसे पहले क्या हुआ कि खेती करनी शुरू
1: वहाँ
0: की।
1: खेती करनी शुरू की, फिर उसके बाद
0: हाँ
1: धीरे धीरे कुनबे
0: हाँ
1: जुटे, धीरे धीरे धीरे
0: जी
1: धीरे कॉलोनाइजेशन, और एक तरीके से कह लीजिए ना कि वो पूरा समुदाय बना, और इसी तरीके से पूरी दुनिया जो है कि परिष्कृत होती गई, विकसित होती गई, और
0: जी
1: आज यहाँ तक हम पहुँचे हैं।
0: जी शाहिद भाई, जो खेती बाड़ी है वो दुनिया का आधार है, इसी से पूरी दुनिया का जो चक्र है वो चलता रहता है। और अब खेती भी इतनी बदल गई है कि इसमें किसान जो है नए नए तरीके
1: भाई
0: अपनाते
1: देखिए,
0: हैं।
1: आवश्यकताओं के अनुरूप जो है ना, कई तरह के रिसर्च होते हैं, संवर्धन होता रहता है, और ये सतत प्रयास है,
0: जी
1: सतत प्रक्रिया है। और इसी के नतीजे में आज ये देखिए कि हम गेहूं कितना ज़्यादा उत्पादित कर रहे हैं। एक दौर था, दादा परदादा के ज़माने में लोग बताते थे कि इतना कम आटा पैदा हो, इतना कम गेहूं पैदा होता था कि कभी कभार जो है कि वो जब
0: गेहूं
1: मेहमान
0: की
1: आते थे,
0: रोटी।
1: गेहूं की रोटी बनती थी, बाकी मोटा अनाज खाया जाता था, वो भी पूरा नहीं होता था।
0: जी शाहिद भाई, ऐसे ही जो हमारी खेतीबाड़ी की फसलें हैं उनमें कई बार मूल्य कम होने की वजह से किसान है ना उसको करना नहीं चाहते,
1: हाँ
0: लेकिन अगर उन्हें सही समय पे और उनकी फसल का सही मूल्य मिल जाए तो पौ बारह हो जाती है।
1: अरे बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, और मेरे पास बिल्कुल इसी मुद्दे पे एक जानकारी है
0: हाँ जरूर।
1: ना, वो जानकारी जो है कि डॉक्टर श्रुति सेठी दे रही हैं, जिनसे बात कर रहे हैं अमित तेवतिया, और इस विषय का नाम है फसलों के मूल्य संवर्धन द्वारा अधिक आमदनी।
0: जी तो सुनवाते हैं आपको ये बातचीत।
2: नमस्कार। जैसा कि आप जानते हैं कि हम अपने कार्यक्रम में कोई ना कोई वैज्ञानिक सोच, अनुसंधान और ऐसी जानकारी साझा करते हैं जिसमें हमारे किसान भाई बहन हों, हमारे युवा साथी हों, जो आज कहीं भी रोजगार की दृष्टि से अपने को कुछ नया सोचने की श्रेणी में रखते हैं, तो हमारा कार्यक्रम उनके लिए बहुत ही लाभकारी होता है। आज हमने अपने कार्यक्रम में डॉक्टर श्रुति सेट्टी को आमंत्रित किया है। आप प्रधान वैज्ञानिक हैं भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान पूसा नई दिल्ली में। डॉक्टर साहब, आपका कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत, बहुत बहुत अभिनंदन।
3: धन्यवाद।
2: और मित्रों, जैसा कि आप जानते हैं कि हम लगातार जो पारंपरिक कृषि कर रहे हैं, लेकिन आज के समय में यदि हम मूल्य संवर्धन करें फसलों में, तो निश्चित रूप से हम अपने आसपास के लोगों के लिए भी एक नया व्यवसाय खड़ा कर सकते हैं, स्वयं के लिए रोजगार के संसाधन उपलब्ध कर सकते हैं अपने पास ही। तो आज हम बात करेंगे डॉक्टर श्रुति सेट्ठी से, फसलों के मूल्य संवर्धन से अधिक आमदनी कैसे करें। तो डॉक्टर साहब, सबसे पहले हम यही जानना चाहते हैं कि ये जो है मूल्य संवर्धन, कहीं ना कहीं हमारे साथी सोच रहे होंगे कि ये क्या है और किस प्रकार इसको समझा जाए, तो यहीं से शुरू करते हैं कि मूल्य संवर्धन है क्या।
3: जी आपका बहुत बढ़िया प्रश्न है। सबसे पहले हमें समझना चाहिए कि क्या चीज़ होती है मूल्य संवर्धन। जब हम मूल्य संवर्धन या वैल्यू एडिशन की बात करते हैं, तो उसका ये मतलब है कि हम किसी भी खाद्य उत्पाद को जो हम कटाई के बाद लेते हैं, या जैसे हम दूध लेते हैं गायों से, उनको कैसे हम उपभोक्ता तक नए नए तरीके से पेश करें, कैसे उसको ऐसे एडिबल फॉर्म में दें। जैसे आपने धान की खेती करी तो धान आया आपके पास, वो खाने योग्य तो नहीं होता है,
2: बिल्कुल
3: लेकिन जब तक हम उसकी प्रोसेसिंग नहीं करेंगे तो उसको हम खाने योग्य नहीं बना सकते।
2: जी
3: तो ये एक प्रकार का मूल्य संवर्धन है, कैसे किसी जो खाद्य उत्पाद है उसको हम कैसे खाने योग्य बनाएं। दूसरी चीज ये है कि हम उसकी कैसे भंडारण अवधि को बढ़ाएं। जैसे जब हम दूध धोते हैं तो वो ज्यादा देर नहीं टिक पाता है, लेकिन जब हम उसकी पैस्टराइजेशन कर देते हैं या कम ताप पे रखते हैं, तो वो हम ज्यादा देर तक उसका रख रखाव कर सकते। सकते हैं। ऐसे ही फल सब्जी, उनको ज्यादा दिन रखना है तो हमें कुछ प्रोसेसिंग या प्रसंस्करण करना है ताकि हम ज्यादा दिन तक रख पाए। इससे क्या होगा, जो भी प्रोसेसिंग करते हैं, मूल्य संवर्धन मतलब हम उसकी वैल्यू बढ़ाते हैं। जो भी आपकी उपज आई उसमें जितने की होगा उससे आपको कभी कभी 5 गुना या 10 गुना आमदनी होती है, तो वो मूल्य संवर्धन।
2: यानी कि बिल्कुल हम कह सकते हैं कि फसल को किसी अन्य उत्पाद के रूप में उपभोक्ता तक पहुंचाना मूल्य संवर्धन है। तो अब हम जब इतना समझ रहे हैं तो अब हमें सीखना है या हम कोशिश करेंगे कि जो मूल्य संवर्धन है वो किन किन फसलों में किया जा सकता है।
3: जी देखिए, सारी फसलों में हम मूल्य संवर्धन कर सकते हैं। आजकल आप देखिए बाजरे का बहुत प्रचलन है, तो बाजरा आप ऐसे नहीं खा सकते
2: जी।
3: उसका आपको बाहर का छिलका उतारना है या उसके कोई प्रसंस्कृत उत्पाद बनाने हैं, वो भी एक मूल्य संवर्धन है। कोई फल सब्जी जैसे टमाटर, आंवला, या अगर हम गोभी की बात करें, इन सब का अचार चटनी बनता है। फल लेंगे अगर तो जैसे सेब है, सेब का जैम बहुत प्रचलित है, या हम आम ले, आम का अमचूर सबसे ज्यादा प्रचलित है। हर घर में अमचूर इस्तेमाल होता है, हर घर में अचार आम का इस्तेमाल होता है। तो आप कोई भी फसल लें उनका आप मूल्य संवर्धन जरूर कर सकते हैं।
2: यानी कि हम तो कह सकते हैं कि हमारे जो किसान भाई बहन हैं, हमारे जो युवा साथी हैं, चाहे वो अपने खेतों में कोई भी फसल लगाए हुए हैं, बागवानी कर रहे हैं, निश्चित रूप से उसमें आप मूल्य संवर्धन कर सकते हैं।
3: बिल्कुल, जैसे अभी देखिए गेहूं की बात करें, अगर हम गेहूं से हम आटा बनाएंगे तो वो एक मूल्य संवर्धन है। आप प्रोसेसिंग कर रहे हैं और उससे जो आटा बनेगा उससे मैदा बनेगा, और मैदा से आगे जाके देखिए कई सारे बेकरी के उत्पाद बनते हैं, या आप भटूरा देखेंगे मार्केट में मिलता है। तो ये सारी चीजें क्या हैं, आपको अलग अलग विविध प्रकार के प्रोडक्ट्स देती है, ये एक मूल्य संवर्धन।
2: तो डॉक्टर साहब, जब हम मूल्य संवर्धन करने का विचार करें तो सबसे पहले आता है करें कैसे
3: जी।
2: तो जो हमारी वैज्ञानिक सोच है, जो आप अनुसंधान कर रहे हैं, लगातार देश के बेटे बेटियां लगे हैं अनुसंधान के क्षेत्र में, और आज हम देख रहे हैं कि विज्ञान महत्वपूर्ण स्थान रखता है, तो हम अपने किसान भाई बहनों तक कैसे पहुंचाएं कि हम किस प्रकार से मूल्य संवर्धन शुरू करें।
3: देखिए, सबसे पहली बात है, किसान भाई बहन अगर शुरू करना चाहते हैं तो वो एक छोटी इकाई लगाएं और ये देख लें कि उनको कौन सा रॉ मटेरियल सबसे ज्यादा उपलब्ध है। क्योंकि क्या होता है, ट्रांसपोर्टेशन में बड़ी दिक्कत आती है, कहीं से दूर जगह से अगर आपको रॉ मटेरियल लेना है तो दिक्कत आएगी। आपके आसपास के खेत में क्या चीज अवेलेबल है, कौन सी क्रॉप अवेलेबल है, तो वो उसको लेके फिर मार्केट डिमांड देखें कि मार्केट में कौन सी चीज ज्यादा प्रचलित है, उपभोक्ता को कौन सी चीज ज्यादा पसंद है, उस चीज का व्यवसाय शुरू करना फायदेमंद होता है। क्योंकि क्या है, ट्रांसपोर्टेशन आप हमारे किसान भाई बहन अगर पैसा खर्चेंगे तो उतना मुनाफा नहीं हो पाएगा उनको, इसलिए जो आसपास फसलें उग रही हैं उन्हीं का चयन करें और उनको हम ये बोलते हैं कि प्रोसेसेबल वेराइटी लें। ताकि जैसे आम के केस में हमें ये चाहिए, अगर अचार डालना है तो उसका जो गिटक है वो पतली होनी चाहिए, गूदा ज्यादा होना चाहिए, तो ऐसे वो वैरायटी का चयन करें जो प्रोसेसेबल हो, जिससे आपका जो फाइनल प्रोडक्ट बनता है उससे आपको मुनाफा हो पाए। तो आसपास देखना पड़ेगा,
2: सीधा कहें कि लागत कम आए और उत्पादन अच्छा मिले, तो यही अधिकतम लाभ का उद्देश्य होता है कि किसान भाई घर बैठे अधिकतम लाभ कैसे कमाए। यही सोच है और इसी को लेकर के मूल्य संवर्धन पे बात चल रही है डॉक्टर श्रुति सेट्टी से। तो डॉक्टर साहब, कहीं ना कहीं प्रशिक्षण की जब बात आती है तो जो हमारे अनुसंधान संस्थान है या कृषि वैज्ञानिक केंद्र है, ऐसे में हमारे युवा साथी, हमारे किसान भाई बहन कहाँ संपर्क कर सकते हैं कि कैसे करें इसको, यदि वो सीखना चाहते हैं तो कहाँ इसका प्रशिक्षण मिल सकता है।
3: देखिए, हमारे भारतवर्ष में इतने सारे केवीके हैं, तो जिस भी राज्य से कोई भी किसान भाई बहन हमारा शुरुआत करना चाहते हैं प्रोसेसिंग की, कोई भी व्यवसाय लगाना चाहते हैं, तो सबसे पहले वो सबसे पास वाले केवीके में संपर्क करें
2: जी।
3: या कोई भी इतनी यूनिवर्सिटीज हैं, स्टेट एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटीज हैं जो रेगुलर ट्रेनिंग कराती हैं, वहां पे शुरुआत करने से पहले आपको ट्रेनिंग लेना अनिवार्य है। क्योंकि जब तक आपको बेसिक्स नहीं पता होंगे, छोटी छोटी बातें नहीं पता होंगी, तब तक आप क्वालिटी का ध्यान नहीं रख पाएंगे, एक अच्छा प्रसंस्कृत उत्पाद नहीं बना पाएंगे। अभी हमारे संस्थान में अगले महीने सितंबर में 8 से 13 तारीख तक हम लोग एक ADP चलाने वाले हैं, एग्रीकल्चरल डेवलपमेंट प्रोग्राम, एग्रीप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट प्रोग्राम। उसके अंतर्गत हम पूरे देश से एप्लीकेशन इनवाइट करते हैं और ये 5-6 दिन की ट्रेनिंग होती है, उनमें हम अलग अलग चीजों का ज्ञान देते हैं, जैसे आपने बोला साइंटिफिक तरीके से ज्ञान देते हैं, ताकि जो भी अपना व्यवसाय शुरू करना चाहे वो कर पाए। और इसके अलावा हमारे यहाँ स्टार्टअप्स बहुत आते हैं, हमारे यहाँ इनक्यूबेशन सेंटर है हमारे पूसा संस्थान में, वहां पे आके भी आप ट्रेनिंग ट्रेनिंग ले सकते हैं।
2: तो इसमें डॉक्टर साहब यदि हम बात करें, बहुत सारे हमारे जो कार्यक्रम किसान भाई बहन सुनते हैं, तो इसमें ये जरूरी नहीं है कि वो किसान ही हो, हमारे जी युवा साथियों के लिए भी आप सरकार इसमें क्या कुछ योगदान दे रही है और क्या सरकार का है कि हमारे युवा साथी इससे जुड़े और रोजगार लें, इसके विषय में आप क्या कहना?
3: देखिए, स्टार्टअप्स के लिए बहुत सारे प्रोग्राम सरकार ने चलाए हुए हैं, हमारे यहाँ संस्थान में भी बहुत है। हमारे यहाँ ZTMU करके एक यूनिट है जो इन स्टार्टअप्स को एकत्रित करके उनको थोड़ा ये पैसा देके उनसे उनको मदद करते हैं ताकि वो अपना जो भी आइडिया है
2: जी।
3: क्योंकि आजकल युवा वर्ग में बहुत बढ़िया बढ़िया आइडिया है कि कैसे हम लोग प्रसंस्करण में जाए या कोई बहुत ही अच्छा इनोवेटिव प्रोडक्ट बनाए, तो उसके लिए हम उनको सपोर्ट करते हैं, हमारा संस्थान सपोर्ट करता है।

0: और उनके आइडिया को हम आगे ले जाते हैं। फिर कभी कभी हम मार्केट से भी उनको संपर्क कराते हैं ताकि उनका जो प्रोडक्ट है वो अच्छे से आगे चल सके।
1: तो डॉक्टर साहब, जब मूल्य संवर्धन की बात आएगी तो निश्चित रूप से इसमें कहीं ना कहीं कृषि यंत्रों की आवश्यकता होती है,
0: बिल्कुल
1: तो उसमें भी सरकार योगदान करती है। आप उसमें क्या सलाह हमारे साथियों को देना
0: देखिए,
1: चाहेंगे?
0: जब भी कोई आपको प्रोसेसिंग का कोई प्लांट लगाना है तो कैपिटल कॉस्ट में आपको अलग अलग जगह से 35% तक सहायता मिल सकती है। किसान भाई बहन जैसे MSME है,
1: जी
0: ऐसे कई सारे संस्थान सरकार के जो आपको मॉनिटरी हेल्प करती है ताकि आप अपना एक इकाई लगा पाएँ। तो उसके लिए आपके पास एक पूरा प्रोजेक्ट प्लान तैयार होना चाहिए जो आप वहाँ पेश करेंगे ताकि उनको लगे कि हाँ इसमें दम है, तभी तो सरकार हेल्प
1: बिल्कुल,
0: करेगी ना आपको। और इसके लिए आपको बैकग्राउंड होना चाहिए, आपको नॉलेज होनी चाहिए। जब तक आपको नॉलेज नहीं है, आपका प्रशिक्षण नहीं है, तब तक आपको आगे बढ़ने में भी मुश्किल आएगी। तो सबसे पहले प्रशिक्षण लें और आप प्रोजेक्ट बना के आप प्रपोज करें तो उससे आपको सहायता मिलेगी।
1: डॉक्टर साहब, कई बार जब बैंक में जाते हैं हमें लोन चाहिए, तो कई बार देखा गया है कि जो प्रशिक्षण की आप बात कर रहे हैं, यदि प्रशिक्षण का कोई प्रमाण पत्र हमारे पास है, कोई सर्टिफिकेट है,
0: जी
1: तो उस पर बैंक आसानी से लोन दे देते हैं और युवा साथी काम में लग जाते हैं। तो क्या आपके माध्यम से भी, या हम कहें सरकार के माध्यम से भी, जो आपके प्रशिक्षण संस्थान है उसमें हमारे युवा साथियों को इसमें लाभ मिलेगा?
0: देखिए, हम तो प्रशिक्षण दे सकते हैं
1: जी
0: और जो आपको अच्छे से प्रशिक्षण देने के बाद आपको जो सर्टिफिकेट मिलता है उससे आपको एक कॉन्फिडेंस भी आएगा कि हम ये कर सकते हैं। तो निश्चित तौर पे आपको कुछ ना कुछ फ़ायदा होगा, आपको लोन लेने में भी सहायता मिलेगी, तो वो आप कर सकते हैं।
1: तो हम तो यही कहेंगे कि चलते चलते आप एक बार और हमारे सभी युवा साथियों को कहें कि भाई, जो मूल्य संवर्धन है, इससे आप जो रोजगार के संसाधन जुटा सकते हैं, इसमें क्या टिप्पणी आपकी रहेगी?
0: देखिए, मैं तो सबसे पहले जो भी ये अपना इकाई लगाना चाहें या अपना प्रसंस्करण का यूनिट लगाना चाहें तो यही सलाह दूंगी कि आप सबसे पहले ट्रेनिंग लें, एक नॉलेज गेन करें, पहले मार्केट देखें कि आपको किस चीज़ पे व्यवसाय शुरू करना है ताकि आगे जाके जब भी आप एक व्यवसाय शुरू करें, हम चाहते हैं कि वो सक्सेसफुल हो।
1: बिल्कुल,
0: तो ये ना हो कि आपको बीच में दिक्कतें आनी शुरू हो जाएं, इसलिए पहले ही आप नॉलेज गेन करें और उस चीज़ में जाएं जिसमें आपको अच्छा लगता है, जिस जो प्रोडक्ट आपको लगता है मार्केट में बहुत अच्छी तरह चलेगा। तो और इसके लिए आपको रजिस्ट्रेशन भी कराना है क्योंकि FSSAI का
1: जी
0: रजिस्ट्रेशन भी ज़रूरी है, वो लें और फिर ही कोई बिजनेस शुरू करें।
1: यानी कि सीधी बात है, पहले सीखना और सीखने के बाद उसको कैसे हमें अप्लाई करना है, तब कमाना शुरू होगा। डॉक्टर श्रुति सेट्ठी, आप कार्यक्रम में उपस्थित हुई और इतनी अच्छी जानकारी हमारे श्रोताओं तक पहुंची, आपका बहुत बहुत आभार।
0: धन्यवाद।
2: साथियों, अभी आप सुन रहे थे बातचीत, विशेषज्ञा थीं डॉक्टर श्रुति सेट्ठी और आपसे बात कर रहे थे अमित तेवतिया। विषय था फसलों के मूल्य संवर्धन द्वारा अधिक आमदनी। और साथियों, कोई भी ऐसा काम नहीं है जो इंसान करना चाहे और नहीं कर पाएगा। धरातल की जानकारी आपको होनी चाहिए।
3: बिल्कुल वीरेंद्र भाई, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। ये जो धरती है ना, ये हकीकत में ये धरती सोना देती है, धन धान्य देती है, सब कुछ उगाती है, सब कुछ पैदा करती है,
2: जी
3: बस हमें चाह होनी चाहिए।
2: जी
3: और देखिए, ये जो उत्पादकता की बात जो कह रही थी, जो संवर्धन की बात कर रही थी श्रुति शेट्टी, वाकई उनकी बात 100% मैं तो सही मानता हूँ कि आदमी अगर लग जाए, हमारे बहुत सारे युवा साथी लगे हुए हैं, बहुत सारे पारंपरिक खेती करने वाले किसान भाई भी लगे हुए हैं और वो अच्छा कर रहे हैं, ऐसा हम कर सकते हैं।
2: जी और बात चली है धरती की, और धरती पे इतने सारे काम हैं और उन कामों की भी बात चली है, और उनके प्रारूप के बदलने की भी बात हमने
3: भाई
2: सुनी।
3: इसी को तो कहते हैं धरती की माया और धरती की छाया, सब कुछ है।
2: जी, तो धरती की माया है, धरती की छाया है, तो अब वो भी सुनवा देते हैं जो धरती के बारे में अतुल कुमार ने गाया है।
3: बिल्कुल सही कह रहे हैं आप।

0: साथियों, धरती की विधा निराली है। कहीं पे धरती भूरी है, कहीं पे काली है, कहीं पे रेगिस्तान है और कहीं पे हरियाली है।
1: बिल्कुल वीरेंद्र भाई, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। धरती की माया जो है ना, वो अपरंपार है। और धरती देखिए, जो जैसा चाहता है उसको वैसा देती है। जितनी मेहनत करता है, जितना डालता है, उतना उगाता है।
0: जी बिल्कुल, जितना गुड़ डालोगे उतना मीठा हो जाएगा।
1: हाँ
0: जी
1: और देखिए, उसी को लेके जो है ना, जब आप खेती करते हैं, आप कई तरह की जो है कि उसमें दुश्वारियां झेलते हैं, और फिर भी कोई कोर कसर बाकी रह जाए, कोई जानकारी न मिले, कोई जो है कि व्यवस्था आप न कर पाएँ, तो आपको नुकसान भी उठाना पड़ता है।
0: जी शाहिद भाई, बहुत सारे लोग तो ये कहते हैं कि जो सही तरीके से जानते नहीं हैं कि खेतीबाड़ी तो रिस्क का सौदा है। वो भैया ऐसी बात नहीं है, जो सरकार है वो बहुत जागृत है और किसानों का बहुत ध्यान रखती है। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना का नाम ना सुना है अभी उन्होंने, है ना?
1: ये आपने बड़ी पते की बात कही। देखिए, फसल बीमा योजना जो है ना, सही तरीके से खेती को और अपने किसान भाइयों को ना, ये सपोर्ट करने की, मदद करने की योजना है। मतलब आप किसी भी तरह से, वो चाहे छोटे से जीव कीट पतंगों का जो है कि हमला हो जाए, चाहे जो है कि मौसमी बीमारियां हो जाए, चाहे जो है कि आपदा आ जाए,
0: जी बिल्कुल,
1: ठीक है,
0: शायद भाई
1: सूखा पड़ जाए, बाढ़ में डूब जाए, तो जितना भी,
0: जो भी कुछ है,
1: ओला पड़ जाए, बिस्टी हो जाए, तो अगर फसल का नुकसान होता है तो क्या है कि बीमा योजना जो है उसका, आपने अगर बीमा करा रखा है फसल का, तो उसका लाभ आपको मिलना है, यानी आपकी मेहनत जाया नहीं जाने वाली।
0: जी शाहिद भाई, और जो भी साथी इस बीमे को करवाना चाहते हैं वो प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना का जो पोर्टल है उस पर जा सकते हैं। और इसमें शाहिद भाई बहुत सारी जो मतलब क्लॉज रखे गए हैं, जो चरण रखे गए हैं, ऐसा हो वैसा हो, तो सब चीज़ों के लिए सोचा है सरकार ने। सूखा हो, बाढ़ हो, ओलावृष्टि हो, और भी जो भी कुछ है, बुआई से लेके और कटाई तक इसका जो है बीमा किया जाता है।
1: बड़ी चीज़ यह है वीरेंद्र भाई कि इसमें हर फसल का चक्रवार जो है ना, बीमा करने की व्यवस्था दी गई।

0: है उसका टाइमिंग दिया गया है कि कब से कब आप बीमा कराएंगे और कितना इसमें आपको जो है कि कवरेज मिलेगा, कितना प्रीमियम तो बहुत नाम का होता है।
1: जी बिल्कुल, इसका जो प्रीमियम है वो खरीफ और रबी दोनों के लिए ही होता है। और एक खास जानकारी बता दूं शायद भाई अपने
0: बिल्कुल
1: सुनने वालों के लिए, अपने किसान भाइयों के लिए, कि 10 सितंबर 2026 जो है वो अंतिम तिथि कर दी गई है बढ़ाकर।
0: जी हाँ, मतलब इस सीज़न की जो बीमा पॉलिसी लेना चाहते हैं बीमा योजना में रजिस्टर करा सकते हैं 10 सितंबर तक।
1: जी, और शाहिद भाई जो हमारे फसल पे है ना, हम ही निर्भर नहीं करते हैं, हमारे जो इतने सारे अन्य जीव जंतु हैं वो भी,
0: भाई
1: चिड़ैया
0: ये
1: चिड़िया
0: पूरा,
1: ये भी निर्भर करते
0: हाँ बिल्कुल सही कह रहे हैं, चिड़े भी निर्भर करते हैं, चिड़िया भी
1: हैं।
0: करती हैं।
1: जी जी

0: तो अभी आप सुन रहे थे ये रागनी मनोज कारणा की आवाज़ में।
1: और साथ ही इसी के साथ कृषि जगत कार्यक्रम यहीं पर संपन्न हुआ। सभी सुनने वाले साथियों को
0: राम
1: राम
0: राम।
1: राम। कार्यक्रम के प्रस्तुतकर्ता थे तुषार पाराशर और संयोजक
0: शिव नंदन लाल।

ये आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है। मीडियम वेव 366.3 मीटर अर्थात 819 किलो हर्ट्स, VRM 810 किलो हर्ट्स पर।

0: अभी आप सुन रहे थे जगजीत सिंह की आवाज़ में ये गज़ल। ये आकाशवाणी दिल्ली का इंटरफेस चैनल है। मीडियम वेव 386.3 मीटर, 18,819 किलोहर्ट्स पर। अब से कुछ ही देर में आप सुनेंगे प्रादेशिक समाचार।
1: ये कहानी है एक फोटोग्राफर और उसके अंतर्मन की।
2: ओह लवली, वेल डन।
1: बिजनेस लोन अप्रूव्ड।
2: अब होगा बड़ा स्टूडियो, नया कैमरा, नई लाइट्स।
3: लगे हाथ नई कार भी ले लो उसी लोन से।
2: नो, लोन लिए गए काम में ही लगाओ। समय से ईएमआई चुकाओ, क्रेडिट स्कोर बढ़ाओ और अगला लोन आसानी से पाओ।
3: कार नहीं तो मेरी फोटो तो ले लो।
2: आप कौन?
4: आरबीआई कहता है
5: वित्तीय समझदारी समृद्ध नारी।
6: कम प्रीमियम, ज्यादा बोनस, अपनों के लिए सबसे सही आरबीआई लाइफ, इससे बेहतर कुछ नहीं।
7: अपने परिवार को दीजिए सुरक्षित जीवन रूरल पोस्ट लाइफ इंश्योरेंस आरपीएलआई की लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसीज के साथ। अपने नजदीकी डाकघर से आज ही संपर्क करें या indiapost.gov.in पर लॉग ऑन करें।
8: नमस्कार, आकाशवाणी दिल्ली से प्रादेशिक समाचार के साथ मैं करिश्मा राय। दिल्ली उच्च न्यायालय ने सत्य निकेतन में हुई दुखद घटना की उच्चतम कार्यकारी स्तर पर जांच के निर्देश दिए। दिल्ली सरकार ने सत्य निकेतन इमारत गिरने की घटना के बाद दिल्ली नगर निगम के 5 वरिष्ठ अधिकारियों को निलंबित किया। सरकार ने उन इमारतों को तुरंत सील करने का आदेश दिया है जिनमें बिना मंजूरी के 5वीं मंजिल बनी है। ब्रिक्स शिखर सम्मेलन 2026 के मद्देनजर दिल्ली पुलिस ने सुरक्षा तैयारियों की समीक्षा के लिए अंतर्राज्यीय समन्वय बैठक की और दिल्ली नगर निगम और दिल्ली प्रदूषण नियंत्रण समिति ने दिल्ली सरकार के पर्यावरण विभाग के सहयोग

0: स्वच्छ वायु अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया। अब समाचार विस्तार से। दिल्ली उच्च न्यायालय ने राष्ट्रीय राजधानी के सत्य निकेतन में इमारत गिरने की घटना की उच्चतम कार्यकारी स्तर पर जांच के निर्देश दिए हैं। न्यायालय ने नगर निगम से ये भी पता लगाने को कहा है कि इमारत का निर्माण और संचालन वैध अनुमति के साथ किया गया था या नहीं। न्यायालय ने नगर निगम को अपने अधिकार क्षेत्र में आने वाले सभी पेइंग गेस्ट, पीजी आवास और छात्रावासों का एक सप्ताह के अंदर व्यापक निरीक्षण करने का निर्देश दिया है। एक रिपोर्ट।
1: न्यायालय ने कहा कि जांच में ये देखा जाए कि इमारत के लिए सभी जरूरी मंजूरियां ली गई थीं या नहीं, किसी भी लापरवाही के लिए जिम्मेदार अधिकारियों की पहचान की जाए और उनके खिलाफ की गई या प्रस्तावित कार्रवाई की जानकारी दी जाए। न्यायालय ने दिल्ली विश्वविद्यालय के आसपास निजी पीजी और छात्रावासों में रहने वाले विद्यार्थियों की सुरक्षा को लेकर चिंता भी जताई। न्यायालय ने नगर निगम को सभी पीजी आवासों का निरीक्षण कर ये सुनिश्चित करने को कहा है कि उनका संचालन जरूरी मंजूरियों और भवन उपनियमों के अनुसार हो रहा है। केंद्र, दिल्ली सरकार, पुलिस और नगर निगम की ओर से पेश सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने न्यायालय को भरोसा दिलाया कि घटना से निपटने में कोई कसर नहीं छोड़ी जाएगी। उच्च न्यायालय ने संबंधित अधिकारियों को 10 दिन के भीतर जवाब और हलफनामे दाखिल करने का निर्देश दिया है। मामले की अगली सुनवाई 25 सितंबर को होगी। प्रादेशिक समाचार के लिए समाचार कक्ष से फरहत नाज।
0: दिल्ली सरकार ने सत्य निकेतन इमारत गिरने की घटना के बाद दक्षिण जोन के दिल्ली नगर निगम के उपायुक्त राकेश कुमार, अधीक्षक अभियंता रणवीर सिंह, कार्यकारी अभियंता ललित कुमार, सहायता अभियंता सुनील चौहान और एक कनिष्ठ अभियंता को निलंबित कर दिया है। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने बताया कि दिल्ली पुलिस द्वारा इमारत के कथित मालिक को भी गिरफ्तार कर लिया गया है। श्रीमती गुप्ता ने कहा कि पूरी दिल्ली में उन इमारतों को तुरंत सील करने का आदेश दिया गया है जिनमें बिना मंजूरी के पांचवी मंजिल बनी हुई है। उन्होंने कहा कि आसपास के पीजी और इमारतों को भी बारीकी से जांच की जा रही है और नियमों का उल्लंघन करने पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। श्रीमती गुप्ता ने बताया कि सार्वजनिक गतिविधियों के लिए इस्तेमाल होने वाली सभी इमारतों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए नई नीति लाई जाएगी जिसके अंतर्गत पीजी, नर्सिंग होम, स्कूल और अन्य संस्थानों की इमारतों का समय समय पर संरचनात्मक ऑडिट और इमारत सुरक्षा प्रमाणन अनिवार्य किया जाएगा। चांदनी चौक से सांसद प्रवीण खंडेलवाल ने कहा कि सत्य निकेतन घटना के प्रकरण में दिल्ली नगर निगम के 5 वरिष्ठ अधिकारियों का निलंबन दिल्ली सरकार की जवाबदेही और निर्णायक कार्यशैली का प्रमाण है। श्री खंडेलवाल ने कहा कि घटना के लिए केवल निचले स्तर के कर्मचारियों को नहीं बल्कि वरिष्ठ अधिकारियों को भी जवाबदेह ठहराया गया है। उन्होंने बताया कि मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता की अध्यक्षता में आज दिल्ली सचिवालय में आयोजित दिल्ली के सांसदों और विधायकों की बैठक में कल की घटना पर 2 मिनट का मौन रखकर मृतकों के प्रति संवेदनाएं प्रकट की गई। उपराज्यपाल सचिवालय में आज सत्य निकेतन क्षेत्र की दुर्घटना को लेकर एक उच्च स्तरीय बैठक हुई। बैठक में मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता, दिल्ली के गृह मंत्री आशीष सूद, राष्ट्रीय आपदा मोचन बल के महानिदेशक पीयूष आनंद शामिल रहे। संवाददाताओं से बातचीत में श्री सूद ने बताया कि बैठक के दौरान पुलिस और राष्ट्रीय आपदा मोचन बल की तैनाती तथा आपात स्थिति में प्रतिक्रिया समय को और कम करने के उपायों पर विचार किया गया। श्री सूद ने बताया कि सभी विभागों के साथ जरूरत के अनुसार अतिरिक्त फर्श क्षेत्र अनुपात की छूट देने और मौजूदा हॉस्टलों के पुनर्विकास के लिए अधिक फर्श क्षेत्र अनुपात की मंजूरी देने पर भी चर्चा हुई। इसके अलावा जस्टिस गुहा समिति की सिफारिशों के आधार पर तैयार किए जा रही रिपोर्ट के अनुसार पीजी और कोचिंग सेंटरों को विनियमित करने के लिए उपायों पर भी विचार किया गया।
2: सभी विभागों की एक साझा बैठक जिसमें पुलिस, एनडीआरएफ, एनडीआरएफ की जगह जगह प्लेसमेंट, हमारा रिस्पांस टाइम और कम कैसे हो और जो बड़ी तादाद में एक रेजिडेंशियल फैसिलिटीज का गैप है उसको पूरा करने के लिए एफएआर में जरूरत पड़ने पर एडिशनल छूट देना, एग्जिस्टिंग हॉस्टल्स को रीडेवलप करने के लिए नए एफएआर में नई बढ़ोतरी के साथ उपलब्ध कराना।
0: श्री सूद ने सत्य निकेतन की दुर्घटना के बाद पिछली सरकार पर आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि पिछले कई दशकों से चली आ रही उपेक्षा और कुप्रशासन के कारण दिल्ली में बुनियादी ढांचे और व्यवस्थाओं की स्थिति खराब हुई है। श्री सूद ने कहा कि पूर्ववर्ती सरकारों ने कॉलेजों और विश्वविद्यालयों के आसपास छात्रों के लिए संचालित पीजी आवासों को विनियमित करने के लिए कोई प्रभावी नियम कायदे नहीं बनाए थे। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी दिल्ली से सुन रहे हैं।
3: अपडेट रहे, आगे रहें। expert@AIRNewsHindi और इंस्टाग्राम पर AIRNews अलर्ट्स को फॉलो करें।
0: दिल्ली विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर योगेश सिंह ने सत्य निकेतन दुखद प्रकरण में विद्यार्थियों की मृत्यु पर गहरा शोक व्यक्त किया है। इस संबंध में आज कुलपति द्वारा महाविद्यालयों के प्राचार्यों की एक बैठक बुलाई गई। बैठक के दौरान दुर्घटना में मृत विद्यार्थियों के प्रति संवेदना प्रकट करते हुए 2 मिनट का मौन भी रखा गया। कुलपति ने कहा कि विद्यार्थियों की जान का नुकसान दिल्ली विश्वविद्यालय के लिए एक बहुत बड़ी क्षति है। उन्होंने पीड़ित परिवारों के प्रति गहरी संवेदना व्यक्त करते हुए कहा कि विश्वविद्यालय हर संभव मदद के लिए उनके साथ खड़ा है। श्री सिंह ने सभी प्राचार्यों से अपने अपने महाविद्यालयों में विद्यार्थियों के लिए उपलब्ध आवासीय सुविधाओं की समीक्षा करने का अनुरोध किया, जिससे भविष्य में ऐसी घटनाओं को रोकने के लिए आवश्यक कदम उठाए जा सकें। दिल्ली विधानसभा अध्यक्ष विजेंद्र गुप्ता ने आज युवा संपर्क कार्यक्रम के अंतर्गत हिंदू कॉलेज समेत दिल्ली विश्वविद्यालय के 6 महाविद्यालयों के विद्यार्थियों से संवाद किया। इस दौरान हिंदू कॉलेज, शहीद भगत सिंह कॉलेज, श्री गुरु नानक देव खालसा कॉलेज, मिरांडा हाउस और रामजस कॉलेज के विद्यार्थियों ने दिल्ली विधानसभा का भ्रमण किया। ब्रिक्स शिखर सम्मेलन 2026 के मद्देनजर दिल्ली पुलिस ने आज सुरक्षा तैयारियों की समीक्षा के लिए एक महत्वपूर्ण अंतर्राज्यीय समन्वय बैठक की। एक रिपोर्ट।
4: पूर्वी रेंज के संयुक्त पुलिस आयुक्त मिलिंद महादेव डोंबरे की अध्यक्षता में हुई इस बैठक में कानून व्यवस्था, सुरक्षा, सुचारू यातायात और सीमा चौकसी को मजबूत करने पर ध्यान केंद्रित किया गया। दिल्ली पुलिस के अनुसार बैठक में गाजियाबाद और नोएडा पुलिस के साथ अंतर्राज्यीय सीमा पर निगरानी बढ़ाने, अपराधियों और सुरक्षा से जुड़ी खुफिया सूचनाएं साझा करने तथा संवेदनशील स्थानों पर सुरक्षा जांच करने पर गहन चर्चा हुई। सम्मेलन के दौरान हवाई निगरानी और दिल्ली गाजियाबाद व नोएडा पुलिस के बीच बेहतर ट्रैफिक प्रबंधन पर भी रणनीति बनाई गई। बैठक में VIP रूट मैनेजमेंट, गणमान्य व्यक्तियों की सुरक्षा, भीड़ नियंत्रण और आपातकालीन तैयारियों पर भी समीक्षा की गई। दिल्ली पुलिस ने संबंधित सहायता पुलिस आयुक्तों और थाना प्रभारियों को निर्देश दिया है कि वे अपने कर्मचारियों को हाई अलर्ट पर रखें और किसी भी संदिग्ध गतिविधि पर तुरंत कार्रवाई सुनिश्चित करें। सौम्या की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से अमीशा।
0: प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी दिल्ली से सुन रहे हैं।
3: आकाशवाणी समाचार से जुड़े रहिए। expert@AIRNewsHindi को फॉलो करें और ताजा खबरों के लिए newsonair.gov.in पर जाएं।
0: दिल्ली नगर निगम MCD और दिल्ली प्रदूषण नियंत्रण समिति ने दिल्ली सरकार के पर्यावरण विभाग के सहयोग से आज नीले आसमान के लिए स्वच्छ वायु का अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया। इस अवसर पर नई दिल्ली के सुभाष नगर स्थित MCD पश्चिमी क्षेत्र के प्राथमिक विद्यालय में एक कार्यक्रम आयोजित किया गया। कार्यक्रम का उद्देश्य वायु गुणवत्ता में सुधार की आवश्यकता के प्रति जन जागरूकता बढ़ाना और पर्यावरण अनुकूल तथा टिकाऊ प्रभावों को बढ़ावा देना था। कार्यक्रम के दौरान विद्यालय परिसर में बड़े स्तर पर वृक्षारोपण किया गया। इस वर्ष कार्यक्रम का मुख्य विषय निर्माण और विध्वंस स्थलों पर धूल प्रदूषण कम करने तथा बायोमास जलाने के दुष्प्रभावों के प्रति जन जागरूकता फैलाने पर केंद्रित रहा। दिल्ली सरकार ने आज दिल्ली सचिवालय में मौसमी इन्फ्लुएंजा H1N1 और डेंगू को लेकर जन प्रतिनिधियों के लिए एक जागरूकता कार्यशाला का आयोजन किया। इस कार्यशाला में पार्षद, जन प्रतिनिधि और स्वास्थ्य विभाग के वरिष्ठ अधिकारी शामिल रहे। एक रिपोर्ट।
5: दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर पंकज कुमार सिंह की अध्यक्षता में आयोजित इस कार्यशाला का मुख्य उद्देश्य जन प्रतिनिधियों को H1N1 और डेंगू के लक्षणों, रोकथाम, समय रहते पहचान और उपचार के बारे में व्यावहारिक जानकारी देना था। कार्यशाला के दौरान स्वास्थ्य संबंधी सही जानकारी पहुंचाने और रोकथाम के उपायों के लिए नागरिकों को एकजुट करने में जन प्रतिनिधियों की भूमिका पर भी विशेष बल दिया गया। कार्यशाला को संबोधित करते हुए स्वास्थ्य मंत्री ने कहा कि बीमारी की रोकथाम को केवल अस्पतालों और स्वास्थ्य कर्मियों तक सीमित नहीं रखा जा सकता, इसके लिए समुदाय स्तर पर भी सक्रिय भागीदारी की जरूरत है। उन्होंने पार्षदों से स्वास्थ्य विभाग और फील्ड टीमों के साथ मिलकर काम करने का आग्रह किया ताकि स्वास्थ्य संबंधी जानकारी राजधानी के हर वार्ड,

0: मोहल्ले और हर घर तक प्रभावी तरीके से पहुंच सके। उन्होंने सभी जन प्रतिनिधियों से अपील की कि वे अपने अपने निर्वाचन क्षेत्रों में सावधानियां और संदेशों को अधिक प्रचारित करें तथा H1N1 से जुड़ी गलत धारणा को दूर करने का प्रयास करें। शिवांग की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से प्रशांत कुमार।
1: दिल्ली पुलिस ने अपराध और आपराधिक गतिविधियों पर प्रभावी अंकुश लगाने के उद्देश्य से ऑपरेशन सजग के अंतर्गत 72 घंटे का गहन परिवर्तन अभियान चलाया। इस अभियान का उद्देश्य सड़कों पर पुलिस की मौजूदगी बढ़ाना, सेंधमारी और चोरी पर रोक लगाना, मादक पदार्थों की तस्करी और अवैध रूप से रह रहे प्रवासी से जुड़े अपराधों पर नियंत्रण तथा अवैध हथियार रखने वालों के विरुद्ध कार्रवाई करना था। इस दौरान पुलिस ने 39 लोगों को गिरफ्तार किया। राजधानी में आज तेज धूप के कारण लोगों को उमस भरी गर्मी का सामना करना पड़ा। मौसम विभाग के अनुसार आज का अधिकतम तापमान 34.1 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, न्यूनतम तापमान 23.7 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। विभाग ने कल बादल छाए रहने के साथ साथ बहुत हल्की वर्षा की संभावना व्यक्त की है। कल का अधिकतम तापमान 33 से 35 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 23 से 25 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहने का अनुमान है। आकाशवाणी का समाचार सेवा प्रभाग आज रात 9:30 बजे फोन इन कार्यक्रम पब्लिक स्पीक में लोक अदालत त्वरित किफायती और सुलभ न्याय विषय पर परिचर्चा प्रसारित करेगा। कार्यक्रम के दौरान श्रोता स्टूडियो में मौजूद विशेषज्ञों से विषय से संबंधित प्रश्न पूछ सकते हैं। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। दिल्ली उच्च न्यायालय ने सत्य निकेतन में हुई दुखद घटना की उच्चतम कार्यकारी स्तर पर जांच के निर्देश दिए। दिल्ली सरकार ने सत्य निकेतन इमारत गिरने की घटना के बाद दिल्ली नगर निगम के 5 वरिष्ठ अधिकारियों को निलंबित किया। सरकार ने उन इमारतों को तुरंत सील करने का आदेश दिया जिनमें बिना मंजूरी के 5वीं मंजिल बनी है। ब्रिक्स शिखर सम्मेलन 2026 के मद्देनजर दिल्ली पुलिस ने सुरक्षा तैयारियों की समीक्षा के लिए अंतर्राज्यीय समन्वय बैठक की और दिल्ली नगर निगम और दिल्ली प्रदूषण नियंत्रण समिति ने दिल्ली सरकार के पर्यावरण विभाग के सहयोग से स्वच्छ वायु अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।
2: ये कहानी है एक गृहिणी और उसके अंतर्मन की।
3: बिजली का बिल, किराना, स्कूल फीस सब हो गया।
4: बन गया बजट?
3: हाँ,
4: 5,000 बच गए।
3: तो नई साड़ी ले ले
4: ना।
3: पिछले महीने तो ली थी।
4: एक और
3: नहीं, पहले बजट बनाओ, फिर छोटी छोटी बचत को बैंक में सेव करो और पैसों को बढ़ते देखो।
4: बढ़िया, जाओ भाई।
5: RBI कहता है,
6: वित्तीय समझदारी समृद्ध नारी।

0: bellissimo.
1: अठानवे प्रतिशत सामान भारतीय कंपनियों से खरीदे जाएंगे। गृह मंत्री अमित शाह ने आज गोवा पुलिस को प्रतिष्ठित राष्ट्रपति पुलिस ध्वज प्रदान किया। इस अवसर

जब खूबसूरत गीतों का साथ होना तो संगीत की खूबसूरत सी दुनिया में ना खो जाना चाहिए और कुछ पल ना सब कामों को छोड़कर बस उस पर ध्यान देना चाहिए, क्योंकि दिल को जो सुकून मिलता है ना, और दिल को सुकून मिलने वाले गाने हम सुनते हैं ना तो वाकई मज़ा आता है। और अब एक और गीत जो आपको थोड़ा सा पीछे ले जाएगा, लेकिन हाँ आपको बहुत मज़ा आएगा।

अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम गीत मालिका। ये आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है। मीडियम वेव 366.3 मीटर अर्थात 819 किलो हर्ट्स, DRM 810 किलो हर्ट्स पर।

0: अब से कुछ ही देर में यानी कि ठीक 8:45 पर आप सुनेंगे हिंदी में समाचार, 9 बजे आप सुनेंगे अंग्रेज़ी में समाचार, 9:15 का समय रहेगा उर्दू में समाचारों का। आइए अब सुनते हैं हिंदी में समाचार।
1: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार संध्या के साथ मैं मुकेश कुमार। रक्षा खरीद परिषद ने 1,10,000 करोड़ रुपए से अधिक के खरीद प्रस्तावों को मंजूरी दी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल गुजरात के वडोदरा में 35,000 करोड़ रुपए से अधिक की परियोजनाओं का लोकार्पण और मुंबई में ग्लोबल फिनटेक फेस्ट का उद्घाटन करेंगे। गृह मंत्री अमित शाह ने कहा, क्षेत्रीय परिषदें विकास और जनकल्याण के लिए महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही हैं। गोवा पुलिस को प्रतिष्ठित राष्ट्रपति पुलिस ध्वज प्रदान किया। शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों के लिए LPG रिफिल बुकिंग का 25 दिन का अंतराल समान रहेगा। नई दिल्ली में सत्य निकेतन इमारत ढहने की घटना में नगर निगम के 5 अधिकारी निलंबित। दिल्ली उच्च न्यायालय ने घटना की उच्च स्तरीय जांच के आदेश दिए। निर्वाचन आयोग ने असम की नगांव लोकसभा सीट पर 6 अक्टूबर को उपचुनाव की घोषणा की। तमिलनाडु और पश्चिम बंगाल की 2-2 विधानसभा सीट तथा पुदुचेरी में 1 सीट पर भी उपचुनाव। और अहमदाबाद में विश्व तीरंदाजी पैरा श्रृंखला में शीतल देवी महिला कंपाउंड के व्यक्तिगत वर्ग के फाइनल में पहुंची, भारत का पदक पक्का। रक्षा खरीद परिषद ने सशस्त्र बलों के लिए 1,10,000 करोड़ रुपए से अधिक के रक्षा खरीद प्रस्तावों को मंजूरी दे दी है। हमारे संवाददाता ने बताया कि ये मंजूरी आज रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की अध्यक्षता में हुई परिषद की बैठक में दी गई।
2: परिषद की बैठक में सेना के लिए रासायनिक, जैविक, रेडियोलॉजिकल और परमाणु टोही वाहन, हाई मोबिलिटी वाहन, स्वचालित माइन लेयर, एडवांस्ड लाइट हेलीकॉप्टर, ट्रॉल टैंक और सर्वत्र ब्रिज सिस्टम की खरीद को मंजूरी दी गई। नौसेना के लिए अरुद्रा रडार की भी खरीद तथा मरीन गैस टरबाइन के डिजाइन और विकास के बाद उनकी खरीद के प्रस्ताव को मंजूरी मिली है। वायुसेना की युद्धक क्षमता बढ़ाने के लिए लड़ाकू विमानों, परिवहन विमानों और हेलीकॉप्टरों से जुड़े कई प्रस्तावों को भी मंजूरी दी गई। इसके अलावा ग्राउंड बेस्ड मल्टीपर्पज जैमर और डिफेंस फोर्सेस सिक्योर एक्सेस कार्ड प्रणाली की खरीद को मंजूरी दी गई है। रक्षा मंत्रालय ने कहा है कि 98% खरीद भारतीय उद्योग से की जाएगी। CBRN टोही वाहन क्षेत्रों की पहचान, निगरानी और उन्हें चिन्हित करने में सक्षम होंगे। रिशु के साथ सकलैन अख्तर, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल गुजरात यात्रा पर रहेंगे। श्री मोदी राज्य में 35,000 करोड़ रुपए से अधिक की विभिन्न परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास करेंगे। अहमदाबाद में केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बताया कि पूर्वी और पश्चिमी समर्पित माल ढुलाई गलियारे देश के परिवहन और लॉजिस्टिक क्षेत्र की महत्वपूर्ण आधारभूत संरचना है।
3: डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर ईस्ट और वेस्ट, ये दोनों देश के लिए बहुत बड़ी एक बैकबोन की तरह है ट्रांसपोर्टेशन में। वो प्रोजेक्ट अब कंप्लीट हुआ पूरी तरह से, उसको माननीय प्रधानमंत्री जी कल राष्ट्र के प्रति समर्पित करेंगे। ये परियोजना ऐसी है जिसमें कई वर्ष लगे। 2014 में प्रधानमंत्री ने उस काम को हाथ में लेके जितनी भी उसमें प्रॉब्लम थी उनको सॉल्व किया और अब कम्प्लीट हुआ।
1: प्रधानमंत्री कल शाम मुंबई में ग्लोबल फिनटेक फेस्ट 2026 का शुभारंभ करेंगे। श्री मोदी सम्मेलन को संबोधित भी करेंगे। गृह मंत्री अमित शाह ने आज गोवा पुलिस को प्रतिष्ठित राष्ट्रपति पुलिस ध्वज प्रदान किया। इस अवसर पर गृह मंत्री ने गोवा पुलिस की सेवा, व्यावसायिकता, साहस और अनुशासन की सराहना की।
4: 8 दशकों की गौरवशाली गोवा पुलिस की सेवा राष्ट्रपति जी के दिए हुए निशान के साथ देश भर की पुलिस की कतार में खड़ी है। ये गौरव जिन जिन राज्यों की पुलिस को मिला वो पुलिस के गौरवशाली इतिहास, साहस, अनुशासन और समर्पण के कारण ही राष्ट्रपति महोदय ने गोवा को प्रेसिडेंट कलर से सम्मानित करने का काम किया है।
1: इससे पहले गृह मंत्री ने आज गोवा के पणजी में पश्चिमी क्षेत्रीय परिषद की 28वीं बैठक की अध्यक्षता की। श्री शाह ने कहा कि पश्चिमी क्षेत्र के राज्यों के बीच अब कोई विवाद नहीं है। उन्होंने इसे एक बड़ी उपलब्धि बताया। श्री शाह ने कहा कि क्षेत्रीय परिषदें अब केवल विवादों के समाधान का मंच नहीं रह गई हैं, बल्कि जन कल्याणकारी योजनाओं के कार्यान्वयन की निगरानी के लिए भी महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही हैं।
5: गोवा, गुजरात और महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री बैठक में शामिल हुए। दोनों केंद्र शासित प्रदेशों के प्रतिनिधियों ने भी हिस्सा लिया। बैठक में केंद्र और राज्यों से जुड़े कई अहम मुद्दों पर चर्चा हुई। राष्ट्रपति पुलिस ध्वज समारोह में श्री शाह ने गोवा पुलिस की सेवा और साहस की सराहना की। उन्होंने 1930 हेल्पलाइन के लिए AI आधारित वॉयस असिस्टेंट शुरू किया। श्री शाह ने 112 हेल्पलाइन पर कम हुए प्रतिक्रिया समय का उल्लेख किया और गोवा पुलिस से 2029 तक नशीले पदार्थों की समस्या खत्म करने में नेतृत्व करने का आह्वान किया। निखिल उपाध्याय, आकाशवाणी समाचार, पणजी।
1: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।
6: एवरी ग्रेट जर्नी बिगिंस विद पीपल कमिंग टुगेदर टू लिसन, टू लर्न, टू इमेजिन व्हाट्स पॉसिबल। दिस इज द ब्रिक्स 2026, अ मोमेंट वेयर लीडर्स, इनोवेटर्स, बिजनेसेस एंड कम्युनिटीज फ्रॉम द ब्रिक्स नेशंस कम टुगेदर टू स्ट्रेंथन पार्टनरशिप्स। इंडिया वेलकम्स द ब्रिक्स कंट्रीज as the grouping marks the 20 years of its establishment in 2026. BRICS Summit 2026 is being hosted in Bharat Mandapam, New Delhi from 12th to 13th September 2026 under India's chairship theme, Building for Resilience, Innovation, Cooperation and Sustainability, with a people-centric approach and the spirit of humanity first. Because when we work together, Possibilities become progress.
7: सबके लिए सामाजिक सुरक्षा अटल पेंशन योजना, मोदी जी का संकल्प।
8: योजना उन नौजवानों के लिए है ताकि आप जब 60 साल के होंगे आपको कभी किसी के सहारे की जरूरत न पड़े, आप अपना बुढ़ापा भी गौरव के साथ बिता सको।
7: अब तक इस योजना से 9,50,00,000 से अधिक लाभार्थी जुड़ चुके हैं। अगर आप भी 18 से 40 साल की उम्र के हैं तो मासिक अटल पेंशन सहित योजना के 3 गारंटीड फायदों की जानकारी के लिए अपनी बैंक शाखा से संपर्क करें।
1: समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। केंद्रीय पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस राज्य मंत्री सुरेश गोपी ने कहा है कि सरकार ने तेल विपणन कंपनियों को घरेलू रसोई गैस LPG रिफिल बुकिंग के नियमों में बड़ी छूट देने का निर्देश दिया है। अब देश के शहरी और ग्रामीण क्षेत्र में सभी घरेलू LPG उपभोक्ता 25 दिन के अंतराल पर सिलेंडर बुक करा सकेंगे। श्री गोपी ने कहा कि देश में LPG आपूर्ति में सुधार और बैकलॉग में आई भारी कमी को देखते हुए केंद्र सरकार ने ये पाबंदी हटाई है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने आज नई दिल्ली में अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के उप प्रबंध निदेशक नाइजेल क्लार्क से भेंट की। बैठक में भारत और कोष के बीच संबंधों पर चर्चा हुई। इस दौरान कोष ने दक्षिण एशिया क्षेत्रीय प्रशिक्षण

0: और तकनीकी सहायता केंद्र को मजबूत करने में भारत की भूमिका की सराहना की। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा है कि भारत को दुनिया की फार्मेसी के रूप में अपनी स्थिति मजबूत करते हुए वैश्विक चिकित्सा और स्वास्थ्य सेवा केंद्र के रूप में उभरना चाहिए। नई दिल्ली में फार्मा मैक टेक और लैब नेक्स्ट एक्सपो 2026 के उद्घाटन समारोह में श्री गोयल ने ये बात कही।
1: मेक श्योर वी आर वेरी हाई क्वालिटी,
2: ये सुनिश्चित करें कि गुणवत्ता से कोई समझौता ना हो और हमारी सेवाएं उच्च मानकों वाली हो। न केवल हर भारतीय को उच्च गुणवत्ता वाली स्वास्थ्य सेवा मिले, बल्कि हम दुनिया को स्वास्थ्य सेवाएं भी प्रदान करें। सभी मशीनें और उपकरण भारतीय हो, भारतीय दवाओं और फार्मेसी का इस्तेमाल हो और भारतीय डॉक्टर मरीजों की देखभाल करें।
0: निर्वाचन आयोग ने असम की नगांव लोकसभा सीट पर उपचुनाव की घोषणा कर दी है। इसके साथ ही तमिलनाडु और पश्चिम बंगाल की दो दो विधानसभा सीट और पुदुचेरी की एक सीट पर उपचुनाव की घोषणा भी की गई है। आयोग ने बताया कि तमिलनाडु की मधुरंतकम और धरपुरम सीट, पश्चिम बंगाल की रेजीनगर और नंदीग्राम सीट तथा पुदुचेरी की थट्टन चावड़ी विधानसभा सीट पर मतदान होगा। लोकसभा और विधानसभा उपचुनाव की अधिसूचना बुधवार को जारी की जाएगी। नामांकन इस महीने की 16 तारीख तक दाखिल किए जा सकते हैं। मतदान 6 अक्टूबर को और मतगणना 9 अक्टूबर को होगी। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा है कि सत्य निकेतन इमारत के मालिक को गिरफ्तार कर लिया गया है। इसके साथ ही लापरवाही बरतने के आरोप में नगर निगम के 5 अधिकारियों को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया है। मुख्यमंत्री ने कड़ा रुख अपनाते हुए पूरी दिल्ली में 5वीं मंजिल वाली इमारतों को तुरंत सील करने के आदेश दिए हैं। इस बीच दिल्ली उच्च न्यायालय ने राष्ट्रीय राजधानी के सत्य निकेतन में इमारत ढहने की घटना की उच्च स्तरीय जांच के निर्देश दिए हैं। एक रिपोर्ट।
3: न्यायालय ने कहा कि जांच में ये देखा जाए कि इमारत के लिए सभी जरूरी मंजूरियां ली गई थीं या नहीं, किसी भी लापरवाही के लिए जिम्मेदार अधिकारियों की पहचान की जाए और उनके खिलाफ की गई या प्रस्तावित कार्रवाई की जानकारी दी जाए। न्यायालय ने दिल्ली विश्वविद्यालय के आसपास निजी पीजी और छात्रावासों में रहने वाले विद्यार्थियों की सुरक्षा को लेकर चिंता भी जताई। न्यायालय ने नगर निगम को सभी पीजी आवासों का निरीक्षण कर ये सुनिश्चित करने को कहा है कि उनका संचालन जरूरी मंजूरियों और भवन उपनियमों के अनुसार हो रहा है। केंद्र, दिल्ली सरकार, दिल्ली पुलिस और नगर निगम की ओर से पेश सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने न्यायालय को भरोसा दिलाया कि घटना से निपटने में कोई कसर नहीं छोड़ी जाएगी। उच्च न्यायालय ने संबंधित अधिकारियों को 10 दिन के भीतर जवाब और हलफनामे दाखिल करने का निर्देश दिया है। मामले की अगली सुनवाई 25 सितंबर को होगी। समाचार कक्ष से फरहत नाज।
0: ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन एआईआर मोबाइल ऐप पर भी उपलब्ध हैं।
4: ध्यान दें, आपकी मेहनत को राष्ट्रीय पहचान, पशुपालन क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान देने और नवीन प्रौद्योगिकी प्रथाओं को अपनाने वालों को भारत सरकार का पशुपालन एवं डेयरी विभाग प्रदान करता है राष्ट्रीय सम्मान। आज ही नामांकन करें राष्ट्रीय गोपाल रत्न पुरस्कार 2026 के लिए। इस पुरस्कार के लिए 3 श्रेणियों में होता है चयन, सर्वश्रेष्ठ डेयरी किसान, सर्वश्रेष्ठ डेयरी सहकारी समिति और सर्वश्रेष्ठ AI तकनीशियन। उत्तर पूर्वी क्षेत्र और हिमालयी राज्यों के लिए विशेष पुरस्कार का प्रावधान। नामांकन की तिथि 10 अगस्त से 10 सितंबर 2026 तक, तो देर किस बात की। आज ही आवेदन करें www.awards.gov.in पर या संपर्क करें नजदीकी CSC केंद्र पर। राष्ट्रीय गोपाल रत्न पुरस्कार 2026 पशुपालन एवं डेयरी विभाग, भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी।
5: आकाशवाणी समाचार से जुड़े रहिए, एक्स पर @AIRNews हिंदी को फॉलो करें और ताजा खबरों के लिए newsonair.gov.in पर जाएं।
6: चलते फिरते खबरों से जुड़े रहिए, expert@AIRNews हिंदी को फॉलो करें और PB शब्द पर आकाशवाणी समाचार सुने।
0: ये आकाशवाणी है। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन के अध्यक्ष वी नारायणन ने इसरो के निजीकरण से जुड़ी खबरों को खारिज कर दिया है। बेंगलुरु में आज उन्होंने कहा कि इसरो एक सरकारी संगठन है और इसके निजीकरण का कोई सवाल ही नहीं है।
7: इसरो इज नॉट प्राइवेट।
8: इसरो एक सरकारी संस्था है और हम सरकारी निवेश के अंतर्गत काम कर रहे हैं। इसरो और NCS के मुख्य लक्ष्यों में से एक बजट के अनुरूप अंतरिक्ष उपकरणों की लागत कम करना है। इसरो को हर साल सरकार आवश्यकता के अनुसार बजट देती है, बजट की कोई कमी नहीं है।
0: चीन में भारतीय दूतावास ने पिछले महीने हुए भीषण भूस्खलन और अचानक आई बाढ़ में लापता भारतीय नागरिकों के परिजनों से पहचान प्रक्रिया में सहायता के लिए डीएनए नमूने उपलब्ध कराने का अनुरोध किया है। दूतावास ने कहा कि जो परिवार डीएनए संबंधी जानकारी देना चाहते हैं वे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मान्यता प्राप्त CODIS प्रारूप में संबंधित जानकारी भारतीय दूतावास को उपलब्ध कराएं। दूतावास इस जानकारी को संबंधित चीनी अधिकारियों को भेजेगा। शीतल देवी ने विश्व तीरंदाजी पैरा श्रृंखला में महिला कंपाउंड के व्यक्तिगत वर्ग के फाइनल में प्रवेश कर लिया है। अहमदाबाद में आज सेमीफाइनल में शीतल देवी ने सरिता को हराया। खिताबी मुकाबले में शीतल का सामना कजाकिस्तान की एजादा सिदान से होगा। कांस्य पदक के मुकाबले में सरिता चीन की वांग हुई तिंग से खेलेंगी। आकाशवाणी के समाचार सेवा प्रभाग से प्रसारित होने वाले पब्लिक स्पीक कार्यक्रम में आज का विषय है लोक अदालत, त्वरित, किफायती और सुलभ न्याय। आज रात 9:30 बजे इस फोन इन कार्यक्रम के दौरान श्रोता स्टूडियो में हमारे विशेषज्ञों से इस विषय से संबंधित प्रश्न पूछ सकते हैं। आप अपने प्रश्न व्हाट्सएप नंबर 9289094044 पर भेज सकते हैं। सवाल #AskAIR के साथ एक्स पर भी पोस्ट किए जा सकते हैं। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। रक्षा खरीद परिषद ने 1,10,000 करोड़ रुपए से अधिक के खरीद प्रस्तावों को मंजूरी दी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल गुजरात के वडोदरा में 35,000 करोड़ रुपए से अधिक की परियोजनाओं का लोकार्पण और मुंबई में ग्लोबल फिनटेक फेस्ट का उद्घाटन करेंगे। गृह मंत्री अमित शाह ने कहा क्षेत्रीय परिषदें विकास और जनकल्याण के लिए महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही हैं। गोवा पुलिस को प्रतिष्ठित राष्ट्रपति पुलिस ध्वज प्रदान किया। शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों के लिए LPG रिफिल बुकिंग का 25 दिन का अंतराल समान रहेगा। नई दिल्ली में सत्य निकेतन इमारत ढहने की घटना में नगर निगम के 5 अधिकारी निलंबित। दिल्ली उच्च न्यायालय ने घटना की उच्च स्तरीय जांच के आदेश दिए। निर्वाचन आयोग ने असम की नगांव लोकसभा सीट पर 6 अक्टूबर को उपचुनाव की घोषणा की। तमिलनाडु और पश्चिम बंगाल की 2-2 विधानसभा सीट तथा पुदुचेरी में 1 सीट पर भी उपचुनाव। और अहमदाबाद में विश्व तीरंदाजी पैरा श्रृंखला में शीतल देवी महिला कंपाउंड के व्यक्तिगत वर्ग के फाइनल में पहुंची। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।

0: Good evening. This is Akashvani. I am Sahira Mujtaba with the news at 9. The headlines. Defence Acquisition Council clears capital acquisition proposals worth over 1,10,000 crore rupees. Prime Minister Narendra Modi to unveil projects worth over 35,000 crore rupees at Vadodara in Gujarat tomorrow to inaugurate Global FinTech Fest in Mumbai. Home Minister Amit Shah says zonal councils have become instrumental for development and public welfare. Also presents prestigious President's Police Colour to Goa Police. LPG refill booking interval of 25 days to be same for urban and rural areas. Five MCD officials suspended in Satyaniketan building collapse incident. Delhi High Court orders high-level MCD inquiry. Election Commission announces by-poll to Nagaon Lok Sabha seat in Assam on 6th of October. Assembly by-polls for two seats each in Tamil Nadu and West Bengal and one in Puducherry to also take place simultaneously. And at World Archery Para Series, Sheetal Devi enters women's compound individual final in Ahmedabad, assuring a medal for India. And now the news in detail. The Defence Acquisition Council, DAC, has cleared capital acquisition proposals worth over 1,10,000 crore rupees for the Defence Forces. Our correspondent reports that the approval was taken during a meeting of the Council held today under the chairmanship of Defence Minister Rajnath Singh.
1: The Council granted approval for the procurement of chemical, biological, radiological and nuclear CBRN recce vehicles, high mobility vehicles HMV, self-propelled mechanical mine layers MML, advanced light helicopters ALH, trawl tanks and Sarvatra breath system for the Indian Army. For the Indian Navy, acceptance of necessity was accorded for the procurement of Arudhra radars, design and development and subsequent procurement of marine gas turbines MGT. Arudhra radars will replace the existing air route surveillance radars at various naval air stations and MGT, a warship propulsion system, will reduce dependency on foreign vendors. Meanwhile, for the Indian Air Force, approval was granted to various proposals to enhance the warfighting capability. Approval was also accorded for procuring ground-based multipurpose jammer and installing Defence Forces Secure Access Card system. The Defence Ministry said 98% of total procurement will be made from the Indian industry. The CBRN recce vehicles will be capable of detecting, identifying, monitoring and marking of areas contaminated with CBRN agents. The HMVs will enhance operational capabilities, logistic supports and mobility in challenging terrains. With Rishu, Saklan Akhtar for Akashwani News, Delhi.
0: Defence Minister Rajnath Singh today said India's defence policy has transformed from being reactive to proactive, asserting that the country has emerged as both self-reliant and confident in the defence sector. Speaking at an event in New Delhi, Mr. Singh said that India's entry into the Missile Technology Control Regime, MTCR, in 2016 enabled the country to enhance the range of the BrahMos missile, describing it as an outcome of the Prime Minister's active diplomacy and visionary leadership.
2: Until 2016, India was not a member of the MTCR, which placed certain limitations on the extension of the BrahMos missile's range. However, through the proactive diplomacy and visionary leadership of our government, India became a member of the MTCR, paving the way for further enhancement of the BrahMos range. As you are aware, BrahMos played a significant role during last year's Operation Sindoor.
3: Operation Sindoor mein BrahMos missile ki kya bhumika rahi hai?
0: Highlighting the government's achievements in the defence sector, Mr. Singh added that India is now exporting defence equipment worth nearly 38,500 crore rupees to more than 100 countries. Prime Minister Narendra Modi will visit Gujarat and Maharashtra tomorrow. In Vadodara, the Prime Minister will lay the foundation stones, inaugurate and dedicate to the nation various development projects worth more than 35,000 crore rupees. He will also dedicate to the nation three important sections of the Western Dedicated Freight Corridor, covering 326 route kilometres. Briefing media personnel at Ahmedabad Airport today, Railway Minister Ashwini Vaishnav emphasized that the eastern and western dedicated freight corridors will serve as a crucial backbone for the country's transport and logistics sector.
4: Dedicated freight corridor.
5: The eastern and western dedicated freight corridors are a major backbone of the country's transformation infrastructure. After several years of work, this landmark project has now been fully completed and now will be dedicated to the nation by Prime Minister tomorrow. In 2014, the Prime Minister took up this project and resolved all the issues and challenges associated with it. Today, the project has finally been completed.
4: Jitni bhi usme problems thi unko solve kiya aur ab complete hua.
0: The Prime Minister will also flag off freight train services from New Sanand North, New Makarpura, New Ambargaon and New JNPT Mumbai. The Prime Minister will also lay the foundation stone for three railway projects costing more than 9,700 crore rupees. He will also lay the foundation stone for three national highway projects costing around 1,780 crore rupees. Mr. Modi will also lay the foundation stone for and inaugurate various Government of Gujarat projects worth around 2,600 crore rupees. He will also address the gathering on the occasion. In Maharashtra, the Prime Minister will inaugurate the Global FinTech Fest or GFF 2026 in Mumbai and address the gathering. The theme of GFF 2026 is Potential to Impact, Agentic AI, Tokenization, Quantum, Trusted Connected Global Systems for Inclusive Finance. This is Akashvani giving you the news.
6: Want more news? Follow us on X at AIR News Alerts and subscribe to News On Air Official on YouTube.
0: Welcome back. Union Home Minister Amit Shah today chaired the 28th meeting of the Western Zonal Council at Panaji in Goa. Addressing the gathering, Mr. Shah said, there are no longer any disputes among the states of the Western region, which is a major achievement. He emphasized that the zonal councils have evolved from forums for dispute resolution into platforms for monitoring the implementation of public welfare schemes. Mr. Shah said that all the issues discussed in today's meeting were related to monitoring. He noted that several disputes between states over rivers have also been resolved in the zonal council. The meeting was attended by Goa Chief Minister Pramod Sawant, Gujarat Chief Minister Bhupendra Patel, Maharashtra Chief Minister Devendra Fadnavis, and Administrator of Dadra and Nagar Haveli and Daman and Diu, Praful K. Patel. Home Minister Shah also presented the prestigious President's Police Colour to the Goa Police at a ceremony held at the Dr. Shyama Prasad Mukherjee Indoor Stadium in Talegaon, Goa. He also launched an AI-based voice assistant for the 1930s Cyber Fraud Helpline, supporting 12 languages to provide quick assistance to citizens and tourists. Addressing the gathering, Mr. Shah praised the Goa Police for its service, professionalism, courage and discipline.
7: With 8 decades of glorious service, the Goa Police now proudly joins the distinguished ranks of police forces across the country that have been honored with the President's Colour. This prestigious recognition is a testament to the Goa Police's glorious history, professional excellence, courage, discipline, and unwavering dedication to duty. It is in recognition of these exemplary qualities and its outstanding service to the nation that the Honorable President has conferred the President's Colour upon the Goa Police.
8: गोवा को प्रेसिडेंट कलर से सम्मानित करने का काम किया है.
0: Union Minister of State for Petroleum and Natural Gas Suresh Gopi today said that the center has asked the oil marketing companies or OMCs to uniformly implement the revised LPG refill booking interval of 25 days in both urban and rural areas immediately. In a social media post, Mr. Gopi said that in view of the current LPG supply situation improving and the significant reduction in refill backlog, the central government has relaxed this restriction. He said now all domestic LPG consumers, regardless of urban or rural, can book refills at an interval of 25 days. Due to the pressure on LPG supply in the wake of the West Asia conflict, the refill booking interval was 25 days in urban areas and 45 days in rural areas. Five Municipal Corporation of Delhi or MCD officials, including the Deputy Commissioner, Superintending Engineer, Executive Engineer, Assistant Engineer and Junior Engineer, have been suspended in connection with the building collapse at Satyaniketan in New Delhi. Delhi police has arrested three persons in connection with the building collapse yesterday, in which seven people lost their lives. According to additional DCP of Delhi Police, Abhimanyu Poswal, those arrested include the alleged owner of the building, her husband and her son. The police claimed that the son of the lady was allegedly operating a PG facility in the collapsed building. Chief Minister Rekha Gupta said that buildings with a fifth floor across Delhi have been ordered to be sealed immediately. Nearby PG and other buildings are also being inspected, and any structure found violating safety norms will face immediate sealing action. The Chief Minister said that a policy will be introduced to make periodic structural audits and building safety certification mandatory for all buildings used for public activities, including PGs, nursing homes, schools and other institutions. AIIMS said that three individuals who were rescued are in critical condition, while two are stable, of them one has been discharged. The Delhi High Court has directed the MCD to conduct an inquiry at the highest executive level and examine whether the structure had been constructed and operated with valid permissions. Taking serious note of the incident, the court also directed the MCD to conduct a comprehensive audit of all PG accommodations and hostels under its jurisdiction within 1 week. This is Akashvani. You're listening to News at 9.
6: Stay updated, stay ahead. Follow us on X at AIR News Alerts and on Instagram at AIR News Alerts.
0: Welcome back. The Election Commission today announced by-poll to Nagaon Lok Sabha seat in Assam. It has also announced assembly by-polls for two seats each in Tamil Nadu and West Bengal and one seat in Puducherry. The Commission said Madurantakam and Dharapuram seats in Tamil Nadu, Rejinagar and Nandigram seats in West Bengal and Thattan Chavadi assembly seat in Puducherry will go to polls. Notification for the Lok Sabha and assembly by-poll will be issued on Wednesday. Nominations can be filed till the 16th of this month. Polling will be held on 6th of October and counting of votes will take place on the 9th of next month. ISRO Chairman V. Narayanan has refuted reports of ISRO being privatized. Speaking to media persons on the sidelines of an expo organized by CII in Bengaluru today, the ISRO chief said that ISRO is a government organization and there is no question of privatization.
9: ISRO is not privatized. ISRO is a government organization and we are working, it's a government investment and we are working there. One of the mandates to InSpace, ISRO and NCL is to grow the space ecosystem. With respect to the budget, whatever ISRO needs per year, government is allotting. There is no shortage of budget.
0: The flood situation in Bihar continues to remain serious. The Ganga and several major rivers are flowing above the danger mark at several places, affecting large parts of the state. More than 29 lakh people have been affected so far. The affected population is spread across 438 panchayats in 77 blocks of 13 districts. Chief Minister Samrat Chaudhary has directed officials to intensify relief and rescue operations and ensure that essential assistance reaches them without delay. India Meteorological Department, IMD, has forecast heavy rainfall over northeastern parts of India during the next 2 days. According to IMD, similar weather conditions are also likely to prevail over Bihar, East Madhya Pradesh, East Uttar Pradesh, Orissa and West Bengal tomorrow. Reigning world champion Cheetal Devi has confirmed a medal for India by storming into the women's compound individual final on the third day of the Stage 3 of World Archery Para Series in Ahmedabad today. In an all-Indian semi-final, the armless archer from Jammu defeated Sarita to book her place in the gold medal clash. She will now face Aizada Saidan of Kazakhstan in the final. And now before we end the bulletin, the headlines once again. Defence Acquisition Council clears capital acquisition proposals worth over 1,10,000 crore rupees. Prime Minister Modi to unveil projects worth over 35,000 crore rupees in Gujarat tomorrow to inaugurate Global FinTech Fest in Mumbai. Home Minister Amit Shah says zonal councils have become instrumental for development and public welfare. Also presents President's Police Colour to Goa Police. LPG refill booking interval of 25 days to be same for urban and rural areas. Five MCD officials suspended in Satiniketan building collapse incident. Delhi High Court orders high-level MCD inquiry. Election Commission announces by-poll to Nagaon Lok Sabha seat in Assam on 6th of October. Assembly by-polls for two seats each in Tamil Nadu and West Bengal and one in Puducherry to also take place simultaneously. And at World Archery Para Series, Sheetal Devi enters Women's Compound Individual Final in Ahmedabad, assuring a medal for India. That's all in News at 9. Good night.
10: आदाब, ये आकाशवाणी है। जमीर रजवी से खबरें सुनिए। सबसे पहले इस वक्त की सुर्खियां। दिफाई सामान की सरकारी खरीद से मुतालिक काउंसिल ने 1,10,000 करोड़ रुपये से ज्यादा मालियत की तजवीजों को मंजूरी दी है। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी कल गुजरात में वडोदरा के मकाम पर 35,000 करोड़ रुपये से ज़्यादा मालियत के प्रोजेक्टों का आगाज़ करेंगे और मुंबई में ग्लोबल फिनटेक फेस्ट का इफ्तिताह करेंगे। वज़ीर दाखला अमित शाह ने कहा है कि जोनल काउंसिल तरक्की और अवामी बहबूद का अहम वसीला बन गई हैं। उन्होंने गोवा पुलिस को सदर जमहूरिया का पुलिस परचम भी पेश किया। LPG का अगला सिलेंडर बुक करने का 25 दिन का वक्फा अब शहरी और देही दोनों इलाकों में यकसा रहेगा। कौमी राजधानी में सत्यनिकेतन इमारत ढह जाने के वाक़े में दिल्ली म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन MCD के 5 अहदेदारों को मुअत्तल कर दिया गया है। दिल्ली हाईकोर्ट ने आला सतह की MCD इंक्वायरी का हुक्म दिया है। इंतखाबी कमीशन ने आसाम में नागांव लोकसभा सीट का ज़िमनी चुनाव 6 अक्टूबर को कराने का ऐलान किया है। तमिलनाडु और मगरबी बंगाल में 2-2 असेंबली सीटों, नीज पुडुचेरी में 1 सीट का ज़िमनी चुनाव भी साथ साथ होगा। और अहमदाबाद में आलमी तीरंदाजी पैरा सीरीज़ में शीतल देवी खवातीन के कंपाउंड इनफरादी मुकाबले के फाइनल में पहुंच गई हैं और भारत को तमगा मिलना तय है। अब खबरें तफसील से। दिफाई सामान की सरकारी खरीद से मुतालिक काउंसिल ने दिफाई अफवाज के लिए 1,10,000 करोड़ रुपये से ज़्यादा मालियत की तजवीज़ों को मंजूरी दे दी है। हमारे नामा निगार ने बताया कि वज़ीर दिफा राजनाथ सिंह की सदारत में काउंसिल की मीटिंग के दौरान ये मंजूरी दी गई। पेश है एक रिपोर्ट।
11: इन तजवीज़ों में भारतीय फ़ौज के लिए केमिकल, बायोलॉजिकल और रेडियोलॉजिकल नीज न्यूक्लियाई टोह लेने वाली गाड़ियों, हाई मोबिलिटी गाड़ियों, जदीद तर्ज के हल्के हेलीकॉप्टरों, ट्रॉल टैंक और सर्वत्र ब्रिज निज़ाम की सरकारी खरीद की तजवीज़ें शामिल हैं। भारतीय बहरिया के लिए अरुद्र रडार की सरकारी खरीद और मैरीन गैस टर्बाइन की डिज़ाइन और तैयारी नीज इसकी सरकारी खरीद के लिए तजवीज़ को भी मंजूरी दी गई है। अरुद्र रडार बहरिया के मुख्तलिफ एयर स्टेशनों पर नस्ब मौजूदा एयर रूट निगरानी रडार की जगह लेगा। इस तरह गैर मुल्की अदारों पर इन्हिसार कम हो जाएगा। उधर भारतीय फ़ज़ाइया के लिए मुकाबला करने की सलाहियत बढ़ाने की खातिर मुख्तलिफ तजवीज़ों को मंजूरी दी गई है। कसीर मकसदी जैमर की सरकारी खरीद और दिफाई अफवाज का महफूज रसाई का कार्ड निज़ाम नस्ब करने की भी मंजूरी दी गई है। दिफा की वजारत ने कहा है कि इनमें से 98% दिफाई सामान की सरकारी खरीद भारतीय सनतों से की जाएगी। दिल्ली से सकलैन अख्तर की रिपोर्ट के साथ उर्दू खबरों के लिए मैं असगर अली।
10: वजीर दिफा राजनाथ सिंह ने कहा है कि भारत की दिफाई पॉलिसी रद्द अमल में कार्रवाई करने वाली से आगे बढ़कर पेशबंदी की कार्रवाई करने वाली पॉलिसी बन गई है। उन्होंने जोर देकर कहा कि मुल्क दिफा के शोबे में खुद कफील और पुरएतमाद बनकर उभर रहा है। आज नई दिल्ली में एक प्रोग्राम में इजहार ख्याल करते हुए जनाब राजनाथ सिंह ने कहा कि साल 2016 में मिज़ाइल टेक्नोलॉजी कंट्रोल रिजीम में भारत के शामिल होने के बाद से मुल्क ब्रह्मोस मिज़ाइल की सलाहियत बढ़ाने में कामयाब रहा और ये वज़ीर आज़म की सरगर्म सिफारतकारी और उनकी नज़रिया साज क़्यादत का नतीजा है। ऑपरेशन सिंदूर का तस्करा करते हुए वज़ीर दिफा ने कहा कि ब्रह्मोस मिज़ाइल के मौसर होने की सलाहियत सामने आ चुकी है।
3: भारत 2016 से पहले MTCR मेंबर नहीं था, जिसके कारण हम ब्रह्मोस मिसाइल की रेंज एक सीमा से आगे चाहते हुए भी हम नहीं बढ़ा पाते थे, लेकिन हमारी गवर्नमेंट के सक्रिय डिप्लोमेसी और दूरदर्शी नेतृत्व के कारण हमारा MTCR के हम सदस्य बने और उसके बाद ब्रह्मोस की रेंज भी बढ़ाने का काम करने में हमने कामयाबी हासिल की है। और आपको पता ही होगा कि पिछले वर्ष ऑपरेशन सिंदूर में ब्रह्मोस मिसाइल की क्या भूमिका रही है।
10: वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी कल गुजरात और महाराष्ट्र का दौरा करेंगे। वज़ीर आज़म गुजरात के वडोदरा में 35,000 करोड़ रुपये से ज़्यादा लागत के मुख्तलिफ तरक्याती प्रोजेक्टों का संग बुनियाद रखेंगे, इफ्तिताह करेंगे और मुल्क के नाम वक्फ करेंगे। इसके अलावा वो वेस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर WDFC के 3 अहम सेक्शनों को भी मुल्क के नाम वक्फ करेंगे, जो 326 रूट किलोमीटर का अहाता करते हैं। आज अहमदाबाद हवाई अड्डे पर नामा निगारों को जानकारी देते हुए रेलवे के वर्कजी वज़ीर اشونی ویشنو نے زور دے کر کہا کہ بار برداری کے لیے مخصوص مشرقی اور مغربی کوریڈور ملک کے ٹرانسپورٹ اور لاجسٹکس شعبے کے لیے ایک اہم وسیلے کے طور پر کام کریں گے۔
4: ڈیڈیکیٹڈ فریٹ کوریڈور ایسٹ اور ویسٹ، یہ دونوں دیش کے لیے بہت بڑی ایک بیک بون کی طرح ہے ٹرانسپورٹیشن میں۔ وہ پروجیکٹ اب کمپلیٹ ہوا پوری طرح سے، اس کو ماننیہ پردھان منتری جی کل راشٹر کے پرتی سمرپت کریں گے۔ یہ پریوجنا ایسی ہے جس میں کئی ورش لگے، 2014 میں پردھان منتری نے اس کام کو ہاتھ میں لیا، ہاتھ میں لے کے جتنی بھی اس میں پرابلمس تھی ان کو سالو کیا اور اب کمپلیٹ ہوا۔
10: وزیراعظم نریندر مودی کل شام ممبئی میں گلوبل فنٹیک فیسٹ جی ایف ایف 2026 کا افتتاح کریں گے اور اس موقع پر تقریب سے خطاب کریں گے۔ دنیا کی سب سے بڑی اور پروقار سالانہ فنٹیک کانفرنسوں میں سے ایک جی ایف ایف 2026 کا موضوع ہے صلاحیت سے اثر پذیری تک۔ اس بارے میں جاری کی گئی سرکاری پریس ریلیز کے مطابق جی ایف ایف 2026 کا مقصد ڈیجیٹل ادائیگیوں اور مالیاتی شمولیت میں بھارت کی قیادت کو پروان چڑھانا اور صلاحیت سے اثر پذیری تک لے جانا ہے۔ مرکزی وزیر داخلہ امیت شاہ نے آج گوا کے پنجی میں مغربی زونل کونسل کی 28ویں میٹنگ کی صدارت کی۔ اس موقع پر خطاب کرتے ہوئے جناب شاہ نے کہا کہ اب مغربی خطے کی ریاستوں کے مابین کسی طرح کا کوئی تنازع نہیں رہ گیا ہے، جو کہ ایک بڑی کامیابی ہے۔ انہوں نے زور دے کر کہا کہ زونل کونسلیں تنازعات کے تصفیے کے فورم سے آگے بڑھ کر اب عوامی بہبود کی اسکیموں پر عمل درآمد کی نگرانی کے پلیٹ فارم بن گئی ہیں۔ جناب امیت شاہ نے کہا کہ آج کی میٹنگ میں جن معاملات پر تبادلہ خیال کیا گیا وہ سبھی نگرانی سے متعلق تھے۔ انہوں نے کہا کہ زونل کونسل میں دریاؤں کے معاملے پر ریاستوں کے درمیان کئی تنازعات بھی حل کر لیے گئے ہیں۔ وزیر داخلہ امیت شاہ نے آج گوا میں ڈاکٹر شیاما پرساد مکھرجی انڈور اسٹیڈیم میں ایک تقریب کے دوران گوا پولیس کو صدر جمہوریہ کا پروقار پولیس پرچم پیش کیا۔ جناب امیت شاہ نے شہریوں اور سیاحوں کو فوری امداد فراہم کرنے کی خاطر 12 زبانوں میں سائبر فراڈ ہیلپ لائن 1930 کے لیے اے آئی پر مبنی وائس اسسٹنٹ کا بھی آغاز کیا۔ اس موقع پر خطاب کرتے ہوئے جناب شاہ نے گوا پولیس کی خدمات، پیشہ وارانہ صلاحیت، دلیری اور ڈسپلن کے لیے اس کی ستائش کی۔ انہوں نے کہا کہ فورس نے داخلی سلامتی برقرار رکھنے، ساحلی علاقوں کے تحفظ اور گوا کی سیاحت اور معیشت کو محفوظ رکھنے میں اہم رول ادا کیا ہے۔
8: 8 دشکوں کی گوروشالی گووا پولیس کی سیوا راشٹرپتی جی کے دیے ہوئے نشان کے ساتھ دیش بھر کی پولیس کی قطار میں کھڑی ہے۔ یہ گورو جن جن راجیوں کی پولیس کو ملا وہ پولیس کے گوروشالی اتہاس، ساہس، انوشاسن اور سمرپن کے کارن ہی راشٹرپتی مہودایا نے گووا کو پریسیڈنٹ کلر سے سنمانت کرنے کا کام کیا ہے۔
10: پیٹرولیم اور قدرتی گیس کے مرکزی وزیر مملکت سریش گوپی نے آج کہا کہ مرکز نے سبھی تیل مارکیٹنگ کمپنیوں سے کہا ہے کہ وہ ایل پی جی ریفیلنگ بکنگ کے لیے 25 دنوں کے نظر ثانی شدہ وقفے کو شہری اور دیہی دونوں علاقوں میں یکساں طور پر فوری نافذ کریں۔ سوشل میڈیا پوسٹ میں جناب گوپی نے کہا کہ ایل پی جی سپلائی کی موجودہ صورتحال میں بہتری آ رہی ہے اور ریفیل بیک لاگ میں نمایاں کمی آئی ہے۔ وہیں مرکز نے اس بارے میں عائد پابندی میں نرمی کی ہے۔ انہوں نے کہا کہ شہری اور دیہی زمرے سے قطع نظر اب سبھی گھریلو ایل پی جی صارفین 25 دن کے وقفے کے بعد ہی گیس سلنڈر بک کر سکتے ہیں۔ مشرق وسطی میں جنگ کی وجہ سے ایل پی جی سپلائی پر دباؤ کے سبب شہری علاقوں میں ریفل بکنگ کا وقفہ 25 دن اور دیہی علاقوں میں 45 دن کر دیا گیا تھا۔ یہ خبریں آکاشوانی سے نشر کی جا رہی ہیں۔ دلی کی وزیراعلی ریکھا گپتا نے کہا ہے کہ کل دلی کے ستیہ نکیتن میں گری عمارت کے مبینہ مالک کو گرفتار کر لیا گیا ہے۔ سوشل میڈیا پوسٹ میں وزیراعلی نے کہا کہ ڈپٹی کمشنر، سپرنٹینڈنگ انجینئر، ایگزیکٹو انجینئر، اسسٹنٹ انجینئر اور جونیئر انجینئر سمیت دلی میونسپل کارپوریشن ایم سی ڈی کے 5 افسران کو فوری طور پر معطل کر دیا گیا ہے۔ وزیراعلی نے کہا کہ پوری دلی میں 5ویں منزل والی عمارتوں کو فوری طور پر سیل کرنے کے احکامات جاری کر دیے گئے ہیں۔ اس دوران دلی کی ستیہ نکیتن عمارت حادثے میں مرنے والوں کی تعداد بڑھ کر 7 ہو گئی ہے۔ قدرتی آفات سے نمٹنے کے قومی فورس این ڈی آر ایف کی جانب سے جائے حادثے پر تلاش اور بچاؤ کارروائی جاری ہے۔ دلی کے آل انڈیا انسٹیٹیوٹ آف میڈیکل سائنسز ایمز نے اطلاع دی ہے کہ مجموعی طور پر 12 متاثرین کو اسپتال لایا گیا تھا، جن میں سے 6 کی موت ہو چکی تھی جبکہ 1 شخص زخموں کی تاب نہ لا کر بعد میں چل بسا۔ ایمز نے مزید کہا کہ بچائے گئے 3 افراد کی حالت نازک ہے جبکہ 2 لوگوں کی حالت مستحکم ہے۔ वहीं एक शख्स को डिस्चार्ज दे दिया गया है। इस दौरान दिल्ली हाई कोर्ट ने दिल्ली म्युनिसिपल कॉरपोरेशन MCD को हिदायत दी है कि कौमी राजधानी में सत्य निकेतन के मकाम पर एक इमारत के ढहे जाने के वाक़े की आला तरीन एग्जीक्यूटिव सतह पर इंक्वायरी कराई जाए और इस बात की भी जांच की जाए कि आया ये इमारत तामीर के लिए मंजूरी ली गई थी या नहीं। इस वाक़े का संगीन नोटिस लेते हुए हाईकोर्ट ने MCD को यह हिदायत भी दी कि वह अपने दायरे इख्तियार के तहत आने वाली सभी पेइंग गेस्ट इमारतों और हॉस्टल्स का एक हफ्ते के अंदर अंदर जामे ऑडिट कराए। अदालत ने यह भी हिदायत दी कि इमारत गिरने के वाक़े की इंक्वायरी में इस बात की खास तौर पर जांच की जानी चाहिए कि आया हर तरह की मतलूबा इजाज़त हासिल कर ली गई थी या नहीं। किसी तरह की गफलत या नाकामी के लिए जिम्मेदार अहलकारों की निशानदेही की जाए और कसूरवार पाए जाने वाले अफराद के खिलाफ मुजवज़ा या अब तक की गई कार्रवाई की तफसील पेश की जाए। इंतखाबी कमीशन ने आसाम की नागांव लोकसभा सीट पर ज़िमनी इंतखाबात का ऐलान कर दिया है। वहीं इंतखाबी कमीशन ने तमिलनाडु और मगरबी बंगाल की दो दो असेंबली सीटों और पुडुचेरी की एक सीट के लिए ज़िमनी असेंबली इंतखाब का भी ऐलान किया है। कमीशन ने कहा कि तमिलनाडु की मदुरन तकम और धर्मपुरम सीटों, मगरबी बंगाल की रेजीनगर और नंदीग्राम और पुडुचेरी की थत्ता चंदावड़ी असेंबली सीटों पर ज़िमनी इंतखाबात होंगे। लोकसभा और असेंबली ज़िमनी इंतखाबात दोनों के लिए नोटिफिकेशन बुध के रोज़ जारी किया जाएगा। 16 सितंबर तक कागजात नामजदगी दाखिल किए जा सकते हैं। राय दही 6 अक्टूबर को होगी जबकि वोटों की गिनती अगले महीने की 9 तारीख को होगी। खलाई तहकीक की भारतीय तंजीम इसरो के चेयरमैन वी नारायणन ने इन इत्तला को गलत करार दिया है कि इसरो की निजकारी की जा रही है। आज बेंगलुरु में CII के जेर एहतमाम एक नुमाइश के मौके पर नामा निगारों से बात करते हुए इसरो के सरबराह ने कहा कि इसरो एक सरकारी इदारा है और इसे प्राइवेट हाथों में देने का सवाल ही नहीं है। अलबत्ता उन्होंने ये भी कहा कि सरकार की जानिब से दी गई मंजूरी और खला से मुतालिक नई पॉलिसी के मुताबिक प्राइवेट सेक्टर खला के प्रोग्राम में शामिल है, जिसका मकसद इसकी सरगर्मियों में तेज़ी लाना है। इसरो के महदूद रोल और बजट से मुतालिक इल्ज़ाम पर चेयरमैन मौसूफ ने यह वाजह कर दिया कि इसरो का रोल कई गुना बढ़ गया है और इसकी मांगें पूरी करने के लिए सरकार की जानिब से मुख्तस की गई रकूमात काफ़ी हैं। बिहार में सैलाब की सूरत हाल बदस्तूर संगीन है। कई मकामात पर गंगा और दीगर बड़े दरिया खतरे के निशान से ऊपर बह रहे हैं, जिससे रियासत के वसी इलाके मुतासिर हुए हैं। अब तक

0: 29 लाख से ज़्यादा लोगों पर सैलाब का असर पड़ा है। 13 जिलों के 77 ब्लॉकों में 438 पंचायतों के दायरे में आने वाले लोग सैलाब से मुतासिर हुए हैं। इस दौरान भारतीय महकमे मौसमियात ने अगले 2 दिन के दौरान भारत के शुमाल मशरक़ हिस्सों में शदीद बारिश की पेशगोई की है। महकमे मौसमियात के मुताबिक बिहार, मशरक़ी मध्य प्रदेश, मशरक़ी उत्तर प्रदेश, ओडिशा और मगरबी बंगाल में भी कल इसी तरह के मौसमी हालात रहेंगे। इस दौरान अंडमान और निकोबार जजायर, बिहार, ओडिशा, ज़ैली हिमालयी मगरबी बंगाल, सिक्किम और तेलंगाना में अगले 2 दिन के दौरान गरज चमक और तेज़ हवाओं के साथ बारिश का इम्कान है। भारतीय महकमे मौसमियात ने केरला और माहे में कल मौसम के गर्म और मरतूब रहने की भी पेशगोई की है। पैरा तीरंदाजी की मौजूदा आलमी चैंपियन शीतल देवी ने आज अहमदाबाद में आलमी तीरंदाजी पैरा सीरीज़ के तीसरे मरहले के तीसरे दिन खवातीन के कंपाउंड इनफरादी फाइनल में पहुंचकर भारत के लिए तमगा यकीनी बना लिया है। ऑल इंडिया सेमीफाइनल में बाजुओं से महरूम जम्मू की शीतल देवी ने सरिता को 143 के मुकाबले 145 से शिकस्त दी और सोने के तमगे के लिए होने वाले फाइनल मुकाबले में पहुँच गईं। फाइनल में शीतल देवी का मुकाबला कजाकिस्तान की आयजदा सैदान से होगा। और आखिर में खास खास खबरें एक बार फिर। दिफाई सामान की सरकारी खरीद से मुतालिक काउंसिल ने 1,10,000 करोड़ रुपये से ज़्यादा मालियत की तजवीज़ों को मंजूरी दी है। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी कल गुजरात में वडोदरा के मकाम पर 35,000 करोड़ रुपये से ज़्यादा मालियत के प्रोजेक्टों का आगाज़ करेंगे और मुंबई में ग्लोबल फिनटेक फेस्ट का इफ्तिताह करेंगे। वज़ीर दाखिला अमित शाह ने कहा है कि जोनल काउंसिलें तरक्की और अवामी बहबूद का अहम वसीला बन गई हैं। उन्होंने गोवा पुलिस को सदर जमहूरिया का पुलिस परचम भी पेश किया। LPG का अगला सिलेंडर बुक करने का 25 दिन का वक्फा अब शहरी और देही दोनों इलाकों में यकसां रहेगा। कौमी राजधानी में सत्यनिकेतन इमारत ढह जाने के वाक़े में दिल्ली म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन MCD के 5 अहदेदारों को मुअत्तल कर दिया गया है। दिल्ली पुलिस ने आला सतह की MCD इंक्वायरी का हुक्म दिया है। और इंतखाबी कमीशन ने आसाम में नागांव लोकसभा सीट का ज़िमनी चुनाव 6 अक्टूबर को कराने का ऐलान किया है। तमिलनाडु और मगरबी बंगाल में 2-2 असेंबली सीटों नीज पुडुचेरी में 1 सीट का ज़िमनी चुनाव भी साथ साथ होगा। इसके साथ ही आकाशवाणी से खबरों का ये बुलेटिन खत्म हुआ।
1: समाचार सेवा प्रभाग से प्रस्तुत है हमारा साप्ताहिक कार्यक्रम पब्लिक स्पीक।

0: नमस्कार, पब्लिक स्पीक में मैं हूं आपके साथ फरहत नाज, और आज का हमारा विषय है लोक अदालत यानी जनता की अदालत। हम सब जानते हैं कि हमारी सामान्य अदालतों में एक छोटे से केस को भी सुलझने में कई साल लग जाते हैं। सभी लोगों के पास इतना पैसा नहीं होता कि वो महंगा वकील कर सके, तारीख पर तारीख मिलती रहती है। तो इसी समस्या को खत्म करने के लिए हमारे संविधान ने हमें लोक अदालत का तोहफा दिया, और आज पूरे आधे घंटे हम इसी विषय पर बात करेंगे कि लोक अदालत क्या है, कैसे ये काम करती है, इसकी प्रक्रिया क्या है और आपके लिए कैसे फायदेमंद हो सकती है। और आज हमने अपने स्टूडियो में आमंत्रित किया है, हमारे आज के मेहमान हैं एडवोकेट आशीष कुमार पांडे जी को, जो सुप्रीम कोर्ट में वकील हैं। नमस्कार आशीष जी, कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन।
1: थैंक यू फॉर इनवाइटिंग मी ऑन ऑल इंडिया रेडियो, इट्स ऑलवेज अ प्लेजर टू बी हियर।
0: जी श्रोताओं, और आइए अब कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं। हमारी फोन लाइंस खुल चुकी हैं, आप हमारे नंबर पर कॉल करना शुरू कीजिए। नंबर है 0113104 8 0113717117 1 0113717 1 06 और 0113144444 पर आप कॉल कर सकते हैं। और इसके अलावा आप व्हाट्सएप नंबर 9289094044 पर भी अपने सवाल भेज सकते हैं। इसके अलावा आप अपने प्रश्न #AskAIR के साथ एक्स पर भी पोस्ट कर सकते हैं। तो आइए कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं आशीष जी, लेकिन सबसे पहले हम आपसे जानना चाहेंगे कि लोक अदालत क्या है और ये कैसे काम करती है।
1: देखिए, भारत का जो संविधान है वो एक्सेस टू जस्टिस की बात करता है, वो सबके लिए न्याय की उपलब्धता होनी चाहिए, वो हमारा एक फंडामेंटल राइट है। और इसी तरीके से संविधान में त्वरित न्याय की भी बात करी गई है। अब इन कॉन्स्टिट्यूशनल प्रिंसिपल्स को जब हम एक वास्तविकता के साथ सामने रखते हैं कि भारत की न्याय प्रणाली में

0: आप पाएंगे कि मामले बहुत समय तक लंबित हो जाते हैं। लोगों को फाइनेंशियल स्ट्रेन होता है, लोगों को कई बार आप पाते हैं कि प्रॉपर लीगल एडवाइस नहीं मिल पाती है, और सालों साल, जैसे कि एक पॉपुलर डायलॉग है कि तारीख पर तारीख मिलती रहती है। और बहुत सारे ऐसे प्रयास किए गए हैं सरकारों की तरफ से कि किस तरीके से हम उन कॉन्स्टिट्यूशनल आइडियाज़ को प्रैक्टिकली ज़मीन पर उतार पाएँ। अब इन्हीं प्रयासों में एक प्रयास रहा है, हमने नेशनल लीगल सर्विसेज अथॉरिटीज एक्ट 87 में लाए। उसके तहत मल्टी टीयर लीगल सर्विसेज अथॉरिटीज़ को कॉन्स्टिट्यूट किया गया। नेशनल लेवल पर आपकी नेशनल लीगल सर्विसेज अथॉरिटी होती है, इसी तरीके से स्टेट लेवल पर होती है, डिस्ट्रिक्ट लेवल पर होती है। अब ये अथॉरिटीज़ समय समय पर उन फोरम्स को कॉन्स्टिट्यूट करती रहती हैं जिन फोरम्स में कोर्ट में चल रहे केसेस या जो केसेस कोर्ट में ले जाए जाने वाले हैं उन केसेस को रेफर कर सकते हैं
1: जी।
0: ये फोरम्स आपस में दोनों पार्टीज को बिठाकर एक तरीके से कॉन्सिलिएशन का काम करती हैं और आपस में ही एक सुलह समझौते के आधार पर अपना अवार्ड पास करती हैं। तो एक तरीके से जिसको हम ADR सिस्टम कहते हैं, एक वैकल्पिक न्याय व्यवस्था है, इसकी तरफ प्रयास किया गया है लोक अदालतों के द्वारा। जी
1: जी। और अब हमारे श्रोताओं के प्रश्नों की भी शुरुआत हो चुकी है। हरियाणा हिसार से हमारे साथ हमारे श्रोता जुड़ गए हैं, राजेंद्र जी।
2: हाँ जी, नमस्कार जी, और वकील साहब को भी नमस्कार जी।
0: नमस्कार राजेंद्र जी।
2: मैं ये जानना चाहता हूँ वकील साहब से कि लोक अदालत में कौन से केसों की सुनवाई होती है और दूसरा और कौन से केस की नहीं होती। आम आदमी कैसे पता करे कि कहाँ लोक अदालत लगती है और इसके बारे में कब कब सूचना दी जाती है, इसके बारे में जानना था। नमस्कार जी।
0: जी नमस्कार। देखिए मैं आपके आखिरी क्वेश्चन से शुरुआत करता हूँ, कब कब लोक अदालतें लगती हैं और कहाँ कहाँ लोक अदालतें लगती हैं। देखिए राष्ट्रीय स्तर पर नेशनल लीगल सर्विसेज अथॉरिटी एक एनुअल कैलेंडर जारी करती है जिसमें कि कब कब लोक अदालतें लगनी हैं उसके बारे में एक डिटेल्ड कैलेंडर होता है। अब दूसरा प्रश्न आपका है ये कहाँ लगती हैं। न्याय के सर्वोच्च स्तर सुप्रीम कोर्ट से लेकर हाई कोर्ट्स में, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स में, तालुका स्तर पर, मंडल स्तर पर, हर जगह इन लोक अदालतों का आयोजन किया जाता है और वो लोक अदालतें सामान्यतः जो राष्ट्रीय कैलेंडर बना होता है उसके अनुसार काम करती हैं और कभी कभी स्पेशल लोक अदालत भी लगती हैं। फिर आपने सवाल पूछा कि किस तरीके के केसेस इसमें डील किए जा सकते हैं और किस तरीके के नहीं डील किए जा सकते हैं। देखिए जो भी सिविल केसेस होते हैं ऑलमोस्ट सारे केसेस लोक अदालतों में रेफर किए जा सकते हैं, वहाँ पर ले जाए जा सकते हैं। और वो क्रिमिनल केसेस जो कंपाउंडेबल होते हैं, जैसे आपका चेक बाउंस का केस हो गया या ऐसे कंपाउंडेबल केसेस जिसके लिए लॉ में प्रोविज़न है, वो सारे केसेस लोक अदालतों में लाए जा सकते हैं। लेकिन जहाँ पर कोई हीनस क्राइम हुआ है, जैसे अगर कोई रेप का केस हुआ है, एक मर्डर हुआ है, इस तरीके के केसेस में चूंकि स्टेट भी अपने आप में एक पार्टी होती है, ये क्राइम्स न केवल विक्टिम के अगेंस्ट क्राइम्स होते हैं बल्कि समाज के खिलाफ भी एक क्राइम होता है, इस तरीके के केसेस को लोक अदालत में नहीं ले जाया जा सकता। जो आपके पारिवारिक झगड़े होते हैं, जो आपके समाज में छोटे छोटे झगड़े हो जाते हैं, या एक बहुत बड़ी यूटिलिटी निकल कर आई है लोक अदालतों की, आपका गाड़ियों का चालान हो जाता है, आपके बिजली बिल कभी ज़्यादा आ जाते हैं या पानी का बिल ज़्यादा आ जाता है, इस तरीके के सारे मुकदमों की सुनवाई आप पाते हैं लोक अदालतों में होती है और इसका बहुत ही अच्छा रिजल्ट निकल कर आ रहा है। हम पाते हैं कि पिछले करीब 5 सालों में करोड़ों केसेस ऐसे हुए हैं, छोटे छोटे केसेस, जिनको कि लोक अदालतों के द्वारा आपसी सुलह समझौते से कंप्लीट किया जा सका है। जी
1: आशीष जी, हमारे साथ एक और श्रोता जुड़ गए हैं शिमला से, राकेश जी। जी राकेश जी।
3: जी नमस्कार, विशेषज्ञ को मेरा भी नमस्कार। मैं राकेश बात कर रहा हूँ, कोटखाई शिमला हिमाचल प्रदेश।
1: जी नमस्कार।
0: नमस्कार राकेश जी।
3: जी मेरा ये प्रश्न है कि जब हम लोक अदालत में जो है केस बनते हैं तो कितना टाइम हमारे को उसमें लग सकता है, मेरा ये प्रश्न है।
0: देखिए लोक अदालत एक दिन विशेष के लिए तय की जाती है, एक पर्टिकुलर डे पर आपका मैटर मार्क होता है। लेकिन लोक अदालत की चूंकि प्रक्रिया इस तरीके की होती है कि कॉन्सिलिएशन पहले जरूरी होता है, तो जब भी आपका केस लोक अदालत के लिए या आप खुद ही एप्लीकेशन के थ्रू

रेफर कराती हैं, या कोर्ट को कभी लगता है जिस कोर्ट में पेंडिंग है कि ये एक सुइटेबल केस हो सकता है लोक अदालत के लिए, इसको भेजा जाना चाहिए, तो उसके पहले एक कॉन्सिलिएशन की प्रोसेस, दोनों पार्टीज आपस में बैठकर बात करके कोई एक ऐसा समझौता जो कि दोनों पार्टीज को मंजूर है, जब वो चीज़ हो जाती है तो उसके बाद आप पाते हैं कि ये केवल एक दिन में ही समाप्त हो जाता है, किसी एक दिन विशेष के लिए लोक अदालत लगती है, और अगर पार्टीज

0: जानना चाहेंगे कि ये कैसे अप्लाई किया जा सकता है।
1: देखिए, केसेस को अप्लाई करने के कई सारे तरीके हो सकते हैं। इनफैक्ट केसेस में भी मैं कैटेगराइज करूँगा कि एक तरीके का केस होता है जो ऑलरेडी फाइल हो चुका है और
0: जी
1: कोर्ट में चल रहा है। दूसरा एक तरीका ये होता है कि आप कोर्ट में केस फाइल करने के बारे में सोच रहे हैं। तो जो ऐसे मामले हैं जहाँ पर कोई पार्टी कोर्ट में केस फाइल करने के बारे में सोच रही है, वो कंसर्न कोर्ट की लीगल सर्विसेज अथॉरिटी के पास, लीगल सर्विसेज कमेटी के पास एक एप्लीकेशन दे सकती है और उस एप्लीकेशन के बाद दोनों पार्टीज को नोटिस चली जाती है कि ये आपका कोर्ट, आपका केस इस पर्टिकुलर मीडिएशन के लिए या लोक अदालत के लिए रेफर किया जा रहा है। दूसरी चीज़ ये है कि जो मैटर ऑलरेडी चल रहे हैं वहाँ पर या दोनों पार्टीज आपस में कंसेंट इस चीज़ के लिए दे सकती हैं कोर्ट को, या एक पार्टी एप्लीकेशन दे सकती है कोर्ट के सामने और कोर्ट को लगता है कि ये एक सही मामला हो सकता है जहाँ पर लोक अदालत के थ्रू कोई निर्णय निकल सकता है।
0: जी
1: या फिर अगर दोनों पार्टीज की भी कंसेंट नहीं है फिर भी अगर कोर्ट को लगता है कि पार्टीज एक्सप्लोर कर सकती हैं और कोर्ट को समझ में आ रहा है कि ये इस तरीके की चीज़ें हो सकती हैं सुलह समझौता, तो कोर्ट सुओ मोटो भी मैटर को लोक अदालत को रेफर कर सकती है।
0: जी आशीष जी, आज के इस कार्यक्रम में हम लोक अदालत की बात कर रहे हैं, जनता की बात कर रहे हैं। तो एक और श्रोता हमारे साथ जुड़ गए हैं, दरभंगा बिहार से मोहन पासवान जी। जी मोहन जी,
2: जी जी जय हिंद मैडम। ठीक
0: जी जय हिंद।
1: जय हिंद मोहन जी।
2: जी मैं जानना चाहता हूँ कि लोक अदालत में आम लोगों के लिए सरकारी वकील का भी व्यवस्था होता है सहायता के लिए?
1: जी, आपने बहुत अच्छा सवाल किया है। देखिए, जो लीगल सर्विसेज अथॉरिटीज होती हैं इनके ट्विन फंक्शंस होते हैं। पहला फंक्शन ये होता है कि जिन लोगों को एक लीगल रिप्रेजेंटेशन नहीं मिल पा रहा है, वकील नहीं मिल पा रहा है, वो उसका कोई भी कारण हो सकता है, मूलतः उसका एक आर्थिक कारण भी होता है। और कई वर्गों के लिए हमारे समाज में लीगल एड की अलग से भी प्रोविजन है। ऐसे में सरकारी वकील, जिसको कि हम सरकारी वकील कहते हैं, वो बेसिकली एक लीगल एड काउंसिल होता है जो कि इम्पैनल्ड होता है लीगल सर्विसेज अथॉरिटीज से, और वो वकील आपको लीगल सर्विसेज अथॉरिटीज की तरफ से मार्क किया जाता है। और मेरा ये आकाशवाणी के माध्यम से सबसे अनुरोध है, देखिए किसी भी जब सुलह समझौते से कोई निर्णय निकलता है तो उसके लिए ये बहुत ज़्यादा आवश्यक है कि कोई भी व्यक्ति जो सुलह कर रहा है उसको अपने लीगल ऑप्शंस पता होने चाहिए, उसको अपने केस की मेरिट पता होनी चाहिए। अगर किसी व्यक्ति को ये ही नहीं पता कि उसका केस कितना स्ट्रांग है या कितना कमज़ोर है, तो वो कभी भी सुलह समझौते की टेबल पर एक मजबूती के साथ नहीं बैठ सकता, अपने इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट नहीं कर सकता। तो कहीं ना कहीं लीगल रिप्रेजेंटेशन होना, एक अच्छा कानूनी जानकार होना उस सलाह के लिए, लोक अदालत में पार्टिसिपेशन के लिए, ये आवश्यक है। और अगर आपके पास ऐसा वकील नहीं है तो आप निसंदेह, अगर आप एलिजिबल हैं तो आप लीगल सर्विसेज अथॉरिटीज के पास एप्लीकेशन दे सकते हैं और लीगल एड काउंसिल्स आपकी मदद करने के लिए वहाँ आपको जरूर मार्क किए जाएंगे।
0: आशीष जी आइए, आप एक और प्रश्न ले लेते हैं थाने से गुरुनाथ जी का। जी गुरुनाथ जी
3: नमस्कार।
0: नमस्कार।
3: मेरा क्वेश्चन था लैंड के बारे में था, जमीन का विवाद है मेरा, मेरा परिवार के अंदर जो है वो तो उसमें मतलब लोक अदालत में जाने के लिए क्या हम सामने वालों को भी मतलब पार्टी करना पड़ेगा कि हम खुद जाके अपील कर सकते हैं?
0: जी।
3: और मेरा दूसरा सवाल है, इनसे कैसे पता चले कब लोग अदालत लगती है, कोर्ट में जाए उनसे पता चले, यही पूछना था।
1: जी देखिए, आपके दूसरे सवाल का पहला मैं पहले उत्तर दे देता हूँ। जो भी कंसर्न कोर्ट है आपकी, जो भी ज्यूरिसडिक्शनल कोर्ट होगी, आप वहाँ पर जाएंगे तो एक लीगल सर्विसेज अथॉरिटी का, लीगल सर्विसेज कमेटी का एक ऑफिस वहाँ हर कोर्ट में होता है। वो उस कोर्ट में जो नेशनल कैलेंडर है उसके अनुसार कब लोक अदालत आ रही है या कोई स्पेशल लोक अदालत का गठन किया जा रहा है, इस चीज़ को आप पता कर सकते हैं। दूसरी चीज़ आपने बोली कि आपका एक प्रॉपर्टी प्रॉपर्टी डिस्प्यूट चल रहा है, उसके लिए क्या आपको दूसरी पार्टी के साथ जाना पड़ेगा या खुद भी कर सकते हैं? देखिए, इसमें अगर आप लोक अदालत में मामला ले जाना चाहते हैं और दूसरी पार्टी भी एग्री करती है मैं मान के चलता हूँ कि आपने केस ऑलरेडी फाइल किया हुआ है, तो दोनों पार्टीज अगली डेट पर कोर्ट के सामने एक जॉइंट स्टेटमेंट भी दे सकती हैं। लेकिन अगर अगली पार्टी उस पर एग्री नहीं कर रही है, जॉइंट स्टेटमेंट नहीं दे रही है, तो भी आप अपने वकील से कहकर एक एप्लीकेशन फाइल करा सकते हैं या ओरल सबमिशन भी कर सकते हैं। और कोर्ट को यदि लगता है

0: इसमें एक सुलह समझौते की पॉसिबिलिटी दिखाई पड़ रही है, तो वो मैटर लोक अदालत को रेफर कर दिया जाएगा। और इसका सबसे बेस्ट आपको जो इसका लाभ मिलेगा कि अगर ये मैटर लोक अदालत में सेटल होता है, तो एक तो जो बहुत प्रॉपर्टी का मैटर है, सालों साल खिंचते हैं इस देश में, तो उसमें आपको जल्दी उस पर त्वरित रिलीफ मिल सकती है, जो कि दोनों पार्टीज को एक्सेप्टेबल होगी। और दूसरी की साथ में साथ जो आपने कोर्ट फी फाइल करी होगी अपने केस को फाइल करने के लिए, और वो कोर्ट फी भी आपको, अगर मामला लोक अदालत में सेटल हो जाता है, तो वो कोर्ट फी भी आपको वापस हो जाएगी। जी
1: आशीष जी, लेकिन अगर एक पक्ष सपोज कीजिए फैसले से खुश नहीं होता है, तो क्या वो ऊपर की अदालत में अपील कर सकते हैं?
0: देखिए, ये कन्फ्यूजन काफ़ी लोगों को रहता है
1: जी।
0: लेकिन लोक अदालत का अगर आप नेचर देखेंगे, वहाँ जो अवार्ड्स का नेचर होता है वो कंसेंट से होता है। कंसेंट का मतलब ये है कि दोनों पार्टीज टेबल पर साथ में बैठी, उन्होंने अपने अपने ऑप्शंस को एक्सप्लोर किया, थोड़ी फ्लेक्सिबिलिटी दिखाई और कोई एक ऐसे ऑप्शन पर पहुंचे जो कि दोनों पार्टीज के लिए एक सहमति का पॉइंट बिंदु बन सकता है। अब अगर दोनों पार्टीज किसी मामले को सेटल करती हैं और उस चीज़ को लेकर सहमत हैं, तो कोई भी पार्टी उसको चैलेंज करने के लिए नहीं जाएगी। लेकिन अगर हम कानूनी रूप से बात करें, तो लोक अदालत के जो अवार्ड होते हैं वो फाइनल और बाइंडिंग होते हैं और ये अपीलेबल नहीं होते हैं। लेकिन एक बहुत ही, जब मैं कहता हूँ कि अपीलेबल नहीं होते हैं, तो इसका ये मतलब है, केवल इतना मतलब समझिए कि इसके खिलाफ कोई अपील नहीं हो सकती है। लेकिन एक बहुत छोटी सी फाइन डिस्टिंक्शन ये भी है कि जुडिशियल रिव्यू के बियॉन्ड कुछ भी नहीं है। जुडिशियल रिव्यू, अगर लोक अदालत में भी एक सिचुएशन ऐसी हो सकती है कि जैसे परमानेंट लोक अदालत होती है, वहाँ पर पिक्यूनरी ज्यूरिडिक्शन 1 करोड़ होता है, अगर लोक अदालत ने ही अपना ज्यूरिडिक्शन को ब्रीच किया हुआ है, या जो अवार्ड आया है वहाँ उसमें धोखाधड़ी करके अवार्ड आया है, जैसे एक पार्टी बैठी हुई है, उसने कोई ऐसा डॉक्यूमेंट लगाया या एक क्लेम किया जो कि सही नहीं है, गलत है, और इस तरीके से अगर आपने कोई अवार्ड को हासिल किया है, तो वो जो सहमति होती है वो मानते हैं कि कंसेंट आपकी विशिएटेड है, और विशिएटेड कंसेंट के आधार पर जो एग्रीमेंट और जो फाइनली लोक अदालत में अवार्ड में कन्वर्ट हो रहा है, उसको रिट पिटीशन के थ्रू हाई कोर्ट में चैलेंज किया जा सकता है। लेकिन ये बहुत ही एक्सेप्शनल सर्कमस्टेंसेज में होता है। लोक अदालत के अवार्ड फाइनल और बाइंडिंग होते हैं और इनके खिलाफ अपील नहीं की जा सकती है।
1: जी, इस चर्चा को हम आगे जारी रखेंगे, लेकिन एक और प्रश्न ले लेते हैं दिल्ली से धर्मवीर जी का। जी धर्मवीर जी,
2: नमस्कार। मैडम
1: नमस्कार,
2: मैं धर्मवीर गांधीनगर दिल्ली से बोल रहा हूँ। सर नमस्कार।
0: नमस्कार धर्मवीर
2: सर, मेरे दो सवाल हैं छोटे छोटे। जैसे कि अगर कोई 33 साल पहले अगर कोई अपराध करके भाग जाता है और उसके साथी पे मुकदमा चलता है, केस चलता है, वो एक्सपायर हो जाता है, जो भगा हुआ मेन अपराधी है, उसकी खोज खबर निकालने के लिए हमें उसका क्या प्रोसीजर अपनाना पड़ेगा या कैसे क्या करना पड़ेगा? दूसरा सवाल ये है कि जो आजकल दहेज के मामले चलते हैं, जो शादी तो नई नई शादियों के बाद तलाक होने की नौबत आती है, तो ये बहुत अच्छा कानून में थोड़ा सा शुरुआत कर दी है कि मीडिएटर की भूमिका बहुत अच्छी तरह से निभाई जा रही है, क्योंकि पहले तो बहुत खतरनाक केस माने जाते थे दहेज के मामले में, पूरा परिवार अंदर हो जाता था। ये बहुत अच्छा सरकार या कानून ने अच्छा किया कि इसमें बहुत अच्छी तरह से बारीक की जो देख के कुछ काफी हद तक दोनों पार्टियों को, लड़के वालों को ज्यादातर सुविधा मिली है।
0: जी धर्मवीर जी, दोनों सवालों के आप के बारे में चर्चा करते हैं। देखिए, जो आपका पहला सवाल है कि कोई अगर अपराध करके भागा हुआ है और उसका वो उसकी डेथ हो गई है और उसका साथी, मैं मानता हूँ साथी से आपका मतलब को एक्यूज से है, उसको कैसे ढूंढा जाए? तो देखिए, ये लोक अदालत में मैटर आएगा या नहीं आएगा, ये इस चीज़ पर डिपेंड करता है कि वो कंपाउंडेबल ऑफेंस था या नहीं था। एक अपराध ये भी हो सकता है कि किसी ने आपके साथ फाइनेंशियल गबन किया हो, आपने आपके पैसे लेकर भाग गया हो, या आपको लेट से एक छोटी मोटी चोट लगी हो जिसको कि कंपाउंडेबल एक हो सकता है न्यायिक प्रणाली को देखते हुए। इस तरीके के मामलों में तो आप लोक अदालत को अप्रोच कर सकते हैं। लेकिन अगर कोई ऐसा गंभीर अपराध घटित हुआ है, ऐसा क्राइम घटित हुआ है जिसको, जो कंपाउंड नहीं हो सकता, जो पार्टीज आपस में सेटल नहीं कर सकती हैं, उस अपराध के लिए लोक अदालत सही फोरम नहीं है, और उसके लिए जो क्रिमिनल कोर्ट्स हैं देश की, वही अप्रोप्रिएट फोरम होती हैं। और जब कोई भी एक्यूज्ड अगर नहीं मिल रहा है और काफ़ी समय से एब्सकॉन्डिंग है, तो सबसे पहला एक स्टेप होता है उसको एक प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर, एक और डिक्लेयर कराया जाता है, और उसके बाद आप अपने काउंसिल से सलाह लेंगे। तो लॉ में बहुत सारे ऐसे ऑप्शंस हैं जहां पर देखिए इस चीज़ की गारंटी तो नहीं होती है कि जो भागा हुआ है वो व्यक्ति मिलेगा कि नहीं मिलेगा। गारंटी इस चीज़ की होती है कि जो अथॉरिटीज़ हैं रिस्पॉन्स

0: रिस्पॉन्सिबल, क्या वो एक्शन ले रही हैं कि नहीं ले रही हैं। उन अथॉरिटीज़ को डायरेक्शन दिलवाने के लिए बहुत सारे ऐसे प्रोविजंस हैं कानून में जिनका कि सहारा आप ले सकते हैं। दूसरा सवाल आपका
1: दहेज
0: उत्पीड़न से, देखिए आपने बिल्कुल ठीक कहा, मीडिएशन इस समय देश में काफ़ी चर्चा में है और सही कारणों से चर्चा में है। लोक अदालत और मीडिएशन में अगर आप बेसिक अंतर समझना चाहें तो लोक अदालत का जो अवार्ड होता है वो अपने आप में कोर्ट की डिग्री के बराबर होता है और वो इन्फोर्सिबल होता है। मीडिएशन क्या है? मीडिएशन में एक मीडिएटर पार्टीज़ के बीच में कम्युनिकेशन को फैसिलिटेट करता है और जब अगर पार्टीज़ के बीच में कोई समझौता हो जाता है, कम्युनिकेशन इस्टेब्लिश होता है, ऑप्शंस एक्सप्लोर होते हैं और कोई समझौता हो जाता है तो उस मीडिएशन एग्रीमेंट को कोर्ट को भेजा जाता है, कोर्ट फिर उसमें ऑर्डर पास करता है, तब वो डिक्री ऑफ द कोर्ट बनता है। इसी तरीके से मीडिएशन एक बहुत ही प्राइवेट प्रोसेस है, एक कॉन्फिडेंशियल प्रोसेस है, जबकि लोक अदालत एक अदालत की तरह एक खुला एक मंच होती है जिसमें कि जो भी वहाँ पर मौजूद है वो उन चीज़ों को फैक्ट के बारे में जान सकता है। अब मैट्रिमोनियल डिस्प्यूट से रिलेटेड बहुत सारे मामले ऐसे देखे गए हैं जहाँ पर कानूनी प्रावधानों का दुरुपयोग हुआ है और उन प्रावधानों के दुरुपयोग को देखते हुए ऐसे प्रोविजंस किए गए हैं, उन ऑफेंसेस को कंपाउंडेबल बनाया गया है। अब जहाँ भी कंपाउंडेबिलिटी की बात आती है फिर लोक अदालत अपने आप में एक सही फोरम बन जाती है। अगर सपोज करिए देखिए एक ट्रिनिटी ऑफ केसेस की बात होती है लीगल फ्रेटर्निटी में कि कोई भी मैट्रिमोनियल डिस्प्यूट होता है, एक डिवोर्स का केस चल रहा होता है, डोमेस्टिक वायलेंस का केस चल रहा होता है और दहेज उत्पीड़न का केस चल रहा होता है, ये तीन केसेस आपस में मिलके चल रहे होते हैं, तो कई बार पार्टीज के पास ये ऑप्शन होता है कि आप लोक अदालतों में जाएं या मीडिएशन में जाएं। मीडिएशन भी कई तरीके के होते हैं, एक प्राइवेट मीडिएशन भी हो सकता है जो कि गांव समाज के लोग ही आपस में फैमिली मेंबर्स मिलकर बैठकर पार्टीज़ को समझा सकते हैं, एक एग्रीमेंट साइन हो सकता है और वो फिर सिविल कोर्ट में चला जाता है। दूसरी तरह से कोर्ट एनेक्स मीडिएशन होता है जहाँ पर कोर्ट में केसेस चल रहे हैं वहाँ पर आप पाएंगे आजकल हर एक मैट्रिमोनियल केस को सबसे पहले मीडिएशन के लिए भेज दिया जाता है पॉसिबिलिटीज़ को एक्सप्लोर करने के लिए। तो आपकी बात से मैं बिल्कुल सहमत हूँ कि ऐसे मामले जहाँ पर कानूनों का सही तरीके से इस्तेमाल नहीं हुआ है या गलत इस्तेमाल हुआ है और वहाँ पर जहाँ कॉम्प्रोमाइज़ करने की पॉसिबिलिटी कानून के द्वारा दी गई है वहाँ पर मीडिएशन को या लोक अदालतों के की फोरम को एक्सप्लोर किया जाना चाहिए। जी धर्मपाल जी।
1: आशीष जी, एक और श्रोता हमारे साथ जुड़ गए हैं पुणे से, श्रीपद झाकड़े जी। जी श्रीपद जी।
2: हेलो
1: जी, नमस्कार।
2: नमस्कार मैडम। नमस्कार सर।
0: नमस्कार श्रीपद जी।
2: हाँ, मेरा सवाल यह है कि मैं सहायता में क्या
1: श्रीपद जी, आपकी आवाज़ नहीं आ रही है, अगर आपने पीछे रेडियो ऑन किया हुआ है या टीवी ऑन किया हुआ है तो प्लीज।
2: अभी आ रही है
1: जी? हाँ बताइए।
2: हाँ मैं मतलब अभी दृष्टिबाधित है और मतलब हम लोगों के लिए मतलब किस प्रकार कानूनी सहायता मिल सकती है, मतलब क्या क्या प्रेफरेंस मिल सकता है कानूनी सहायता में?
1: कानूनी सहायता में किस तरह का प्रेफरेंस दिया जा सकता है?
0: देखिए देश में कानूनी सहायता, मैं फिर से ऐसे स्टार्ट करता हूँ कि एक्सेस टू जस्टिस, न्याय सबके लिए उपलब्ध होना चाहिए, सुलभ होना चाहिए, ये आपका कॉन्स्टिट्यूशन के तहत फंडामेंटल राइट है। अब उस राइट को इन्फोर्स कराने के लिए, उस राइट को सबको अवेलेबल कराने के लिए सरकारों की तरफ से, कोर्ट्स की तरफ से कई तरीके की व्यवस्था की गई है। जब आप बात करते हैं कि आपको किस तरीके से आप अपने राइट्स को, इन राइट्स को एक्सप्लोर कर सकते हैं, इन्फोर्स करा सकते हैं या क्लेम कर सकते हैं, तो हर जो भी लीगल एड सर्विसेज अथॉरिटी का ऑफिस होता है वहाँ पर अगर आप जाकर बात करेंगे तो एक एलिजिबिलिटी लिस्ट होती है। आप इस तरीके से समझिए कि अगर कोई देश का कमजोर वर्ग का व्यक्ति है या जो आर्थिक रूप से सक्षम नहीं है या अदर तरीके से जो डाउनट्रोडन सेक्शन हमारी सोसाइटी का है उसको बिलोंग करता है और उसको न्याय नहीं मिल पा रहा है, तो उसके लिए जो लीगल एड काउंसिल्स हैं उनकी व्यवस्था की गई है और बहुत सारे प्रोविजंस देश की जो कानून व्यवस्था है उसमें ऐसे किए गए हैं। लेकिन वहाँ पर जो लोग जो कैपेबल हैं उन कैपेबल लोगों के लिए शायद उतनी आवश्यकता नहीं है स्टेट की तरफ से मदद के लिए, इसलिए एक फिल्टर लगाया जाता है। एक जो लो इनकम ग्रुप है उसके लिए लीगल एड की व्यवस्था है, जो डाउनट्रोडन सेक्शन है उसके लिए लीगल एड की व्यवस्था है और

0: अब पाएंगे कि सुप्रीम कोर्ट पे इवन तो चूंकि समय के साथ न्याय इतना महंगा हो चुका है देश में कि जो मिडिल इनकम ग्रुप है उसके लिए भी लीगल एड के अब प्रोविजन्स हो रहे हैं। तो निसंदेह अगर आपको ऐसा लगता है कि आपको सही लीगल रिप्रेजेंटेशन नहीं मिल पा रहा है, उसके पीछे सामाजिक कारण हो सकते हैं, फाइनेंशियल कारण हो सकते हैं, तो आप जो कंसर्न लीगल सर्विसेज अथॉरिटी है, अगर आपका मुकदमा डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में चल रहा है वहाँ जाइए, या अगर हाई कोर्ट में है वहाँ जाइए। आपको कोई मैं आपको इस चीज़ की गारंटी देता हूँ कि आपकी एप्लीकेशन एक्सेप्ट करी जाएगी अगर आप एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में आ रहे हैं, और आपको एक सक्षम वकील कोर्ट की तरफ से मार्क किया जाएगा। जी
1: बिल्कुल। और न्याय वैसे भी एक सामाजिक अवधारणा है, और मुझे लगता है कि जब न्याय मिल जाता है किसी को भी तो जनता जो होती है वो अपने आप ही खुश हो जाती है।
0: जी
1: आशीष जी, एक और प्रश्न ले लेते हैं दिल्ली से संजय जी का। जी संजय जी
2: नमस्कार। मैम
1: नमस्कार।
2: संजय दिल्ली से। मैम मेरा सवाल ये है, ये इतने अपराध लगातार बढ़ते जा रहे हैं, जो काम हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट वगैरह नहीं कर पा रहे, छोटे मोटे मामले लोग अदालतों को दे दे रहे हैं। मेरा मानना है पुलिस वालों को अगर शक्ति दिखाई दे, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट वगैरह कई ऐसे बड़े बड़े फैसले दे करके सरकारों के नियम तौर तरीके बदल देते हैं, तो क्यों ना पुलिस वालों के लिए कुछ सख्त कार्रवाई की जाए, ताकि ये लोग, क्योंकि ज्यादातर
1: जी बीच में ही हमारी कॉल
0: आवाज कट गई, लेकिन जो उनकी मंशा थी पूछने की कि क्या पुलिस वालों के ऊपर सख्ती दिखाई जानी चाहिए या नहीं दिखाई जानी चाहिए। देखिए, हर चीज के दो पहलू होते हैं। अब इस चीज को डिनाई नहीं कर सकते हैं कि जो पब्लिक अथॉरिटीज़ हैं उनके द्वारा कई सारी अपनी जो लीगल अथॉरिटी है उसको वायलेट करते हुए ह्यूमन राइट्स के वायलेशन के केसेस आते हैं, और ये आज की सोशल मीडिया में बहुत ही ज़्यादा विजिबल भी होते हैं। लेकिन एक ऑल इनकम्पासिंग या ब्लैंकेट स्टेटमेंट ऐसा कि पुलिस वालों पर सख्ती दिखाई जानी चाहिए, तो देखिए पुलिस वाले भी इसी समाज का हिस्सा हैं, वो भी सुबह से शाम तक ड्यूटी करते हैं। और विश्वास मानिए, आप जिन पुलिस वालों पर सख्ती दिखाने की बात कर रहे हैं, अगर आपको पता चलता है कि आपके इलाके से थाने को खत्म कर दिया गया है और दूर दूर तक कोई पुलिस वाला नहीं,
1: तो और मुश्किल हो
0: जाएगी। आप खुद अपने आप को पाएंगे कि आप सुरक्षित नहीं महसूस कर रहे हैं। तो हर चीज के दो पहलू है, जहां पर कानून का वायलेशन होता है, उल्लंघन होता है, वो फिर किसी के द्वारा हो, प्राइवेट सिटीजन के द्वारा हो या फिर किसी पब्लिक अथॉरिटी के द्वारा हो, वहां पर कानून को अपना काम करना चाहिए। लेकिन हमें इस चीज को भी समझना चाहिए कि हर पब्लिक ऑफिसर, हर पुलिस वाला भी एक ड्यूटी निभा रहा है। जी
1: जी एक और श्रोता हमारे साथ जुड़ गए हैं रायबरेली से, रमाशंकर जी। जी रमाशंकर जी
3: नमस्कार।
1: नमस्कार।
3: मैं ये पूछना चाहता था कि डिजिटल और साइबर क्राइम, सेक्सुअल क्राइम और रोड एक्सीडेंट के लिए भी लोग अदालतें सक्षम हैं?
0: जी देखिए, तीन तरीके के आपने मुकदमों की बात करी। साइबर क्राइम, साइबर क्राइम अपने आप में बड़ा ही कॉम्प्लेक्स एक इशू हो सकता है। साइबर क्राइम एक ऐसा भी हो सकता है जहां पर इस कंपाउंड नहीं किया जा सकता है, या आपसी सुलह समझौता नहीं हो सकता है, और एक ऐसा भी हो सकता है कि देखिए साइबर अपराधों की जो डेफिनेशन है, अगर आप उसमें पाएंगे कि ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स का यूज़ करते हुए अगर आपको डिसीव किया गया है, आपके साथ चीटिंग करी गई है, आपको फाइनेंशियल लॉस पहुंचाया गया है, और ऐसा प्रोविज़न है कि आप जिस व्यक्ति ने वो अपराध किया है उसके साथ बैठकर मामले को सुलह समझौते से ख़त्म करना चाहते हैं, वो आपको आपके पैसे लूटे हुए वापस कर देना चाहता है और आप नहीं चाहते कि आगे चीज़ों को परसू किया जाए, ऐसे कुछ विशेष मामलों में, साइबर अपराधों में भी लोक अदालत की तरफ जा सकते हैं, लेकिन ज़्यादातर केसेज में आप पाएंगे कि ऐसी सुविधा उपलब्ध नहीं है। दूसरी चीज़, आपने मोटर एक्सीडेंट की बात करी। मोटर एक्सीडेंट भी देखिए दो तरीके से केसेस होते हैं। पहला केस होता है कि अगर आप कोई व्यक्ति रोड पर जा रहा है और किसी ने एक इंटेंशनली उसको एक्सीडेंट कर दिया या लापरवाही से गाड़ी चलाते हुए कर दिया, तो वो एक बहुत ही डिफरेंट केस हो सकता है। लेकिन मोटर एक्सीडेंट से रिलेटेड आप पाएंगे बहुत सारे मामले ऐसे होते हैं जहां पर कॉम्पनसेशन क्लेम किया जाता है, इंश्योरेंस कंपनी से कॉम्पनसेशन क्लेम किया जाता है, जो एक्यूज्ड पर्सन होता है उससे कॉम्पनसेशन की बात हो सकती है। तो ऐसे मामले विशेष रूप से लोक अदालतों में जाते हैं और बहुत ही इसका सक्सेस रेट काफ़ी अच्छा हुआ है। लेकिन इसी पॉइंट पर मैं ये भी कहना चाहूँगा कि आपको अच्छे लीग जिस जब अगर आप मोटर एक्सीडेंट क्लेम से रिलेटेड मामले को लोक अदालत में लेकर जाते हैं, तो आपको एक बहुत अच्छा काउंसिल भी अपने साथ रखना चाहिए, जो कि आपको बता सके कि आपके लीगल राइट्स क्या हैं। कई बार कंपनीज, इंश्योरेंस कंपनीज की जो नेगोशिएशन की पावर होती है वो एक विक्टिम की नेगोशिएशन पावर से बहुत ज़्यादा होती है। लोक अदालत में जो भी आपके अवार्ड आते हैं उसके लिए बहुत ज़्यादा जरूरी होता है कि जो भी आप वहाँ पर अपने लिए निर्णय लें, जो भी सुलह समझौता करें, वो एक इन्फॉर्म्ड सुलह समझौता होना चाहिए। वो एक इग्नोरेंट स्टेज में लिया गया सुलह समझौता नहीं हो सकता है। तीसरा जो इन्होंने एक तीसरे क्लेम की बात करी, इफ़ यू कैन रिकॉल इट, आपने एक और क्राइम की बात करी थी।
1: लेकिन हमारे पास समय कम है, हम अगले जो है प्रोग्राम में जरूर इसको शामिल करेंगे। लेकिन अंत में चलते चलते हम ये भी जानना चाहेंगे आशीष जी आपसे कि एक नागरिक के रूप में हम कैसे लोक अदालत को सफल बना सकते हैं।
0: देखिए लोग आज की देश आपकी जो आज सिनेरियो है ये इस तरीके का हो गया है कि छोटी छोटी चीज़ों को लेकर हम कोर्ट में पहुँच जाते हैं। पहले देश में एक ऐसा सामाजिक एनवायरनमेंट था कि बहुत सारे जो झगड़े थे वो आपस में परिवार और समाज मिलकर ही सुलह कराकर समाप्त कर देता था। लेकिन एक उसका पहलू ये भी था कि बहुत ऐसी सारी जो घटनाएं जो कि रिपोर्ट होनी चाहिए वो भी कहीं ना कहीं सामाजिक दबाव में आगे रिपोर्ट नहीं हो पाती थी। अब आज की डेट में आपके सवाल को आंसर करने के लिए एक सिंपल सा मंत्र ये है कि वो ऐसे सारे डिस्प्यूट्स जिसमें कि आपको लगता है कि आपके खिलाफ कोई गंभीर अपराध नहीं हुआ है, और ऐसा अपराध जहां पर आप आपस में बैठकर चीज़ों को बात करके शायद एक बेहतर भविष्य के लिए एक ऐसे समझौते की तरफ पहुंच सकते हैं जो कि दोनों पार्टी इसको मंजूर हो, जिस तरीके से पारिवारिक डिस्प्यूट होते हैं, परिवार में प्रॉपर्टी डिस्प्यूट भी होते हैं, मैट्रिमोनियल डिस्प्यूट भी होते हैं, उन चीज़ों को देखते हुए आप इन मामलों को लोक अदालत में लेकर जाएं और खुले मन से जाएं, खुली सलाह के साथ जाएं और आपको वहां सफलता मिलेगी।
1: बहुत बहुत धन्यवाद आशीष जी, आप कार्यक्रम में आए और अपना कीमती समय हमें दिया। तो इसके साथ ही फरहत को दीजिए इजाजत, नमस्कार।
4: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं प्रशांत कुमार। रक्षा खरीद परिषद ने सशस्त्र बलों के लिए 1,10,000 करोड़ रुपए से अधिक के रक्षा खरीद प्रस्तावों को मंजूरी दे दी है। ये मंजूरी आज रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की अध्यक्षता में हुई परिषद की बैठक में दी गई। परिषद की बैठक में सेना के लिए रासायनिक, जैविक, रेडियोलॉजिकल और परमाणु टोही वाहन, हाई मोबिलिटी वाहन, स्वचालित माइन लेयर, एडवांस्ड लाइट हेलीकॉप्टर, ट्रॉल टैंक और सर्वत्र ब्रिज सिस्टम की खरीद को मंजूरी दी गई। रक्षा मंत्रालय ने कहा है कि 98% खरीद भारतीय उद्योग से की जाएगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल गुजरात यात्रा पर रहेंगे। श्री मोदी राज्य में 35,000 करोड़ रुपए से अधिक की विभिन्न परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास करेंगे। अहमदाबाद में केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बताया कि पूर्वी और पश्चिमी समर्पित माल ढुलाई गलियारे देश के परिवहन और लॉजिस्टिक्स क्षेत्र की महत्वपूर्ण आधारभूत संरचना है।
5: डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर ईस्ट और वेस्ट, ये दोनों देश के लिए बहुत बड़ी एक बैकबोन की तरह है ट्रांसपोर्टेशन में। वो प्रोजेक्ट अब कंप्लीट हुआ पूरी तरह से, उसको माननीय प्रधानमंत्री जी कल राष्ट्र के प्रति समर्पित करेंगे। ये परियोजना ऐसी है जिसमें कई वर्ष लगे, 2014 में प्रधानमंत्री ने उस काम को हाथ में लेके जितनी भी उसमें प्रॉब्लम्स थी उनको सॉल्व किया और अब कंप्लीट हुआ।
4: गृह मंत्री अमित शाह ने आज गोवा पुलिस को प्रतिष्ठित राष्ट्रपति पुलिस ध्वज प्रदान किया। इस अवसर पर गृह मंत्री ने गोवा पुलिस की सेवा, व्यावसायिकता, साहस और अनुशासन की सराहना की।
6: 8 दशकों की गौरवशाली गोवा पुलिस की सेवा राष्ट्रपति जी के दिए हुए निशान के साथ देश भर की पुलिस की कतार में खड़ी है। ये गौरव जिन जिन राज्यों की पुलिस को मिला वो पुलिस के गौरवशाली इतिहास, साहस, अनुशासन और समर्पण के कारण ही राष्ट्रपति महोदय ने गोवा को प्रेसिडेंट कलर से सम्मानित करने का काम किया है।
4: इससे पहले गृह मंत्री ने आज गोवा के पणजी में पश्चिमी क्षेत्रीय परिषद की 28वीं बैठक की अध्यक्षता की। श्री शाह ने कहा कि पश्चिमी क्षेत्र के राज्यों के बीच अब कोई विवाद नहीं है। श्री शाह ने कहा कि क्षेत्रीय परिषदें अब केवल विवादों के समाधान का मंच नहीं रह गई हैं, बल्कि जन कल्याणकारी योजनाओं के क्रियान्वयन की निगरानी के लिए भी महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही है। केंद्रीय पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस राज्य मंत्री सुरेश गोपी ने कहा है कि सरकार ने तेल विपणन कंपनियों को घरेलू रसोई गैस एलपीजी रिफिल बुकिंग के नियमों में बड़ी ढील देने का निर्देश दिया है। अब देश के शहरी और ग्रामीण क्षेत्र में सभी

कार्यक्रम गुलदस्ता में अभी आप सुने थे वंदना ठाकुर की आवाज़ में कसले। ये आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है। मीडियम वेव 366.3 मीटर अर्थात 819 किलोहर्ट्ज़, TRM 810 किलोहर्ट्ज़ पर। रात्रि के 10:30 हुए हैं। हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत का संगीत राग रंजन में आइए अब आप सुनते हैं अब्दुल सामी खान की आवाज़ में सरोद वादन राग राक्षसी।

हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत के कार्यक्रम राग रंजन में अभी आप सुन रहे थे अब्दुल समी खान का राग रागीश्री में सरोद वादन।

0: ये आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है। मिडी वेव 366.3 मीटर अर्थात 819 किलोहर्ट्स, DRM 810 किलोहर्ट्स पर 11 बजने को है। अब समाचार होंगे।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं भवतारिणी। रक्षा खरीद परिषद ने सशस्त्र बलों के लिए 1,10,000 करोड़ रुपए से अधिक के रक्षा खरीद प्रस्तावों को मंजूरी दे दी है। ये मंजूरी आज रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की अध्यक्षता में हुई परिषद की बैठक में दी गई। परिषद की बैठक में सेना के लिए रासायनिक, जैविक, रेडियोलॉजिकल और परमाणु टोही वाहन, हाई मोबिलिटी वाहन, स्वचालित माइन लेयर, एडवांस्ड लाइट हेलीकॉप्टर, ट्रॉल टैंक और सर्वत ब्रिज सिस्टम की खरीद को मंजूरी दी गई। रक्षा मंत्रालय ने कहा है कि 98% खरीद भारतीय उद्योग से की जाएगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल गुजरात यात्रा पर रहेंगे। श्री मोदी राज्य में 35,000 करोड़ रुपए से अधिक की विभिन्न परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास करेंगे। अहमदाबाद में केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बताया कि पूर्वी और पश्चिम समर्पित माल ढुलाई गलियारे देश के परिवहन और लॉजिस्टिक्स क्षेत्र की महत्वपूर्ण आधारभूत संरचना है।
2: डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर ईस्ट और वेस्ट, ये दोनों देश के लिए बहुत बड़ी एक बैकबोन की तरह है ट्रांसपोर्टेशन में। वो प्रोजेक्ट अब कंप्लीट हुआ पूरी तरह से, उसको माननीय प्रधानमंत्री जी कल राष्ट्र के प्रति समर्पित करेंगे। ये परियोजना ऐसी है जिसमें कई वर्ष लगे, 2014 में प्रधानमंत्री ने उस काम को हाथ में लिया, हाथ में लेके जितनी भी उसमें प्रॉब्लम्स थी उनको सॉल्व किया और अब कम्प्लीट हुआ।
1: प्रधानमंत्री कल शाम मुंबई में ग्लोबल फिनटेक फेस्ट 2026 का शुभारंभ करेंगे। श्री मोदी सम्मेलन को संबोधित भी करेंगे। गृह मंत्री अमित शाह ने आज गोवा पुलिस को प्रतिष्ठित राष्ट्रपति पुलिस ध्वज प्रदान किया। इस अवसर पर गृह मंत्री ने गोवा पुलिस की सेवा, व्यावसायिकता, साहस और अनुशासन की सराहना की।
3: 8 दशकों की गौरवशाली गोवा पुलिस की सेवा राष्ट्रपति जी के दिए हुए निशान के साथ देश भर की पुलिस की कतार में खड़ी है। ये गौरव जिन जिन राज्यों की पुलिस को मिला, वो पुलिस के गौरवशाली इतिहास, साहस, अनुशासन और समर्पण के कारण ही राष्ट्रपति महोदय ने गोवा को प्रेसिडेंट कलर से सम्मानित करने का काम किया है।
1: इससे पहले गृह मंत्री ने आज गोवा के पणजी में पश्चिम क्षेत्रीय परिषद की 28वीं बैठक की अध्यक्षता की। श्री शाह ने कहा कि पश्चिमी क्षेत्र के राज्यों के बीच अब कोई विवाद नहीं है। केंद्रीय पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस राज्य मंत्री सुरेश गोपी ने कहा है कि सरकार ने तेल विपणन कंपनियों को घरेलू रसोई गैस LPG रिफिल बुकिंग के नियमों में बड़ी ढील देने का निर्देश दिया है। अब देश के शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में सभी घरेलू LPG उपभोक्ता 25 दिनों के अंतराल पर सिलेंडर बुक करा सकेंगे। श्री गोपी ने कहा कि देश में LPG आपूर्ति में सुधार और बैकलॉग में आई भारी कमी को देखते हुए केंद्र सरकार ने ये पाबंदी हटाई है। निर्वाचन आयोग ने असम की नागांव लोकसभा सीट पर उपचुनाव की घोषणा की है। इसके साथ ही तमिलनाडु और पश्चिम बंगाल की दो दो विधानसभा सीटों और पुदुचेरी की एक सीट पर उपचुनाव की घोषणा की गई है। आयोग ने

जी हाँ दोस्तों, दोस्ती वो खूबसूरत रिश्ता है जहाँ ना कोई शर्त होती है ना कोई हिसाब, बस एक दूसरे के साथ और का साथ चाहिए होता है और ढेर सारी यादें होती हैं। उदित नारायण और अलका याग्निक की आवाज़ में आप सुन रहे थे ये खूबसूरत गीत फिल्म नरसिम्हा से। इस गीत की फरमाइश की थी उमर खेड़ महाराज से अभिजीत, श्रीमती सरिता प्रिंस, आकांश मुंबई से परवीना, सिद्धांत अर्जुन और नागपुर से वैशाली, एकांत और कुमारी ध्वनि। साथ ही दिल्ली से इस गीत की फरमाइश की थी एसपी सिंह, प्रिया, प्रियाशी, नवी और बेंगलोर से की थी अमित शर्मा, ज्योति शर्मा और प्रणवी ने।

0: जी हाँ दोस्तों, कभी कभी दिल की बातें कहने के लिए लफ्ज नहीं, बस एक मुलाकात जरूरी होती है। कुछ रिश्ते दूरियों से नहीं, एक नज़र और एक मुलाकात से फिर करीब आ जाते हैं। जैसे कि मेरे साथ जुड़ चुकी हैं मेरी सखी ज्योति शर्मा।
1: बिल्कुल, और बहुत अच्छा लग रहा है। इतने प्यारे प्यारे गीत हैं, और अब आपको बता दें कि गीतों की जो बात चल रही है तो फरमाइश हम तक बहुत सारे दोस्त पहुंचा रहे हैं। और जो दोस्त हमें अब फरमाइश जिन्होंने भेजी है वो है योगेश शर्मा, दुर्गेश शर्मा, रजनी शर्मा, वसुधा शर्मा, रोहन शर्मा, रिया शर्मा, आन्या शर्मा, आर्यन शर्मा, प्रणवी शर्मा, अमित शर्मा, और शर्मा फैमिली है। और ये जुड़े हमारे साथ मोतीबाग आनंद निकेतन से। और उसके साथ हैं दिशा शर्मा, अंकित शर्मा, लव शर्मा, मोहित शर्मा, रविंदर शर्मा, सुशील शर्मा और प्रवेश शर्मा भी हमारे साथ जुड़े हैं। और साथ ही फरीदाबाद से भी जुड़े हैं हमारे साथ सौरभ, नितिका। और
0: और चंडीगढ़ से हैं टीडी मल्होत्रा, ऋतिक मल्होत्रा, प्रतीक मल्होत्रा, अनिल शर्मा, जयवीर सिंह, डॉक्टर अमनदीप। कालका से शुभ चंद्र बजाज, साहिल बजाज, बिट्टा बजाज। तो आइए सुनते हैं कार्यक्रम का अगला गीत।

जी हाँ दोस्तों, जब हम किसी को पसंद करते हैं, उससे हम पहली बार मिलते हैं ना, तो कुछ अपना सा एहसास होता है जैसे बरसों से दिल उसी की मुलाकात की तलाश में हो। कुमार सानू और अलका याग्निक की आवाज़ में आप सुन रहे थे ये खूबसूरत गीत फिल्म सिर्फ तुम साजन से, एसपी बाला सुब्रमण्यम की आवाज़ में। माफ़ कीजिए, ये आप आवाज़ सुन रहे थे एसपी बाला सुब्रमण्यम की आवाज़ में फिल्म साजन से। इस गीत की फरमाइश की थी रघुवीर नगर से दिलावर खान, हसीना बानो, अलीजा नायाब और लड्डू ने। साथ ही इस गीत की फरमाइश की है एटा से नबी हसन अब्बासी, शहनाज अब्बासी, नावेद हसन, सुहेल हसन, अनम, अशरफ रसीद और किदवई नगर से जुबेर अली खां, सबिया, अंजुमन और दिल्ली से मनीष, गीतांजलि, नीलम, तनिष्का और रणवीर ने।

जी हाँ दोस्तों, जब दो प्यार करने वाले एक दूसरे को पसंद और प्यार करने लगते हैं ना, तो बस यही चाहते हैं कि वो बातें ही करते रहें और एक दूसरे को सुनते रहें, एक दूसरे से बातें करते रहें। और लता मंगेशकर और हरिहरन की आवाज़ में आप सुन रहे थे एक खूबसूरत गीत। इस गीत की फरमाइश की थी बुलंदशहर से मोहम्मद सईद अब्बासी, निगहत शहनवाज, सरफराज फरदीन, सोहान, अरजान अब्बान और अब्बासी परिवार के सभी सदस्य ने। साथ ही उत्तम नगर दिल्ली से कमला रानी, बोधराज कोरवाल, भानु प्रकाश, गीतिका कोरवाल ने।

लता मंगेशकर और एसपी बाला सुब्रमण्यम की आवाज़ में आप सुन रहे थे ये गीत फिल्म एक दूजे के लिए से। और इस गीत की फरमाइश की थी शिवानी चौक कटनी से अनिल तामाकर, अमर दिलीप, राजू रजक, संजीव विपिन, अरुण, संजय पवन यादव, सुनील जैन लालू, सोना मोना, हनी यश, सोम्या, कलकत्ता से बसंत कुमार सिन्हा, रेखा देवी, अजय कुमार, रिम्पी, तनुश्री गुप्ता, नन्हे पोती अन्वेषिका।

लता मंगेशकर और एसपी बाला सुब्रमण्यम की आवाज़ में आप सुन लेते हैं गीत फिल्म कबूतर। मैंने प्यार किया से इस गीत की फरमाइश की थी दिल्ली नागलोई से राजेंद्र, उषा, कृष्णा, पूजा, कोमल, आरव ने, और छत्तीसगढ़ से प्रकाश वर्मा, पूजा, प्रिंस, निखिल, यशस्वी ने।

0: इस गीत के साथ कार्यक्रम फिल्म संगीत यहीं संपन्न होता है। मैं हूं आपकी दोस्त प्रिया, अब आपसे विदा लेती हूं। ये आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है। मीडिया वेव 366.3 मीटर अर्थात 819 किलो हर्ट्स, DRM 810 किलो हर्ट्स पर 12 बजने को है। इन मीटरों पर हमारे प्रसारण संपन्न होते हैं। सुबह 4:50 पर आपकी सेवा में हम फिर उपस्थित होंगे। AIR लाइव न्यूज 24/7 पर हमारे प्रसारण जारी हैं। अब कुछ ही देर में समाचार होंगे।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं भवतारिणी। रक्षा खरीद परिषद ने सशस्त्र बलों के लिए 1,10,000 करोड़ रुपए से अधिक के रक्षा खरीद प्रस्तावों को मंजूरी दे दी है। ये मंजूरी रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की अध्यक्षता में हुई परिषद की बैठक में दी गई। परिषद की बैठक में सेना के लिए रासायनिक, जैविक, रेडियोलॉजिकल और परमाणु टोही वाहन, हाई मोबिलिटी वाहन, स्वचालित माइन लेयर, एडवांस्ड लाइट हेलीकॉप्टर, ट्रॉल टैंक और सर्वत ब्रिज सिस्टम की खरीद को मंजूरी दी गई। रक्षा मंत्रालय ने कहा कि 98% खरीद भारतीय उद्योग से की जाएगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज गुजरात यात्रा पर रहेंगे। श्री मोदी राज्य में 35,000 करोड़ रुपए से अधिक की विभिन्न परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास करेंगे। अहमदाबाद में केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बताया कि पूर्वी और पश्चिमी समर्पित माल ढुलाई गलियारे देश के परिवहन और लॉजिस्टिक्स क्षेत्र की महत्वपूर्ण आधारभूत संरचना है।
2: डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर ईस्ट और वेस्ट, ये दोनों देश के लिए बहुत बड़ी एक बैकबोन की तरह है ट्रांसपोर्टेशन में। वो प्रोजेक्ट अब कंप्लीट हुआ पूरी तरह से, उसको माननीय प्रधानमंत्री जी कल राष्ट्र के प्रति समर्पित करेंगे। ये परियोजना ऐसी है जिसमें कई वर्ष लगे। 2014 में प्रधानमंत्री ने उस काम को हाथ में लिया, हाथ में लेके जितनी भी उसमें प्रॉब्लम्स थी उनको सॉल्व किया और अब कंप्लीट हुआ।
1: गृह मंत्री अमित शाह ने गोवा पुलिस को प्रतिष्ठित राष्ट्रपति पुलिस ध्वज प्रदान किया है। इस अवसर पर गृह मंत्री ने गोवा पुलिस की सेवा, व्यावसायिकता, साहस और अनुशासन की सराहना की।
3: 8 दशकों की गौरवशाली गोवा पुलिस की सेवा राष्ट्रपति जी के दिए हुए निशान के साथ देश भर की पुलिस की कतार में खड़ी है। ये गौरव जिन जिन राज्यों की पुलिस को मिला वो पुलिस के गौरवशाली इतिहास, साहस, अनुशासन और समर्पण के कारण ही राष्ट्रपति महोदय ने गोवा को प्रेसिडेंट कलर से सम्मानित करने का काम किया है।
1: इससे पहले गृह मंत्री ने गोवा के पणजी में पश्चिमी क्षेत्रीय परिषद की 28वीं बैठक की अध्यक्षता की। श्री शाह ने कहा कि पश्चिमी क्षेत्र के राज्यों के बीच अब कोई विवाद नहीं है। केंद्रीय पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस राज्य मंत्री सुरेश गोपी ने कहा है कि सरकार ने तेल विपणन कंपनियों को घरेलू रसोई गैस LPG रिफिल बुकिंग के नियमों में बड़ी ढील देने का निर्देश दिया है। अब देश के शहरी और ग्रामीण क्षेत्र में सभी घरेलू LPG उपभोक्ता 25 दिनों के अंतराल पर सिलेंडर बुक करा सकेंगे। कृषि और किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने नई दिल्ली में अंतर्राष्ट्रीय आलू केंद्र के महानिदेशक डॉक्टर साइमन हेक के साथ विस्तृत चर्चा की। बैठक में आलू के बेहतर बीज और रोपण सामग्री उपलब्ध कराने, किसानों की समस्याओं के समाधान और भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद तथा केंद्र के बीच सहयोग मजबूत करने पर चर्चा हुई। श्री चौहान ने कहा कि आगरा स्थित केंद्र को दुनिया की उन्नत आलू प्रजातियों को भारत लाने और देश की अलग अलग जलवायु के अनुकूल आलू की नई किस्में विकसित करने में मदद करनी चाहिए। इससे आलू किसानों को सीधा लाभ मिलेगा। निर्वाचन आयोग ने असम के नागांव लोकसभा सीट पर उपचुनाव की घोषणा की है। इसके साथ ही तमिलनाडु और पश्चिम बंगाल की दो दो विधानसभा सीटों और पुदुचेरी की एक सीट पर उपचुनाव की घोषणा की गई है। आयोग ने बताया कि तमिलनाडु की मधुरंतकम और धर्मपुर सीट, पश्चिम बंगाल की रेजीनगर और नंदीग्राम सीटें तथा पुदुचेरी की थट्टन चावड़ी विधानसभा सीट पर मतदान होगा। मतदान 6 अक्टूबर को और मतगणना 9 अक्टूबर को होगी। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने कल नई दिल्ली में अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के उप प्रबंध निदेशक नाइजिल क्लॉट से भेंट की। बैठक में भारत और कोष के बीच संबंधों पर चर्चा हुई। इस दौरान कोष ने दक्षिण एशिया क्षेत्रीय प्रशिक्षण और तकनीकी सहायता केंद्र को मजबूत करने में भारत की भूमिका की सराहना की। शीतल देवी ने विश्व तीरंदाजी पैरा श्रृंखला में महिला कंपाउंड में व्यक्तिगत वर्ग के फाइनल में प्रवेश कर लिया है। अहमदाबाद में कल सेमीफाइनल में शीतल देवी ने सरिता को हराया। कांस्य पदक के मुकाबले में सरिता चीन की वांग हुईटिंग से खेलेंगी। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
4: दिस इज आकाशवाणी, द न्यूज रेड बाय आरएस रघु। The Defence Acquisition Council DAC has cleared capital acquisition proposals worth over 1,10,000 crore rupees for the defence forces. Our correspondent reports that the approval was taken during a meeting of the council held yesterday under the chairmanship of Defence Minister Rajnath Singh.
5: The council granted approval for the procurement of chemical, biological, radiological and nuclear CBRN recce vehicles, high mobility vehicles HMV, self-propelled mechanical mine layers MML, advanced light helicopters ALH, trawl tanks and Sarvatra bridge system for the Indian Army. For the Indian Navy, acceptance of necessity was accorded for the procurement of Arudhra radars, design and development and subsequent procurement of marine gas turbines MGT. Arudhra radars will replace the existing air route surveillance radars at various naval air stations, and MGT, a warship propulsion system, will reduce dependency on foreign vendors. Meanwhile, for the Indian Air Force, approval was granted to various proposals to enhance the warfighting capability. Approval was also accorded for procuring ground-based multipurpose jammer and installing Defence Forces Secure Access Card system. The Defence Ministry said 98% of total procurement will be made from the Indian industry. The CBRN recce vehicles will be capable of detecting, identifying, monitoring and marking of areas contaminated with CBRN agents. The HMVs will enhance operational capabilities, logistic supports and mobility in challenging terrains. With Rishu Saklan Akhtar for Akashwani News, Delhi.
4: Prime Minister Narendra Modi will visit Gujarat and Maharashtra today. In Vadodara, the Prime Minister will lay the foundation stones, inaugurate and dedicate to the nation various development projects worth more than 35,000 crore rupees. He will also dedicate to the nation three important sections of the Western Dedicated Freight Corridor WDFC, covering 326 route kilometers. Briefing media personnel at Ahmedabad Airport yesterday, Railways Minister Ashwani Vaishnav emphasized that the eastern and western dedicated freight corridors will serve as crucial backbone for the country's transport and logistics sector. The Prime Minister will also flag off freight train services from New Sanand, North, New Makarpura, New Umbargaon and New JNPT Mumbai. The Prime Minister will also lay the foundation stone for three railway projects costing more than 9,700 crore rupees. Five Municipal Corporation of Delhi MCD officials, including the Deputy Commissioner, Superintendent Engineer, Executive Engineer and Assistant Engineer and Junior Engineer, have been suspended in connection with the building collapse at Satyaniketan in New Delhi. Delhi police has arrested three persons in connection with the building collapse on Sunday in which seven people lost their lives. According to the additional DCP of Delhi police, Abhimanyu Poswal, those arrested include the alleged owner of the building, her husband and her son. The police claimed that the son of the lady was allegedly operating a PG facility in the collapsed building. Chief Minister Rekha Gupta said that buildings with a fifth floor across Delhi have been ordered to be sealed immediately. Nearby PG and other buildings are also being inspected, and any structure found violating safety norms will face immediate sealing action. The Chief Minister said that a policy will be introduced to make periodic structural audits and building safety certification mandatory for all buildings used for public activities, including PGs, nursing homes, schools and other institutions. AIIMS said that three individuals who were rescued are in critical condition, while two are stable and one of them has been discharged. The Delhi High Court has directed the MCD to conduct an inquiry at the highest executive level and examine whether the structure had been constructed and operated with valid permissions.

जी आकाशवाणी दिल्ली का AIR लाइव न्यूज 24x7 चैनल है। रात्रि के 12:10 हुए हैं। लीजिए अब प्रस्तुत है कार्यक्रम सुरों का सफरनामा। नमस्कार श्रोताओं, आकाशवाणी के लोकप्रिय कार्यक्रम सुरों का सफरनामा में आपका हार्दिक स्वागत है। आज के इस विशेष अंक में हम बात करेंगे हिंदी और पंजाबी फिल्म संगीत की एक ऐसी आवाज़ की जिसने अपनी मधुरता, शास्त्रीय संगीत की समझ और भावपूर्ण गायन से संगीत प्रेमियों के बीच अपनी अलग जगह बनाई है। आज का ये सफ़र समर्पित है सुप्रसिद्ध पार्श्व गायिका मीनू पुरुषोत्तम को। तो आइए उनके जीवन और संगीत यात्रा के इस सुरेले सफ़र की शुरुआत करते हैं।

जोरू का सफ़रनामा आज आप सुन रहे हैं, और आज हम सफ़र पर हैं मीनू पुरुषोत्तम के साथ। साथियों, मीनू पुरुषोत्तम का जन्म 20 नवंबर 1944 को पटियाला पंजाब में हुआ। पटियाला की समृद्ध संगीत परंपरा ने उनके व्यक्तित्व और संगीत संस्कारों को गहराई से प्रभावित किया। बचपन से ही संगीत के प्रति उनका विशेष अनुराग था। उन्होंने शास्त्रीय संगीत की शिक्षा प्राप्त की और अपनी आवाज़ को रियाज के माध्यम से निरंतर साधा। उनके गायन में बाद में जो सुरों की शुद्धता और भावों की सहजता दिखाई दी, उसके पीछे इसी संगीत साधना की महत्वपूर्ण भूमिका रही।

राही फिल्म का ये गीत आपने सुना साथियों, आवाज़ थी मीनू पुरुषोत्तम और मुरली की। मीनू पुरुषोत्तम के जीवन में एक महत्वपूर्ण मोड़ तब आया जब मात्र 16 वर्ष की उम्र में उन्हें फिल्मी दुनिया में गायन का अवसर मिला। संगीतकार रोशन ने उनकी प्रतिभा को पहचाना और उन्हें फिल्म ताजमहल में गाने का अवसर दिया। उस समय हिंदी फिल्म संगीत में अनेक स्थापित और महान आवाज़ों का दौर था। ऐसे वातावरण में एक नई युवा गायिका के लिए अपनी पहचान बनाना निश्चित रूप से चुनौतीपूर्ण था, लेकिन मीनू पुरुषोत्तम ने अपनी प्रतिभा और संगीत साधना के बल पर इस यात्रा को आगे बढ़ाया। तो लीजिए अब सुनिए सुरेश वाडकर और मीनू पुरुषोत्तम को फिल्म राही में ही।

फिल्म संगीत की दुनिया में अवसर मिलना जितना महत्वपूर्ण था उससे कहीं अधिक कठिन था लगातार अपनी जगह बनाए रखना। मीनू पुरुषोत्तम ने अपने संगीत सफर में निरंतर अभ्यास और सीखने को महत्व दिया। उन्हें अपने दौर के प्रतिष्ठित संगीतकारों और गीतकारों के साथ काम करने का अवसर मिला। साहिर लुधियानवी, रोशन और बाद में मदन मोहन जैसे दिग्गजों के साथ जुड़ाव ने उनके संगीत ज्ञान को और समृद्ध किया। मदन मोहन से गजल गायन की बारीकियां सीखने का अनुभव उनके संगीत सफर का महत्वपूर्ण पक्ष माना जाता है। आइए आपको फिल्म प्रेम पर्वत का ये गीत सुनाते हैं।

मीनु पुरुषोत्तम की गायकी खास है। उनकी मधुर आवाज़, सुरों की स्पष्टता और शब्दों में भावों का सुंदर संप्रेषण। उनकी आवाज़ में जहां एक ओर शास्त्रीय संगीत की पकड़ दिखाई देती थी, वहीं दूसरी ओर लोक संगीत की भी सहजता महसूस होती थी। उन्होंने प्रेम, श्रृंगार, लोक रंग और भाव प्रधान रचनाओं को अपनी आवाज़ दी और यह विविधता उनके गायन को विशेष बनाती है। लीजिए, उनके गायन में एक गायन का उनका एक और रूप हम इस गीत में सुनते हैं।

क्रांति फिल्म का ये गीत आपने सुना, जिसमें आवाज़ें थी महेंद्र कपूर और मीनू पुरुषोत्तम की। साथियों, मीनू पुरुषोत्तम की करियर का एक महत्वपूर्ण पक्ष रहा अपने दौर के महान गायकों और गायिकाओं के साथ काम करना। लता मंगेशकर जैसी महान गायिकाओं के साथ उनके युगल गीतों ने उन्हें विशेष पहचान दिलाई। मीनू पुरुषोत्तम की आवाज़ की अपनी अलग पहचान थी और युगल गीतों में भी उन्होंने उसी सहजता के साथ अपनी उपस्थिति दर्ज करवाई। तो लीजिए, एक और युगल गीत आपके लिए लेकर आए हैं, जिसमें उनके साथ दो और महान गायक कलाकार हैं, आवाज़ आशा भोसले, महेंद्र कपूर और मीनू पुरुषोत्तम।

मीनू पुरुषोत्तम के संगीत सफर में फिल्म प्रेम पर्वत का गीत रात पिया के संग जागी रे सखी विशेष महत्व रखता है। इस गीत में उनके स्वर की मधुरता और भावपूर्ण अभिव्यक्ति का सुंदर मेल सुनाई देता है। गीत के संगीतकार थे जयदेव। इस गीत के लिए मीनू पुरुषोत्तम को फिल्मफेयर पुरस्कार की सर्वश्रेष्ठ महिला पार्श्व गायिका श्रेणी में नामांकन भी प्राप्त हुआ। यह उनकी फिल्मी करियर की उल्लेखनीय उपलब्धियों में से एक रही। और लीजिए अब आपको

पुरुषोत्तम ने हिंदी फिल्म संगीत के साथ साथ पंजाबी संगीत में भी अपनी आवाज़ का प्रभाव छोड़ा। पंजाबी लोक संगीत की सहजता और जीवंतता उनकी आवाज़ में विशेष रूप से सुनाई देती है। उनकी पंजाबी फिल्मों और गीतों के माध्यम से वे श्रोताओं का मनोरंजन किया और अपनी बहुमुखी प्रतिभा का परिचय दिया। उनकी गायकी की यही विविधता उन्हें केवल फिल्मी पार्श्व गायिका नहीं बल्कि एक बहुआयामी कलाकार के रूप में पहचान देती है।

मीनू पुरुषोत्तम के गीतों की सूची भले ही उनके समकालीन कुछ बेहद लोकप्रिय गायकों जैसी लंबी ना हो, लेकिन उनकी आवाज़ में जिन रचनाओं को स्वर दिया उनमें अपनी अलग पहचान छोड़ी। हुजूरे वाला जो हो इजाज़त, पीतल की मेरी गगरी, उनसे नजरें मिली और रात पिया के संग जागी रह सकी जैसे गीत उनके संगीत सफ़र की महत्वपूर्ण कड़ियां हैं। उनकी आवाज़ आज भी पुराने हिंदी फिल्म संगीत के रसिकों को उस दौर की याद दिलाती हैं, जब गीतों में धुन, शब्द और गायकी तीनों को समान महत्व दिया जाता था।

तो श्रोताओं, आज के सुरों के सफरनामा में हमने जाना मीनू पुरुषोत्तम की उस संगीत यात्रा को, जिसकी शुरुआत पटियाला से हुई और जिसने उन्हें हिंदी तथा पंजाबी संगीत की दुनिया तक पहुंचाया। कम उम्र में फिल्मी गायन का अवसर, संघर्ष के दौर में निरंतर साधना, दिग्गज संगीतकारों के साथ काम करने का अनुभव और अपनी विशिष्ट आवाज, इन सभी ने मीनू पुरुषोत्तम के संगीत सफर को विशेष बनाया। उनकी आवाज हमें ये याद दिलाती है कि संगीत की दुनिया में हर कलाकार की अपनी एक अलग पहचान होती है और कई बार वही आवाजें समय बीतने के बाद भी अपनी मधुरता के कारण स्मृतियों में जीवित रहती हैं। इसी विचार के साथ सुरों का सफरनामा के आज के विशेष अंक से हमें दीजिए अनुमति। अगली मुलाकात होगी संगीत की एक और अनमोल आवाज के साथ। तब तक नमस्कार।

साथियों, अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम सुरों का सफरनामा, आकाशवाणी दिल्ली का ये AIR लाइव न्यूज 24x7 चैनल है। रात्रि

0: एक बजे हैं, बजने वाले हैं। लीजिए अब सुनिए समाचार।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं भवतारिणी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज गुजरात जाएंगे। वे राज्य में 35,000 करोड़ रुपए से अधिक की विभिन्न परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास करेंगे। अहमदाबाद में केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि पूर्वी और पश्चिमी समर्पित माल ढुलाई गलियारे देश के परिवहन और लॉजिस्टिक्स क्षेत्र की महत्वपूर्ण आधारभूत संरचना है। उन्होंने कहा कि यह महत्वाकांक्षी परियोजना पूरी हो चुकी है और प्रधानमंत्री आज इसे राष्ट्र को समर्पित करेंगे। प्रधानमंत्री आज शाम मुंबई में ग्लोबल फिनटेक फेस्ट 2026 का शुभारंभ करेंगे। श्री मोदी सम्मेलन को संबोधित भी करेंगे। इस सम्मेलन का उद्देश्य डिजिटल भुगतान और वित्तीय समावेशन के क्षेत्र में भारत के नेतृत्व को और मजबूत करना तथा संभावनाओं को वास्तविकता में बदलना है। गृह मंत्री अमित शाह ने गोवा पुलिस को प्रतिष्ठित राष्ट्रपति पुलिस ध्वज प्रदान किया। इस अवसर पर गृह मंत्री ने गोवा पुलिस की सेवा, व्यावसायिकता, साहस और अनुशासन की सराहना की।
2: 8 दशकों की गौरवशाली गोवा पुलिस की सेवा राष्ट्रपति जी के दिए हुए निशान के साथ देश भर की पुलिस की कतार में खड़ी है। ये गौरव जिन जिन राज्यों की पुलिस को मिला वो पुलिस के गौरवशाली इतिहास, साहस, अनुशासन और समर्पण के कारण ही राष्ट्रपति महोदय ने गोवा को प्रेसिडेंट कलर से सम्मानित करने का काम किया है।
1: इससे पहले गृह मंत्री ने गोवा के पणजी में पश्चिमी क्षेत्रीय परिषद की 28वीं बैठक की अध्यक्षता की। श्री शाह ने कहा कि पश्चिमी क्षेत्र के राज्यों के बीच अब कोई विवाद नहीं है। रक्षा खरीद परिषद ने सशस्त्र बलों के लिए 1,10,000 करोड़ रुपए से अधिक के रक्षा खरीद प्रस्तावों को मंजूरी दे दी है। ये मंजूरी रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की अध्यक्षता में हुई परिषद की बैठक में दी गई। परिषद की बैठक में सेना के लिए रासायनिक, जैविक, रेडियोलॉजिकल और परमाणु टोही वाहन, हाई मोबिलिटी वाहन, स्वचालित माइन लेयर, एडवांस्ड लाइट हेलीकॉप्टर, ट्रॉल टैंक और सर्वत ब्रिज सिस्टम की खरीद को मंजूरी दी गई। रक्षा मंत्रालय ने कहा है कि 98% खरीद भारतीय उद्योग से की जाएगी। कृषि और किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने नई दिल्ली में अंतर्राष्ट्रीय आलू केंद्र के महानिदेशक डॉ. साइमन हेक के साथ विस्तृत चर्चा की। बैठक में आलू के बेहतर बीज और रोपण सामग्री उपलब्ध कराने, किसानों की समस्याओं के समाधान और भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद तथा केंद्र के बीच सहयोग मजबूत करने पर चर्चा हुई। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने भारतीय मजदूर संघ के नेतृत्व में विभिन्न सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों के कर्मचारियों के प्रतिनिधिमंडल से मुलाकात की। प्रतिनिधिमंडल ने सेवानिवृत्त कर्मचारियों के लिए चिकित्सा सुविधा, अनुग्रह राशि और प्रदर्शन आधारित प्रोत्साहन योजना सहित कई मुद्दे उठाए। वित्त मंत्रालय ने कहा कि वित्त वर्ष 2025-26 की प्रदर्शन आधारित प्रोत्साहन योजना फिलहाल स्थगित रहेगी। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा है कि सत्य निकेतन इमारत के मालिक को गिरफ्तार कर लिया गया है। इसके साथ ही लापरवाही बरतने के आरोप में नगर निगम के 5 अधिकारियों को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया है। मुख्यमंत्री ने कड़ा रुख अपनाते हुए पूरी दिल्ली में 5वीं मंजिल वाली इमारतों को तुरंत सील करने के आदेश दिए हैं। जम्मू कश्मीर अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव का कल औपचारिक उद्घाटन किया गया। इस अवसर पर मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला, वरिष्ठ नेशनल कॉन्फ्रेंस नेता डॉ. फारूक अब्दुल्ला और प्रसिद्ध फिल्म निर्माता रमेश सिप्पी तथा विधु विनोद चोपड़ा मौजूद रहे। महोत्सव में 40 से अधिक देशों की 130 से ज्यादा फिल्में प्रदर्शित की जाएंगी। इसका आयोजन श्रीनगर, गुलमर्ग और जम्मू में एक साथ हो रहा है। शीतल देवी ने विश्व तीरंदाजी पैरा श्रृंखला में महिला कंपाउंड के व्यक्तिगत वर्ग के फाइनल में प्रवेश कर लिया है। अहमदाबाद में कल सेमीफाइनल में शीतल देवी ने सरिता को हराया। किताबी मुकाबले में शीतल का सामना बुधवार को कजाकिस्तान के एजादा सेदान से होगा। कांस्य पदक मुकाबले में सरिता चीन की वांग हुईतिंग से खेलेंगी। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

0: World Archery Para Series in Ahmedabad. And that is the end of this news bulletin.
1: ये आकाशवाणी दिल्ली का AIR लाइव न्यूज 24x7 चैनल है। रात्रि के 1:10 हुए हैं। लीजिए अब सुनिए सुनहरे गीतों का ये कार्यक्रम गीत सुनहरे। सबसे पहले आपको सुना रहे हैं मोहम्मद रफी की आवाज में ये गीत, जिसको हमने लिया है फिल्म है मेरे सनम।

आरजू फिल्म के ये गीत आपने सुना, और लीजिए अब आपको सुनवा रहे हैं मेरी सूरत तेरी आँखें। इस फिल्म का गीत आवाज़ मोहम्मद रफ़ी की है।

लता मंगेशकर की आवाज़ में गाए इस गीत के साथ ही आज का कार्यक्रम गीत सुनहरे होता है यही संपन्न। आकाशवाणी दिल्ली का ये AIR लाइव न्यूज़ 24x7 चैनल है। रात्रि के 2 बजने वाले हैं। कुछ ही क्षणों में आप सुनेंगे समाचार, पहले हिंदी में और फिर अंग्रेजी में।

नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं भवतारिणी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज गुजरात जाएंगे। वे राज्य में 35,000 करोड़ रुपए से अधिक की विभिन्न परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास करेंगे। अहमदाबाद में केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि पूर्वी

0: पश्चिमी समर्पित माल ढुलाई गलियारे देश के परिवहन और लॉजिस्टिक्स क्षेत्र की महत्वपूर्ण आधारभूत संरचना है। उन्होंने कहा कि यह महत्वाकांक्षी परियोजना अब पूरी हो चुकी है और प्रधानमंत्री आज इसे राष्ट्र को समर्पित करेंगे। प्रधानमंत्री आज शाम मुंबई में ग्लोबल फिनटेक फेस्ट 2026 का शुभारंभ करेंगे। श्री मोदी सम्मेलन को संबोधित भी करेंगे। इस सम्मेलन का उद्देश्य डिजिटल भुगतान और वित्तीय समावेशन के क्षेत्र में भारत के नेतृत्व को और मजबूत करना तथा संभावनाओं को वास्तविकता में बदलना है। गृहमंत्री अमित शाह ने गोवा पुलिस को प्रतिष्ठित राष्ट्रपति पुलिस ध्वज प्रदान किया। इस अवसर पर गृहमंत्री ने गोवा पुलिस की सेवा, व्यावसायिकता, साहस और अनुशासन की सराहना की।
1: 8 दशकों की गौरवशाली गोवा पुलिस की सेवा राष्ट्रपति जी के दिए हुए निशान के साथ देश भर की पुलिस की कतार में खड़ी है। ये गौरव जिन जिन राज्यों की पुलिस को मिला वो पुलिस के गौरवशाली इतिहास, साहस, अनुशासन और समर्पण के कारण ही राष्ट्रपति महोदय ने गोवा को प्रेसिडेंट कलर से सम्मानित करने का काम किया है।
0: इससे पहले गृहमंत्री ने गोवा के पणजी में पश्चिमी क्षेत्रीय परिषद की 28वीं बैठक की अध्यक्षता की। श्री शाह ने कहा कि पश्चिमी क्षेत्र के राज्यों के बीच अब कोई विवाद नहीं है। रक्षा खरीद परिषद ने सशस्त्र बलों के लिए 1,10,000 करोड़ रुपए से अधिक के रक्षा खरीद प्रस्तावों को मंजूरी दे दी है। ये मंजूरी रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की अध्यक्षता में हुई परिषद की बैठक में दी गई। परिषद की बैठक में सेना के लिए रासायनिक, जैविक, रेडियोलॉजिकल और परमाणु टोही वाहन, हाई मोबिलिटी वाहन, स्वचालित माइन लेयर, एडवांस लाइट हेलीकॉप्टर, ट्रॉल टैंक और सर्वत ब्रिज सिस्टम की खरीद को मंजूरी दी गई। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने भारतीय मजदूर संघ के नेतृत्व में विभिन्न सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों के कर्मचारियों के प्रतिनिधिमंडल से मुलाकात की। प्रतिनिधिमंडल ने सेवानिवृत्त कर्मचारियों के लिए चिकित्सा सुविधा, अनुग्रह राशि और प्रदर्शन आधारित प्रोत्साहन योजना सहित कई मुद्दे उठाए। वित्त मंत्रालय ने कहा कि वित्त वर्ष 2025-26 की प्रदर्शन आधारित प्रोत्साहन योजना फिलहाल स्थगित रहेगी। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने दुबई में इन्वेस्टमेंट डेस्टिनेशन मध्य प्रदेश कार्यक्रम को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि राज्य में पारदर्शी नीतियां, सुशासन और निवेश के अनुकूल माहौल के साथ विकास की व्यापक संभावनाएं हैं। उन्होंने मध्य प्रदेश की मजबूत सड़क और रेल संपर्क तथा आधुनिक लॉजिस्टिक व्यवस्था का उल्लेख करते हुए कृषि उद्योग, सेवा, खाद्य प्रसंस्करण और कपड़ा क्षेत्र में निवेश की संभावनाओं पर जोर दिया। लग्जमबर्ग के उप प्रधानमंत्री और विदेश मंत्री जेवियर बेटेल ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में भारत की स्थायी सदस्यता का समर्थन किया है। उन्होंने कहा कि सुरक्षा परिषद में सुधार होना चाहिए ताकि वह मौजूदा वैश्विक व्यवस्था को बेहतर ढंग से दर्शा सकें। श्री बेटेल ने सुरक्षा परिषद की वीटो व्यवस्था को द्वितीय विश्व युद्ध के समय की व्यवस्था बताते हुए इसमें बदलाव की आवश्यकता पर जोर दिया। ईरान ने अमेरिका को चेतावनी दी है कि अगर उसके ठिकानों पर फिर हमला किया गया तो वह जवाबी कार्रवाई करेगा। ईरान ने कहा है कि खाड़ी क्षेत्र में अमेरिकी तेल और गैस प्रतिष्ठानों समेत ऊर्जा ढांचे को निशाना बनाया जा सकता है। शीतल देवी ने विश्व तीरंदाजी पैरा श्रृंखला में महिला कंपाउंड के व्यक्तिगत वर्ग के फाइनल में प्रवेश कर लिया है। अहमदाबाद में कल सेमीफाइनल में शीतल देवी ने सरिता को हराया। खिताबी मुकाबले में शीतल का सामना बुधवार को कजाकिस्तान की इजादा सेदान से होगा। कांस्य पदक के मुकाबले में सरिता चीन की वांग हुईटिंग से खेलेंगी। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: This is Akashvani, the news read by R.S. Raghu. The Defense Acquisition Council, DAC, has cleared capital acquisition proposals worth over 1,10,000 crore rupees for the defense forces. Our correspondent reports that the approval was taken during a meeting of the council held yesterday under the chairmanship of Defense.

0: ईद के साथ ही आज का नॉन स्टॉप फिल्म म्यूजिक का ये कार्यक्रम होता है यही संपन्न। ये आकाशवाणी दिल्ली है, लीजिए अब सुनिए समाचार। रात्रि के 3 बजने वाले हैं।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं भवतारिणी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज गुजरात जाएंगे। वे राज्य में 35,000 करोड़ रुपए से अधिक की विभिन्न परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास करेंगे। अहमदाबाद में केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि पूर्वी और पश्चिमी समर्पित माल ढुलाई गलियारे देश के परिवहन और लॉजिस्टिक्स क्षेत्र की महत्वपूर्ण आधारभूत संरचना है। उन्होंने कहा कि यह महत्वाकांक्षी परियोजना पूरी हो चुकी है और प्रधानमंत्री आज इसे राष्ट्र को समर्पित करेंगे। प्रधानमंत्री आज शाम मुंबई में ग्लोबल फिनटेक फेस्ट 2026 का शुभारंभ करेंगे। श्री मोदी सम्मेलन को संबोधित भी करेंगे। इस सम्मेलन का उद्देश्य डिजिटल भुगतान और वित्तीय समावेशन के क्षेत्र में भारत के नेतृत्व को और मजबूत करना तथा संभावनाओं को वास्तविकता में बदलना है।

0: गृह मंत्री अमित शाह ने गोवा पुलिस को प्रतिष्ठित राष्ट्रपति पुलिस ध्वज प्रदान किया। इस अवसर पर गृह मंत्री ने गोवा पुलिस की सेवा, व्यावसायिकता, साहस और अनुशासन की सराहना की।
1: 8 दशकों की गौरवशाली गोवा पुलिस की सेवा राष्ट्रपति जी के दिए हुए निशान के साथ देश भर की पुलिस की कतार में खड़ी है। ये गौरव जिन जिन राज्यों की पुलिस को मिला वो पुलिस के गौरवशाली इतिहास, साहस, अनुशासन और समर्पण के कारण ही राष्ट्रपति महोदय ने गोवा को प्रेसिडेंट कलर से सम्मानित करने का काम किया है।
0: इससे पहले गृह मंत्री ने गोवा के पणजी में पश्चिमी क्षेत्रीय परिषद की 28वीं बैठक की अध्यक्षता की। श्री शाह ने कहा कि पश्चिमी क्षेत्र के राज्यों के बीच अब कोई विवाद नहीं है। रक्षा खरीद परिषद ने सशस्त्र बलों के लिए 1,10,000 करोड़ रुपए से अधिक के रक्षा खरीद प्रस्तावों को मंजूरी दे दी है। ये मंजूरी रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की अध्यक्षता में हुई परिषद की बैठक में दी गई। परिषद की बैठक में सेना के लिए रासायनिक, जैविक, रेडियोलॉजिकल और परमाणु टोही वाहन, हाई मोबिलिटी वाहन, स्वचालित माइन लेयर, एडवांस लाइट हेलीकॉप्टर, टॉल टैंक और सर्वत ब्रिज सिस्टम की खरीद को मंजूरी दी गई। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने भारतीय मजदूर संघ के नेतृत्व में विभिन्न सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों के कर्मचारियों के प्रतिनिधिमंडल से मुलाकात की। प्रतिनिधिमंडल ने सेवानिवृत्त कर्मचारियों के लिए चिकित्सा सुविधा, अनुग्रह राशि और प्रदर्शन आधारित प्रोत्साहन योजना सहित कई मुद्दे उठाए। वित्त मंत्रालय ने कहा कि सरकार बैंक कर्मचारियों, ग्राहकों और बैंकिंग क्षेत्र के हित में संवाद और आपसी सहमति के जरिए मुद्दों का समाधान करने के लिए प्रतिबद्ध है। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा है कि सत्यनिकेतन इमारत के मालिक को गिरफ्तार कर लिया गया है। इसके साथ ही लापरवाही बरतने के आरोप में नगर निगम के 5 अधिकारियों को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया है। मुख्यमंत्री ने कड़ा रुख अपनाते हुए पूरी दिल्ली में 5वीं मंजिल वाली इमारतों को तुरंत सील करने के आदेश दिए हैं। लग्जमबर्ग के उप प्रधानमंत्री और विदेश मंत्री जेवियर बेटेल ने संयुक्त राष्ट्र रक्षा परिषद में भारत की स्थायी सदस्यता का समर्थन किया है। श्री बेटेल ने सुरक्षा परिषद की वीटो व्यवस्था को द्वितीय विश्व युद्ध के समय की व्यवस्था बताते हुए इसमें बदलाव की आवश्यकता पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि भारत और ब्राजील जैसे बड़े देशों को सुरक्षा परिषद में स्थायी भूमिका मिलनी चाहिए। श्री बेटेल 7 से 9 सितंबर तक भारत की 3 दिवसीय यात्रा पर हैं। जम्मू कश्मीर अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव का कल औपचारिक उद्घाटन किया गया। इस अवसर पर मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला, वरिष्ठ नेशनल कॉन्फ्रेंस नेता डॉ. फारूक अब्दुल्ला और प्रसिद्ध फिल्म निर्माता रमेश सिप्पी तथा विनोद चोपड़ा मौजूद रहे। महोत्सव में 40 से अधिक देशों की 130 से ज्यादा फिल्में प्रदर्शित की जाएंगी। इसका आयोजन श्रीनगर, गुलमर्ग और जम्मू में एक साथ हो रहा है। शीतल देवी ने विश्व तीरंदाजी पैरा श्रृंखला में महिला कंपाउंड के व्यक्तिगत वर्ग की फाइनल में प्रवेश कर लिया है। अहमदाबाद में कल सेमीफाइनल में शीतल देवी ने सरिता को हराया। खिताबी मुकाबले में शीतल का सामना बुधवार को कजाकिस्तान की एजादा सेदान से होगा। कांस्य पदक के मुकाबले में सरिता चीन की वांग हुईटिंग से खेलेंगी। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: आकाशवाणी, द न्यूज रेड बाय आरएस राघु। The Defence Acquisition Council DAC has cleared capital acquisition proposals worth over 1,10,000 crore rupees for the defence forces. Our correspondent reports that the approval was taken during a meeting of the council held yesterday under the chairmanship of Defence Minister Rajnath Singh.
3: The council granted approval for the procurement of chemical, biological, radiological and nuclear CBRN recce vehicles, high mobility vehicles HMV, self-propelled mechanical mine layers MML, advanced light helicopters ALH, trawl tanks and Sarvatra bridge system for the Indian Army. For the Indian Navy, acceptance of necessity was accorded for the procurement of Arudhra radars, design and development and subsequent procurement of marine gas turbines MGT. Arudhra radars will replace the

0: AIR लाइव न्यूज 24/7 चैनल पर अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम गजल और गीत। स्टूडियो की घड़ी के मुताबिक सुबह के 4 बजने को हैं। आइए अब सुनते हैं कार्यक्रम अर्चना।
1: प्रस्तुत है भक्ति संगीत का कार्यक्रम अर्चना।

0: इसके साथ ही भक्ति संगीत का कार्यक्रम अर्चना अब समाप्त होता है।
1: आकाशवाणी दिल्ली के AIR लाइव न्यूज 24/7 चैनल पर अभी आप सुन रहे थे भक्ति संगीत का कार्यक्रम अर्चना। आइए अब सुनते हैं कार्यक्रम नाद ब्रह्म। इसके अंतर्गत अभी आप सुनेंगे सुधा रघुरमन द्वारा गाया राग कंबुज।

श्रोताओं, नाद ब्रह्म कार्यक्रम अब यहीं पर संपन्न होता है। वंदे मातरम।

ये आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है। मीडियम वेव 366.3 मीटर अर्थात 819 किलो हर्ट्स, डीआरएम 810 किलो हर्ट्स पर। आज मंगलवार है, शक संवत 1948 के भाद्रपद मास की 17वीं तिथि, तदनुसार 8 सितंबर 2026। सुबह के 4:53 और 45 सेकेंड हुए हैं। अब हमारे कार्यक्रम आरंभ होते हैं।

ये आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है। मीडियम वेव 366.3 मीटर अर्थात 819 किलोहर्ट्ज़, डीआरएम 810 किलोहर्ट्ज़ पर।

श्रोताओं, आकाशवाणी दिल्ली के इंद्रप्रस्थ चैनल पर आइए अब आपको आगे प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों की जानकारी दे दें। अब से कुछ देर बाद यानी 5:10 पर आप सुनेंगे कार्यक्रम आओ योग करें। 5:20 से आप देशभक्ति गीत का आनंद उठा सकते हैं।

5:30 पर आप सुन सकते हैं कार्यक्रम स्वर रंजनी। इस कार्यक्रम के अंतर्गत आप सुनेंगे नकुल मल्होत्रा द्वारा गाया राग ललित। सुबह 6 बजे का वक्त होगा हिंदी में समाचार का, जबकि 6:05 पर आप सुनेंगे अंग्रेजी में समाचार। सुबह 6:10 पर आप सुन सकते हैं कार्यक्रम वंदना।

0: सुबह के 5 बजने को है, ये सुनते हैं समाचार।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं जया भारती। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज गुजरात और महाराष्ट्र के दौरे पर रहेंगे। गुजरात में प्रधानमंत्री वडोदरा से 35,000 करोड़ रुपए से अधिक की विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास करेंगे। साथ ही पश्चिमी समर्पित माल ढुलाई गलियारे के 3 महत्वपूर्ण खंड राष्ट्र को समर्पित करेंगे। इसके साथ ही यह महत्वपूर्ण परियोजना पूरी हो जाएगी। अहमदाबाद हवाई अड्डे पर मीडिया से बातचीत में केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि यह मेगा प्रोजेक्ट अब पूरी तरह से तैयार हो चुका है।
2: डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर ईस्ट और वेस्ट, ये दोनों देश के लिए बहुत बड़ी एक बैकबोन की तरह है ट्रांसपोर्टेशन में। वो प्रोजेक्ट अब कंप्लीट हुआ पूरी तरह से, उसको माननीय प्रधानमंत्री जी कल राष्ट्र के प्रति समर्पित करेंगे। ये परियोजना ऐसी है जिसमें कई वर्ष लगे, 2014 में प्रधानमंत्री ने उस काम को हाथ में लिया, हाथ में लेके जितनी भी उसमें प्रॉब्लम्स थी उनको सॉल्व किया और अब कंप्लीट हुआ।
1: प्रधानमंत्री कई नई रेल और मालगाड़ी सेवाओं की भी शुरुआत करेंगे। इस अवसर पर वे जनसभा को भी संबोधित करेंगे। महाराष्ट्र में प्रधानमंत्री मुंबई में ग्लोबल फिनटेक फेस्ट 2026 का उद्घाटन करेंगे। सम्मेलन में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, क्वांटम तकनीक, डिजिटल भुगतान और वित्तीय समावेशन जैसे विषयों पर चर्चा होगी। ग्लोबल फिनटेक फेस्ट का 7वां संस्करण 11 सितंबर तक मुंबई में चलेगा। गृह मंत्री अमित शाह ने कल गोवा पुलिस को प्रतिष्ठित राष्ट्रपति पुलिस ध्वज प्रदान किया। इस अवसर पर गृह मंत्री ने गोवा पुलिस की सेवा, व्यावसायिकता, साहस और अनुशासन की सराहना की। इससे पहले गृह मंत्री ने गोवा के पणजी में पश्चिमी क्षेत्रीय परिषद की 28वीं बैठक की अध्यक्षता की। श्री शाह ने कहा कि पश्चिमी क्षेत्र के राज्यों के बीच अब कोई विवाद नहीं है। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने कहा है कि अनिश्चितता के दौर में भारत और लक्जमबर्ग के बीच भरोसेमंद संबंध है।

0: दिल्ली में लग्जमबर्ग के उप प्रधानमंत्री और विदेश मंत्री जेवियर बेटल से मुलाकात के दौरान डॉक्टर जयशंकर ने कहा कि दोनों देशों के बीच व्यापार, निवेश और वित्तीय सहयोग संबंधों के प्रमुख क्षेत्र हैं। वहीं जेवियर बेटल ने भारत के शांति प्रयासों और संघर्ष प्रभावित देशों के बीच सेतु की भूमिका की सराहना की। इसके अलावा उन्होंने सुरक्षा परिषद में भारत की स्थायी सदस्यता का समर्थन किया। श्री बेटल 3 दिन की भारत यात्रा पर हैं। विदेश मंत्री डॉक्टर जयशंकर ने कल नई दिल्ली में पश्चिमी एशिया के साथ भारत के संबंधों पर संसदीय परामर्श समिति की बैठक की अध्यक्षता भी की। बैठक में उन्होंने खाड़ी और पश्चिमी एशिया के देशों के साथ भारत के मजबूत संबंधों और व्यापार, निवेश तथा ऊर्जा के क्षेत्र में सहयोग पर चर्चा की। कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कल नई दिल्ली में अंतर्राष्ट्रीय आलू केंद्र के महानिदेशक डॉक्टर साइमन हेक से मुलाकात की। बैठक में बेहतर आलू बीज, किसानों की समस्याओं और भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद तथा केंद्र के बीच सहयोग बढ़ाने पर चर्चा हुई। श्री चौहान ने भारत में उन्नत आलू किस्में लाने और अलग अलग जलवायु के अनुकूल नई किस्में विकसित करने पर बल दिया। केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालय इम्फाल आज से 11 सितंबर तक मेघालय के उमियम में प्राकृतिक खेती पर राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन करेगा। सम्मेलन में देश के 21 राज्यों और 51 कृषि संस्थानों से 400 से अधिक प्रतिभागी शामिल होंगे। उत्तर प्रदेश में ग्रेटर नोएडा औद्योगिक विकास प्राधिकरण ने गंगा एक्सप्रेसवे से बेहतर कनेक्टिविटी के लिए करीब 15 किलोमीटर लंबी और 105 मीटर चौड़ी सड़क बनाने का प्रस्ताव दिया है। इससे नोएडा और ग्रेटर नोएडा से गंगा एक्सप्रेसवे तक पहुंचने में करीब 30 से 45 मिनट लगेंगे। त्योहारों को देखते हुए राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली के प्रमुख खाद्य बाजारों में जांच अभियान तेज कर दिया गया है। दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर पंकज कुमार सिंह ने बताया कि अभियान के तहत करीब 2300 किलोग्राम लावारिस खोया, धाप और मक्खन जब्त कर नष्ट किया गया। उत्तर प्रदेश में बारिश और बांधों से छोड़े गए पानी के कारण 25 जिलों में बाढ़ जैसे हालात बने हुए हैं। पिछले 24 घंटों में राज्य के कई हिस्सों में बारिश हुई। एशियाई खेल 2026 जापान में 19 सितंबर से 4 अक्टूबर तक आयोजित होंगे। हालांकि कुछ खेल प्रतियोगिताएं 10 सितंबर से ही शुरू हो जाएंगी। भारत का अभियान 17 सितंबर तक टेक बॉल से शुरू होगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: This is Akashvani, the news read by R.S. Raghu. Prime Minister Narendra Modi will visit Gujarat and Maharashtra today. In Vadodara, the Prime Minister will lay the foundation stones, inaugurate and dedicate to the nation various development projects worth more than 35,000 crore rupees. He will also dedicate to the nation 3 important sections of the Western Dedicated Freight Corridor, WDFC, covering 326 route kilometers, developed at a cost of more than 20,700 crore rupees. The Prime Minister will also lay the foundation stone for 3 railway projects costing more than 9,700 crore rupees. In Maharashtra, the Prime Minister will inaugurate and address the Global FinTech Fest GFF 2026 in Mumbai this evening. The theme of GFF 2026, one of the world's largest and most influential annual fintech conferences, is Potential to Impact, Agentic AI, Tokenization, Quantum, Trusted, Connected, Global Systems for Inclusive Finance. The GFF 2026 seeks to build on India's leadership in digital payments and financial inclusion and move from potential to impact. The Defence Acquisition Council, DAC, has cleared capital acquisition proposals worth over 1,10,000 crore rupees for the Defence Forces. Our correspondent reports that the approval was taken during the meeting of the Council held yesterday under the chairmanship of Defence Minister Rajnath Singh. The Council granted approval for the procurement of chemical, biological, radiological and nuclear CBRN recce vehicles, High Mobility Vehicles HMVs, Self-Propelled Mechanical Mine Layers MML, Advanced Light Helicopters ALHs, Trawl Tanks and Sarvatra Bridge System for the Indian Army. For the Indian Navy, acceptance of necessity was accorded for the procurement of Arudhra Radars Design and Development.

नमस्कार, मेरा नाम है डॉक्टर हिमानी शौखन। मैं हूं आपकी योग विशेषज्ञ। दोस्तों, तनाव ग्रस्त जीवन शैली से थायराइड से रिलेटेड प्रॉब्लम आजकल बहुत ही कॉमन हो गई है। आधुनिक जीवन में व्यक्ति अनेक चिंताओं से ग्रस्त है, जैसे परिवार की चिंताएं, पर्सनल प्रॉब्लम्स या ऑफिस से रिलेटेड प्रॉब्लम्स। तो आज हम किस सेशन में हम देखेंगे कि थायराइड से रिलेटेड जो प्रॉब्लम्स हैं, उससे आप कैसे निजात पा सकते हैं। थायराइड हमारे शरीर में एक ग्रंथि होती है, जिसका काम होता है हमारे शरीर के मेटाबॉलिज्म को नियंत्रण करना, और साथ ही साथ यह ग्रंथि हमारे हृदय, मांसपेशियों और कोलेस्ट्रॉल को भी नियंत्रण करती है। परंतु जब यह ग्रंथि सही रूप से काम नहीं कर पाती, तो हमारे शरीर में हाइपर या हाइपोथायरॉयडिज्म से रिलेटेड प्रॉब्लम्स होने लगती हैं, और उससे उत्पन्न होने वाली कॉन्सिक्वेंसेस को हमें

फेस करना पड़ता है। देखा गया है कि योग अभ्यास में उज्जयी प्राणायाम थायराइड से रिलेटेड प्रॉब्लम्स को ठीक करने में काफी सहायक है। तो आज हम सीखेंगे कि उज्जयी प्राणायाम किस प्रकार किया जाता है। तो इसकी अभ्यास विधि के लिए आप सबसे पहले किसी भी सुखद पूर्वक आसन में बैठ जाएं, अपने मुंह को बंद कर लें, पूरे क्षेत्र को गले के पिछले हिस्से पर संकुचित कर लें, दोनों नासिकाओं से धीरे धीरे एक ही लय में तब तक श्वास भरते रहें जब तक आप गले से लेकर हृदय तक उसको महसूस ना करें। श्वास लेने के क्रम में कंठ द्वार यानी थ्रोट रीजन के आंशिक रूप से बंद होने के कारण एक विशिष्ट ध्वनि उत्पन्न होती है। यह ध्वनि हल्की और समान होनी चाहिए, साथ ही साथ इसे लगातार करते रहना चाहिए। श्वास लेते समय सीने को फुलाएं। कुछ समय पश्चात धीरे धीरे दोनों नासिका छिद्र से श्वास को बाहर निकालें। यह इस अभ्यास का एक चक्र है। इसी प्रकार एक सेशन में आप कम से कम 4 से 5 बार उज्जयी प्राणायाम अवश्य करें, तभी आप इसका परिपूर्ण रूप से लाभ उठा पाएंगे। उज्जयी प्राणायाम आपके थायराइड से रिलेटेड जो प्रॉब्लम्स हैं, उससे काफी निजात पा सकते हैं। प्राणायाम के साथ साथ आप सर्वांगासन को भी कर सकते हैं। यह भी थायराइड से रिलेटेड प्रॉब्लम्स के लिए काफी हद तक लाभकारी है। तो इस सेशन में आज हमने सीखा कि किस प्रकार आप थायराइड से रिलेटेड प्रॉब्लम के लिए उज्जयी प्राणायाम का सहारा ले सकते हैं। दोस्तों, जब भी आप योग अभ्यास करें तो कुछ बातों का अवश्य ध्यान दें। कोई भी आप योग अभ्यास करें, उसे सहज पूर्वक करें, पूरी एकाग्रता के साथ करें, तभी आप उसका लाभ उठा पाएंगे और अपने जीवन को खुशहाल बना पाएंगे। प्रतिदिन करें योग, रहें निरोग। नमस्कार।

आप सभी को सादर प्रणाम। दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर हिमानी शौखन, आपकी योग विशेषज्ञ। आज मैं आपको एक बहुत ही महत्वपूर्ण योग अभ्यास बताऊंगी जो बच्चों के लिए बहुत ही उपयोगी है। केवल बच्चों के लिए ही नहीं, परंतु हर वर्ग के लोगों के लिए यह आसन जरूरी है। आज हम करेंगे वृक्षासन। वृक्ष शब्द का अर्थ है पेड़। इस आसन के अभ्यास की अंतिम अवस्था में हमारा शरीर एक पेड़ का आकार ले लेता है, यानी बिल्कुल सीधा खड़ा हो जाता है। इसीलिए इस आसन को वृक्षासन कहते हैं। आजकल लैक ऑफ कंसंट्रेशन की प्रॉब्लम बहुत कॉमन होती जा रही है, यानी किसी भी कार्य में ध्यान ना लगना। इसके कई कारण हो सकते हैं। जैसे दोस्तों, कई बार ऐसा होता है कि हम कोई भी काम लगन से तो करना चाहते हैं, पर लैक ऑफ कंसंट्रेशन यानी एकाग्रता की कमी से उस कार्य को परिपूर्ण रूप से नहीं कर पाते और उसके कॉन्सिक्वेंसेस को भी हमें आगे फेस करना पड़ता है। वृक्षासन का अभ्यास करते समय सर्वप्रथम दोनों पैरों को एक दूसरे से 2 इंच की दूरी पर रखकर खड़े हो जाएं। आंखों के सामने किसी भी एक बिंदु पर ध्यान केंद्रित करें। श्वास को शरीर के बाहर छोड़ते हुए दाएं पैर को मोड़कर उसके पंजे को बाएं पैर की अंदरूनी जांघ पर रखें। श्वास को शरीर के अंदर लेते हुए दोनों हाथों को ऊपर की ओर ले जाकर दोनों हथेलियों को जोड़ें। इस स्थिति में 10 से 30 सेकंड तक रुकने का प्रयास करें और सामान्य रूप से श्वास

0: लेते रहें। श्वास को शरीर के बाहर छोड़ते हुए हाथों और दाएं पैर को मूल अवस्था में वापस ले आएं। शरीर को शिथिल करें और इसी आसन का अभ्यास पुनः बाएं पैर से भी दोहराएं। दोस्तों, यह आसन बहुत ही महत्वपूर्ण आसन है। यदि आप इस आसन को 3 से 4 बार एक सेशन में दोहराते हैं तो यह धीरे धीरे आपकी एकाग्रता को बढ़ाने में सहायक है और शरीर को संतुलित बनाता है, सहनशीलता और जागरूकता भी बढ़ाता है। तो आज हमने सीखा कि किस प्रकार आप अपनी एकाग्रता को बढ़ाने के लिए वृक्षासन का अभ्यास कर सकते हैं। परंतु ध्यान रहे, यदि आपको कोई आर्थराइटिस की प्रॉब्लम है या मोटापा बहुत ज्यादा है, चक्कर आते हैं, तो इस आसन का अभ्यास ना करें। प्रतिदिन करें योग, रहें निरोग। धन्यवाद।
1: आकाशवाणी दिल्ली के इंद्रप्रस्थ चैनल पर अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम आओ योग करें। इसके अंतर्गत अभी आपने उज्जायी प्राणायाम और वृक्षासन के बारे में जाना। ये आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है। मीडियम वेव 366.3 मीटर अर्थात 819 किलोहर्ट्ज़, DRM 810 किलोहर्ट्ज़ पर। आइए सुनते हैं देशभक्ति गीत।

आकाशवाणी दिल्ली के इंद्रप्रस्थ चैनल पर अभी आप सुन रहे थे देशभक्ति गीत। और आइए अब सुनते हैं कार्यक्रम स्वर रंजनी। इस कार्यक्रम के अंतर्गत अभी आप सुनेंगे नकुल मल्होत्रा द्वारा गाया राग ललित।